दोस्तों, FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। और इस कार्यक्रम में गीतों को सुनवाने के लिए मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चौक।

कितनी सच बात है ना, केवल हमारे बोल ही तो रह जाते हैं और ये दिन मिट्टी की तरह बिक जाता है। कहते हैं ना कि इंसान का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व की पहचान करवाता है, और इस व्यवहार को ही हमें ऊंचा रखना चाहिए।

और अब भोर सुहानी कार्यक्रम में आखिरी रचना मेरा नाम जोकर फिल्म से मुकेश की गाई हुई।

बहुत सच बात है दोस्तों, जीना भी यही है और मरना भी यही है, इसके सिवा हमें जाना कहाँ है। बाकी तो शरीर मिट्टी का ढेर हो जाता है। और इसके साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है और अब सुनते हैं वंदे मातरम।

नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 अगस्त 2026। सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

FM 106.1 MHz पर ये गोल्ड चैनल है और अब प्रस्तुत है झरोखा आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का।

भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा अर्पण 6:10 पर। श्री रामचरित मानस आप सुनेंगे 6:44 पर। और आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 10। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। सात बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार होंगे 7:05 पर। सात बजकर 10 से लेकर 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात और इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आएंगी उर्वशी यादव। और 7:30 पर कार्यक्रम होगा आज सवेरे।

8:30 पर उर्दू में समाचार होंगे। आपको बता दें 8 बजे आप सुनेंगे समाचार हिंदी में और 8:15 पर अंग्रेजी में, और फिर इसके पश्चात 8:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा 9 बजे तक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। इस कार्यक्रम की बागडोर होगी उर्वशी यादव के हाथ में, और 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 9:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: 9:10 पर म्यूजिकल दिल लगी कार्यक्रम होगा। वात्सल्य के अंतर्गत मातृ अमृत कोश आपको सुनवा जाएगा और इस कार्यक्रम के लिए आपके साथ रहेंगी कुसुम लता। और 9:30 से लेकर 10 तक प्रायोजित कार्यक्रम होगा वतन का राग। और ये था झरोखा और अब 6 वाले हैं, आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम हार्वर्ड के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेडवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations and more than 125 partner spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasised that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
2: Swami Vivekanand ji, युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने

सावन का पावन महीना जब हर ओर भक्ति की गूंज सुनाई देती है और हर हर महादेव का जय घोष वातावरण को शिवमय बना देता है। आइए श्रद्धा विश्वास और भक्ति के साथ शुरुआत करते हैं अर्पण की। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ FM गोल्ड पर मैं हूं आपके साथ उर्वशी। सुप्रभात।

कांवड़ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और समर्पण का अद्भुत संगम है। मीलों का सफर तय करते हुए शिव भक्त अपने कंधों पर सिर्फ कांवड़ ही नहीं बल्कि अटूट विश्वास भी लेकर चलते हैं। आइए भोलेनाथ की इसी भक्ति और श्रद्धा को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं अर्पण में। हर हर महादेव।

6:22 और 25 सेकंड हो चुके हैं। FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं अर्पण। एक बार एक व्यक्ति मंदिर आया। वो व्यक्ति देख नहीं सकता था। उसको देखकर कुछ लोगों ने पूछा कि मंदिर में दर्शन के लिए तो तुम आए हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख ही लेगा। इसीलिए कहते हैं कि दृष्टि से ज्यादा दृष्टिकोण सही होना चाहिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सीधे और आसान रास्तों पर चलकर भी कुछ लोग भटक जाते हैं, जबकि कुछ अनजान राहों पर भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जब मन भीतर और बाहर से एक रूप होता है तो भटकाव भी राह का हिस्सा बन जाता है। ओशो कहते हैं, भटकता वही है जो अपने भीतर की यात्रा करने से डरता है।

कहते हैं जीवन की भागदौड़ में अगर कोई चीज भीतर से सुकून देती है तो वो है आध्यात्मिकता। यह हमें दुनिया से दूर नहीं ले जाती बल्कि खुद के और करीब ले आती है। आप सुन रहे हैं अर्पण 100.1 MHz FM गोल्ड पर।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकई के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजे जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थी, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। ये सुनकर कैकई के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

एफएम गोल्ड पर अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस और अब वक्त है समाचारों का। ये सुनते हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्यान्तर्जालीय माध्यमेन विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशामुक्त युव अभियानस्य शुभारम्भं करिष्यति। जनभागीदारीत्येतस्याभियानस्य शतसप्ताह समापनोपलक्ष्ये एतत् अभियानं प्रवृत्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 10,000+स्थानेभ्यः युवानः सहभागं करिष्यन्ति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं युवकान् मादकद्रव्यदुरुपयोगात् दूरं स्थातुं प्रेरयितुं तथा स्वसमाजेषु सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनस्य प्रवर्तकान् भवितुं प्रोत्साहयितुं च इत्यस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विज्ञान प्रौद्योगिकी क्रीडा क्षेत्रेषु सफलतां प्राप्तवतां भारतीय यूनां प्रशंसाम् अकरोत्। सहैव तान् जलसंरक्षणे प्राकृतिक सम्पदः संवर्धने भारतीय कला वस्तूनां संरक्षणे च योगदानं दातुम् आहूतवान्। सः ह्यः मैसूरुनगरे स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युवकेन्द्रस्य विवेक स्मारकस्य उद्घाटनानन्तरम् एतद् अवदत्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वामी विवेकानन्दस्य विचाराः युवकानां सशक्तिकरणं राष्ट्रनिर्माणं च प्रोत्साहयन्ति। उज्बेकिस्तानस्य विदेशमन्त्री सईदोव बख्तियार ओदिलोविच इत्येषः अद्यारभ्य अस्य मासस्य 5 दिनांकपर्यन्तं भारतस्य आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयानुसारं स्वयात्रावधौ असौ राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह शिष्टाचारोपसंगमार्थं मेलिष्यति। सहैव विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह अपि वार्तालापं करिष्यति। सह नवदिल्ल्याम् आयोजिते वाणिज्य मञ्चे अपि भागं ग्रहीष्यति। केन्द्रप्रशासनेन करविभागान्तर्गतम् अतिरिक्त अंशभागत्वेन राज्यसर्वकारेभ्यः 19,99,00,000,00,000 रूप्यकाणि वितरितानि। वित्तमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये प्रोक्तं यत् अस्य अतिरिक्तांशभागस्य उद्देश्यं राज्येभ्यः द्रव्यगतविकासव्ययं वर्धयितुम् अवसरं प्रदानम् इत्यस्ति। मन्त्रालयपक्षतः निस्सारितस्य राज्यक्रमस्य विवरणानुसारं उत्तरप्रदेशः सर्वाधिकम् 28,19,000,00,000 रूप्यकाणि अलभत। तदनन्तरं बिहारराज्यं 45,48,10,000 रूप्यकाणि अथ च मध्यप्रदेशराज्यं 10,08,00,000 रूप्यकाणि प्राप्नोत्। पश्चिमबंगालराज्यं 66,87,00,000 रूप्यकाणि महाराष्ट्रराज्यं च 22,07,00,000 रूप्यकाणि अलभत। ग्लास्गोनगरे प्रवर्तमानासु राष्ट्रमण्डलक्रीडासु भारतम् 41 पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। भारतस्य पदकतालिकायाम् अधुना 13 स्वर्णपदकानि 17 रजतपदकानि 9 कांस्यपदकानि च सन्ति। भारतस्य नूतनपदकं 5,000 मीटरमितायां धावनस्पर्धायां गुलवीरसिंहेन प्राप्तं कांस्यपदकम् अस्ति। मुष्टामुष्टिस्पर्धासु भारतेन उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं यत्र 7 स्वर्णपदकानि तथा 3 रजतपदकानि प्राप्तानि। पैरा एथलेटिक्स इत्येतस्मिन्नपि भारतेन ऐतिहासिकी उपलब्धिः सम्प्राप्ता। पुरुषाणां शॉट्पुट एफ 57 इत्येतस्यां स्पर्धायां सोमन राणा स्वर्णपदकं शुभम जुयालः च रजतपदकं प्राप्तवान्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य कर्नाटक केरल माहे नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा राजस्थान उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। तथैव दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख अरुणाचल प्रदेश गुजरात कोंकण गोवा मध्य प्रदेश ओडिशा अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु अपि अतिवृष्टिः व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू सुरक्षा

नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसने पास के शहर इका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगांस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

किसी से पूछो ना क्या हाल है, तो कोई बोलेगा बस चल रहा है, कोई बोलता है कट रही है, और कोई बोलता है एकदम बढ़िया। आप सुनाओ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ड्स सिर्फ जवाब नहीं होते, वाइब भी सेट करते हैं। इसलिए जितना हो सके अच्छे वर्ड्स चूज कीजिए, क्योंकि कभी कभी मूड बदलने की शुरुआत बस एक पॉजिटिव जवाब से हो जाती है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गोल सुप्रभात उर्वशी के साथ। वैसे एक जवाब ये भी हो सकता है।

जैसे सुबह सुबह सबसे पहले अपने मन के मौसम का हाल जानना जरूरी होता है ना, वैसे ही बाहर के मौसम की जानकारी भी पूरे दिन की प्लानिंग को आसान बना देती है। जैसा हमारा मूड होता है वैसे ही हमारी सुबह सुबह की एनर्जी हो जाती है। हमें कौन सा रंग पहनना है, आज खाने में क्या मन कर रहा है, ये सब कुछ उसी हिसाब से चलने लगता है। तो आइए जान लेते हैं आज का मौसम क्या कह रहा है मौसम विभाग द्वारा। 34 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के होने के भी पूरे पूरे आसार हैं और सावन एंजॉय करने के लिए कहीं घूमने बाहर जाएंगे तो छाता जरूर ले जाइएगा।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: यह गोल्ड सुप्रभात उर्वशी के साथ 7:20:10 हो चुके हैं। हमें से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि रिजल्ट जो है वो जल्दी मिले, जैसे जिम ज्वाइन करते ही एक हफ्ते में फिट दिखना चाहते हैं, या दो दिन पढ़कर उम्मीद करते हैं कि सिलेबस पूरा का पूरा याद हो जाए। लेकिन जब रिजल्ट देर से मिलते हैं ना, तो हम अक्सर अपने रास्ते को बदलने की कोशिश करते हैं। रास्ता बदलिए, लेकिन सिर्फ तब जब लगे कि उससे कुछ बेहतर सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि मंजिल थोड़ी दूर लग रही है। देखिए, जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, उस सफर में हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का नाम भी है। बहुत सारी चीजें हम लाइफ में रिलेट कर पाते हैं, है ना? क्या आप भी ऐसा कुछ रिलेट कर पा रहे हैं?
1: कैसा कैसा

कहते हैं दुनिया में किसी पर इतना भरोसा मत कीजिए कि खुद पर से भरोसा करना ही भूल जाएं, क्योंकि जब हम हमेशा किसी की छाया में रहते हैं ना तो अपनी परछाई दिखना बंद हो जाती है। लोगों का साथ अच्छा है लेकिन अपनी पहचान और अपने फैसलों पर भरोसा उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आज संडे का दिन है, अपने आप से मिलने के लिए जरूर समय निकालिएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे गोल सुप्रभात और आइए आप सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आकाशवाणी स्टूडियो से आज की हसीन सुबह का आगाज करते हैं दोस्ती के नाम। शुरुआत की जाए जहां आज उन लोगों के बारे में बात करके जो जीवन के हर मोड़ पर हमारी खुशियों को दोगुना और गमों को आधा कर देते हैं। जी हां, इसी को कहते हैं शायद दोस्ती। दोस्ती वो रिश्ता है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है।
1: नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस फ्रेंडशिप डे एपिसोड ऑफ आज सवेरे विद मी सायरा एंड फरहत। एंड बिल्कुल सही कहा आपने फरहत, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली यू नो बी अ गुड फ्रेंड, एंड दैट इज द रीजन वेर यू नो व्हेन यू विल सीक गुड फ्रेंड्स आल्सो। एंड वी यूज द वर्ड फ्रेंड सो कैजुअली, यू नो सम पीपल से ओ यू नो माई फेसबुक फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, बट फ्रेंड तो वो है ना, जो आपने कहा कि रात के 2 बजे भी अगर आपका दरवाजा खटखटाए तो आप भी ये ना पूछे अरे कि मतलब
0: क्यों
1: इस वक्त क्यों आए हो, बस ये पूछे कि यू नो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। सो आई थिंक दैट इज फ्रेंडशिप, एंड ऑफ कोर्स इट्स द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉन्ड्स। एंड जब रिश्ते नातों में भी दोस्ती पहले अहमियत देते हैं लोग, आई थिंक दोज रिलेशनशिप्स दे गो अ लॉन्ग वे। सो यस, टुडे इज अ डे दैट इज डेडिकेटेड टू फ्रेंडशिप, सो विशिंग ऑल द लिसनर्स अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
0: बिल्कुल, और आज कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों को दोबारा से याद करें, अपने कॉलेज डेज को याद कीजिए, अपने स्कूल डेज को याद कीजिए और तुरंत फोन कर दीजिए अपने दोस्तों को।
1: यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली इवन टेक आउट टाइम एंड स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज आई थिंक दे आर द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स। आपके जितने भी स्ट्रेस होता है लाइफ में, बट व्हेन यू आर सिटिंग विद फ्रेंड्स देन यू ऑटोमेटिकली बिकम हैप्पी, यू

0: Reminisce the good old days and some instances that you probably were, you know, very funny or whatever.
1: बिल्कुल सर, अगर 5 मिनट भी आप अपने अगर दोस्तों के पास बैठ जाइए और कुछ अगर मुश्किलात में आप हैं उनसे डिस्कस कर दीजिए, तो मुझे लगता है सारे गम अपने आप भूल जाता है.
0: Yes, and especially for the people who have lived in hostels, I think they create friendships that really, really last, you know, for a lifetime.
1: तो इसी के साथ आइए शुरुआत कर लेते हैं हमारे कार्यक्रम के आज सवेरे की. आज के संक्षेप में बहुत कुछ होगा खास. हम महानगरों की खबरें जानेंगे, इसके अलावा जो है मौसम का हाल जानेंगे और अंत में याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को.
0: So let's start with the headlines first.
1: जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नशा मुक्त अभियान से जुड़ी खबर से. प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे. नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे. इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां भी चलाई जाएंगी. और ब्यूरो के साथ है हमारे संवाददाता.
2: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे. देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है. इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे. इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है. सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
0: Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in areas of cleanliness, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
3: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे. उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था. भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे. उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है. भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है. आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से.
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है. कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया. ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी. वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन त्वांग के कलावांगपो सम्मेलन हॉल में कल संपन्न हुआ. इस सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से बाल अधिकारों को सुदृढ़ करने की नई प्रतिबद्धता व्यक्त की गई. समापन सत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानुगु मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.
0: US President Donald Trump has threatened to intensify military action against Iran, warning that American strikes will continue until Tehran halts attacks on shipping and returns to negotiations. The escalating hostilities come even as the US State Department issued a fresh security advisory, urging Americans in West Asia to consider leaving the region or be prepared to depart if the conflict worsens. The renewed tensions also spilled into Gaza and Lebanon, with Israel carrying out fresh strikes despite Hamas announcing it was prepared to disarm under a US-backed ceasefire framework. Meanwhile, Iran has warned that it is ready to strike key Israeli infrastructure and American energy facilities across West Asia if it comes under attack. In Peru, 13 people were killed after a tourist plane crashed into a field near the city of Nazca.

0: According to a statement posted by NASCAR's municipal government on social media, the aircraft was carrying tourists on a sightseeing flight over the famed Nazca lines and ancient geoglyphs etched into the desert by Peru's indigenous inhabitants centuries ago. The municipal government said the aircraft, operated by Peruvian airline Aerodyna, had departed from the nearby city of Ica. Peruvian authorities said the cause of the accident is under investigation.
1: और दक्षिण पश्चिम में फ्रांस में लगी जंगल की भीषण आग पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद करीब 1,98,000 लोगों को घर लौटने की अनुमति दी गई। ये देश में शांतिकाल के दौरान सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक था।
0: In Gujarat, the IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts today, including Morbi, Surendranagar, Rajkot and Ahmedabad. The rain spell has now shifted towards Saurashtra, causing widespread waterlogging in several areas. We have a report.
2: Heavy rainfall continues to lash Gujarat as the monsoon spell shifted towards Saurashtra yesterday, bringing torrential rainpowers to several districts, low-lying areas and disrupting normal life. Intense spell has pushed 20 reservoirs to overflow, with 30 dams placed on high alert. The Sardar Sarovar Narmada Dam, considered the lifeline of the state, has reached nearly 75% capacity, taking the state's total seasonal average rainfall past 64%. In view of the strong winds, fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 2 days, and a local cautionary signal number 3 has been hosted at all the major ports across the state. Meanwhile, the IMD has predicted that the intensity of the rainfall is likely to decrease gradually starting tomorrow. Aparna Kund, Akashwani News, Ahmedabad.
1: और अब ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों की जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार बल से।
3: धन्यवाद फरहत। ग्लासगो में अगर हम बात करें तो जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों की ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी भी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। इसके साथ ही भारतीय मुक्केबाजों ने 3 रजत पदक भी अपने नाम किए। मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घांघस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण, जबकि जादुमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने रजत पदक जीते। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक अपने नाम किया। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक जीते। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेलवा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम किया। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और जैसा कि फरहत हम देख रहे हैं कि ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने ये लगातार शानदार प्रदर्शन अपना जारी रखा है। ये दर्शाता है कि देश के भीतर खेल ढांचे में लगातार सरकार कितना सुधार कर रही है।
1: और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे महानगरों की खबरों का, जिसमें होंगी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की खबरें और इसके अलावा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़े समाचार। तो सारस, सबसे पहले आपसे ही जान लेते हैं कि चेन्नई में क्या है खास।
0: Well, very interesting news is coming in from Chennai. जी. But before I read that news, I want to ask you कि आप ये बताइए, हमारे किचन में हम लोग किस चीज के लिए बड़े पर्टिकुलर होते हैं? कोई एक खाने की चीज है जिसके लिए हम लोग बहुत पर्टिकुलर रहते हैं?
1: खाने की चीज के लिए
0: गैसेस।
1: अच्छा, घी।
0: Yes, of course. I mean, everybody is so finicky, I think, in Indian households about the quality of ghee.
1: इसलिए मैं घर पे भी निकाल लेती हूँ.
0: Exactly. तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं. But those of you who probably don't have enough time, you know, to take out, to extract ghee at home, उनके लिए खबर बहुत अच्छी है. Well, researchers at the Central University of Tamil Nadu have developed a rapid analytical technique to

0: Detect cow ghee adulteration and simultaneously identify and quantify multiple adulterants. The technique could offer a low-cost tool to strengthen food quality checks. A spectrofluorometer exposes a diluted ghee sample to carefully selected wavelengths of ultraviolet and visible light. Naturally occurring compounds such as vitamins, chlorophyll, and proteins then emit fluorescence from multiple angles. This creates a detailed three-dimensional fingerprint of the sample's chemical composition. So probably a very, you can say, easy and low-cost technique to detect the purity of ghee.
1: बिल्कुल, और घी के बहुत सारे फायदे भी हैं सारा. अगर आप रात में हल्के गुनगुने पानी में घी डाल के पिए तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है.
0: Oh really? I didn't know that.
1: आज से शुरू कर दीजिए.
0: Yes, absolutely. लेकिन मुझे उसके और फायदे, that it's good for joints and you know, because it's very rich in calcium for joints and especially bone health. So that I knew, and I think most of the people, और बहुत से लोग में myths होती हैं कि घी आपको you know मोटा करता है.
1: नहीं, बिल्कुल
0: excessive of everything is bad, but घी is way better than you know your refined oil.
1: Refined oil से बहुत ही अच्छा है, बल्कि कोशिश कीजिए अगर आप खाना बना रहे हैं तो थोड़ा ही सही, लेकिन घी का इस्तेमाल जरूर कीजिए.
0: Yes, absolutely. So well, I think this news would probably benefit all our listeners. Now moving on to the city of Bengaluru. The Greater Bengaluru Authority Chief Commissioner Maheshwar Rao has appealed to citizens and residents' welfare associations to actively participate in the Bengaluru Green Cover campaign through a mass movement. He issued directions to municipal corporation officials in Bengaluru to issue necessary directions before the campaign to be launched on 15th of August. A large-scale tree plantation drive will be launched across the city on that day. It is planned to plant 60,000 saplings and distribute 40,000 saplings, for which 236 applications were received from the residents seeking 43,000 saplings. So that is a good initiative for a greener planet. Moving on to Hyderabad, well, Telangana police have rescued 6,307 children in a month-long special drive called Operation Muskan 12, aimed at ending child labour and child trafficking across the state. The operation ran through the month of July from 1st to 31st, and after training on laws and procedures, teams raided places where child labour is common, including railway stations, bus stands, temples, brick kilns, mechanic shops, construction sites, and even tea stalls. Of the children rescued, 5,892 were boys and 415 were girls. 3,447 belong to Telangana, while 2,860 are from other states and even from Nepal. So I think this is still, I mean, I imagine this is 2026 and we take pride in so many things, but yet child labor jo hai abhi tak hum log dekhte hain society mein nazar utha ke, it is still a big, big, huge problem, especially in small eateries, dhaba and mechanic shops. To bahut zyada dekhte hain jin bachcho ko school mein hona chahiye tha, playground mein hona chahiye tha, they are, or sometimes they are even involved in very hazardous work.
1: Bilkul sahi hai, aur waise bhi ek manna bhi hai ki hum log ye sochte कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये ऐसा नहीं है. हम सबकी ही जिम्मेदारी, अगर हम लोग इस तरह की चीजों को देख रहे हैं तो उसे हमें प्रमोट कतई ही नहीं करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप खुद से आप उनसे काम ना करवाएं.
0: एंड व्हाट इज, आई मीन, समटाइम्स स्टार्टलिंग फॉर हर, आई हैव सीन यू नो समटाइम्स वेरी एजुकेटेड पीपल, यू नो दे इन द हाउस दे एम्प्लॉय चिल्ड्रन एंड देन वेरी प्राउडली दे से कि अरे इसका बाप तो शराबी था, हमने इसको रेस्क्यू कर लिया, अपने घर में ले आए, इसको हम पढ़ाते भी हैं. आई मीन दैट भी इज सो पेनफुल बिकॉज वी डोंट टॉक लाइक दैट अबाउट आवर चिल्ड्रन. क्या हम अपने बच्चों से कहते हैं कि हम लोग इनको पढ़ा रहे हैं और इनसे काम भी रहे हैं. सो बट दिस इज समथिंग आई थिंक वेनी एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड, आई ओनली कॉल सच पीपल लिटरेट.
1: बिल्कुल, अगर आप इन बच्चों की तरफ नजर उठाकर देखेंगे तो इसमें कई सारे बच्चे ऐसे भी जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और उनकी प्रतिभा को निखारना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए.
0: एंड आई थिंक वरत एवरी चाइल्ड इज टैलेंटेड, ईच वन ऑफ अस इज प्रॉब्ली यूनिक इन दिस वर्ल्ड एंड वी जस्ट नीड द राइट एनवायरमेंट यू नो टू नरिश एंड टू नर्चर दोज टैलेंट्स. सो आई थिंक ये हर बच्चे का हक है. And if we are doing that, it's not a favor that we are doing them, but it's their right.
1: जी बिल्कुल.
0: So what is the buzz that you have from the other cities?
1: जी, हम लोग शिक्षा की बात कर ही रहे हैं तो आइए सीएम श्री स्कूल के बारे में बात कर लेते हैं. दिल्ली सरकार के सीएम श्री विद्यालयों के विद्यार्थियों का दूसरा दल जर्मनी और जापान की अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक यात्रा पर रवाना हो गया है. विद्यार्थियों का एक समूह जर्मनी की प्रसिद्ध ड्यूअल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रणाली के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, जिसमें कक्षा प्रशिक्षण के साथ साथ उद्योगों में सवेतन व्यवहारिक प्रशिक्षण भी शामिल।

0: शामिल होगा। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली गेट चौक पर ट्रैफिक की पाठशाला नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को सुरक्षित ड्राइविंग और नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में जानकारी दी। वहीं अधिकारियों ने यातायात के नियमों का पालन करने वाले नागरिकों को सम्मानित और पुरस्कृत किया। तो मुझे लगता है सारा यातायात के बारे में तो खैर हर किसी को जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से गली चौराहे पे जाम लगता है ना, सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो सभी के लिए क्रिएट कर देती है।
1: एब्सोल्युटली।
0: और अब आइए आगे बढ़ते हैं, मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही एक व्यापक एम्बुलेंस पॉलिसी लाएगी ताकि इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट को ज्यादा कुशल और जवाबदेही बनाया जा सके। इसके तहत हर रजिस्टर्ड एम्बुलेंस की रियल टाइम डिजिटल निगरानी की जाएगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने बताया कि इस प्रस्तावित पॉलिसी का मकसद एम्बुलेंस से जुड़े पूरे सिस्टम को बेहतर बनाना है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और डिस्पैच से लेकर रिस्पांस टाइम, किराया तय करना और हॉस्पिटल इंटीग्रेशन तक सब कुछ इसमें शामिल है। और अब बात है कोलकाता की। इस्कॉन ने कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के 500 स्कूलों में 44,000 छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कल तारातला स्थित अन्नमृता फाउंडेशन की रसोई में इस पहल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस्कॉन अगले 3 महीनों में 2,50,000 छात्रों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने संचालन का विस्तार करेगा, जिसमें पौष्टिक और संतुलित भोजन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। भोजन में चावल, खिचड़ी या पुलाव, पनीर या कॉटेज चीज, सोयाबीन या मौसमी सब्जियां, साथ ही मिठाई या मौसमी फल भी शामिल होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि भविष्य में नागरिकता के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। महानगरों की खबरों के बाद अब आइए मौसम का हाल जान लेते हैं। आज राजधानी दिल्ली में शाम तक बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होगी। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं कोलकाता में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: So if we talk about, I think the capital, I think we are awaiting कि कहीं सावन का महीना तो शुरू हो गया, लेकिन वो सावन की झड़ी जो है अभी तक नहीं लगी है। So we are hoping वैसी बारिश हो, but in down south it's much better. Well, Chennai will have a rain or thunder showers towards the evening or night. Temperatures are expected to hover between 27 and 36 degrees Celsius. Bengaluru will have a cloudy sky with light rain. Minimum temperature was 21, while maximum may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with light rain or drizzle. Temperatures in Hyderabad are expected to range from 24 to 30 degrees Celsius.
0: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि विश्व स्तनपान सप्ताह आज से शुरू हो गया है, जो सभी के लिए बेहद जरूरी है जानकारी लेना, क्योंकि नवजात शिशुओं के लिए माँ का दूध कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं।
1: दैट्स राइट फरहत, आई थिंक द फर्स्ट यू कैन से द फर्स्ट फूड ऑफ अ बेबी इज ऑफ कोर्स मदर्स मिल्क, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेस्ट फीड द बेबीज, स्पेशली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 months. दे हेल्प built the immunity of the child.
0: जी, और अब आगे बढ़ते हैं, इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज ही के दिन 1987 में भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने फिलीपींस में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती थी, और ये उपलब्धि पाने वाले वो पहले एशियाई बने।
1: And I take back the listeners to the year 1858. Well, the government of India, मतलब जो उस वक्त जो British government rule कर रही थी, it transferred the power from East India Company to the British Crown. The Government of India Act came into place in the year 1858 on this day. In the year 1934, Adolf Hitler became Germany's Führer, consolidating the offices of the President and Chancellor both.
0: सन 2003 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लाइबेरिया में संघर्ष विराम लागू करने के लिए सेना भेजने की आज ही के दिन अनुमति दी थी।
1: On this day in the year 1943, the PT-109 incident took place in the Pacific, during which future US President John F. Kennedy displayed leadership after his patrol boat was sunk.
0: और सन 2012 में भारत ने ओलंपिक खेलों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। हम बात कर रहे हैं लंदन ओलंपिक 2012 की, जिसमें भारत ने 6 पदक जीते थे, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य शामिल थे। भारत इस प्रतियोगिता में 55वें नंबर पर रहा। पदक तालिका में अमरीका शीर्ष

0: और आपको बता दें सायरा कि पिंगली वेंकैया की संस्कृत उर्दू और हिंदी भाषाओं में भी अच्छी पकड़ थी.
1: That's right, he was a polyglot. And who's the next on our list, Farhat?
0: हम बात कर रहे हैं हिंदी के प्रतिष्ठित कवि और गीतकार उमाकांत मालविया की, जिन्होंने आज ही के दिन जन्म लिया था. पौराणिक संदर्भों की आधुनिक व्याख्या करते हुए इन्होंने अनेकाएक मिथकीय कहानियां और ललित निबंधों की रचना की. उनकी बच्चों पर लिखी पुस्तकें काफी बेजोड़ रही. कवि सम्मेलनों का संचालन भी बड़ी संजीदगी के साथ किया करते थे. मेहंदी और महावर, सुबह रक्त पलाश की, एक चावल नह रिंधा जैसे नवगीत संग्रहों में उनकी रचनात्मकता और जन सरोकारों को अलग से रेखांकित किया जा सकता है.
1: Today is also the birth anniversary of Yellari Raghav, a playwright and actor known for his works predominantly in Telugu theatre and cinema. And some of his notable theatre works were Harish Chandra, Savitri, Brihannala, Ramaraju Charitra and Ramadasu. He visited various countries like Sri Lanka, England, France, Germany and Switzerland and gave seminars and lectures on Indian drama art. He advocated and developed the naturalistic style in acting, and he was very particular that women should always play female roles on stage. In 1927, he went to England and took part in English dramas with Laurence Olivier and Charles Laughton. His presentation of Tapevaridhi by Rajamannar in 1930 in Madras received critical reception as a momentous event heralding a new era in Telugu theatre.
0: और अब बात कर लेते हैं भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैज की. आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में इनकी गणना होती है. संभाल परिवार, मिलकौल, महात्मा बुद्ध, मिथुन, सुजात और रविन्द्रनाथ टैगोर का वक्ष पोर्ट्रेट आदि उनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं. इन्होंने दृढ़ संकल्प से वो भारतीय कला के प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिक कलाकारों में से एक बने. भारतीय कला में इनके अतुलनीय योगदान के लिए 1970 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया.
1: Today is the birthday of Gorthy Devi Sri Prasad, and we all know him as DSP, a very renowned composer, singer and lyricist, primarily known for his work in Telugu cinema along with Tamil and Hindi cinema as well. And he has received numerous accolades including a National Film Award, a Nandi Award, 11 Filmfare Awards and 5 Cinema Awards. And over his 25-year career, DSP has worked on more than 100 films. Let's hear a song.

और श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के अभिनेता जिन्होंने लगभग 600 हिंदी, पंजाबी और गुजराती फिल्मों में काम किया, कमल कपूर की। ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने विलन का ही किरदार निभाया। तो आइए सुन लेते हैं फिल्म चोर मचाए शोर का ये गीत, जिसमें मुमताज के फादर के रूप में ये नजर आए।

0: और श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा। समय हुआ है 7:59 और 21 सेकंड। तो इसके साथ ही फरहत और सारा को दीजिए कार्यक्रम यही समाप्त करने की इजाजत।
1: That's right, it's time to wrap up. Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in, listeners. Have a great day ahead and a very happy Friendship Day.
0: Namaskar.

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
3: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा

0: और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1705 मामले दर्ज किए और 1710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात

0: में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
1: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण, 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल। रिकॉर्ड शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का

0: reports. Monsoon hope as World Meteorological Organization sees an El Nino counter, adding the risk of overall monsoon rainfall being below normal continues to loom over India due to a strengthening El Nino. Manhunt in Valley as terror attack claims two. TRP link being probed, leads the Indian Express. Railway line through Key Tiger Corridor gets in-principle approval with a rider, informs the Indian Express. And finally, the Financial Express writes, Indian holidays taking the trail less travelled, trekking. Hiking fast turning into mainstream travel, what was once a niche pursuit for seasoned mountaineers is fast becoming a mainstream travel segment. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Kerala. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across six districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to fourth position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शमीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए मुल्क गिर नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तेलंगाना पुलिस ने बच्चा मजदूरी और ट्रैफिकिंग के खात्मे की गरज से शुरू की गई एक महीने तक जारी मुहिम के बाद 6,000 से ज्यादा बच्चों को बचा लिया है। गुजरात, उड़ीसा और केरलम में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। महकमे मौसमियात ने आज गुजरात के 6 जिलों में तेज और इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शिद्दत इख्तियार करने की धमकी दी है। ईरान ने अहम अमरीकी और इसराइली तवानाई के बुनियादी ढांचों पर जवाबी हमले से खबरदार किया है। और ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत चौथे मकाम पर आ गया है। एक ही दिन में मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड सोने के 7 तमगे जीते हैं, जिससे तमगों की तादाद बढ़कर 39 हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का आगाज करेंगे। इसके साथ ही मनुष्यात के इस्तेमाल के खिलाफ 100 हफ्तों पर मुश्तमिल मुल्क गिर जन भागीदारी मुहिम शुरू हो जाएगी। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के 10,000 से ज्यादा मकामात से नौजवान हिस्सा लेंगे। इसके अलावा माई भारत के रजाकार, नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकार, नौजवानों के क्लब, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गैर सरकारी तंजीमें, सनती अंजुमनों के नौजवानों के शोबे और 125 से ज्यादा शराकतदार रूहानी तंजीमें भी वर्चुअल तौर पर इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। इस मुहिम के तहत मुल्क भर में हर इतवार को मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा, ताकि अवाम में मनुष्यात के नुकसानात से मुतालिक आगही पैदा की जा सके और मनुष्यात से पाक मुआशरा बनाने के लिए अवामी शिरकत को फरोग दिया जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों की सलाहियत सिर्फ इसी सूरत में एक मुतहर्रिक कुव्वत बनती है जब उन्हें सही मौके और सही सिमत मिल जाए, ताकि वह पूरे एतमाद के साथ बड़े ख्वाब देख सकें और उनकी ताबीर तलाश कर सकें। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक के इफ्तिताह के बाद उन्होंने खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि आज भारत में नौजवान दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप निजाम आत्मनिर्भर भारत मिशन और मेक इन इंडिया स्कीम को आगे लेकर चल रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत के नौजवानों की सलाहियतों ने भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन मार्केट में तब्दील कर दिया है और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, नीज इख्तिराआत में और प्राइवेट सेक्टर खलाई मिशन में नई नई कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने नौजवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने और दुनिया भर में तमगे जीतने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है।
3: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
2: सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट नीट पीजी 2026 की तैयारियों का जायजा लिया ताकि इम्तिहानात को बिला रुकावट, पूरी तरह महफूज, शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी सूरत में मुनक़द किए जाने को यकीनी बनाया जा सके। ये इम्तिहान इस माह की 30 तारीख को मुनक़द किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने मेडिकल साइंसेज में इम्तिहानात के कौमी बोर्ड, टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्टनरों और इम्तिहान मुनक़द किए जाने में शामिल दीगर तरफ़ैन के साथ तैयारियों का जायज़ा लिया। इम्तिहान से मुतालिक लॉजिस्टिक्स, उम्मीदवारों के लिए सहूलत के इकदामात, सिक्योरिटी के निज़ाम और नीट पीजी 2026 के लिए मुतारिफ कराई गई टेक्नोलॉजी पर मबनी मुदाखलतों के मुतालिक वजीर मौसूफ को तफसीलात बताई गईं। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि एक मुनसिफाना, शफाफ और उम्मीदवार दोस्त इम्तिहान मुनक़द किए जाने को यकीनी बनाने की गरज से तमाम कोशिशें की जानी चाहिए। साथ ही सालमियत और सलामती के आला तरीन मेयार को भी बरकरार रखना चाहिए। वजीर मौसूफ ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि ये भी कहा कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और मेडिकल साइंसेज में इम्तिहानात के कौमी बोर्ड और वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी बाज़ाब्ता ऐलानात पर ही एतबार करें। उन्होंने ये भी कहा कि फाइनल सवालनामा एक इंतहाई महफूज, इनक्रिप्टेड और पाबंदी वक्त पर मबनी एक अमल के जरिए इम्तिहान शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही मुंतखब किया जाएगा और इसके साथ कई सतहों पर मबनी तकनीकी और कार्रवाई जाती तहफ़ुज़ात का ख्याल रखा जाएगा ताकि इम्तिहान के शुरू होने के तयशुदा वक्त तक उसकी राजदारी को यकीनी बनाया जा सके। जनाब नड्डा ने तमाम मुतालिका एजेंसियों को करीबी तालमेल बरकरार रखने की हिदायत दी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर उम्मीदवार बिला रुकावट, महफूज और दुश्वारियों से कतई पाक इम्तिहान के अमल का तजुर्बा करे। दिल्ली से प्रिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन के आंगन में मुनक़द एक तकरीब के मौके पर PBG सॉलिडरेथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मिजोरम के गवर्नर जनरल VK सिंह, जो इस मुहिम के सरपरस्त हैं, भी इस मौके पर मौजूद थे। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि सॉलिडरेथन शहरियों और मुसल्ला अफवाज के दरमियान रिश्तों को मुस्तहकम करने का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिसे फौजियों के लिए दौड़, फौजियों के साथ दौड़ के तसव्वुर से रहनुमाई मिली है। हकीकी हीरो भारत के मुसल्लह अफवाज को तआवुन के मौजू पर मरकूज यह तकरीब फौजियों के इखलास, हिम्मत और कुर्बानी के तईं खिराज अकीदत तो है ही, साथ ही ये शहरियों को उनके साथ सरगर्म शराकत दारी के जरिए यकजहती का मौका भी फराहम करती है। तेलंगाना पुलिस ने रियासत भर में बच्चा मजदूरी और बच्चों की ट्रैफिकिंग के खात्मे के मकसद से शुरू किए गए एक महीने तक चलने वाले ऑपरेशन मुस्कान 12 के तहत 6307 बच्चों को बचा लिया है। ये कार्रवाई पिछले माह की पहली तारीख से 31 तारीख तक जारी रही। इस कार्रवाई की क्यादत ख्वातीन के सेफ्टी विंग ने की, जिसके लिए उसने ख्वातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे, लेबर महकमे, सेहत के महकमे, बच्चों की बहबूद की कमेटियों, बच्चों के तहफ्फुज के जिला यूनिटों और रजाकार तंजीमों के साथ मिलकर काम किया। 124 सब डिवीजन टीमों के तकरीबन 620 पुलिस एहलकारों ने इसमें हिस्सा लिया। कवानीन और तरीक़ेकार के मुतालिक तरबियत हासिल करने के बाद टीमों ने उन मकामात पर छापे मारे जहां बच्चा मजदूरी आम है। इसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, ईंट के भट्टे, मकैनिकों की दुकानें, तामीरी मकामात और

0: खाने शामिल हैं। बचाए गए बच्चों में से 5,737 को उनके अहले खाना के पास भेज दिया गया, जबकि 570 को बच्चों की देखभाल के मरकजों में भेजा गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। गुजरात में महकमा मौसमियात ने आज 6 जिलों के तमाम इलाकों में बहुत तेज और इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट और अहमदाबाद शामिल हैं। बारिश का यह सिलसिला अब सौराष्ट्र की जानिब मुंतकिल हो गया है, जिससे कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी भर गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे की एक रिपोर्ट।
1: गुजरात में बहुत तेज बारिश का सिलसिला जारी है और अब मानसून कल से सौराष्ट्र की जानिब मुंतकिल हो गया है, जिससे कई जिलों में बारिश का पानी भर गया है। मोरवी में सबसे ज्यादा 8.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे नशेब इलाकों में बहुत ज्यादा पानी भर गया है और मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। इंतहाई तेज बारिश की वजह से 20 आबी जखायर अपनी सतह से ऊपर बह रहे हैं। तेज हवाओं के पेश नजर माहीगीरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अगले 2 दिन तक समंदर में ना जाएं और पूरे गुजरात की तमाम बड़ी बंदरगाहों पर मकामी एहतियाती सिग्नल नंबर 3 जारी किया गया है। अहमदाबाद से अपर्णा खोंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी के आसार जाहिर हुए हैं, ताहम हुक्काम बदस्तूर हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि दरियाओं में पानी की बुलंद सतह अब भी महानदी के नशेबी इलाकों के लिए खतरा बनी हुई है। रियासती हुकूमत नशेबी अजला कटक, पूरी, जगतपुत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खोरदा के हालात पर मुसलसल नजर रखे हुए है, जहां सैलाब का पानी अभी मुकम्मल तौर पर नहीं उतरा है। केरला में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके बाइस मामूल की जिंदगी मुतासिर है और कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसमियात के महकमे ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में आइंदा 7 दिनों के दौरान वक्फे और गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इन दिनों जारी जुनूब मगरबी मानसून के दौरान सैलाब की सूरत हाल से मुतासरा रियासतों को तआवुन देने की गरज से कुदरती आफत की सूरत में बंदोबस्त के रियासती फंड SDRF के मरकज के हिस्से से 2,117.85 करोड़ रुपये पेशगी जारी किए जाने की मंजूरी दी है। 7 मुतासरा रियासतों में से हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और नागालैंड को माली बरस 2026-27 के लिए SDRF की पहली किस्त पहले ही मौसूल हो चुकी है। दीगर रियासतों में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मजीद तेज करने की धमकी दी है और कहा है कि जब तक ईरान बहरी जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और मुदाकरात की मेज पर वापस नहीं आता, अमरीकी हमले जारी रहेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने एक ताजा सिक्योरिटी जारी करते हुए मगरबी एशिया में मौजूद अमरीकी शहरियों से कहा है कि अगर कशीदगी में इजाफा हो तो वह खित्ते को छोड़ने पर गौर करें या फौरी रवानगी के लिए तैयार रहें। बढ़ती हुई कशीदगी के असरात अब गजा और लेबनान तक भी पहुंच गए हैं, जहां हमास की जानिब से अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी के फ्रेमवर्क के तहत हथियार डालने की आमादगी जाहिर करने के बावजूद इसराइल ने नए हमले किए हैं। दूसरी जानिब ईरान ने खबरदार किया है कि अगर उस पर हमला किया गया तो वह इसराइल के अहम बुनियादी ढांचे और मगरबी एशिया में मौजूद अमरीकी तवानाई तंजीबात को निशाना बनाने के लिए तैयार है। भारत ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों की फहरिस्त में 4th मकाम पर पहुंच गया है। उसने सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगों समेत कुल 39 तमगे जीते हैं। भारत के लिए ताजा तरीन तमगा गुलवीर सिंह ने हासिल किया है। उन्होंने 5,000 मीटर की दौड़ में कांसे का तमगा जीता। मुक्केबाजी में भारत ने सोने के 7 और चांदी के 3 तमगे जीतकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुक्केबाजों में प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघल ने सोने के तमगे जीते। जादूमनी सिंह, लवलीना बुरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने अपने मुतालिका जुमरों में चांदी के तमगे हासिल किए। भारत ने पैरा एथलेटिक्स में तारीख सास कारनामा अंजाम दिया। मर्दों के शॉर्ट पुट F57 मुकाबले में सुमन राणा ने सोने का तमगा जीता, जबकि शुभम जोयल ने चांदी का तमगा हासिल किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन में ख्वातीन के सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में कल सुबह भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला वियतनाम की आलमी नंबर 21 खिलाड़ी थुई लिन से होगा। तन्वी सेमीफाइनल में चीनी ताइपी की खिलाड़ी हुआंग यू हुस्न को 21-17, 21-11 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया शमीम। قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے آندھرا پردیش میں وزیر اعظم کے ہاتھوں مختلف پروجیکٹوں کے افتتاح کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار انقلاب لکھتا ہے وزیر اعظم مودی نے آندھرا پردیش میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا. اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے وزیر اعظم آج نشہ مکت یوا سنکلپ ابھیان کا آغاز کریں گے. پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل کو صدر جمہوریہ کے ذریعے منظوری دیے جانے کی خبر کو اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے. اس کے علاوہ اخبارات نے کمرشل سلنڈر کی قیمت میں کمی کی خبر کو بھی اہمیت دی ہے. اخبار انقلاب کی ایک اور اہم سرخی ہے مشرق وسطی کے حالات سنگین, امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری انخلا کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی. دلی, اتر پردیش اور بہار کے لیے آج موسلادھار بارش کی محکمہ موسمیات کی وارننگ کی خبر بھی بیشتر اخباروں میں نمایاں ہے.
0: اور اب خبرنامے کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے لیے ملک گیر نشہ مکت یوا مہم کا آغاز کریں گے. مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے نیٹ پی جی 2026 امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے امیدواروں سے زور دے کر کہا کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں. تلنگانہ پولیس نے بچہ مزدوری اور ٹریفکنگ کے خاتمے کی غرض سے شروع کی گئی ایک مہینے تک جاری مہم کے بعد 6,000 سے زیادہ بچوں کو بچا لیا ہے. گجرات, اڑیسہ اور کیرلم میں سیلاب کی صورتحال اب بھی تشویش ناک ہے. محکمہ موسمیات نے آج گجرات کے 6 ضلعوں میں تیز اور انتہائی تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.

0: if you are employing more than 20 workers, 20 or more than 20 workers, then you have to constitute this grievance redressal committee. And this grievance redressal committee itself have representative from the employers as well as representatives from the workers. So it is a body which will provide you the immediate redressal of your grievance, so that it should not, you know, it should not convert into a big dispute. So this is first and foremost body, and it is compulsory for all industrial establishments to constitute. And more importantly, women also should be a part of this particular committee in proportion to their strength in the industrial establishment. So here the worker can apply, can represent himself for any of the grievances which requires address by the employer. जहाँ पे ज़्यादा strength है, ज़्यादा strength का मतलब इसलिए है कि वहाँ पे workers हमारा बहुत ज़्यादा, मतलब हम innocent है, उसको कोई भी misguide कर सकता है, ट्रेड यूनियंस या कोई भी मिसक्रियंट व्यक्ति उसको मिसगाइड कर सकता है. सरकार एक आदेश देगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, उसमें एक वर्क कमेटी भी बनाई जाएगी. और उस वर्क कमेटी का काम केवल और केवल क्या होगा कि पूरा इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी को मेंटेन रखे, कॉमन इंटरेस्ट के जो इशूज़ हैं उन इशूज़ को वो एड्रेस करें. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी कि जो कि पीस एंड हारमोनी को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगी. और ये दोनों कमेटियाँ इन हाउस कमेटी हैं, इंडस्ट्री में ही इंडस्ट्री एम्प्लॉयर को बनानी है. और वर्क्स कमेटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी स्टेट गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगी. सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में भी इसको बनाया जाएगा. अब अगर हम लोग वर्क्स कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, अगर हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, तो हम लोग जा सकते हैं लेबर मशीनरी के पास. अब लेबर मशीन हमने इसमें कंस्टिट्यूट, कॉन्सिलेशन ऑफिसर पहले भी थे, अभी भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन अभी हमने इनका जो काम है वो एक टाइम इनको दे दिया है 45 डेज कि 45 दिन में आप उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे. अगर आप उसको 45 दिन में सॉल्व नहीं करते हैं तो जो भी पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, वर्कर है, वो फ्री है कि वो ट्राइब्यूनल में चला जा सकता है. पहले ऐसा नहीं था, पहले वो ट्राइब्यूनल में सीधा नहीं जा सकता था, उसको सरकार से रेफर कराना पड़ता था अपना मैटर, वो भी उस केस में जिस केस में फेल्योर हो जाए सेटलमेंट. अब कॉन्सुलर ऑफिसर क्या करता है, एक मीडिएटिंग ऑफिसर है खासतौर से, क्योंकि सरकार ने आपको सुविधा प्रदान की गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. वर्कर के चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जितनी मशीनरी आप इसमें पाएंगे चारों कोड के अंदर, इसमें वर्कर को कोई पैसा नहीं देना है. और वो सीधे जा सकता है, कुछ मैटर्स पे वो ट्रेड यूनियन के थ्रू जा सकता है, लेकिन कुछ मैटर्स जो डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट, इस टर्मिनेशन से संबंधित हैं, उसमें ट्रेड यूनियन की भी आवश्यकता नहीं है, वो सीधे जा सकता है. सो कुछ मुद्दे हैं जो ट्रेड यूनियन के मार्फत होंगे, क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स का काम होगा जो हमारी लेबर मशीनरी का पार्ट है, थ्रू आउट इंडिया में अवेलेबल है सेंट्रल स्फीयर में, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके के कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स बनाए.
1: You have been listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes from a webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes.
2: उसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स पे। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स तो पहले हम लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे पास, लेकिन इन कानूनों में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि एक तो कुछ मुद्दों में जो हमारा वर्कर है वो सीधा सीधा ट्राइब्यूनल्स में भी जा सकता है, रिट्रेंचमेंट के केस में, डिसमिसल के केस में और टर्मिनेशन के केस में, जो आपके जो पूरा का पूरा इनकम आपका लॉस हो गया इन सब एक्शंस की वजह से एम्प्लॉयर के,

वो सीधा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी अप्रोच कर सकता है। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को भी कोशिश किया जा रहा है कि उसको भी हम लोग अच्छा स्ट्रेंथन करें, और इस कानून के माध्यम से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को बना दिया है 2 मेंबर ट्राइब्यूनल। पहले केवल 1 मेंबर ट्राइब्यूनल था, अब हमने बना दिया है 2 मेंबर ट्राइब्यूनल, और इसके अंदर एक जुडिशियल मेंबर होगा और जिसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। तो इसमें जो मामले रखे जाएंगे, अगर आपका कंसलेशन ऑफिसर्स के थ्रू 45 दिन में कोई भी नहीं हो पाया है सॉल्यूशन, तो आप ट्राइब्यूनल में सीधा चले जाएंगे। अगर कंसलेशन ऑफिसर्स ने कोशिश किया लेकिन सेटलमेंट एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कर के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाया है, तो भी जो भी एग्री पार्टी है दोनों में से कोई भी ट्राइब्यूनल में चला जाए। और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाने का है, वो तो पहले से भी हमारा चल रहा है, लेकिन इसमें भी प्रावधान किया गया है, सेम प्रोविजंस हैं, जिसके अंदर 2 मेंबर ट्राइब्यूनल है ये भी, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा, जुडिशियल मेंबर होगा, लेकिन इसमें मुद्दे वो रखे जाएंगे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे होंगे, और या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर उसमें अफेक्ट होंगे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो मुद्दे इसमें, ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में वो मुद्दे रेफरेंस के थ्रू ही जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे वॉलेंटियर आर्बिट्रेशन की भी इसमें प्रावधान किया गया है। वॉलेंटियर आर्बिट्रेशन क्या है भाई, आप नहीं जाना चाहते लेबर मशीनरी के पास, आप नहीं जाना चाहते ट्राइब्यूनल के पास, आप ठीक है एम्प्लॉयर आप बैठिए, वर्कर बैठिए या ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर बैठिए, भाई ठीक है हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, एक आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, वो जैसे कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही जो है ट्रेडिशनल तरीका जो रहा है अभी तक का सक्सेसफुल ट्रेडिशनल तरीका रहा है, कि जहाँ नहीं थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल आदमी को आप लेंगे और उससे अपना फैसला करा लेंगे। तो मैं बात करूँगा कोड ऑन वेजेस की, क्योंकि कोड ऑन वेजेस में भी कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, कुछ मुद्दे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के माध्यम से सीधा सीधा IR कोड में आ जाते हैं उसका जिक्र मैंने आपको कर दिया, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सीधा सीधा भाई टाइम पे पेमेंट नहीं मिला या कम पेमेंट मिल रहा है मिनिमम वेज से, या मैटरनिटी बेनिफिट्स, या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो इस पर्टिकुलर कोड में दिए गए हैं, उनको इस पर्टिकुलर कोड में ही प्रावधान किया गया है, कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं, वो अथॉरिटीज को सुनेंगे। अब इसमें जैसे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी बनेगा, तो ये बोर्ड जो है मुख्यतः केंद्र सरकार को एडवाइस करेंगे और राज्य सरकारों को एडवाइस करेंगे कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्या हमारा नीति होना चाहिए, क्या हमारा स्कीम्स होना चाहिए, इस पे वो मोटे तौर पे केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को अपनी सलाह देगा। अब इसमें जो मुख्य बात मुझे बतानी है, क्लेम्स अथॉरिटी इसमें दिया गया है, क्लेम्स अथॉरिटी क्या देखेगा, आपका डिलेड वेजेस हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस हुआ है, लेस देन मिनिमम वेजेस हुआ है, या बोनस के डिस्प्यूट है, ये स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स क्लेम्स अथॉरिटी जो सरकार नोटिफाई कर रही है वो इसको सुन लेगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर या वर्कर सेटिस्फाई नहीं है क्लेम्स अथॉरिटी से, तो अपेलेट अथॉरिटी का भी प्रावधान किया गया है, अपेलेट अथॉरिटी में भी जाके वो सुना जा सकता है उसको। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो अभी आपको सारी चीजें बताई, SI और PF और मैटरनिटी बेनिफिट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो मेजर इसके अंदर प्रावधान किया गया है इसको कवर किया गया है इसमें, सो आपका 80% से ज्यादा जो वर्क फोर्स है इसके द्वारा उसको वेलफेयर स्कीम का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला। ये इसका एक मैकेनिज्म जो है बनाया गया है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में, कि इससे रिलेटेड जो चीजें होंगी उसको कैसे सुना जाएगा, इसमें भी वही प्रावधान है, नेशनल लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, स्टेट लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, EPFO और ESIC को इसमें कंटिन्यू रखा गया है, और जो ये सारे चीजें प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स और वेलफेयर स्कीम्स को कवर करें। सो इसमें भी 2 अथॉरिटीज बनाई गई हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज, जो ग्रेच्युटी से संबंधित समस्याओं को सुनेंगी और सुलझाएंगी। इसमें भी सेम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का सेम सिमिलर प्रोविजन है, और अपेलेट अथॉरिटी भी इसमें अलग से दिया गया है कि जो ये जो बेनिफिट्स होंगे वो अपेलेट अथॉरिटी, अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं है इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन रिपोर्ट से या किसी से, तो आप अपेलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। ये OSH कोड एक इम्पोर्टेंट कोड है, कि जो आपका जो वर्क प्लेस है बेसिकली ये आपको एक प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन देता है, कि आपका वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपने किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, वर्कर के हजार्स को आप कैसे आप कम कर सकते

0: करते हैं, ये पर्टिकुलर कोड उस बारे में बात करता है। तो इसमें भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिया गया है, नेशनल लेवल का बोर्ड बनेगा एडवाइजरी बोर्ड, उसी तरह स्टेट लेवल का भी एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन है, सेफ्टी कमेटी एक बनेगी उन ऑर्गेनाइजेशन में जो 500 से ज्यादा वर्कर्स हैं जहाँ पे, और माइंस के लिए अलग से सेफ्टी कमेटी बनेगी, क्योंकि माइंस में अलग तरह का हजार्ड्स है और बाकी इंडस्ट्री में अलग तरह का हजार्ड्स है, तो दोनों के लिए अलग अलग तरह की कमेटीज का प्रावधान किया गया है, जो वर्कर्स जिस एनवायरमेंट में काम कर रहा है उस एनवायरमेंट को किस प्रकार से सुरक्षित बनाया जाए। और इसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज का सिमिलर प्रोविजन है जैसे आप पिछले कानूनों में देख रहे हैं। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का भी सेम ही इसमें प्रोविजन है, मतलब आप देखेंगे कि बाकी तीन कोड में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो एक बड़ा एम्बिट है, और बाकी तीन कोड में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के जरिए आप प्रिवेंटिव चीजों को कर लेंगे इनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से।
1: You were listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes by Govind Ram, Deputy Secretary, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के दौरान कल परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नीट पीजी 2026 के लिए कुल 2,73,183 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा लगभग 340 शहरों और 1,300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 12 अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया है। राज्य भर में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, ईंट भट्टे, मैकेनिक की दुकानें, निर्माण स्थल और चाय की दुकानों पर काम कर रहे बच्चों में 5,892 लड़के और 415 लड़कियां शामिल थीं। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। बचाए गए बच्चों में से 5,737 को उनके परिवारों से मिला दिया गया है, जबकि 570 को बाल देखभाल केंद्रों में भेज दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका हमले जारी रखेगा। बढ़ते तनाव के बीच गजा और लेबनान में भी इसराइल ने फिर हमले किए हैं। ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और पश्चिम एशिया में अमेरिका के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा। गुजरात, उड़ीसा और केरला में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उड़ीसा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा हो गया है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केरला में तेज बारिश का दौर जारी है, जिससे कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है और व्यापक नुकसान की खबर है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम

सुरीला सा सफर, सुरीली सी डगर, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मिसकल दिल्ली के सफर पर मैं हूं आपके साथ कुसुम। साथियों, रविवार यानी छुट्टी का दिन है, कितना खुशनुमा एहसास देता है ना ये छुट्टी का दिन। देर से आप जागे होंगे, उठे होंगे, और चलिए अब रविवार की सुहानी सुबह का लुत्फ उठाया जाए मैं इस गलती लगे के साथ। पहला गीत लिया है हमने फिल्म सरगम से, आइए सुनें।

अच्छा, आज आपने अपने दोस्तों को बताया कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं? नहीं तो चलिए जल्दी से उन्हें मैसेज कीजिए और उन्हें बताइए कि आपके दोस्त आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। आज ही क्यों? आज इसलिए कि आज है फ्रेंडशिप डे, यानी आज है मित्रता दिवस। दोस्त वही जो हर हाल में साथ निभाए, बिना कहे दिल की बात समझ जाए, है ना। मित्र यानी दोस्त एक ऐसा रिश्ता होता है जो हमें जन्म के साथ नहीं मिलता, बल्कि इसे हमारा दिल चुनता है, हमारा दिल बनाता है। ये रिश्ता जहां मुश्किल वक्त में सहारा बनता है, तो वहीं खुशियों की घड़ी में खुशियों को दोगुना कर देता है। इसी अनमोल रिश्ते को सम्मान देने के लिए हर साल अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्ती ख्वाब है और ख्वाब की ताबीर भी है, रिश्ता एक इश्क भी है, याद की जंजीर भी है। वैसे आपका दोस्त कोई है भी? है? अच्छा, आप किसी के अच्छे दोस्त हैं? नहीं तो आप ये बात जरूर सोचिएगा। फिलहाल ये बेहद खूबसूरत गीत यारों के लिए, याराना फिल्म से, आपके लिए।

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर,
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा

0: आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
1: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
2: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है मैं उसका दिल लगी, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कुसुम। साथियों, अब हम बात करते हैं मातृ अमृत कोष की। ये एक राष्ट्रीय मानव दुग्ध बैंक और स्तनपान परामर्श केंद्र है। इसकी शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में की गई थी। इसे नॉर्वे सरकार और ओस्लो विश्वविद्यालय और नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य स्तनपान कराने वाली माताओं द्वारा दान किए गए अतिरिक्त दूध को एकत्रित करना, पाश्चरीकृत करना, उसकी जांच करना और जरूरतमंद नवजात शिशुओं के लिए सुरक्षित रखना है। जिन बच्चों को उनकी मां का दूध नहीं मिल पाता है, उन्हें जीवन रक्षक मानव दूध उपलब्ध कराकर बाल मृत्यु दर को कम करना है। इसके अलावा माताओं को स्तनपान से जुड़ी सलाह देना और समाज में स्तनपान के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। तो है ना, ये कितनी अच्छी योजना सरकार की। फिलहाल ये प्यारा सा गीत माँ पर तारे जमीन पर फिल्म का नाम है, आइए सुनें।

0: इस गीत के साथ ही मैच कल दिल्ली यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। 10:30 पर दिल का मेल बॉक्स लेकर मैं कुसुम एक बार फिर से आपके साथ रहूंगी। फिलहाल आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि DK पट्टम्माल का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 19 मार्च। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से अमित कुमार और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हरस्वरूप। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

राष्ट्र ध्वज तिरंगा हमारी पहचान है। ये केवल तीन रंगों का संगम नहीं, ये भारत की आत्मा का उजास है। ये केवल ध्वज नहीं, हम भारतीयों की भावनाओं का स्पंदन है। इसके हर रंग में युग बोलता है, इसकी हर लहर में इतिहास डोलता है। हमारा तिरंगा हमारी आन बान और शान है, जिसकी छाया में विभिन्न जाति धर्म और भाषा के बावजूद हम सब भारतीय हो जाते हैं। हमारे इसी राष्ट्रध्वज की कल्पना करने वाले, उसे आकार देने वाले महान देशभक्त थे पिंगली वेंकैया। वो एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी, कृषि विज्ञानी, भू विज्ञानी और अनेक भाषाओं के जानकार भी थे। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त सन 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास स्थित भटला पेनुमारू नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम हनुमंत रायुडू और माताजी का नाम वेंकट रत्नम्मा था। पिंगली वेंकैया की बुद्धि की प्रखरता बचपन से ही अद्वितीय थी। उनकी आरंभिक शिक्षा हिंदू हाई स्कूल मछलीपट्टनम में हुई। इसके बाद शिक्षा के लिए वो कोलंबो चले गए, जहां उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज की पढ़ाई की तथा परीक्षा उत्तीर्ण की। कोलंबो के सिटी कॉलेज में उन्होंने राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। शिक्षा में उनकी गहरी रुचि थी, यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से भू विज्ञान में भी डिप्लोमा प्राप्त किया तथा एक भू वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विज्ञान का भी गहन अध्ययन किया था। प्रकृति, मिट्टी, चट्टानों और फसलों में उनकी गहरी रुचि थी और यही रुचि उनके जीवन के विभिन्न वैज्ञानिक पड़ावों का आधार बनी। उनके भीतर जितनी ज्ञान की प्यास थी, उससे कहीं अधिक देश प्रेम की गहरी भावना थी। यही कारण है कि मात्र 19 वर्ष की आयु में वो भारतीय सेना में शामिल हो गए थे।

ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने के बाद पिंगली वेंकैया के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में चल रहे द्वितीय बोअर युद्ध के मोर्चे पर सेवा के लिए भेजा गया। दक्षिण अफ्रीका की उस तपती रणभूमि में इतिहास ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगम रचा। यहीं उनकी भेंट युवा बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से हुई, जो वहां रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी के विचारों ने पिंगली वेंकैया के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। बोअर युद्ध के मैदान में एक टीस थी जो उनके स्वाभिमानी हृदय को बेचैन कर देती थी। जब भी भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश ध्वज यूनियन जैक को सलामी देने के लिए विवश किया जाता, उनका मन विद्रोह कर उठता। वो स्वयं से प्रश्न करते कि इतने विशाल और गौरवशाली भारत देश का अपना कोई ध्वज क्यों नहीं है, जिसके नीचे पूरा राष्ट्र एकजुट होकर खड़ा हो सके। और उनका यही विचार आगे चलकर राष्ट्र ध्वज के निर्माण की अमर गाथा बन गया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने रेलवे में गार्ड के रूप में नौकरी की, लेकिन राष्ट्र जागृति उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका था। उन्होंने सरकारी सेवा छोड़कर लाहौर के प्रसिद्ध एंग्लो वैदिक कॉलेज में प्रवेश लिया तथा उर्दू, संस्कृत और जापानी भाषा का गहन अध्ययन किया। जापानी भाषा पर उनकी अद्भुत पकड़ देखने को मिली जब उन्होंने धारा प्रवाह जापानी भाषा में ऐतिहासिक भाषण दिया। सुनने वाले हैरान थे। लोग उनसे इतना अधिक प्रभावित हुए कि आदरपूर्वक उन्हें जापान वेंकैया का नाम दे दिया। आगे चलकर उन्होंने मद्रास में प्लेग इंस्पेक्टर का प्रशिक्षण लिया और वेल्लारी में प्लेग इंस्पेक्टर के रूप में भी काम किया। उन्होंने आंध्र नेशनल कॉलेज मछलीपट्टनम में लंबे समय तक अध्यापन का कार्य भी किया तथा कृषि एवं भू विज्ञान के क्षेत्र में शोध किए। इस तरह कई भूमिकाओं में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उनके लिए देश सर्वोपरि था। स्वदेशी आंदोलन हो, वंदे मातरम हो या होम रूल आंदोलन, वो पूरी निष्ठा से इसमें सक्रिय रहे। वो लगातार अधिवेशनों में शामिल होते रहते तथा अपने महत्वपूर्ण विचार रखा करते। वो देखते थे कि अधिवेशनों में भारत का कोई ध्वज नहीं फहराया जाता था। उन्हें लगता कि राष्ट्र ध्वज किसी भी देश की साझी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक होता है। उनके मन में भारत के राष्ट्र ध्वज के निर्माण की कल्पना जागने लगी और समय के साथ ये कल्पना एक संकल्प में बदल गई।

जंगली वेंकैया भारत के राष्ट्र ध्वज को मुक्त गगन में लहराता हुआ देखना चाहते थे। उन्होंने 5 साल तक 30 से भी अधिक स्वतंत्र देशों के राष्ट्र ध्वजों, उनके इतिहास, रंगों और संरचना का अध्ययन किया और एक पुस्तक भी प्रकाशित की, अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, जिसमें भारत के लिए संभावित 30 से भी अधिक ध्वज रूप प्रस्तुत किए गए थे। और तभी आया सन 1921 का साल। विजयवाड़ा में आयोजित अधिवेशन में वो गांधी जी से मिले और उनके समक्ष ध्वज प्रस्तुत किया। पिंगली वेंकैया का मूल ध्वज 2 रंगों का था। इसमें एक रंग लाल था, जो हिंदू समाज का प्रतीक था, और दूसरा रंग था हरा, जो मुस्लिम समाज का प्रतीक था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि अन्य सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीच में सफेद रंग भी जोड़ा जाए तथा इस सफेद रंग पर चरखा अंकित किया जाए, जो स्वावलंबन, श्रम और स्वदेशी का प्रतीक बने। और फिर सन 1931 में हुए कराची सम्मेलन में लाल की जगह केसरिया, सफेद और हरे रंग के तिरंगे को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस तरह पिंगली वेंकैया की कल्पना और संकल्प ने तिरंगे को

कर दिया और 22 जुलाई सन 1947 को स्वतंत्रता से ठीक पहले हमारा वर्तमान राष्ट्रध्वज अंगीकार किया गया, जिसमें ध्वज के तीनों रंग केसरिया, सफेद और हरा यथावत रहे। चरखे के स्थान पर अशोक चक्र रखा गया, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस तरह करोड़ों भारतीयों की आत्मा, संप्रभुता और गौरव की भावना को पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रध्वज में पिरो दिया। पिंगली वेंकैया एक समर्पित वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने कंबोडियाई कपास पर गहन शोध किया तथा उसकी एक उत्कृष्ट संकर नस्ल भारत में विकसित की थी। इस वैज्ञानिक अवदान के लिए उन्हें संपूर्ण भारत में पट्टी वेंकैया यानी कपास वेंकैया के नाम से पुकारा गया। जन सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने महामारी प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया था तथा प्लेग के प्रकोप से लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पिंगली वेंकैया एक भूविज्ञानी भी थे। अपने भूविज्ञान अध्ययन का उपयोग करते हुए उन्होंने हीरे के खनन पर भी शोध किया। वो हीरा खनन और रत्नों के मूल्यांकन के अद्वितीय विशेषज्ञ थे, इसीलिए उन्हें डायमंड वेंकैया भी कहा जाने लगा। भारत की आजादी के बाद उन्होंने भारत सरकार के खनिज अनुसंधान विभाग में सलाहकार के रूप में कार्य किया और सन 1955 में हीरों पर लिखी उनकी पुस्तक द मदर ऑफ डायमंड्स प्रकाशित हुई। आजीवन राष्ट्र सेवा करते हुए 4 जुलाई सन 1963 को उन्होंने अंतिम सांस ली। पिंगली वेंकैया द्वारा परिकल्पित राष्ट्रध्वज में लाल की जगह केसरिया रंग स्वीकारा गया, सफेद रंग और अशोक चक्र जोड़ा गया और ये रंग समुदाय नहीं गुणों के प्रतीक बने। लेकिन आज भी हमारे तिरंगे में समाहित साहस, बलिदान, सत्य, शांति, समृद्धि, शक्ति और विश्वास के प्रतीकों में पिंगली वेंकैया की भावनाएं, उनका राष्ट्र प्रेम मुस्कुराता है। राष्ट्र अस्मिता के इस महाशिल्पी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि पिंगली वेंकैया का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन ले, पिंगली वेंकैया का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 12 अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया है। राज्य भर में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, ईंट भट्टे, मैकेनिक की दुकान, निर्माण स्थल और चाय की दुकानों पर काम कर रहे बच्चों में 5,892 लड़के और 415 लड़कियां शामिल थीं। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। इन बच्चों में 5,737 को उनके परिवारों से मिला दिया गया है, जबकि 570 को बाल देखभाल केंद्रों में भेज दिया गया है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक दिन में 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल

0: अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को रद्द करने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संभावित समझौते की रूपरेखा तैयार होने का दावा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बर्बर हमले जारी। बलूचिस्तान में नागरिकों के लापता होने की खबर। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री साइदो बख्तियार ओदिलोविच आज से भारत के दौरे पर। पेरू में नाजका शहर के पास एक विमान दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इससे पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान जहाजों पर हमले नहीं रोकता और बातचीत के लिए आगे नहीं आता तो अमरीका अपनी सैन्य कार्रवाई तेज करेगा। उधर अमरीका ने पश्चिम क्षेत्र में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और हालात बिगड़ने की स्थिति में क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उस पर हमला हुआ तो वह इजराइल के अहम ठिकानों और पश्चिम एशिया में अमरीका के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए तैयार है। यूरोपीय संघ मंगलवार को सेउटा में अवैध अप्रवासन पर चर्चा के लिए आपातकालीन बैठक करेगा। ये बैठक स्पेन और कुछ अन्य सदस्य देशों के बीच लोगों की घुसपैठ की घटनाएं होने के बाद हो रही है। मोरक्को से लगभग 60,000 लोग स्पेन में अवैध रूप से घुस चुके हैं। इसके बाद यूरोपीय संघ के 22 देशों ने मिलकर इस संबंध में निर्णय लेने और सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर हमले जारी हैं। इसके साथ ही बलूचिस्तान में नागरिक जबरन लापता हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: बलूच यकजहती कमेटी BYC ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्यवाही की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार ये दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कमेटी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलीबारी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मनमानी गिरफ्तारी और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के बजाय नागरिकों को निशाना बनाने की कड़ी आलोचना की है। ये बयान POJK में जारी अशांति के बीच आया है, जहां हाल के हफ्तों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। BYC ने कहा कि POJK में 52 दिनों से अधिक समय से जारी विरोध प्रदर्शन, लोगों की मौलिक अधिकारों, संसाधनों तक पहुंच, राजनीतिक स्वायत्तता और न्याय की मांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक समुदाय से POJK में कथित दमनकारी कार्रवाई पर गंभीरता से ध्यान देने का आग्रह किया है। इस बीच अमेरिका स्थित मानव अधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। विश्व दर्पण के लिए पूजा।
0: सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2 लाख रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदो बख्तियार ओदिलवोच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसने पास के शहर ईका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक रेस्तरां में हुए बम विस्फोट में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। रूस के सरकारी मीडिया के अनुसार ये विस्फोट भारतीय समय के अनुसार रात करीब 10:30 बजे कुंद्रिस्किया स्क्वायर स्थित एक इमारत में हुआ। रूस की समाचार एजेंसी ने आतंकवाद रोधी समिति के हवाले से बताया कि अज्ञात महिला के रेस्तरां में घुसने के प्रयास को एक सुरक्षा गार्ड ने विफल कर दिया। इसके कुछ ही क्षणों बाद ये विस्फोट हुआ जिसमें एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की जांच जारी है। जापान के कुमामोटो प्रांत में पिछले सप्ताह आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। प्रांतीय अधिकारियों ने बताया कि इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी मौत भूकंप के कारण हुई है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला आज वियतनाम की थुई लिन युएन से होगा। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा सेमीफाइनल में ग्वेन से हारकर बाहर हो गई हैं। टेनिस में भारत के रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने आज बॉन ओपन 2026 में डबल्स का खिताब जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंग्लैंड के स्कॉट डंकन और स्वीडन के एडम हेइनोइन की जोड़ी को हराया। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को रद्द करने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संभावित समझौते की रूपरेखा तैयार होने का दावा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बर्बर हमले जारी। बलूचिस्तान में नागरिकों के जबरन लापता होने की खबर। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदो बख्तियार ओदिलोविच आज से भारत के दौरे पर और भारत ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में चौथे स्थान पर। कुल पदकों की संख्या 39। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।
4: आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. United States agrees to cancel planned military attack on Iran. President Donald Trump claims framework of a potential agreement reached. Pakistani armed forces brutal attack on peaceful protesters continue in Pakistan occupied Jammu and Kashmir. Civilians forcibly disappear in Balochistan. Uzbekistan's Minister for Foreign Affairs Saidov Bakhtiar Odilovich to undertake an official visit to India beginning today. 13 people killed in Peru after tourist plane crashes near the city of Nazca. India climbs to fourth position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. United States has agreed to hold off a planned military attack on Iran after Tehran and several West Asian countries requested a pause, claiming that the framework of a potential agreement had been reached. In a social media post, US President Donald Trump today said the US remained fully prepared for military action but had decided to suspend the planned strike to allow diplomacy to move forward. He said Iran and other countries in the West Asia had urged Washington to delay military action because the parameters of a deal has been agreed to. According to Trump, the proposed agreement would include the immediate, complete and total opening of Hormuz Strait and an end to Iran's nuclear threat. Iran had not officially confirmed the claims made by the US president. Earlier, Trump has threatened to intensify military action against Iran, warning that American strikes will continue until Tehran halts attacks on shipping and returns to negotiations. United States has also urged its citizens across the West Asian region to remain alert and be prepared to leave if tensions escalate. Meanwhile, Iran warned that it is ready to strike key Israeli infrastructure and American energy facilities across the West Asia if it comes under attack. Pakistani armed forces brutal attack on peaceful protesters continue in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Over 50 people were killed and hundreds injured in a brutal crackdown by Pakistani forces in the illegally occupied territory. In a social media post, Joint Awami Action Committee member Sardar Umar Nazir Kashmiri alleged that security forces were responsible for the deaths. The US-based rights organization Human Rights Foundation has condemned the reported use of force by Pakistani security forces against the unarmed protesters. The organization called on Pakistani authorities to end the crackdown, restore mobile communications, and ensure accountability for any unlawful use of force. Meanwhile, amid growing concerns over enforced disappearances of Baloch civilians across Pakistan, a leading human rights organization has alleged that 5 more civilians were forcibly disappeared by Pakistani security forces. PANC, the Human Rights Department of the Baloch National Movement, stated that several Baloch civilians were allegedly taken into custody by personnel from the Counter-Terrorism Department, Pakistan Rangers, Pakistani intelligence agencies and military personnel. PANC called on the Pakistani authorities to immediately disclose the fate and whereabouts of the missing individuals, ensure their protection and access to legal counsel and their families, and conduct prompt, impartial and transparent investigations to hold those responsible. Uzbekistan's Minister for Foreign Affairs, Saidov Bakhtiar Odilovich, will undertake an official visit to India from today until the 5th of this month. According to the Ministry of External Affairs, during his visit, Odilovich will call on President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan and also meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. He also scheduled to attend a business forum in Delhi. European Union will hold emergency talks on Tuesday to address the migration crisis in Ceuta following a dispute between Spain and some member states. A report.
5: 22 European Union countries have called for a coordinated response and stronger external border controls after around 60,000 migrants entered the Spanish enclave from Morocco. Spain

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल का मेल बॉक्स आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स में आप अपनी मेल और संदेश के जरिए पहुंचाते हैं हम तक अपनी पसंद और हम सुनवाने की कोशिश करते हैं आपकी पसंद के गाने। तो चलिए जल्दी से आप हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868686853। फिलहाल पहला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो सुनना चाहते हैं विठल करमदिया शोभा करमदिया, थांदला जिला झाबुआ मध्य प्रदेश से इन्होंने ये संदेश हमें भेजा है। तो आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर ये सुनना चाहते हैं दोस्ताना फिल्म का ये गीत। आइए हम सभी सुनें।

तो सभी की जो दोस्ती है, सभी का जो दोस्ताना है, वो सलामत रहे, यही हमारी शुभकामना है। आप सभी दोस्तों के बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, जल्दी जल्दी शामिल कर लें। और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो दोस्ती की शुभकामनाएं भेज रहे हैं और दोस्ती पर ही गीत सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर हम शामिल करेंगे। फिलहाल आप सभी के नाम शामिल कर लिए जाएँ। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैज़ी फराज, फरीन फारिया, फारिया ताहिरा का ये संदेश हम तक पहुँचा है। बुलंदशहर से अब्बासी हैं, एमएस अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार हमसे हमें ये संदेश भेज रहे हैं। अगला संदेश आया है, ये हैं मादीपुरा कॉलोनी दिल्ली से भेजने वाले हैं दलीप डाबरिया और शानू जी, इन्होंने हमें संदेश भेजा है। इंद्रानगर भावरपुर से राधे श्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू देवांगन, जगदीश देवांगन का भी संदेश हमें पहुंचा, हम तक पहुंचा है। भावरपुर बसना से राधे श्याम देवांगन और इनके परिवार के सभी सदस्य। तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हमें ये संदेश भेजते हैं। ये संदेश है बागपत उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, सादर नमस्कार भेज रहे हैं, आपको भी नमस्कार। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा यही गीत सुनना चाहते हैं जो अभी हमने आपको सुनाया दोस्ताना फिल्म का। महाराष्ट्र पुणे से संदेश हमें भेजते हैं सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़, और ये भी हमें गीत सुनना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल हम अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया ये सुनना चाहते हैं याराना फिल्म का गीत। हम जरूर सुनाएंगे लेकिन थोड़ा इंतजार करें। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह भी हमें संदेश भेजते हैं, गाँव लोहगढ़ ठाकुरा वाला, जिला फिरोजपुर, पंजाब से ये संदेश आया है। अगला संदेश हमारे पास आया है शांति नगर सोनीपत से, हमें भेज रहे हैं अनीता मुखी, सिमरन मुखी, सुदर्शन मुखी, ये संदेश इनका है। मोहाली चंडीगढ़ सेक्टर 67 से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का भी संदेश हम तक पहुँचा है। तकत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा का भी संदेश हम तक पहुंचा है, ये भी याराना फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अगला संदेश शबाना भारती, नवाब अहमद, अरहान अहमद, सूफिया अहमद का आया है बल्ली मारान से, ये संदेश है। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और परिवार के सभी सदस्य हैं। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका कोरवाल का भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ये संदेश है भेजने वाले हैं किशोर नगर अमरावती से भेजने वाले हैं हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे और सिद्धार्थ शेंडे। अगला संदेश हमें भेजा है जिला खरगोन सनाउद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप का भी ये भी सुनना चाहते हैं याराना फिल्म का गीत। मलियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मास्टर मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन का भी संदेश हम तक पहुंचा है। ये संदेश है शाहजी नगर देगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे का, ये भी दोस्ती पर ही गाने सुनना चाहते हैं क्योंकि दोस्ती को तो सभी लोग सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। फिलहाल हम अगला गीत शामिल करते हैं, ये गीत है सफर फिल्म से, ये जो पसंद है ये है बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से रणजीत कारीगांवकर, कंचन कारीगांवकर, सृष्टि कारीगांवकर और समरजीत कारीगांवकर को और इनका पूरा परिवार इस गीत को सुनना चाहता है।

और अब फिर एक बार फिर से आपके संदेशों की बारी। नवीन भाटिया जी मोतीनगर दिल्ली से हमें ये संदेश भेजते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे, गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से ये संदेश भेजते हैं। ये संदेश अरविंद कुमार गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी हमें भेजते हैं बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। सुशांत प्रियंजा, मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमार, टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर दिल्ली से हमें ये संदेश भेजते हैं। कल्पना मदन झा, मानव मयंक, निर्मला अपार्टमेंट नरोली फाटक भीलाड़ गुजरात से ये संदेश आया है। मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी, टुकटुक स्टेट बैंक, ईश्वर कॉलोनी, नगली डेयरी, नजफगढ़ से हमें ये संदेश भेजते हैं। अगला संदेश है, ये किनका है, सुहानी राज सुनना चाहते हैं, गाजियाबाद से शीशपाल अकेला जी। और शोभापुर बाईपास मेरठ से हमें संदेश भेजते हैं दिग्दर्शन और कविता

गौड़, बहुत बहुत शुक्रिया संदेश भेजने के लिए। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन हमें संदेश भेजते हैं छत्तीसगढ़ से। ये संदेश हम तक आया है हितेंद्र दास का, ये असम से संदेश भेजते हैं। इतनी दूर से आप संदेश भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये नागर कोहरा, जिला राधना गांव छत्तीसगढ़ से। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू का संदेश है ये। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार भी हमें संदेश भेजते हैं। अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल का भी हमें संदेश मिला है। और ये संदेश कहाँ से आया है, ये संदेश हमें भेज रहे हैं बटेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। बालकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा सुनना चाहते हैं अवतार फिल्म का ये गीत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर, एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है दिल का मेल बॉक्स और आप सबके संदेश आए जा रहे हैं, चलिए शामिल करते हैं। ये संदेश भेजा है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने। अगला संदेश शामिल करते हैं, ये आया है भवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन और पूरा देवांगन परिवार इस संदेश में शामिल है। शमशुल खमर राही, शाहिन, फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान का ये संदेश है। और नमस्कार भेजते हैं, नमस्कार जी, ये हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा, ये संदेश इन्होंने भेजा है। अगला शमशुल कमर राही, शाहिन, फातिमा, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, गंजडुंडवारा से भी संदेश भेजते हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और इनका परिवार ये संदेश हमें भेज रहा है। रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवंगी धाकड़ का ये संदेश है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिवार का भी संदेश हम तक पहुंचा है। शमसुल कमर राही, शाहिन, फातिमा का संदेश एक बार फिर से भेजते हैं, ये गंज डुंडवारा से। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना का भी संदेश हम तक पहुंचा है। मादीपुर कॉलोनी दिल्ली से दिलीप डाबरिया भी हमें संदेश भेजते हैं और सुनना चाहते हैं फिल्म दोस्ती का ये गीत।

साथियों, मैं चाहती हूँ कि सभी के संदेश जो है वो शामिल कर लिए जाएं। मलियान सरदना, मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन का भी ये संदेश हम तक पहुंचा है। और ये संदेश है सुरेश नारंग का और इनके परिवार के सभी सदस्य। आशा नारंग भी हैं, सहारनपुर से ये संदेश आया है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल और इनके परिवार का भी संदेश हम तक पहुंचा है। बसबगुन्नर यूपी से फारूक अली खान, आप सब दोबारा से संदेश भेजते हैं जिससे हमें ये शामिल करने में परेशानी होती है। फिर आप सभी हमें ये शिकायत भी करते हैं कि हमारे शामिल संदेश नहीं किए गए। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे का भी संदेश हम तक पहुँचा है। और ये संदेश है, ये कहाँ से है? सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह और पूरा शाह परिवार ये संदेश हमें भेजता है। कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और बलूजा परिवार मजनू कटिल्ला दिल्ली से संदेश हमें भेजता है। पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर मलकापुर से, नारायण इंगोली, सोपान तायड, आशीष मोहरकर का ये संदेश हम तक पहुंचा है।

साथियों, अब अगले गीत को जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं। ये फिल्म है आपके कसम और पसंद है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और परिवार के सभी सदस्यों की पसंद पर ये गीत हम सुनते हैं आपकी कसम फिल्म से।

इस गीत के साथ ही दिल का मेलबॉक्स यहीं तक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के फंगोल चैनल 100.1 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और सिर्फ NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 12 अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया है। राज्य भर में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 5,737 बच्चों को उनके परिवारों से मिला दिया गया, जबकि 570 को बाल देखभाल केंद्रों में भेज दिया गया है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा और इस अवसर के साथ अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी

0: सभी सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का चैनल एफएम गोल्ड, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह कार्यक्रम है आज के मेहमान, और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे हौसले, संघर्ष और उस अदम्य इच्छा शक्ति की, जो किसी भी शारीरिक चुनौती से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। जब इरादे बुलंद होते हैं तो मंजिलें भी कदम चूमती है। इसी प्रेरणा के प्रतीक हैं हमारे आज के विशेष अतिथि श्री उदय कुमार जी। आप पैरा माउंटेनियर हैं और उन्होंने ये साबित किया है कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की सीमा नहीं, बल्कि साहस और संकल्प की नई परिभाषा बन सकती है। कठिन पहाड़ों को फतेह करके उन्होंने न केवल अपनी पहचान बनाई है, बल्कि अनगिनत लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं, और उन्हें तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2023 मिल चुका है। तो ऐसे साहसी व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं एफएम गोल्ड के स्टूडियो में। उदय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: तो जानते हैं आपके संघर्ष के बारे में, आपकी पर्वतारोहण यात्रा के बारे में, और चुनौतियों से लड़ने का वो साहस और वो संदेश जो आप पहुंचाना चाहते हैं हमारे अनगिनत सुनने वालों को। नाम,
1: मेरा नाम उदय कुमार है और मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 29 अक्टूबर 2015 को। एक चलता फिरता इंसान रेंगने को मजबूर हो गया। मैं अपने गांव से शहर की तरफ आ रहा था, और उस दौरान मैं अपने रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में उठा और उठ के बेसिंग के तरफ गया, और वो बेसिंग उस समय इतना गंदा मतलब भरा हुआ था और पानी ओवरफ्लो होके नीचे ट्रेन में ही गिरा हुआ था। मैंने हाथ में पानी लिया और जैसे ही अपने फेस पे छींटा मारा, पता नहीं एक जर्क आया और अपने बॉडी को अनबैलेंस्ड किया, और मैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीचों में फंस गया, और ट्रेन तब चल रही थी। खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ती गई और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंसने की वजह से मेरा पैर पूरी तरीके से जख्मी हो गया। जैसे ही प्लेटफॉर्म ख़त्म हुआ, मैं अपने आप को हाथ छोड़ा और वहाँ जब गिरा तो एक पत्थर मेरे स्पाइनल में जाके घुस गई। मैं हड़बड़ाहट में उठा, और उठ के जैसे ही खड़ा हुआ तब मुझे एहसास नहीं था कि मेरे नीचे का पैर पूरी तरीके से टूट गया है, और मैं फिर से गिरा। एक पत्थर मेरे सर के अंदर पीछे की तरफ घुस गया। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला, दर्द से कड़ा हाटा, और मैं जब नीचे की तरफ देखा तो देख रहा हूँ कि मेरा पूरी तरीके से पैर टूट गया है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पैर ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझे लगा कि टूट गया है। मैं जैसे तैसे चिल्लाया और अपने आप को मतलब दूसरा पैर पटरी पर था, मैं अपने आप को घसीटते हुए हाथों के बल प्लेटफॉर्म तक पहुंचा, और ज़ोर ज़ोर से मतलब हाथ पैर मारने लगा और चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ और हॉस्पिटल तक पहुंचाओ। तभी अचानक मैं देखा कि 3-4 बंदे मेरे तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी कि ये लोग मेरी हेल्प करेंगे और मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचाएंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा, और मैं सोचने में मजबूर हो गया कि लोग इस कंडीशन में भी लोग चाहते हैं कि कैसे इनके पर्स पैसे और ये सब लेके भागा जा सकता है।
0: अच्छा,
1: उन्होंने मेरा पॉकेट सर्च किया, बैग सर्च किए, मेरे वॉलेट निकाले, मोबाइल निकाले, और जो भी रुपया पैसा था लेके चले गए। मैं चिल्लाता रहा, जो लेना है ले लो, कम से कम हॉस्पिटल तक तो पहुंचा दो मुझे कि मैं बच सकूं।
0: ये बात स्टेशन पर है, जब आप स्टेशन पर थे या?
1: जी जी जी। फिर जैसे ही बेहोश हुआ, वो हाथ छुड़ा के भाग चुके थे। बहुत देर बाद फिर से होश आया, तब देखा कि भीड़ इकट्ठा हो रखी है, और उसी में से एक परिवार वहीं पे था, तो उनकी बेटी बोली कि पापा इसको बचाइए, ये बच सकता है। उन्होंने मेरी मदद की और मेरे घर का नंबर, मेरे ऑफिस का नंबर पता किए, और मैं वो सारे नंबर मतलब याद था तो मैं बताया, और ऑफिस के तरफ से मतलब उस समय जिस कंपनी में मैं काम किया करता था वहाँ के तरफ से एम्बुलेंस और सिक्योरिटी गार्ड भेजवा के वहाँ से मेरे को रिकवरी करवाया गया, और हॉस्पिटल ले जाके पैर को काट के अलग कर दिया गया। वहाँ से एक हॉस्पिटल, एक ही दिन में एक के बाद एक 3 हॉस्पिटल ट्रांसफर करने के बाद मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मतलब बचना मुश्किल था। फिर डॉक्टर की निगरानी में 2 दिन तक शायद बेहोश था। उसके बाद घर वाले, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ और बच्चे बिहार से कोलकाता आ चुके थे, और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा पैर को काट के अलग कर दिया गया है। और जैसे ही मैं होश में आया, अपनी पत्नी को सामने देखा, तो मुझे अजीब सा फीलिंग्स हुआ कि मैं अब दिव्यांग हो गया हूँ, और तरह तरह की चीज़ें घूमने लगी। तभी एक अच्छा चीज़ भी मेरे दिमाग में आया, जो गीता की लाइन है, कि आप जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा इससे भी अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अच्छा क्या होगा, सब तो बूढ़ा हो चुका है, मैं चलते फिरते इंसान से मतलब रेंगने को मजबूर हो गया हूँ, दूसरे के सहारे चलने को मजबूर हो गया हूँ। लेकिन एक उम्मीद थी, एक भरोसा था कि क्या पता भगवान यहाँ से कुछ अच्छा लिखे होंगे, और उसी के भरोसे के दम पे आज मैं पहाड़ चढ़ता हूँ, नॉर्मल लोगों के साथ 21 किलोमीटर हाफ मैराथन दौड़ता हूँ, और आज भी मतलब उम्मीद है कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ के चिल्लाऊं कि मैं विकलांग नहीं हूँ।
0: जी नहीं, आपके जो हौसले हैं वो तो हम ये कहेंगे कि इतना दृढ़ संकल्प है उन हौसलों में कि पाँव भले ही थक जाएं लेकिन आपके सपने बिल्कुल नहीं थके हैं, और आपके इरादे जो हैं वो चट्टानों जैसे मजबूत हैं, उनके सामने पर्वत तो क्या चीज है। तो उदय जी ये बताइए, ये तो समय वैसा था जबकि ये दुर्घटना घटी और आपने एक पैर खो दिया, उसके बाद परिवार वालों का कैसे सहयोग रहा, कितना समय लगा इस दुर्घटना से मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर उबरने में आपको?
1: तो ये तो एक पार्ट था, और दूसरा पार्ट ये था कि जैसे जैसे हॉस्पिटल में समय बीतते गए, आसपास के लोग और दोस्त और बहुत सारे लोग जो मिलने आते थे, तरह तरह की बातें किया करते थे, ये दिव्यांग हो गया है, इसकी देखभाल कौन करेगा, ये मतलब इसको भरण पोषण कौन करेगा, इसकी बूढ़ी माँ है, कैसे ये चलेगा। हालांकि हमारे परिवार में ये सब कुछ चिंता है नहीं थी, लेकिन मतलब होते हैं ना कि लोग
0: समाज तो तरह हाँ, तरह से बातें सोचता
1: जी,
0: है
1: जी। इसके पास ट्रेन का टिकट नहीं था, टीटी को देख के जंप कर गया, ऐसे बहुत सारी चीजें उठ के आई। फिर भी मैंने खुद को संभाले रखा, जैसे ही मैं सुना कि इसकी वाइफ छोड़ के चली जाएगी इसका क्या होगा, तब मुझे थोड़ा सा डर तो लगा, और मैंने खुद से अपनी वाइफ को सामने से बोला कि एक काम करते हैं, मैं तो अब दिव्यांग हो चुका हूँ, आप मेरे साथ क्यों जिंदगी बिताना चाहोगी, हमारे एक बेटा एक बेटी है, बेटा को रख लो बेटी को छोड़ दो, मैं और बेटी और माँ मतलब जिंदगी गुजार लेंगे, आप अपना अच्छा भविष्य चुन लो।
0: तो आपकी जीवन साथी ने क्या जवाब दिया?
1: मेरी जीवन साथी ने इतना रोई कि बोली कि मतलब हम लोगों ने 7 जन्मों के फेरे लिए हैं, 7 फेरे लिए हैं, ये तो पहला जन्म है, और बहुत रोई बहुत समझाई, और जिस तरीके से उसने आज साथ दिया है ना, तभी ये पॉसिबल है कि आज वो कलकत्ता में है और मैं यहाँ दिल्ली में बैठा इंटरव्यू दे रहा हूँ।
0: जी, यानी कि उन्होंने आपका पूरा साथ निभाया, परिवार ने आपका साथ निभाया, और हम देख पा रहे हैं आप कितनी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, आपने पर्वतों को पार किया है। तो उस जर्नी की शुरुआत हमारे जो सुनने वाले, मुझे लग रहा है बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि जब आपने रिकवरी की हो तो फिर किस प्रकार मन में विचार आया कि मैं जो चलने से आप कह रहे हैं कि परेशानी है, लेकिन आपने पर्वतों पर चढ़ने की ठान ली।
1: तो उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को आज भी निभा रही हैं, और जिस भी पहाड़ पर जाता हूँ चढ़ने के लिए तो वो DDLG का जो डायलॉग है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो ऐसे ही कह के वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करती हैं।
0: तो उदय कुमार जी, क्योंकि FM गोल में हम लगातार गीत भी सुनते रहते हैं और बातचीत भी जारी रखेंगे, तो DDLJ यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म का गीत सुन लेते हैं।
1: जी मैम।

0: बहुत मधुर था ये गीत, बताइए फिर आगे क्या हुआ।
1: उसके बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया, और घर का मतलब किराए का मकान था, एक ही रूम में खाना बनाना, और शरीर में ताकत थी नहीं, पूरा खून निकल चुका था शरीर से, शाम का खाना हो चुका था। वाइफ बोली कि थोड़ा सा बिस्तर से खड़े हो जाइए, मैं बिस्तर को ठीक करती हूँ। और मैं खड़ा होने की कोशिश किया, और दाहिने पैर में सिर्फ 4 उंगलियां हैं जिसमें से 3 ही काम करती है, और थंब निकाल दिया गया है उसी एक्सीडेंट में, और एक उंगली टेढ़ी हो गई है। मैं बैलेंस नहीं कर पाया और अपने बेटे के हाथ पे गिरा, और बेटा का हाथ बीचों से टूट गया, और सामने मेरी माँ बैठी हुई थी, और माँ को मतलब मैं इकलौता लड़का, इकलौता पोता, ये सब देख के सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, और माँ को सडनली हार्ट अटैक आया, और ये सब चीजें देख के मैं सन्न सा रह गया। और तब मुझे लगा कि लोग सही कहते हैं, मुझे जीना नहीं चाहिए, मैं अपने परिवार के ऊपर बोझ बन चुका हूँ। और तब नेगेटिव चीजें मेरे दिमाग में घूमने लगी, और उस रात जैसे तैसे दोस्तों की मदद से माँ और बच्चे को हॉस्पिटलाइज करवाया, और दोनों ठीक होके 2 दिन बाद घर आए। और फिर एक शाम फिर आता है 3-4 दिन बाद, वाइफ बोले कि मैं सब्जी लाने जा रही हूँ, माँ बच्चों को लेके ग्राउंड तक गई है, आप अपना ध्यान रखिएगा। और तभी मेरे आंखों के सामने मेरे पिताजी का चेहरा, मेरे जीजा जी का चेहरा घूमने लगा, और याद आया कि जो चीज़ मेरी माँ फीलिंग्स करती है मेरे पिताजी के बिना, जो चीज़ मैं एक फीलिंग्स करता हूँ एक बिना पापा का होना, जो चीज़ मेरी दीदी फीलिंग्स करती है, जो मेरे भांजे करते हैं, क्या वही चीज़ मैं अपनी वाइफ और मैं अपने बेटे को देने जा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत 2013 में कैंसर से हो गया था, मेरे जीजा जी का देहांत 2012 में ठंड लगने की वजह से हो गई थी। और तभी मैं बोला कि मैं ऐसी कहानियाँ लिखूँगा कि लोग मेरी कहानी पढ़ेंगे और मुझे मिसाल मानेंगे, और कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे और एक नया इतिहास रचेंगे।
0: जी,
1: और एक टूल के सहारे मैं ग्राउंड तक पहुंचा
0: जी,
1: और फिर 5 किलोमीटर मैराथन से स्टार्ट किया, और आज 21 किलोमीटर रनिंग करता हूं। अभी तक 18 राज्यों में 100+ मैराथन्स में भाग ले चुका हूं
0: जी,
1: और कई पहाड़ चढ़ चुका हूं।
0: बहुत सुंदर। और ये जो घटना आपने बताई है, मुझे लगता है कि हमारा तो दिल भर आया ये सुनकर। और लेकिन बात सही है कि जो गिरकर खड़ा हो जाता है कहते हैं वही सिकंदर होता है, है ना, उसे ही शहंशाह कहते हैं, क्योंकि परिस्थितियों के सामने हार मान लेना वो तो आपने मुझे लगता है सीखा नहीं। एक बारी गिरे जरूर, लेकिन उठ उठ कर फिर संभल कर खड़े हो गए।

0: उदय कुमार जी, जब आपने मैराथन चलना शुरू किया तो वो भी हमें बताइए कि कितनी मैराथन चली और उसमें जो अनुभव आपके रहे।
1: अभी तक तो 100+ इवेंट्स का मैं मैराथन रनिंग में भाग ले चुका हूँ। 2 हाफ मैराथन 21 किलोमीटर जिसको बोला जाता है वो कर चुका हूँ। कई सारे पहाड़ी इलाकों में जाके भाग चुका हूँ।
0: अच्छा।
1: और वहीं से एक प्रेरणा मिली और हिमालय पर्वतारोहण संस्था दार्जिलिंग के तत्कालीन प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन जय किशन सर से मैं एक पोस्ट के दौरान उनसे वार्तालाप हुई और उन्होंने मेरी भरपूर मदद की। और पहाड़ पे चढ़ना ना मैम, 110% फिजिकल, मेंटल और पैसे वाले गेम है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो मतलब आपके परिवार लेके सरवाइव कर सके। तो सर ने बहुत मुझे मोटिवेट किया और बहुत कुछ समझाया कि बेटा तुम्हारा तो पैर ही नहीं है, दूसरे पैर में एक उंगली नहीं है, स्पाइनल टूटा हुआ है, तुम कैसे कर पाओगे। मैंने जिद की कि सर इतना बड़ा दुर्घटना से मैं बच के आया हूँ तो कुछ तो बड़ा करना है।
0: वो मतलब जो आपने बिल्कुल ठान ली कि मैं कुछ तो करके ही जाऊंगा।
1: हाँ, मतलब भगवान ने उतनी बड़ी दुर्घटना से बचाया तो कुछ भी हो सकता था मैम। दो बार मैं बच के खड़ा हुआ तो भगवान ने कुछ प्लान करके रखा है। और आज भी मैं भटक रहा हूँ, आज दिल्ली में हूँ, तो भगवान ने अवश्य मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान करके रखा है। देर
0: तो
1: लग रहा
0: है। प्लान ये था कि आप आकाशवाणी दिल्ली आए और FM गोल्ड चैनल से जुड़े और हमारे जो सुनने वाले हैं वो आपके बारे में जान पाए, क्योंकि आपकी जो ये यात्रा है, विश्वास कीजिए, कितने ही सुनने वालों के दिल में कोई ना कोई प्रेरणा जरूर देगी और इसे सुन के वो भी समझ जाएंगे कि जिंदगी टूटने का नाम नहीं है बल्कि जिंदगी बार बार टूटने पर भी फिर उठकर खड़े होने का
1: जी
0: नाम
1: जी
0: है।
1: जी मैम।
0: और इस मौके पर हम सुन लेते हैं ये मधुर गीत।

0: बड़ा मीठा सा गीत था ये। उदय कुमार जी, पहली जो पर्वतारोहण यात्रा थी वो कब शुरू की और कैसे शुरू की?
1: वो 2022-23 में मैंने यात्रा आरंभ की और हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में ही मैंने ट्रेनिंग ली, और इसका सारा मतलब क्रेडिट सर को ही जाता है, क्योंकि मैं भारत का पहला दिव्यांग लड़का हूँ जिसने जल थल वायु तीनों जगह भारतीय सेना और भारतीय तिरंगे को रिप्रेजेंट किया है। और मैं पहली अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट पीक संदकपुर है, जो दार्जिलिंग से मैंने ट्रैकिंग करते हुए चलते हुए मैं गया हुआ था, और ये लगभग 12 दिनों की यात्रा थी हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत मोटिवेशन मिला और जिंदगी जीने का मकसद वहाँ पे दिखाई दिया, पहाड़ों में कम संसाधनों में कैसे सर्वाइव किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। और दूसरी यात्रा मेरी 2023-24 में हुई, जो हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट का बेस कैंप होता है कंचनजंगा रेनॉक, 16,500 फीट का यात्रा मैंने की, और ये पूरा HMI टीम और HMI इंस्ट्रक्टर के बदौलत, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत कुछ सिखाया, और वो ट्रैकिंग में वहां से बहुत मतलब उत्साहित हुआ कि अब मैं बड़ा कुछ कर रहा हूँ।
0: तो ये जो यात्रा थी उसके पहले की जो ट्रेनिंग थी, क्या कोई विशेष ट्रेनिंग थी?
1: मेरे लिए स्पेशल कोर्स ग्रुप कैप्टन जयकिशन सर ने ऑर्गेनाइज की थी, और उसमें मेरे लिए बचने का तरीका, हर मतलब कैसे मैं कम संसाधनों में मतलब सर्वाइव करूंगा, ये सारी चीजें उन्होंने सिखाई थी।
0: अच्छा, कितने दिन की ये ट्रेनिंग थी?
1: मेरी पहली ट्रेनिंग थी लगभग 10 दिनों की।
0: अच्छा,
1: दूसरी ट्रेनिंग थी 18 दिनों की, और तीसरी ट्रेनिंग 28 दिनों में मैं रेनॉक सबमिट किया और वापस आया।
0: जब आप ये पर्वत चढ़ रहे थे तो क्या कोई ऐसा पल आया कि अब आगे चढ़ना जो है बड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा?
1: जी, ये पल तब फीलिंग्स हुआ जब साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पे जब मैं चढ़ाई किया। रात को हम लोग 12 बजे चलना स्टार्ट किए थे और साथ में 7,800 स्क्वायर फीट का फ्लैग था, जो 80 किलो जिसका लगभग वजन था, मतलब रात को चले थे। और
0: 80 किलो का राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे थे आप?
1: मैं नहीं, पूरी टीम लेके चल रही थी।
0: पूरी टीम लेकर चल रही थी जी।
1: तो वो टाइम ऐसा था कि जैसे जैसे दिन निकलते गया वैसे वैसे मैं अनकॉन्शियस होते गया।
0: अच्छा।
1: और ऊंचाई पे एक पॉइंट दिख रहा था, बस मेरे गुरु और मेरे को मेंटर मतलब बता रहे थे कि उदय वो पॉइंट है, वहीं पे चढ़ जाओगे तो पूरा मिशन सक्सेसफुल। लेकिन पहाड़ों में सिर्फ बताया जाता है कि वो पॉइंट है, वहीं तक जाना है, लेकिन होता कुछ और है, जाना कहीं और होता है। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा मैं पहुंच गया, मैं फतह कर दिया, लेकिन जाना और आगे था, वहां से लगभग 500 मीटर और आगे जाना था और थोड़ी सी चढ़ाई बाकी थी। मैं वहां पे जाके मतलब होता है ना कि मैं पॉइंट पे पहुंच गया, सारी एनर्जी वहीं पे मतलब छोड़ दिया मैं
0: जी।
1: लेकिन वहां पे बताया गया कि पॉइंट ये नहीं है, वो है
0: जी। और पहाड़ों में तो 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर बहुत लंबा रास्ता,
1: बहुत लंबा, बहुत कठिन
0: जी।
1: और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है, जैसे आप देख रही हैं कि मैं अपने बैसाखियों के बल में चलता हूँ, अपना वजन खुद मतलब लिफ्ट कर करके लेके जा रहा हूँ
0: जी।
1: बाजुओं में ताकत नहीं थी, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, अनकॉन्शियस भी हो गया था, और तभी मेरे गुरु वहां से मेरे को छोड़ के आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि इसके साथ मैं रहा तो मैं ना जा पाऊंगा ना ये जा पाएगा, अगर इसको छोड़ के मैं आगे निकल गया तो मेरे पीछे पीछे ये कम से कम आएगा
0: जी।
1: और वो 500 मीटर मतलब सब कुछ मुझे याद दिला दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। जैसे ही 50 मीटर बाकी था तब पैर कदम उठ नहीं रहे थे, महेंद्र साहब बोले उदय बैसाखी दे मुझे पीठ पे आ, मैं तेरे को ले चलता हूँ।
0: तब तो आपने उनका प्रस्ताव स्वीकारा?
1: नहीं,
0: बहुत
1: मैं
0: अच्छा
1: बोला कि सर जब इतिहास में लिखा जाएगा मेरा नाम तो क्या लिखा जाएगा कि फिनिशिंग पॉइंट पे मैं किसी के कंधे के सहारे गया, और क्या मैं अपने बच्चों को जवाब दूंगा, क्या मैं अपनी प्रॉमिस किया हुआ जो अपने आप से वो कहूंगा। सर बोले कि तू जैसे आना है आ, 2 घंटे में आना है, 2 दिन में आना है आ, हम लोग इंतजार करेंगे वहां पे। और फिर जैसे ही मतलब सर को लगा कि अब गिव अप कर रहा है, एकदम इसके हालात खराब हो रहे हैं, तब सर नेशनल फ्लैग के आगे खड़ा होके चिल्ला रहे हैं बेटा आ जा, बेटा आ जा, देख तेरे लिए 7,800 स्क्वायर फीट का विशाल तिरंगा इंतजार कर रहा है।
0: क्या बात है।
1: और वो चीज मुझे अंदर से इतना ताकत दिया जब तिरंगे को मैंने देखा, वो 50 मीटर सच में मुझे चलने की हिम्मत नहीं थी। अगर वीडियोस देखेंगे तो मतलब बोलेंगे कि हाँ मैं सच में टूट गया था, और जैसे तैसे मैं पहुंचा और वो वर्ड्स थे बेटा आ जा, ऐसा लगा कि मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं, और मैं गया और वहीं पे उनके गोद में गिर गया, और गिर के मतलब एक अजीब सा रोया कि मतलब मैंने अचीवमेंट कर लिया और मैं तिरंगा फहरा दिया और भारत का पहला दिव्यांग लड़का बन गया कि जिसने इतना बड़ा कारनामा किया।
0: माउंट किलिमंजारो पर
1: जी
0: आपने पर्वतारोहण किया, बहुत खूबसूरत, क्योंकि राह कठिन हो पर्वत ऊंचे लेकिन मन में हो विश्वास और दृढ़ संकल्प, अगर साथ चले तो मिल जाती हर आस। ये शब्द आपने बिल्कुल सार्थक कर दिए, और इस मौके पर हम सुन लेते हैं ये मधुर गीत।

0: बहुत मधुर था ये गीत। तो वो क्षण जब आपने किलिमंजारो पर जो है हमारा तिरंगा लहराया अपने साथियों के साथ, उस समय को फिर बताइए हमारे सुनने वालों को कि क्या क्या मन में क्या क्या भावनाएं उठ रही थी, क्या क्या लग रहा था
1: वहां पे पहुंच के। जैसे ही तिरंगा को मतलब लहराता हुआ देखा तो एक अलग सा एनर्जी दौड़ा और हम लोगों ने बहुत सारी फोटो खिंचवाई, बहुत सारी बातें की वहां पे। और फिर वहां पे हम लोगों ने वो जो फ्रूट्स वगैरह लेके गए थे, चॉकलेट वगैरह लेके गए थे, खाए और एनर्जी आया और शाम को लगभग 6-7 बजे अपने कैंप में पहुंचे थे।
0: कितने घंटे की ये पूरी यात्रा थी?
1: टोटल यात्रा 17 घंटे की थी मैम
0: जी। ऊपर चढ़ने में कितने घंटे लगे?
1: ऊपर चढ़ने में हम लोगों ने 10:11 बजे के लगभग तिरंगा लहरा दिया था।
0: अरे वाह
1: जी। रात को 12 बजे चले थे हम लोगों ने
0: जी। उदय जी, जब आपने पर्वतारोहण की तो कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने आपकी क्षमता पर संदेह किया हो कि कैसे करेंगे, कैसे चढ़ेंगे?
1: जी, बहुत बार लोगों ने संदेह किया। मेरी यात्रा ही ऐसी, मतलब मैं ऐसा स्पोर्ट्स ही चुना हूँ कि मतलब हर दिन खुद को हारता हुआ देखना नहीं चाहता हूँ, हर दिन खुद को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: तो टूटने का बहुत मौका मिलता है, लेकिन हमेशा जो तिरंगा होता है उसको हमेशा मैं लहराते हुए देखना चाहता हूँ। इसी जजमेंट ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया मैम
0: जी। बहुत अच्छे। तो ये जो जज्बा है इसको ये बरकरार रहे, इसके लिए किस प्रकार की आप शारीरिक या मानसिक तैयारी करते हैं?
1: मैं हर दिन अपने लोकल ग्राउंड में जाके रनिंग करता हूँ, स्कीपिंग करता हूँ
0: जी,
1: और मतलब खुद को मोटिवेट और फिट रखने के लिए। और बस कल्पना है कि मैं एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ूं। उसके अच्छा। लिए मतलब मैं अपने वजन को बढ़ने नहीं देता हूं और हर वो चीज करता हूं जो मैं पर्वतों में उसको यूज कर सकूं।
0: उदय जी, दिव्यांग युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, और जो बड़े बड़े सपने देखना चाहते हैं और लेकिन हिचकिचाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि सपने देखिए लेकिन खुली आंखों से। सोते हुए सपने मतलब आंख खुली तो वो खत्म हो जाएगी, और खुली आंखों से जब सपने देखोगे तो वो हमेशा सफलता की ओर बढ़ेगी, वो सपने पूरे होंगे। और दूसरी चीज है कि युवाओं को मैं और हमारे जैसे दिव्यांग लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी स्पोर्ट्स में आना चाहता है पहले अपना स्पोर्ट्स सेलेक्ट करे कि किस स्पोर्ट्स में जाना है, उसका फ्यूचर क्या है।
0: जो आपको ये पुरस्कार मिला है भारत सरकार की ओर से, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, इसके बारे में बताइए कि ये इसकी सूचना आप तक कैसे पहुंची, कब पहुंची, घर में क्या प्रतिक्रिया हुई सबकी, आपको क्या लगा?
1: इसका फोन जब मुझे मिला तो 10 दिन पहले मुझे फोन गया कि उदय जी कांग्रेचुलेशंस, आपको तेंजिंग नोर्गे अवार्ड के लिए सिलेक्शन किया गया चुका है और आपको दिल्ली आना होगा। तो हमारे घर

0: में एक खुशी का माहौल था, एक जश्न का माहौल था। हमारे गुरु बहुत एक्साइटेड थे कि ये अवार्ड मेरे छात्र को मिल रहा है।
1: जी
0: हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में सारे लोग खुश थे कि एक दिव्यांग लड़के को इतना बड़ा अचीवमेंट मिल रहा है।
1: जी
0: बहुत अच्छा लगा। वाइफ मेरी राष्ट्रपति भवन तक पहुंची, मेरे बच्चे पहुंचे। ये चीज़ें देख के मतलब आज भी हम लोग उस दिन को भुला नहीं पाएंगे जब राष्ट्रपति महोदय के सामने मैं जाके वो अवार्ड ले रहा था। तो इतिहास में जो सपना देखा था उसे मैंने हकीकत में बदला।
1: और जो ये तो सपना हुआ हकीकत में बदला, लेकिन अगला सपना क्या है, अगला लक्ष्य क्या है जिसे आप पूरा करना चाह रहे हैं?
0: अगला लक्ष्य यही है कि मैं अपनी कहानी, जैसे मेरी कहानी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। कोविड के दौरान जब सारे दुनिया बंद हो चुकी थी, सब कोई रुक सा गया था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच था कि आपदा में अवसर का विस्तार करो। ये 2020 की बात है। और तभी मुझे लगा कि शायद प्रधानमंत्री जी ये चीज मेरे लिए बोल रहे हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी कमजोरी को अपना ताकत बना सकता हूँ?
1: जी
0: और मैंने वैसे ही अपने आप को एग्जीक्यूट किया और पहाड़ों में गया और आपदा में अवसर का विस्तार किया, अपनी कमजोरी को ताकत बनाया।
1: जी
0: अभी मेरा एक ही सपना है कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ूं, माउंट एवरेस्ट पे, और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद चाहिए। मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ और उनको ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर आपके ख्याल हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे युवा और बहुत सारे दिव्यांग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो अवश्य इससे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि आपने जो साहस का काम किया है वो वाकई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मंजिल लेकिन उसी को मिलती है जो हार से कभी नहीं डरता, और इतिहास वही रचता है जो हर मुश्किल से लड़ता है। तो हमारे साथ उदय कुमार जी जो पैरा माउंटेनियर हैं वो इस समय मौजूद हैं, और उन्होंने अपनी पूरी जो ये जर्नी है, पूरी यात्रा हम सबसे बांटी। और मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि वो उन्होंने बहुत खूबसूरत सी एक सफ़ेद रंग की कमीज पहनी हुई है, उस पर लिखा हुआ है माउंट किलिमंजारो, क्योंकि इस पर्वत पर उन्होंने चढ़ाई की है, पैरा माउंटेनियर उदय कुमार जी ने। और हम अपनी तरफ से, एफएम गोल्ड की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं उदय जी, आपके आने वाले जीवन के लिए, भविष्य के लिए। और हम चाहेंगे कि आप और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ें और बहुत सारे किले फतेह करें, बहुत सारे पर्वत फतेह करें, बड़ी बड़ी चोटियों पर चढ़ें, और आपका साहस और भी बढ़ता जाए, आपकी जो क्षमता है प्रभु उसमें और भी सहायक हमेशा सिद्ध हो।
0: जी मैम, बहुत बहुत आभार मैम।
1: आप एफएम गोल्ड के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: और इसी के साथ रश्मि कुकरेती को इस कार्यक्रम से दीजिए विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्तपानी के पास मां कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a

12:11 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी और आज आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम आपके लिए फिल्म लेकर आए हैं ये फिल्म 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गांव के जीवन को और भारत की कहानी को, खासतौर से किसानों और सैनिकों को जो योगदान रहा है इस देश की तरक्की में, उसको बखूबी दर्शाती है फिल्म। और ये फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री से प्रेरित थी और उन्हीं को समर्पित थी, जिन्होंने अपने आदर्श वाक्य जय जवान जय किसान के साथ इस फिल्म को बनाने का सुझाव दिया था। और किसे दिया था ये सुझाव? जी हां, उन्हें सुझाव दिया था जिनकी निर्देशन में ये पहली फिल्म थी, यानी मनोज कुमार। और फिल्म का नाम है उपकार। 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई और ये फिल्म इस कदर मकबूल हुई, इस कदर लोगों ने इसे सराहा कि उस साल की सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इसे माना गया। इस फिल्म में मनोज कुमार मुख्य भूमिका में थे, साथ में थी आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा, कामिनी कौशल, प्राण और मदनपुरी। निर्देशन किया और लिखा भी इस फिल्म को मनोज कुमार ने। प्रोड्यूसर थे हरी किशन, आर मीर चंदानी और आर एन गोस्वामी। कैमरा पक्षभार संभाला वी एन रेड्डी ने और एडिटर थे इस फिल्म के बी एस ग्लार्ड। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखे इस फिल्म में कमर जलालाबादी, इंदिवर, गुलशन बावरा, प्रेम धवन और इन सभी गीतकारों के गीतों को बेहद सराहा गया। खासतौर से इस फिल्म का वो गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग था, ये आज भी 15 अगस्त का मौका हो, 26 जनवरी का मौका हो, देशभक्ति का कोई कार्यक्रम हो, इस फिल्म के इस गीत के बिना वो कार्यक्रम अधूरा माना जाता है। उपकार फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 7 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते दोस्तों उस समय, और दूसरे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी इस फिल्म को नवाजा गया। और इस फिल्म की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1976 में तेलुगु में पदी पंतलु के नाम से इसे रीमेक भी किया गया। मनोज कुमार ने किरदार निभाया भारत का और आशा पारेख थी डॉक्टर कविता के रोल में। प्रेम चोपड़ा थे पूरन कुमार के किरदार में, जो कि मनोज कुमार यानी भारत के छोटे सौतेले भाई होते हैं। कन्हैया लाल लाला धनीराम के किरदार में थे। प्राण थे मलंग चाचा के रोल में। डेविड मेजर साहब के किरदार में थे। कामिनी कौशल थी राधा, जो पूरन और भारत की मां होती हैं। असित सेन लखपति के किरदार में थे, जो कि कन्हैया लाल यानी लाला धनीराम के मुनीम होते हैं। और इसके अलावा टुनटुन थी मदनपुरी, मदनपुरी का किरदार था चरण दास का, जो कि राधा के यानी कामिनी कौशल के किरदार में जो राधा थी उनके भाई का किरदार था। इसके अलावा मनमोहन, अरुणा ईरानी, मनमोहन कृष्ण, सुंदर, गुलशन बावरा, मोहन चोटी और लक्ष्मी छाया भी अलग अलग किरदारों में थे। फिल्म की कहानी है हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले के अताली गांव के ग्रामीण भारत। ग्रामीण परिवेश में वहां पर रहता है एक युवक भारत, जिसने अपने भाई पूरन की शिक्षा के लिए मानो एक प्रण लिया है, संकल्प लिया है, सब कुछ त्याग दिया है, अपना सुख, अपना चैन, अपना आराम, ताकि उसका भाई पूरन शहर में पढ़ने जो गया है, वहां पर वो पढ़ लिख कर काफी नामी गिरामी इंसान बने और एक नाम कमाए। लेकिन बचपन जो बीता है, बचपन बेहद कठिनताओं से बीता है। बचपन में भारत और पूरन के पिता का कत्ल कर दिया था उन्हीं के अपने मामा ने। मामा यानी चरण दास, जो एक अय्याश इंसान है, हर वक्त चोरी चकारी में मुब्तला रहता है, घर भी आता है, अपनी बहन का दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन दरअसल उसके पीछे मकसद होता है घर में रखा कुछ भी गहना रुपया उस पर हाथ साफ कर ले। ऐसा ही कर रहा होता है कि भारत की नजर पड़ती है और भारत अपनी मां को बताता है, मां बेइज्जत करके

अरुणदास को घर से बाहर निकाल देती है। उसका बदला लेने के लिए वो बेचैन रहता है, लेकिन इसी बीच भारत और पूरन के पिता से हाथापाई होती है और उस हाथापाई में चरणदास के हाथों भारत और पूरन के पिता का कत्ल हो जाता है। सजा काटने वो जेल चला जाता है और इसके बाद पीछे ध्यान रखने के लिए जो है वो है उसका दोस्त बिस्ना। बिस्ना कहता है कि तुम चिंता ना करना, अपनी भाभी को कहता है राधा को, जब तक मैं जिंदा हूं भारत और पूरन की पूरी जिम्मेदारी मेरी, मैं आपके खेतों में हल चलाऊंगा, मैं खेती करूंगा। लेकिन वहां पर लाला धनी राम भी है उस गांव में, जिसकी नजर रहती है किसानों की फसल पर, औने पौने दाम में फसल खरीद कर मंडी में बेचकर मुनाफा कमाना, अनाज को दबा लेना। लेकिन अब वक्त बदल गया, भारत बड़ा हो गया और भारत ने ठान लिया कि किसानों का हक वो मरने नहीं देगा। उसकी नजर में सिर्फ और एक सपना है कि हमारा देश भारत तरक्की की राह पर गामसन हो और पूरे विश्व में हम किसानों का नाम हो। वो भी कहता है कि जिस तरह सरहद पर तैनात जवान है, उसी तरह खेतों पर तैनात है किसान। तो जय जवान जय किसान। यही है फिल्म उपकार की कहानी।

भारत जो दिन रात अपना पेट काट कर, अपना आराम त्याग कर अपने भाई पूरन को पढ़ाने के लिए पैसा लगातार भेज रहा है, उसे नहीं पता कि पूरन जो है गलत सोबत का भी शिकार शहर में हो चुका है। हालांकि पूरन अच्छे नंबरों से पास जरूर हुआ है, लेकिन उसके सपने, उसके ख्वाब इतने बड़े बड़े हैं कि उसके लिए वो दिन रात अपने दोस्तों के साथ क्लब्स में पार्टीज कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। उसे अपने भाई के त्याग की ज्यादा फिक्र नहीं है। उसे लगता है कि उसका भाई तो अपना एक फर्ज निभा रहा है, उसका एक दायित्व है, उसकी एक ड्यूटी है जो कि उसको करनी है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी मुलाकात होती है वहीं शहर में डॉक्टर कविता से। डॉक्टर कविता जो अभी अभी डॉक्टर बनी है, लेकिन उसका सपना है कि किसी गांव देहात के छोटे से गांव में जाकर गरीबों की सेवा करे, जहां पर चिकित्सा की सुविधा अभी तक नहीं पहुंची है। ये उसके आदर्श हैं, और ऐसे ही कुछ आदर्श लिए वो पहुंच जाती है भारत के ही गांव, वहां पर जहां पर पूरन रहता है। हालांकि पूरन ने शहर में सबको अपना नाम कुमार बताया है, और वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि दरअसल पूरन भारत का ही छोटा भाई है, और उसका नाम असली पूरन है, ना कि कुमार। और वो भारत के आदर्शों से खासी प्रभावित भी होती है। वो देखती है कि भारत किस तरह से गांव के किसानों के लिए खड़ा रहता है, उनकी बेहतरी के लिए सोचता है, पूरे गांव की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए सोचता है। और कविता के आदर्श देखकर भारत भी कम प्रभावित नहीं होता। दोनों में मुलाकातें होती हैं, और गांव का परिवेश देखकर कविता बेहद खुश होती है। उसका मन करता है कि वो इसी गांव में ही बस जाए।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना,

0: जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

12:37 आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है उपकार। अब रोजाना मुलाकातें होती हैं आरती और भारत की। पूरन से बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि पूरन मन ही मन कविता को चाहने लग गया है और वो ये देखता है कि कविता खिंची चली जा रही है भारत की ओर। इसी बीच मलंग चाचा जो हमेशा बचपन से ही भारत को कहते हैं आए हैं कि दुनिया का भला सोच, घर वालों का भला सोच, भाई का भला सोच, लेकिन पहले अपना भी भला सोच भारत, ऐसा ना हो कि कभी तू इन सब के हाथों मारा जाए, स्वार्थ में मारा जाए। ये लोग स्वार्थी हैं, ये पूरा जग स्वार्थी है, कुछ अपने बारे में भी सोच, हमेशा त्याग ही करता रहता है तू। लेकिन भारत मलंग चाचा की बात को हवा में हंसी में उड़ा देता है, कहता है कि चाचा ये सब मेरे अपने ही तो हैं। लेकिन उसे क्या पता कि एक दिन ऐसा आएगा जब मलंग चाचा की बात सच होगी। होता यूं है कि पूरन जब गांव आता है तो वहां पर लाला धनीराम और उसके चाचा चरणदास दोनों उसके मन में भारत के खिलाफ जहर भरते हैं कि भारत तो सौतेला भाई है, सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेगा, तुम्हारे अपने सपने हैं, शहर में तुम अपना कारोबार शुरू करना चाहते हो, लिहाजा तुम्हें पैसे की दरकार है तो क्यों ना अपना हिस्सा जायदाद में से भारत से मांग लो। बस शक का कीड़ा पूरन के दिमाग में घर कर जाता है और वो भारत से कहता है कि मुझे जायदाद में, जमीन जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए। भारत मानो सकते में आ जाता है, ऐसा क्यों कह रहा है मेरे भाई, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, क्यों जमीन का बंटवारा करना, जमीन मां होती है। बहुत मिन्नतें करता है भारत पूरन की, लेकिन पूरन टस से मस नहीं होता, मां भी भारत का साथ देती है। तब पूरन को लगता है कि वो अकेला हो गया है, लेकिन वो कहता है कि अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला तो कोर्ट कचहरी का सामना तुम लोगों को करना पड़ेगा। ये सुन भारत सदमे में आ जाता है और वो सारी जमीन पूरन के बच्चों के नाम कर देता है, कहता है कि मैं संपत्ति का बंटवारा नहीं करूंगा, जमीन मां होती है, धरती मां होती है जिस पर किसान हल चलाता है, लिहाजा मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं लेकिन तुम्हारी औलाद को, ताकि तुम कहीं अपनी अय्याशियों में और लोगों के बहकावे में आकर सब कुछ बर्बाद ना कर दो। अब उसे अकेलेपन में मलंग चाचा की याद आती है, मलंग चाचा जो बचपन से कहते आए हैं कि अपना ध्यान रख भारत, रिश्ते नाते सब नाम के हैं।

आज एहसास हो रहा है भारत को कि जिस भाई के लिए ताउम्र वो कुर्बानियां देता रहा, आज उस भाई ने जमीन जायदाद के लिए, पैसे के लिए सारे रिश्ते नातों को ताक पर रख दिया। लेकिन इसी का नाम तो जीवन है। थका हारा टूटा हुआ भारत अब कविता से भी दूरी बनाने लग गया है, क्योंकि उसको लगता है कि अब वो किस मुंह से कविता का हाथ थामे। सब कुछ वो पूरन के नाम कर चुका है और अब वो एकदम से अपनी जिंदगी को वीरान समझ रहा है। कविता के लाख कहने पर वो कुछ बताता नहीं है कि आखिर बात क्या है। इधर कविता अपने भाई भाभी से भी पूरन को और उसके बड़े भाई को यानी भारत को मिलवा चुकी है, लेकिन भारत है कि अपने मन के गुबार, अपने मन के दर्द, अपने मन की टीस किसी को नहीं दिखा रहा।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

12:50 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी, और फिल्म है आज की 1967 में रिलीज हुई फिल्म उपकार। अब भारत जो है गुमसुम रहने लग गया है, कविता से दूरी बना रहा है, और इसी बीच 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होता है, और उससे पहले ही भारत फौज में

शामिल हो जाता है, क्योंकि जय जवान जय किसान का जो नारा है उसके मन में घर कर चुका है और वो देश सेवा में जाने के लिए फौज में भर्ती होता है, युद्ध में भेजा जाता है। और दूसरी तरफ लालची चाचा चरणदास और धनीराम की मदद से पूरन शहर में अनाज की जमाखोरी और कालाबाजारी करके मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त आने पर सब चीजें साफ दिखने लगती हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब पूरन को अपने मामा और धनीराम की साजिश का पता चलता है कि किस तरह से दोनों ने मिलकर भारत से उसे अलग करने की योजना बनाई। उसके मन में शक का जहर भोया। अब अपराध बोध और शर्म से, जिसे कहते हैं कि पूरन शर्मिंदा होने के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वहीं पर अपने भाई भारत का इंतजार करता है ताकि उससे माफी मांगे। और इस बीच कविता भी दिन रात भारत की सलामती के लिए प्रार्थनाएं करती है, दुआएं करती है कि भारत जहां भी हो सकुशल हो, खुश रहे।

इधर पूरन अपने किए पर बेहद शर्मिंदा है और दूसरी तरफ कविता को इंतजार है भारत का कि जल्द से जल्द भारत वापस आए और खुशी खुशी वो अपना जीवन उसके साथ आगे बढ़ाए, उसके हाथों में अपना जीवन सौंप दे। लेकिन क्या पता था नियति का कुछ और ही खेल है। भारत युद्ध में पूरी बहादुरी से लड़ता है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दिन रात एक कर देता है, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के बाद और दुश्मनों को हराने की मंशा से वो दुश्मनों के बीच पहुंच जाता है और दुश्मन इसी दौरान भारत को बंदी बना लेते हैं और वो वहां से उनकी अजियतें देते हैं, उसको तरह तरह के टॉर्चर करते हैं। लेकिन आखिर में भारत वहां से निकल आता है, लेकिन पूरी तरह घायल हो चुका है, टूट चुका है। और इस बीच जब उसका इलाज होता है तो पता चलता है कि उसके पूरे शरीर में, खासतौर से उसके दोनों हाथों में जहर फैल चुका है। मजबूरन डॉक्टरों को भारत के दोनों हाथ काटने पड़ते हैं। और इधर भारत जब होश आता है तो देखता है कि दोनों बाजू उसके नहीं हैं। लेकिन जब देखता है कि पूरन शर्मिंदा है अपने किए पर, उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, तो भारत को लगता है कि मेरे दोनों बाजू मुझे वापस मिल गए हैं। क्योंकि दूर कहीं उसको नजर आता है खेतों में पूरन अपने हाथों से हल चला रहा है। ये देखने के बाद भारत को मानो अपने बाजू खोने का कोई गम नहीं और अब दोनों भाई मिलकर कसम खाते हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए, अपने खेतों के लिए अपने प्राण तक दे देंगे और इस भारत मां के सीने में हल चलाते हुए अपना किसानी धर्म निभाएंगे और इस देश को आगे लेकर जाएंगे। दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म उपकार की। उम्मीद है आपको कहानी और गीत बेहद पसंद आए होंगे। और इस फिल्म से जुड़ी हम आपको ये भी बता दें कि फिल्म को फिल्मफेयर पुरस्कारों में, 15वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्राण, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलशन बावरा, गाना था उनका मेरे देश की धरती सोना उगले, सर्वश्रेष्ठ कहानी मनोज कुमार और सर्वश्रेष्ठ संवाद भी मनोज कुमार, और बेस्ट एडिटर का अवार्ड मिला बीएस ग्लाट को। इसके अलावा नॉमिनेशंस भी इस फिल्म को मिले। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नॉमिनेशन मिला मनोज कुमार को, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का नॉमिनेशन मिला कल्याण जी आनंद जी को, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का नॉमिनेशन मिला महेंद्र कपूर को गाना मेरे देश की धरती सोना उगले के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला मनोज कुमार को, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला महेंद्र कपूर को मेरे देश की धरती गीत के लिए, और BFJA अवार्ड मिला फॉर बेस्ट डायलॉग, ये भी मिला मनोज कुमार को। यानी इस कदर लोगों के दिल में ये फिल्म 1967 में घर कर गई कि आज भी इसका जादू सिर चढ़कर बोलता है। उम्मीद है वो जो एक फिल्म थी के कार्यक्रम में आपने इस फिल्म का आनंद लिया होगा। अब यूं ही सुनते रहिए FM गोल्ड चैनल। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार और उसके 1:10 पर आपसे फिर भेंट होगी। कार्यक्रम होगा दिल ढूंढता है। इंतजार रहेगा मुझे आपका।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान

0: अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
1: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरैस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। अमरीका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
0: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए

1:11 और 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz मधुर तारानों का कार्यक्रम दिल ढूंढता है। जी हाँ, दिल ढूंढता है ऐसे सदाबहार गीतों को जो कल भी दिल के बेहद करीब थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। और ऐसे ही गीतों को लेकर हाजिर हूँ मैं, आशीष नमस्कार। फिल्म आपकी कसम के इस यादगार गीत से करते हैं शुरुआत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत से सवार आर डी बर्मन ने और

दिल की बात कह दी और दिल की बात सुन ली भी गई, तो ऐसे में अब जीवन के सपने क्यों ना साकार किए जाए। वो सुखद सपने जो आंखों में बसते हैं, बस इंतजार रहता है उनका हकीकत में बदलने का। कुछ ऐसा ही कहा गया फिल्म जीवन मृत्यु के इस गीत में, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर,
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
5: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
4: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
5: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: एक 1:25 और 52 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz कार्यक्रम दिल ढूंढता है। और आज के इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश है फिल्म तेरे मेरे सपने का वो गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत से सवारा सचिन देव बर्मन ने और गीतकार है नीरज। इस गीत का आनंद लीजिए दोस्तों, और इस गीत के बाद आप सुनेंगे संस्कृत साप्ताहिकी।

विषया विध बड़िशा युध पिशिता इत सुखतो मकरा इत मति संतति कृत साहस विपदम परमालय परिपालय परितापित मनीषम शिव शंकर हर मे हर दुरितम शिव शंकर हर मे हर दुरितम। अयि श्रोतारः अनादि परावर परंपरायां अखंड भूमंडले प्रकृत्युत्पत्ति प्रत्यय विभागेन सुनिर्मिता एषा गिर्वाण भारती मानव स्वांतेषु संस्कारान् जनयंती आलय विज्ञानवत सर्वं ज्ञान बीजं बिभ्रति नितरां विराजते। एतयैव परंपरया समुद्भूतः अयम् श्रावणाख्यो मासः यत्र शैलादि कृत निषेवणः कैलास शिखर भूषणः चंद्रार्ध शेखरः श्री पार्वती जनिहि भक्त जन मानसेषु नरी नृत्यते। असौ पाशायुध कुलार्थ्यस्मिता पांगः ऊरी कृत विभूति दिव्यांगरागः गौरी परिगृहीत सव्यांग भागः महादेवः जन मनांसि प्रसादयति। एतादृशस्य सर्वेश्वरस्य चरणारविन्दयोः प्रणतिततिम् अभिव्यञ्जयन्।

0: अहम् जतिन शर्मा पुनरेकवारम् आकाशवाणी पक्षतः संस्कृत साप्ताहिक्याः अभिनवेन सुरभितेन अंकेन भवताम् रसिकानाम् स्वागतम् व्याचष्टे। यथा तमिस्रा वृतायाम् निशि चंद्रिका कुमुदम् प्रबोधयति, तथैव मनीषिणाम् वाग्वैभवात् निष्पन्नानि सुभाषित रत्नानि मानव चेतनायाः सुप्तं विवेकं प्रबोधयन्ति। एतस्यैव अमन्द ज्ञान भासकस्य सुभाषितामृतस्य धारां प्रवाहयितुं शब्द सौन्दर्येण सह उपतिष्ठते अस्मदीयः सुहृत् पुनीत त्रिपाठी।
1: अभीष्ट देवे रुष्टे च समर्थो रक्षणे गुरुः, न समर्थाः गुरौ रुष्टे रक्षणे सर्वदेवता। अर्थात यदि हमारे इष्ट देव भगवान हमसे रूठ या नाराज हो जाएं, तो गुरु हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं, परंतु यदि स्वयं गुरुदेव ही रुष्ट हो जाएं, तो ब्रह्मांड के सभी देवता मिलकर भी उस मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए गुरु की प्रसन्नता ही सर्वोपरि है।
0: शब्दस्य अंतरगूढ़ां शक्तिं भावानुभूतिं च युगपत् समुद्बोधयन् अयं प्रभागः अस्माकं विचारसरणिं निष्कल्मषां करोति। अस्मिन् प्रसंग प्रभागे आत्मसंवेदिन्या वाक्शैल्या अस्माकं अवधानं समाकर्षन्ति विभ्राजते अस्मदीया सहयोगिनी निधिः छाः।
2: मनोबुद्ध्यहंकारचित्तानि नाहं न च श्रो

0: मुल्क के नौजवानों को तंदुरुस्त ज़हनी एतबार से मजबूत और खुद एतमादी से सरशार होना चाहिए। आज नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के आगाज के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि नौजवानों को मुनशियात से हमेशा दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसके आगाज के साथ साथ मुनशियात की लानत के खिलाफ पूरे मुल्क में जन भागीदारी मुहिम भी शुरू हो रही है जो 100 हफ्ते तक जारी रहेगी। जनाब मोदी ने कहा कि मुआशरे से मुनशियात के खात्मे के लिए बेदारी को फरोग देने और अवामी शमूलियत की हौसला अफजाई के लिए पूरे मुल्क में हर इतवार को हफ्तावार सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप।
0: जनाब मोदी ने कहा कि मुनशियात की लत से लोग अपने मकासिद और अपने ख्वाब पूरे करने के रास्ते से दूर हो जाते हैं। इस लानत से न सिर्फ कुंभे बर्बाद होते हैं बल्कि मुल्क की ताकत भी कमजोर होती है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को मुनशियात की लानत से महफूज रखने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि नौजवानों को इस लानत के संगीन मुजमरात को समझना चाहिए क्योंकि इससे आखिरकार करियर तबाह हो जाते हैं और मुस्तकबिल भी बर्बाद होता है।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए।
0: वज़ीर आज़म ने कुंभों पर जोर दिया कि वो मुआशरे में बदनामी के डर से मुनशियात के इस्तेमाल के केसों को पोशीदा न रखें। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के कुंभों को बरवक्त मदद के लिए आगे बढ़कर खुलकर बात करनी चाहिए और माहिरीन से सलाह लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुंभों को इब्तदाई मरहले में ही तंबीह की अलामतों का पता लगाने की खातिर खुली बातचीत का माहौल कायम करना चाहिए और बच्चों को बरवक्त मदद फराहम करनी चाहिए। जनाब मोदी ने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा और प्रोफेसर साहिबान से भी अपील की कि वो तलबा के साथ गुफ्तगु में मुनशियात की लानत के खतरात के बारे में बाकायदगी से बात करते रहें और कैंपस में बेदारी की मुहिम का एहतमाम करें। इस प्रोग्राम में मुल्क भर में 28,000 मुकामात से 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम के शुरका में स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यूथ क्लब, गैर सरकारी तंजीमों और रूहानी तंजीमों के शुरका के साथ साथ है माय भारत और नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकार भी शामिल हैं। अमेरिका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने जोर देकर कहा है कि अगर पाकिस्तान दो तरफा मामलात पर भारत के साथ इश्तराक चाहता है तो उसे दहशतगर्दी के उस बुनियादी ढांचे को पहले खत्म करना होगा जो उसने बना रखा है। पाकिस्तान ने दरियाए सिंध से मुतालिका भी मुआहदे को मुअत्तल रखने के भारत के फैसले पर एहतजाज के लिए हाल ही में इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस तलब की थी। जनाब विनय मोहन क्वात्रा ने एक न्यूज मैगजीन में शाये होने वाले मजमून में पाकिस्तान के एक साबिक वजीर खारजा के उस बयान पर नुक्ताचीनी की है जिसमें उन्होंने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के बारे में पाकिस्तान के मुतालबात पूरे न होने की सूरत में भारत के खिलाफ जंग की धमकी दी थी। भारतीय सफीर ने कहा कि अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत के खिलाफ जंग लड़ने की धमकी देना पाकिस्तान की एक पॉलिसी बन गई है। जनाब क्वात्रा ने यह भी कहा कि कॉन्फ्रेंसें तलब करके भारत को मौरिदे इल्जाम ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को पानी की अपनी कमजोर सलाहियत को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी हर अंदरूनी नाकामी के लिए भारत पर इल्जाम लगाना पाकिस्तान की पुरानी रविश है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। केरल में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बारिश से वाबस्ता वाकयात में 8 अफराद की मौत होने की इत्तला मिली है, जबकि 8 दिगर अफराद लापता बताए गए हैं। कल के मुकाबले आज बारिश का जोर कम होने से लोगों को कुछ राहत मिली है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मुतासर इलाकों में 5,700 से ज्यादा अफराद को 209 इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। रियासती सरकार के मुताबिक 27 मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए हैं, जबकि 196 मकानों को जुज़्वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ जिलों से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचने की इत्तला मिली है। पहाड़ी इलाकों और दरिया के किनारे के नजदीक रहने वालों को सलाह दी गई है कि वो चौकस रहें। इधर भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के साहली इलाकों में माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो आज समुद्र में न जाएं। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालाकृष्णन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने ईरान पर फौजी हमला फिलहाल न करने से इत्तफाक कर लिया है। इससे कबल ईरान और मगरबी एशिया के कई मुल्कों ने हमले रोकने की अपील की थी। सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि एक मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका फौजी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के लिए मौका फराहम करने की खातिर हमलों को मुअत्तल करने का फैसला किया है। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ख्वातीन के ताइपे ओपन सुपर सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में वियतनाम की छठे नंबर की खिलाड़ी गुइन थुई लिन्ह को 21-16, 21-16 से हरा दिया। इस तरह 17 साल की तन्वी शर्मा ने पहली बार BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है और वो ताइपे ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों का आज आखिरी दिन है और भारत सोने के 13 तमगों समेत 39 तमगों के साथ चौथे मुकाम पर है। भारत ने अब तक चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे भी जीते हैं। इससे कबल भारत ने मुक्केबाजी में सोने के 7 तमगे जीते, जो कि एक रिकॉर्ड है। भारतीय मुक्केबाजों ने दौलत मुश्तरका खेलों में अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सोने के 7 तमगों के साथ साथ मुक्केबाजी में चांदी के 3 तमगे भी मिले। इधर जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों ने 4 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमगे जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। अहमदाबाद को ग्लासगो में जारी 2026 के दौलत मुश्तरका खेलों की अख्तितामी तकरीब के दौरान दौलत मुश्तरका खेलों का परचम और मेजबान शहर के बैटन बाजाब्ता तौर पर सौंपी जाएगी। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत के मकसद के हुसूल की समत आगे बढ़ते हुए तंदुरुस्त जहनी एतबार से मजबूत और खुद एतमादी से भरपूर रहें। वजीर आजम ने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करते हुए कहा कि नौजवानों को मुनशियात से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। केरलम में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 8 अफराद की मौत होने की इत्तला मिली है। हजारों लोगों को इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय का दावा किया है। और बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में पहली बार BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally, including 13 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
1: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
3: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप।
3: Mr. Modi said drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of a nation. Stressing the need to protect the youth from the menace of drugs, he said young people must understand the serious consequences of addiction. Mr. Modi reminded that the drugs ultimately ruin careers, disrupt family life and destroy the future of individuals.
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
3: The Prime Minister urged the families not to hide cases of substance abuse due to social stigma. He said they should seek timely help, communicate openly, consult experts and make use of medical support to help affected family members recover. He stressed that families must foster a culture of open dialogue to identify warning signs at an early stage and provide timely support to children.
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए।
3: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event. In Punjab, thousands of students from 7 educational institutions from the state participated in the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today, which was virtually launched and addressed by Prime Minister Narendra Modi. Most of the students from Punjab-based universities, many of whom were NSS volunteers also, were of the opinion that it is the collective responsibility of the society to promote such campaigns for drug-free country. Piyush Saini from Lovely Professional University, Phagwara, said that they have taken a pledge for Nasha Mukt Bharat.
4: Today, under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan organized by Prime Minister Shri Narendra Modi, I, along with my friends and fellow students, have taken a pledge towards a drug-free India. Now, our responsibility is to not only stay away from drugs ourselves, but also to encourage people around us and our relatives to join this mission and move forward towards a developed India.
3: President Drobdi Murmu flagged off a run PBG Soldier-a-thon at a ceremony held at the forecourt of Rashtrapati Bhavan this morning. Governor of Mizoram General V.K. Singh, who is the patron of the initiative, was also present on the occasion. In a social media post, the president said that the Soldier-a-thon serves as a unique platform to strengthen the bond between the civilians and the armed forces, guided by the vision of

0: She is also the first Indian woman to win the title since Saina Nehwal in 2008. At the Glasgow Commonwealth Games, India's medal hunt enters the final day with judo and track cycling offering the last opportunities to add to the tally. Avtar Singh in the men's 100kg, Yash Gangas in the men's plus 100kg and Ishroop Narang in the women's 78kg category will lead India's judo challenge, while Ronaldo Lakdongjam will compete in the men's 1000m time trial in track cycling. Para track cycling events are also scheduled on the closing day. A report.
1: India enters the final day in fourth place in the medal table with 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze. After its most productive day of the Commonwealth Games, led by record 7 gold medals in boxing, the boxers produced India's best ever Commonwealth Games campaign in the sport, topping the medal table with 7 gold and 3 silver medals. Jasmine Lamboria, Preeti Pawar, Priya Ghangas, Sakshi Chaudhary and Arundhati Chaudhary won women's titles, while Sachin Sivach and Ankush Pankaj secured gold in the men's event. Olympic medalist Lovlina Borgohain settled for silver in the women's 75kg category, while Jadumani Singh and Narinder Barwal also finished runners-up in their respective men's weight classes. India's judokas also scripted history, winning 4 medals in the country's best ever Commonwealth Games performance in the sport. Harsh Singh and Asmita Day became India's first judo gold medalist at the games, while Yamini Maurya won silver and Unnati Sharma claimed bronze. Para athletes added another landmark chapter, securing 7 medals, 3 gold, 2 silver and 2 bronze. Their best ever Commonwealth Games haul. Soman Rana won the men's 5F7 para shot put gold with a season best throw of 13.40 meters, while Shubham Joyal took silver. On the track, Gulveer Singh became the first Indian to win a Commonwealth Games 5000 meter medal by claiming bronze, supplementing his earlier silver in the 10,000 meters. Komudi Parikh for Akashvani News.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with fourth place in medal tally. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जानमाल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
2: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी की डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाएं नहीं।
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
2: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
7: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने

0: स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
1: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: त्रिशा, लो अभी तक तुम ये पन्ने लेकर बैठी हो, जब से आई हो इन्हीं पन्नों में डूबी हुई हो, किसी बात का होश नहीं है तुम्हें। अरे घर से थोड़ी मोहब्बत भी करो, उसके भी कुछ काम करो।
1: ओहो दीदी, आप आज कर लीजिए ना, बस कुछ पेज रह गए हैं।
0: यानी खाना भी मुझे ही बनाना होगा। सोचा था छोटी बहन आ रही है, थोड़ा तो सुख मिलेगा। देखू तो ऐसा क्या पढ़ रही हो कि तुम्हारा कुछ और करने का दिल ही नहीं कर रहा? क्या है ये पन्ने और क्या लिखा हुआ है इन पन्नों में?
1: पन्ने नहीं है दी, पार्वती गिरी जी की बायोग्राफी है। उनके जीवन ने बहुत लोगों की जिंदगी को बदला है।

0: आजादी की लड़ाई के बाद उन्होंने गांव में लोगों की निस्वार्थ सेवा करने का काम चुना, जैसे आप इस गांव में काम कर रही हैं। आपकी भी प्रेरणा वही है ना?
1: हाँ प्रिशा, उनके जैसा एक काम भी कर पाऊँ तो धन्य समझूँ मैं अपने आप को।
0: पर आप भी तो सब कुछ त्याग कर इस गांव के लिए इतना कुछ कर रही हैं।
1: आदरणीय पार्वती गिरी जी से मेरी क्या बराबरी, वो तो उड़ीसा की मदर टेरेसा कहलाती हैं। पर तू इन्हें अचानक क्यों पढ़ने लगी? वैसे देखा जाए तो पार्वती गिरी जी के बारे में कुछ खास जानकारी मिलती नहीं है, वो तो खोया हुआ इतिहास हो गई है।
0: बात तो सही है, पर कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आजादी की लड़ाई के संघर्षों को, उनकी यादों को जिंदा रखा जा सके।
1: अच्छा, जैसे?
0: जैसे आप और कुछ और लोग भी।
1: पहेलियां बुझाओगी या कुछ बताओगी भी?
0: अरे वो छोड़ो, पता है दी, मुझे याद है कि आप अपने कॉलेज के आखिरी साल में एक ट्रिप पर ओडिशा गई थी। पर जब आप आई तो एकदम बदल चुकी थी। बस कुछ दिनों बाद अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ आ गई। तब से यहीं के लोगों के लिए काम कर रही हैं। माँ पापा आज तक आपको रोक नहीं पाए।
1: पता है प्रिशा, मात्र अपना जीवन जीकर इस दुनिया से चले गए तो क्या जिया, जिए तो कोई पार्वती गिरी जी की तरह जिए, जिसने स्वतंत्रता के बाद भी कोई बड़ा पद ना लेकर गांव-गांव जाकर काम करने की सोची। वो 1955 में संबलपुर जिले के लोगों के लिए स्वच्छता सुधार के लिए एक अमरीकी प्रोजेक्ट में शामिल हुई। उन्होंने नृसिंहनाथ में कस्तूरबा गांधी मातृ निकेतन नामक महिलाओं और अनाथों के लिए एक आश्रम शुरू किया और संबलपुर जिले के जूजोमुरा ब्लॉक के अंतर्गत बीर सिंह गढ़ में निराश्रितों के लिए डॉक्टर संतरा बाल निकेतन नामक एक और घर शुरू किया।
0: हाँ दीदी, मैंने भी पढ़ा कि उन्होंने जेल सुधार और कुष्ठ रोग उन्मूलन में काम किया। उनके समाज सेवा के कार्यों को देखते हुए 1984 में भारत समाज कल्याण विभाग ने उन्हें सम्मानित भी किया था।
1: वाह, ये सब जानकारी इन्हीं कागजों में है क्या? दिखा दो, किसने इतनी जानकारी इकट्ठा करके रखी हुई है?
0: ट्रेन में एक महाशय मिले थे जो पार्वती गिरी जी पर रिसर्च कर रहे हैं। मैंने कहा पार्वती जी की अनुयायी से साक्षात मिलवा देती हूँ, मदद ही हो जाएगी बेचारे की। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों, ठीक किया ना दी?
1: हाँ,
0: पार्वती गिरी जी तो आपकी भी प्रेरणा है, तो आप करेंगी ना उनकी मदद?
1: तुम ये ट्रेन में दोस्तियां करना बंद करोगी? पता है ना जमाना कितना खराब है।
0: दीदी ये चीटिंग है। आप कहती हो कि ट्रेन में किसी का खाना नहीं खाना चाहिए, ना ही खिलाना चाहिए। देखो कैसे अच्छे से रटी हुई है मैंने ये बात। पर पढ़ने लिखने की बातें नहीं करनी चाहिए, ये आपने कभी नहीं कहा।
1: तुमसे ना बस बहस करा लो, बात की होगी तो नंबर भी एक्सचेंज किए होंगे ना।
0: अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट निकली
1: तुम।
0: देखो अब जाओ, बढ़िया सा खाना बना लो, थोड़ा ज्यादा बना लेना, और अगर कोई आ जाए तो उसको भी पूरा हो जाए। क्यों?
1: क्या मतलब कि कोई आ रहा है और मुझे पता ही नहीं?
0: मुझे भी कहाँ पता है, पर सोच रही हूँ कि जब किसी ने अपने हाथ की लिखी हुई इतनी बड़ी रिसर्च दी है तो वो लेने भी तो आएगा ना। अगर ना भी लेने आए तो पूछने तो आएगा ना कि कैसी लगी।
1: ओफो, तुम जब से आई हो ना बहुत बहकी बहकी बातें कर रही हो। कान खोल के सुन लो, इस घर में कोई अजनबी नहीं आना चाहिए, समझी?
0: वो तो वक्त बताएगा।
1: क्या बोला?
0: अरे भाई कुछ नहीं, प्लीज कुछ पन्ने बचे हैं दीदी, पढ़ने दो ना चैन से।
1: ठीक है, एक आवाज लगाऊंगी, खाने के लिए आ जाना चुपचाप।
0: ओके माता श्री जी का बिग रूप, जाए अब आप।

0: त्रिशा देखो दरवाजे पे कोई है।
1: वो ये लड़की भी ना। अब शिशिर तुम, तुम्हें मेरा पता किसने दिया?
2: वर्षों से ढूंढ रहा हूँ शैला तुम्हें, बस एक माफी मांगने के लिए। मैं क्यों ना समझ

0: लगा कि तुम कितना बड़ा काम करना चाहती हो। तुमने कभी बचपन में पार्वती गिरी के बारे में पढ़ा था और तय कर लिया कि मैं उनकी तरह ही देश सेवा करूंगी और शहर का अच्छा खासा सुख सुविधा वाला जीवन छोड़कर इधर चली आई। जब इस गांव में आया तो सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा और लोगों ने मुझे सम्मान के साथ सीधा यहां लाकर छोड़ा। तुम्हारी बहन प्रिशा से जब मैंने पता मांगा तो उसने भी यही कहा था कि इस गांव में आकर दीदी का नाम पूछ लेना और वो लोग तुम्हें सम्मान सहित उनके घर पहुंचा देंगे।
1: आओ शिशिर।
2: प्रिशा, तुम्हारे मेहमान आए हैं ट्रेन वाले।
3: जी दीदी, आई।
1: शिशिर, खाना लगा रही हूँ, खाना खाकर जाना।
0: नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा।
1: बच्चों जैसी बातें मत करो, चलो खाना खा लो।
4: अरे शिशिर भाई, आ गए आप। दी, वो तो खाना खा लेंगे, पर ये तो बताओ कि आपको पार्वती गिरी की कौन सी बात इतनी प्रभावित कर गई कि आपने उनके जीवन पर चलने की ठान ली।
1: जानती हो प्रिशा, जिस लड़की को 11 साल की उम्र में ही पता चल गया हो कि उन्हें अपने देश की आजादी के लिए काम करना है, सोचकर देखो उस शख्सियत के बारे में। वैसे उनके चाचा रामचंद्र गिरी एक प्रमुख नेता थे और उनके घर में बैठकर स्वतंत्रता सेनानी देश की आजादी की चर्चा किया करते थे। समलाईपुर गांव राष्ट्रवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण सभा स्थल था।
4: समलाईपुर गांव संबलपुर जिले में है।
1: हाँ,
4: जहाँ पार्वती गिरी जी का जन्म हुआ है ना। 19 जनवरी 1926 में। हाँ, सही याद है ना मुझे शिशिर भाई।
0: आज का दिन यानी 19 जनवरी मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज के दिन ही तो हम अलग हुए थे। तुम्हारी दीदी पार्वती गिरी जी की तरह अनाथालय खोलना चाहती थी, देश की जिम्मेदारियां संभालना चाहती थी और मैं शैला का साथ निभाने में असमर्थ रहा।
4: आप तो कहानी को अपने ऊपर ले गए शिशिर भाई। अभी ये तो बताएं कि पार्वती गिरी जी स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा कैसे बनी।
0: बताया ना तुम्हारी दीदी ने कि वो अपने घर में हो रही स्वतंत्रता सेनानियों की बैठकों में बहुत दिलचस्पी से भाग लेती थी। उनके बलिदान से प्रेरित होकर वो घर घर जाकर लोगों को पार्टी का सदस्य बनने का अनुरोध करने लगी और उन्हें ये जिम्मेदारी किसी ने सौंपी नहीं थी बल्कि उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने लिए खुद तय की थी। और एक संगठन के विकास के लिए पहला कदम यही है कि ज्यादा से ज्यादा उसके सदस्य बने।
1: हाँ, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति इस छोटी सी लड़की की पहल पार्टी के नेताओं तक पहुंची। उन्होंने इस बात से प्रभावित होकर पार्वती के पिता से विनती की कि वो उसे समलाईपुर गांव में पार्टी के अधिवेशन में संगठनात्मक कार्य के लिए अनुमति दे दें। उस समय पार्वती मात्र 11 बरस की थी। उनको सौंपे गए कार्यों के प्रति उनका समर्पण इतना प्रभावशाली था कि मालती चौधरी और प्रण कृष्ण पढ़ियारी जैसे प्रतिष्ठित नेताओं ने उनके परिवार से फिर अनुरोध किया कि पार्वती को संगठनात्मक कार्यों में पूर्णकालिक रूप से शामिल होने की अनुमति दे दें।
0: हाँ, और ये वो समय था जब पार्टी में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की भारी कमी थी, पर परिवार ने काफी समय तक कोई जवाब नहीं दिया। पार्वती गिरी भी दृढ़ निश्चय करके बैठी थी। उन्होंने तो अपनी शिक्षा भी बीच में ही छोड़ दी थी।
1: हाँ,
0: उनके लिए अभी अपनी शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण देश की आजादी के संघर्ष से जुड़ना था।

0: बिल्कुल तैयार
1: हूँ। इन्हें मार डाल।
2: बाबूजी, हम स्वतंत्रता आंदोलन में जरूर भाग लेंगे, चाहे आप हमें इजाजत दें या नहीं।
3: पार्वती, तुम अपने बाबूजी के आगे ज्यादा बोल रही हो। तुम्हारी उम्र की बच्चियां पढ़ती हैं या उनका ब्याह करके विदा कर दिया जाता है। ये आंदोलन वांदोलन में काम करना बच्चों का काम नहीं है।
2: पर हमारा काम देखकर ही तो मालती दीदी और प्रिंट किशन।
3: तुमसे उन लोगों का नाम तो अच्छे से लिया नहीं जा रहा है, और काम करोगे उनके साथ? देखो, जिद मत करो, बाबूजी इसकी इजाजत नहीं देंगे।
0: पार्वती की माँ, वो लोग अच्छे हैं,
3: पर
0: अगर उन्होंने कुछ कहा है तो कुछ तो सोचकर ही कहा होगा। और रामचंद्र तो है ही इसके साथ, करने दो इसे अपनी मर्जी, न हो पाया तो ब्याह कर देंगे।
2: कितना खुशी का पल रहा होगा ना पार्वती जी के लिए।
4: हाँ, और मुझे देखो, आज के आधुनिक समय में मैं पढ़ी लिखी एक संभ्रांत परिवार की लड़की, जिसको आज तक इजाजत नहीं मिली कि मैं गांव में आकर सेवा करूं।
5: शैला, शैला, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती?
4: तुम क्यों माफी मांग रहे हो शिशिर? गलती तुम्हारी नहीं है, हमारे समाज की है कि लड़कियों को कुछ काम करने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है, पर पुरुष, उनकी डिक्शनरी में तो इजाजत शब्द ही नहीं है।
5: पर मुझे तो अपने घर वालों से इजाजत लेनी पड़ रही थी ना, कि मेरी पत्नी शादी के बाद इस घर में ना रहकर उस गांव में रहेगी जहां वो सेवा करना चाहती है। तो नहीं मिली थी मुझे इजाजत? हम लड़के भी इतने स्वतंत्र नहीं होते कि हमारी हर बात मान ली जाए। शैला,
4: चलो मैं ना सही, पर पार्वती गिरी जी खुशकिस्मत निकली कि उन्हें 12 वर्ष की छोटी सी आयु में जाजपुर में रमा देवी द्वारा संचालित बारी आश्रम में जाने की अनुमति दे दी गई। वो बिना किसी घबराहट के वहाँ गई। तुम्हें पता है प्रशा, उनके साथ बरगढ़ की बाल विधवा प्रभावती भी थी। प्रभावती के परिवार ने भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उनके दृढ़ इरादों के आगे सबको हार माननी पड़ी। ये रीबा राय के घर अरिगांव में कुछ दिन तक रुकी और फिर आश्रम पहुँच गयी।
1: क्या बात है दीदी।
5: और तो और, पार्वती गिरी ने आंदोलन चलाने के साथ साथ आश्रम में रहकर हस्तशिल्प और स्वयं सहायता सहित कई चीजें सीखी जो बाद में उनके बहुत काम आई। उन्होंने पार्टी के लिए बरगढ़, संबलपुर, पदमपुर, पनीमारा घेस और अन्य स्थानों की यात्राएं शुरू कर दी, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। निडर पार्वती आंदोलन का झंडा उठाए गांधी जी का संदेश जगह जगह दे रही थी। वो आंदोलन में आगे बढ़ती जा रही थी। उनको कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार अंग्रेज सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा।
1: पर क्यों?
5: चूंकि वो नाबालिग थी, बेचारे अंग्रेज दांत पीसते रह जाते, पर पार्वती का बाल भी बाका नहीं कर पाते।
1: पता है दी, शिशिर भाई ने ट्रेन में एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाया था पार्वती गिरी जी का।
4: अच्छा, फिर से एक बार सुनाओ ना।

0: तैयार।
1: ओह, तो ये कार्यालय है एसडीओ का, और ये उसकी कुर्सी जिस पर बैठकर वो हमारे खिलाफ सारे काम करता है और ब्रिटिश सरकार का हुक्म बजाता है। तो आज हम उसका न्याय करेंगे।
2: पार्वती, तुम एसडीओ की कुर्सी पर बैठकर कानून हाथ में ले रही हो। वैसे ही ब्रिटिश सरकार तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अगर ऐसा किया तो वो तुम्हें जरूर जेल में डालकर अपनी मूंछों पर ताव देगी और अपनी पीठ ठोकेगी।
1: ब्रिटिश सरकार इसके अलावा कर ही क्या सकती है? जेल में ही भेज सकती है ना, पर कब तक रख लेगी जेल में? देश की आजादी के बाद तो देश अपना ही होगा ना, तो जल्द से जल्द इस ब्रिटिश सरकार को भगाना होगा। उन्हें लोहे के चने चबाने ही होंगे, वरना तो वो सोचेंगे कि हम में दम ही नहीं है। तो मेरे सामने उस एसडीओ के हाथ पैर बांध कर लाया जाए, हम उसका न्याय करेंगे।
2: तुम्हें डर नहीं लगता पार्वती?
1: हाँ, डर तो ब्रिटिश सरकार को लगना चाहिए। जहाँ के बच्चे आपकी नाक में दम कर सकते हैं, वहाँ के बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी आपका क्या हाल करेंगे। तो अच्छा यही है कि हमारे देश से इज्जत से निकल जाओ, वरना तो हम ऐसा नाक में दम करेंगे कि अपने देश में जाकर भी नाक से सांस नहीं ले पाओगे।
3: सांस नहीं ले पाओगे।

0: इस घटना ने तो ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। अब तक तो पार्वती गिरी जी को किसी भी आंदोलन के लिए सजा नहीं दे पाए थे क्योंकि वो नाबालिग थी, पर इस घटना के होते ही पार्वती को उन्हें सजा देने का मौका मिल गया क्योंकि अब वो 16 साल की हो चुकी थी। उन्हें 2 साल का कठोर कारावास देकर ब्रिटिश सरकार के कलेजे को ठंडक मिली। दाद थी पार्वती गिरी जी को कि उन्होंने अपने उस कठोर कारावास की सजा को भी खुशी खुशी काटा।
1: बिल्कुल।
0: और जेल के बाहर आने के बाद वो फिर से अपने कामों में जुट गईं। ब्रिटिश सरकार उनके साहस को टस से मस नहीं कर पाई।
2: क्या बात है।
1: वैसे प्रिशा, ये किस्सा मुझे तुम्हारी दीदी ने ही सुनाया था।
2: ओह, और मैं वैसे ही आपसे इतनी इम्प्रेस हुई जा रही थी।
0: वैसे तुम्हें पता है प्रिशा, पार्वती गिरी जी ने बरगढ़ कोर्ट में वकीलों को अंग्रेजों के खिलाफ अदालत का बहिष्कार करने और आंदोलन करने का आह्वान किया, पर वकीलों ने उनका साथ नहीं दिया। तो निडर पार्वती ने उन सभी को चूड़ियां भिजवाई थी। ये मर्दों का सरासर अपमान था, पर कोई भी कुछ नहीं बोला, बस बेइज्जती का घूंट पी कर रह गए।
2: सच में क्या दीदी, क्या बात थी ना पार्वती गिरी जी में। यहाँ तो लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है छोटा सा भी करेज लाने के लिए, नहीं?
1: हाँ, जैसे मुझे ही देख लो, हम जैसे लोग कहाँ आगे आने देते हैं किसी भी महिला को। वो अगर कुछ करना चाहती है तो सबसे बड़ा रोड़ा उसके लिए अपने बनते हैं।
2: सच है।
1: जैसे मैं ही कहता था कि अरे हम शादी करेंगे तो कैसे बनेगी हमारी गृहस्थी, मेरे बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा। छोटी छोटी सोच में फंस के रह जाते हैं, बहुत ही स्वार्थी होते हैं।
2: हाँ, तो क्या पार्वती जी के माता पिता ने नहीं सोचा होगा कि पहले अपना घर देख लो फिर बाहर का देखना। अब कहा होगा ना, रोका होगा ना उन्हें।
0: बिल्कुल, जरूर कहा होगा, पर वो रुकी कहाँ। उन्होंने अपने हर कर्तव्य को तन और मन से निभाया। और मुझे देखो तुम, मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया है। उनके लिए मकसद है शादी, और ये शिशिर बाबूजी का भी मकसद है कि शादी हो और मैं इनके घर से लेकर रिश्तेदारों की जिम्मेदारी निभाऊं।
1: अरे,
0: क्योंकि प्रेम विवाह होगा ना, तो ये साबित करना होगा कि बहू अच्छी आई है। पर मुझे ना किसी को कुछ साबित नहीं करना था, मुझे तो बस पार्वती गिरी जी के नक्शे कदम पर चलना था। और अब जैसा भी मैं काम कर रही हूँ ना, मुझे एक संतुष्टि है कि मैं समाज को अपनी सेवा दे पा रही हूँ, अपने मानव होने का फर्ज निभा पा रही हूँ।
2: दी, मैं आपके साथ हूँ। पार्वती गिरी जी के कामों से ही उन्हें अपने गांव, जिले, राज्य के लोगों के दिलों में जगह मिली। आज उनका सम्मान पूरा देश करता है।
0: हाँ प्रिशा, तुम्हें पता है वो चाहती तो स्वतंत्रता के बाद एक अच्छा पद प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी कर सकती थी।
2: बिल्कुल दी, बिल्कुल।

0: कितनी खुशी का दिन है ना आज, सच में स्वतंत्रता की सांस का एहसास ही कुछ अलग होता है। आज लग रहा है जैसे मैंने फिर से जन्म लिया।
1: सच में मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
2: हाँ दीदी, सच में आज तो सांस लेने में आनंद आ रहा है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, हम आजाद हैं, आजाद देश के वासी हैं।
0: किसने रोका है तुम्हें? खुशी से चिल्लाओ, जोश से चिल्लाओ। अब हम गुलाम नहीं है किसी के, जो अपनी बात कहने से डरेंगे। बोलो मेरे साथ, हम आजाद हैं, आजाद देश के वासी हैं।
3: हम आजाद हैं, आजाद देश के वासी हैं।
0: हम आजाद हैं,
3: आजाद देश के वासी हैं।
2: दीदी, क्योंकि अब देश आजाद हो गया है तो आपको भी अब दिल्ली चले जाना चाहिए, क्योंकि अब वहीं से तो पूरा देश चलेगा।
0: नहीं, अब तो घर वापसी हुई है, देश आजाद हुआ है, पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। देश के ऊपर बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमें अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को खुद ही देखना होगा। मुझे एक अनाथालय बनाना है। देश की इस लड़ाई में बहुत से बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनको अच्छा जीवन देने के लिए हमें काम करना होगा।

0: दलितों के लिए हमें काम करना होगा, उन्हें समाज में सम्मान दिलाना होगा।
1: पार्वती, तुमने तीसरी कक्षा में अपनी शिक्षा छोड़ दी थी और देश के प्रति अपने को समर्पित कर दिया था, पर अब तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करके जो भी तुम्हारा सपना है उसे पूरा करना। प्रयागराज जाकर प्रयाग महिला विद्यापीठ से अपनी शिक्षा पूरी करो, वहाँ तुम्हारे लिए जो भी मदद बन पड़ेगी मैं करूँगी।
0: सच बताऊं तो प्रभा दीदी, मन में कसक थी कि अपनी शिक्षा को पूरा करूं, वरना तीसरी पास लड़की को कौन सुनेगा। आपने मेरा मार्गदर्शन करके मुझे अपना ऋणी बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा दीदी।
1: तुम मेरी बहन जैसी हो पार्वती, तुम्हारा अच्छा सोचकर मुझे सुख मिलता है। वैसे पार्वती, तुमने अपने विवाह के बारे में कुछ सोचा है? शिक्षा के बाद ही करना जो करना है।
0: प्रभा दीदी, विवाह तो हो ही चुका है देश की जिम्मेदारियों से। शिक्षा पूरी करने के बाद मुझे बहुत काम करना है दीदी, उसमें शादी की जिम्मेदारियां उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
2: वाह, पार्वती जी को शत शत प्रणाम। वो चाहती तो आजादी के बाद आसानी से राजनीति में आ सकती थी, सारी सरकारी सुख सुविधाओं का भोग कर सकती थी, पर उन्होंने दोबारा शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग चुना।
3: यही नहीं, उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक पैदल कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय विकास का कठिन रास्ता चुना। उन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भाग लिया। अनाथों के लिए बारगांव के पाड़ कमल गांव में रुकमणी लाठ बाल निकेतन की स्थापना भी की, और अनाथों, महिलाओं और बच्चों के लिए कस्तूरबा गांधी मातृ कुंठा नामक संघ की स्थापना की। और प्रशा, संबलपुर में उन्होंने निराश्रितों के लिए डॉक्टर संतराबाल निकेतन की स्थापना भी की।
4: जी भैया।
5: इतना ही नहीं प्रशा, इसके अलावा पार्वती गिरी जी ने जेल सुधार के लिए भी आंदोलन चलाया। वहीं स्वतंत्रता सेनानी रमा देवी चौधरी के साथ कोरापुट में अकाल से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा जाकर मदद की।
4: उन्हें अपनी जान की कतई चिंता नहीं थी क्या?
5: हाँ हाँ, उन्हें अपने जान की कतई चिंता नहीं थी। ऐसे ही थोड़ी उन्हें ओडिशा की मदर टेरेसा कहा जाता है।
4: तो आप भी मदर टेरेसा बनना चाहती हैं?
5: अरे नहीं नहीं, मदर टेरेसा जैसा जीवन जीना आसान नहीं है, और ना ही पार्वती गिरी जी जैसा। पर उनका 1% भी जीवन जी लिया और एक गांव भी या एक इंसान को भी सही मार्ग दिखा दिया ना, तो समझूंगी कि मैंने अपने देश और अपनी आत्मा के प्रति अपना कर्तव्य निभा दिया।
2: दीदी, आपके त्याग को कोई समझे ना समझे, पर मैं समझ गई हूँ। 17 अगस्त 1995 को पार्वती जी ने आखिरी सांस ली, और उनके सम्मान में सरकार ने 2016 में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का नाम पार्वती गिरी रखा।
5: हाँ।
2: वहीं 1998 में उड़ीसा राज्यपाल द्वारा संबलपुर विश्वविद्यालय से पार्वती गिरी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
3: बिल्कुल,
2: थोड़ी देर कर दी थी इस सम्मान के लिए, पर पार्वती गिरी जी को तो जीवन में कोई चाह ही नहीं थी, बस एक चाह के अलावा कि मेरी आखिरी सांस भी लोगों के लिए कुछ काम आ जाए। ऐसी थी पार्वती गिरी जी।
3: बहुत अच्छा समय बीता प्रिशा आप लोगों के साथ।
4: भैया, हम सबको भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ।
3: तो अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पार्वती गिरी जी पर बहुत सारी जानकारी एकत्रित करके एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ।
4: क्या बात है भैया।
3: और पूरी हो गई तो शैला, तुम्हें कष्ट देने जरूर आऊंगा, क्योंकि वो किताब मैं तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज तुमसे बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ। नमस्ते।
4: नमस्ते। नमस्ते।
2: मुझे लगता है कि पार्वती गिरी जी ने आज शिशिर भाई के जीवन और उनकी सोच को भी बदल दिया।

अभी आप सुन रहे थे नाटक पार्वती गिरी, लेखिका सुनीता अग्रवाल, निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे प्रज्ञा झा, अंशिका अवनी, दिशा सेन, राहुल दक्ष, मनिल मयंक मिश्रा, उर्मिला, निशा भारद्वाज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामलों को छिपाएं नहीं। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकालने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में भागीदारी की।

0: पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने नशा मुक्त भारत के लिए युवाओं से राष्ट्रीय अभियान का नेतृत्व करने की अपील की। पुदुचेरी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं से इस अभियान का दूत बनकर जागरूकता प्रसार में सहयोग का आह्वान किया। अमरीका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल ही में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने कहा कि अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देना और घरेलू विफलताओं का दोष भारत पर मढ़ना पाकिस्तान की नीति बन गई है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल हैं। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केरल में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के लिए 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है जबकि 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में 5,792 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में श्रूप नारंग खेलेंगे। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों के साथ कुल 39 पदक लेकर चौथे स्थान पर है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of the nation. Stressing the need to protect the youth from the menace of drugs, he said young people must understand the serious consequences of addiction. Mr. Modi reminded that the drugs ultimately ruin careers, disrupt family life and destroy the future of individuals. The Prime Minister urged the families not to hide cases of substance abuse due to social stigma. He said they should seek timely help.

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आपके साथ मैं हूँ ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई, तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू।
2: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
3: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है बट उस जगह को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जांपल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूँ कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट इजी।
2: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही हैं, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में हैं। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, आपने देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना

0: शुरू किया होगा
1: जी।
0: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोलकीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो आप गोलकीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं
1: जी। मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास, और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और वहाँ पे हॉकी, बैडमिंटन और जूडो है। तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि गाँव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहां जाना है। तो मेरे मम्मी जी को गठिया था उस टाइम पे, और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा, गाय भैंस का जो काम होता है, मैं पापा और भाई मिलके करते थे। तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगी। बट फिर मैं दादाजी के पास गई, और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूं तू हॉकी खेल। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था, क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है कैसे? तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है। उनकी जो वर्डिंग थी ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। और हम एक दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार मिलता था। तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है, तो मुझे खेलनी तो हॉकी है।
0: अच्छा
1: जी। फिर मैंने हॉकी की ट्रायल दी, और वहां मेरे फिजिकल टेस्ट हुए थे, क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट। तो वहां पे मैं सेकेंड आई थी, गई, मन नहीं लगा, क्योंकि वो लाइफ बहुत एक
0: गवर्नमेंट होती है ना
1: जी, डिसिप्लिन्ड। एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया, वो माइंड में था, तो काफी रोती थी। हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर।
0: क्या
1: से?
0: उम्र थी आपकी उस समय?
1: 13 साल की थी।
0: अच्छा जी। तो 13 साल की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया।
1: अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया, इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूँ और घर वापस चली जाऊँ। काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, खाना भी छोड़ दिया था खाना। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है, आप अच्छा। लेके जाओ। तो पापा लेने आए, और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने। मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा, बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी। मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ। तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा, मंडे को तू वापस जा रही है। मैंने बोला नहीं, मैंने छोड़ दिया है सबको, मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई हूँ। तो बोले कि नहीं बेटा, अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी। उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है बोल। तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रुपए गोलकीपर किट के कोच को देके आए हैं, क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे दो गोलकीपर हैं, तो मेरे पास साल में दो ही किट आती है, या तो आपको।
0: आपके पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना
1: जी? मेरे पापा जॉब करते थे, बट 8,000-9,000 रुपए सैलरी थी, और वो चीज मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रुपए ऑलमोस्ट 2 महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी, और मेरा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी। काफी रोई मैं, पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहां पे, और काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहाँ पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज किया।
0: आपने काफी गोल बचाए
1: जी। तो वहाँ जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे, उन्होंने मुझे आके 100 रुपए दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है। तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है मुझे।
0: लेकिन आपने जो शुरुआत की, जब उसके बाद आप साई अकेडमी गए, उसके बाद नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी, मतलब है ना, उस पर आपने एशिया कप खेला। ये जो आपने हॉकी के मैदान में गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सविता का क्या जज्बा होता है मन में?
1: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई, और हम गांव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया है। तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे, और एक आज लड्डू बांटूंगा। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया, आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे। तो सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है, बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गई कैंप में, और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो। तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी, तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मे भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादाजी मेरे पास

0: आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहाँ नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है। और काफी खुशी थी उनकी आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे, बट वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबर में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा 1 साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा, मैं पढ़ना
1: अच्छा,
0: स्टार्ट करूंगा।
1: क्या बात।
0: और आज वो हमारे साथ नहीं है, बट वो चीज सच हुई। 1 साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया। उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67 ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी। क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो खड़ी होती है गोल के आगे, सविता, वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन खासकर उन इंस्टांसेस की बात बताएं जब आपने जापान के गोल रोके, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने नौ नौ गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था और आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे?
0: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। मुझे मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी, बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं, वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं
1: नहीं
0: किया है।
1: किया
0: 1980 में बुलाया था बट वो एक इन्विटेशन था, है ना, टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा मैच था वो, मुझे आज भी याद है। और उस 1.5 ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बींग ए फर्स्ट गोलकीपर, प्रेशर सिचुएशन था, बट जब जब एक सेव करते हैं और पता है कि एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, तो पापा ने बोला बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है, तो मैं डायरी लिखती हूँ नॉर्मली। तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं। बस मैम, बहुत गोलकीपर की नॉर्मली लोगों को शायद लगता है कि गोलकीपर्स का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं। गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं, हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है। तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा एड की और कोचिज से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही, हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और इंडिया अपने पूल में लास्ट आया। और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जैसे मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है, बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से, वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को बोला पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे। मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे वो जरूर ये चीज को मेंशन करें। अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि हमारे एज ए टीम हमने बहुत काम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था और लास्ट क्वार्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे, बट उनको एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते हैं ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापिस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है, हार रहे हैं, तो कोई भी उस टाइम पे उनको एक था कि शायद हम
1: साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती
0: या दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा, हमें भी हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था। तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई और एक एक मिनट एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। और लास्ट क्वार्टर में उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले और मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे, तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता।
1: हाँ, आपके जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है, और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं अभी थी जिनको तीन बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है। सविता, आप तो कैप्टन भी रही है ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या?
0: डेफिनेटली, क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बट उसके साथ बींग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एड होती है, तो प्रेशर होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए है, तो ऑफकोर्स कैप्टन इज है
1: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली जॉब तो है। अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट्स में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं। इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
0: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ, और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि मैं छोटी थी तब था मुझे, बट 5th-6th क्लास तक था कि कुछ गांव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है। और आज के टाइम पे ये है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है तो इट्स मेक मी स्ट्रेस, कि मुझे उतना पसंद नहीं, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है,
1: ज्यादा पसंद करती है। सविता, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। लेकिन अंत में देश की बेटियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मैं हर एक उस बेटी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करें लाइफ में, और बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ बहुत हार्डवर्क करें, और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएं, उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप मैदान पे उतरेंगी, जो आप गोल बचाती आई हैं, वैसा ही आप करिश्मा दिखाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम।
2: हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। ये कार्यक्रम DD न्यूज के सहयोग से प्रस्तुत किया गया।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है 3:26 और ये समय है कार्यक्रम फिल्म म्यूजिक का। आपके साथ हूं मैं ज्योति भारती।

0: नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है
1: रेडियो किड्स।
0: और इस कार्यक्रम में आज मैं जुड़ी हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सुहानी। चलता फिरता बातों का पिटारा है, एक दोस्त है मेरा जो मुझे बहुत प्यारा है, दिल के बहुत करीब है, जिसे खोना मुझे किसी हाल में ना गवारा है। एक दोस्त है मेरा जो मुझे बहुत प्यारा है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ है हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। तो आइए जानते हैं इनसे इनका नाम।
2: मेरा नाम सोनल है और मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम पवित्रा है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम कृतिका यादव है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम प्रज्ञान है, मैं केजी 8 में पढ़ता हूँ।
0: तो दोस्तों आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो चलिए, अभी हमने सुना एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और मुझे उससे याद आया कि आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्ती पर। और दोस्ती एक ऐसा विषय है जिससे हम सभी जुड़ सकते हैं, जिसके बारे में हम सभी बहुत बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो एक एक करके बताओ कि आपके भाई स्कूल में कौन कौन से दोस्त हैं, और अपने कुछ दोस्ती के किस्से बताओ। तो आइए पहले सुनते हैं हम सोनल से। हेलो सोनल।
1: हेलो।
0: तो आपके स्कूल में कौन कौन से दोस्त हैं?
1: मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं।
0: अच्छा, तो क्या ये आपके बचपन के दोस्त हैं या हमेशा आप अपने नए नए दोस्त बनाते रहते हैं?
1: कुछ बचपन के भी दोस्त हैं और नए नए दोस्त भी बनाती हूँ मैं।
0: तो कैसे दोस्त हैं आपके? पढ़ाकू दोस्त है, शैतान दोस्त है, कैसे हैं?
1: हर तरह के दोस्त, पढ़ाकू भी है, शैतान भी है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई करनी हो तो भी दोस्त है, शैतानी करनी हो तो उनके लिए भी दोस्त है ना?
1: बिल्कुल सही।
0: अच्छा, तो चलो पवित्रा से पूछते हैं। तो पवित्रा, आप कौन सी क्लास में हो?
2: मैं कक्षा 4 में हूँ।
0: तो आपको दोस्त बनाना पसंद है?
2: हाँ, बहुत पसंद है।
0: अच्छा, तो क्या आपने कभी अपने दोस्तों के साथ शैतानी वगैरह की है? कभी टीचर से डांट पड़ी है आपको?
2: बीच बीच में पढ़ती है।
0: अच्छा, बीच बीच में पढ़ती रहती है। अच्छा पवित्रा, तो आपके दोस्त कहाँ कहाँ है? स्कूल में है, ट्यूशन में है, आप जहाँ खेलने जाते हो वहाँ है?
2: मेरे दोस्त हर जगह है।
0: अरे वाह पवित्रा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए जानते हैं कृतिका से। हेलो कृतिका।
3: हेलो।
0: तो आप बताइए कि आपको अपने दोस्त कैसे लगते हैं और आपका दोस्ती पर क्या कहना है?
3: मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं और मैं उनके साथ शैतानी भी करती हूँ, लेकिन टीचर से फिर थोड़ी सी पिटाई भी खाती हूँ।
0: ये तो हम सभी के बचपन के किस्से हैं, हम सभी को डांट पड़ी है कभी ना कभी स्कूल में। तो देखो दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बहुत ही नन्हे मुन्ने प्यारे चुनमुन से दोस्त भी जुड़ चुके हैं, और वो इतने छोटे हैं कि मैं तो यही सोच रही हूँ कि वो आखिर क्या हमें सुनाने जा रहे हैं। लेकिन चलो उससे पहले करते हैं उनसे बात। हेलो प्रज्ञान।
4: हेलो।
0: अच्छा प्रज्ञान, जैसे कि आज हम दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपके भी स्कूल में दोस्त है?
4: स्कूल में भी, ट्यूशन में भी है।
0: अरे वाह, तो आपको दोस्त बनाना बहुत पसंद है?
4: हाँ।
0: अच्छा प्रज्ञान, वैसे हमारी जो दोस्ती होती है ना, वो तो हमारे मम्मी पापा से भी होती है, हमारे भाई बहन से भी होती है। तो क्या आपको अपने मम्मा और पापा में से कौन ज्यादा पसंद है, ये बताओ मुझे।
4: पापा मेरे दोस्त बनते हैं।
0: अच्छा, पापा आपके साथ दोस्तों की तरह खेल भी खेलते हैं?
4: जब पापा की ऑफिस की छुट्टी होती है तब मेरे साथ खेलते हैं।
0: अरे वाह, तो प्रज्ञान से तो हम बहुत सारी बातें करेंगे ही, लेकिन चलो उससे पहले जान लेते हैं कि प्रज्ञान आज आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाने वाले हो, आज आप हम सभी के लिए क्या लाए हो?
4: मेरे दोस्तों, मैं कभी चाहता चुन्नू मुन्नू की, चुन्नू मुन्नू दे तो भाई, रसगुल्ले में हुई लड़ाई, झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को टाट लगाई, आधा तुम लोग मुन्नू बेटा, आधा तुम लोग चुन्नू बेटा, कभी भी नहीं छोड़ना, आप हमें के रहना है।
0: चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, ये कविता तो हम सब ने बचपन में गा रखी है, याद कर रखी है, स्कूल में गा रखी है। और इससे हमें एक बात तो पता चलती है कि हमारे दोस्त बस स्कूल में ही नहीं बनते, हमारे दोस्त तो हमारे भाई बहन भी होते हैं, हमारे दोस्त तो हमारे माता पिता भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, जिनके साथ हम कंफर्टेबल फील करें, जिनके साथ हम अपनी दिल की बातें कर सके, जो हमें समझे, वही तो होते हैं हमारे दोस्त, है ना रेडियो किड्स?
5: हाँ।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रज्ञान का मन पसंदीदा गाना, जो कि

0: अच्छा अब मैं देख रही हूँ कि काफी देर से मैं ही बोले जा रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, ये माइक आप सबको सौंप देती हूँ। आप एक एक करके आना और बताना कि आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या लाए हो।
1: सुहानी दीदी, क्या मैं आपको सुनाऊँ?
0: बिल्कुल पवित्रा, मैं तो इंतजार कर रही हूँ।
1: मेरी कविता का नाम हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जनन की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। अपना पद कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हम हिमगिरी पे चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। जनन की जय जय बोलेंगे, अपना सिर बाट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे।
0: अरे वाह पवित्रा। तो दोस्तों अभी बात हो रही थी दोस्ती की, तो आइए सोनल से सुनते हैं हम एक कहानी, वो भी दोस्ती के ऊपर।
2: जब दोस्ती की बात हो ही रही हो और कृष्णा सुदामा की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्त वो है जो बिना कहे अपने दोस्त की हर मुश्किल आसान कर दे। कुछ ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उन्होंने अपने गरीब मित्र की मित्रता का भी मान रखा और उनकी गरीबी को भी हर लिया था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी एक मिसाल के रूप में देखी जाती है। श्री कृष्ण एक राज परिवार के राजकुमार थे और सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता अटूट थी। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण राजा बन गए और सुदामा का विवाह हो गया और वे गांव में ही धर्म कर्म के कार्य करके अपना जीवन यापन करने लगे। विवाह के पश्चात उनके जीवन में कई सारी परेशानियां आने लगी। जब सुदामा की पत्नी को पता चला कि राजा कृष्ण सुदामा के मित्र है, तो उन्होंने श्री कृष्ण से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कहा, मदद मांगने को कहा और सुदामा को श्री कृष्ण से मिलने भेजा। अपनी पत्नी की जिद के आगे सुदामा की एक ना चली और वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका को देख वे हैरान रह गए। वह सभी लोग सुखी और संपन्न थे। सुदामा किसी तरह कृष्ण जी के बारे में पूछते हुए उनके महल तक पहुंचे और जब पहरेदारों ने उनसे पूछा कि श्री कृष्ण से क्या काम है, तो उन्होंने बताया कि कृष्ण मेरे मित्र है। ये जानकारी द्वारपालों ने जब श्री कृष्ण को दी कि कोई सुदामा नामक ब्राह्मण उनसे मिलने आया है, तब राजा कृष्ण अपने मित्र के आने की खबर पाकर स्वयं ही नंगे पैर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। उनके पैरों को अपने हाथों से धोने लगे। नंगे पैर होने के कारण सुदामा के पैरों में कांटे चुभे थे। भगवान श्री कृष्ण ये देख रोने लगे। फिर कन्हैया ने अपने बाल सखा से पूछा कि मेरे लिए क्या भेंट लाए हो, तो पहले सुदामा ने संकोच किया, फिर एक पोटली श्री कृष्ण को दी जिसमें सूखे चावल थे। श्री कृष्ण ने उन चावलों को बड़े शौक से खाया। इसीलिए जब भी दोस्त की बात होती है तो श्री कृष्ण और सुदामा की मिसाल दी जाती है।

मेरे खामोशी को पहचान लेता है, बिना कुछ कहे सब कुछ जान लेता है, मेरे गमों को भी बांट लेता है और कभी कभी बेवजह डांट लेता है। जीवन के हर पड़ाव में मेरा मजबूत सहारा है। एक दोस्त है मेरा जो मुझे बहुत प्यारा है। तो रेडियो किड्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों की, अपने दोस्तों के। तो मैं आपसे एक एक करके पूछना चाहती हूँ कि आप बताओ कि आप एक अच्छा दोस्त कैसे बन सकते हो, एक अच्छे दोस्त की क्या क्या निशानी होती है। तो चलो शुरू करते हैं।

0: कैसे?
1: अच्छे दोस्त की निशानी होती है कि वो अपने दोस्तों की मदद करें और उन्हें खुशहाल रखें।
0: अरे वाह, मदद करना और अपने दोस्तों को सदैव ही खुश रखना, ये तो बहुत अच्छी बात बोली। तो चलो पवित्रा से जानते हैं। पवित्रा, आप बताओ कि आप खुद एक अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हो?
2: मैं अपने दोस्तों को खुश रख सकती हूँ।
0: और आप वो उन्हें खुश कैसे रखोगी?
2: अच्छे काम करके और उनकी मदद करके।
0: बिल्कुल सही पवित्रा। तो चलो अब चलते हैं सोनल के पास।
3: मेरा भी यही कहना है कि हम अपने दोस्तों की मदद करें। जब वो कोई होमवर्क या कुछ भी मदद मांगे तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनका साथ भी देना चाहिए किसी बात पर।
0: अभी सोनल ने बात की कि हमें अपने दोस्तों का साथ भी देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं तुमसे पूछती हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त कोई गलत काम कर रहा होगा तो क्या आप उसका साथ दोगे?
3: नहीं, जब वो गलत काम करेगा तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि नहीं ये गलत है और उसको सही राह पर ले जाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही पवित्रा, आपका क्या कहना है इस पर?
2: हमें उसको गलत काम करने से रोकना होगा और उसको अच्छे काम बताने होंगे।
0: और कृतिका, आप?
1: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हमें उसे बुरे काम करने से रोकना चाहिए और अच्छे काम करने के लिए बोलना चाहिए।
0: अरे वाह, तो हमारे रेडियो किड्स तो बहुत ही ज्यादा समझदार है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने इन शब्दों पर हमेशा खड़े रहेंगे और जो यहाँ आप माइक के सामने बोल रहे हो, माइक के पीछे भी वो सब करोगे। और मेरे छोटे प्रज्ञान दोस्त, आप बताओ कि आप अपने दोस्तों को कैसे खुश रखोगे?
2: उनके साथ लड़ाई नहीं करूंगा, पास प्यार से लाऊंगा।
0: मैं उनके साथ लड़ाई नहीं करूंगा और मैं उनके साथ प्यार से रहूंगा। अरे वाह प्रज्ञान दोस्त, आपने ये बहुत अच्छी बात करी है। तो मुझे आप यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हो कि आप अपने दोस्तों के साथ प्यार से रहोगे?
2: हाँ।
0: अरे अरे अरे, मेरे सारे दोस्त कुछ ना कुछ कहानी कविता गीत बोल के चले गए, लेकिन इतनी देर से कृतिका कुछ बोल ही नहीं रही। कृतिका, आप भी बताओ कि आज आप अपने श्रोताओं के लिए क्या लाई हो?
1: मैं एक कविता लाई हूँ।
0: एक कविता लाई हो, उस कविता का नाम क्या है?
1: दोस्त पर कविता है।
0: दोस्त पर कविता है, तो चलो सुनाओ।
1: जात पात ना देखे दोस्ती, ऊंच नीच ना माने दोस्ती, सब रिश्तों से प्यारा रिश्ता, दोस्ती का ये न्यारा रिश्ता। जब मैं हंसता दोस्त भी हंसता, जब मैं रोता दोस्त भी रोता, सुख दुख में हम साथ ही रहते, वादा हमेशा पूरा करते। दोस्ती का हम पाठ है पढ़ते, जीवन पथ पर आगे बढ़ते, हम आपस में कभी न लड़ते, दोस्ती में हम प्यार से रहते।
0: तो आइए सुनते हैं कृतिका का फेवरेट सॉन्ग जो है।

तो दोस्तों, जैसे कि आप सुन सकते हैं कि हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हर सप्ताह आते हैं हमारे लिए और आप सभी श्रोताओं के लिए कहानी, कविता, गीत लाते हैं और बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाते हैं और बहुत सारा ज्ञान बटोर के जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी रेडियो किड्स का हिस्सा बने, या आपके जानकार में कोई है जो हमारे साथ आकर रेडियो किड्स में शामिल होना चाहता है, तो आप अपनी जानकारी हमें FMG Radio Kids@gmail.com पे भेज सकते हैं।

0: हैं और आप भी रेडियो किड्स का हिस्सा बन सकते हैं।
1: तो आज हमने बात करी दोस्ती पर और हमने जाने अपने दोस्तों से उनकी दोस्ती के किस्से और सुनी बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे गाने। तो मुझे तो ये कार्यक्रम आज का बहुत पसंद आया और अगले सप्ताह भी हम फिर मिलेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले न छिपाएं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकालने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मूज जल डमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित जनगणना कर्मी 17 अगस्त से 15 सितंबर तक गृह सूचीकरण अभियान और आवास जनगणना का संचालन करेंगे। केरलम में मूसलाधार वर्षा से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। प्रभावित इलाकों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिंगली वेंकैया को 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष वर्ग में अवतार सिंह और यश घंगास को हार का सामना करना पड़ा। साइकिलिंग में हर्षवीर सिंह सेखो और दिनेश कुमार भी पुरुषों की 40 किलोमीटर पॉइंट्स रेस के क्वालिफाइंग दौर से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है शाम के 4:10। और दोस्तों आज शाम कार्यक्रम जो प्रसारित होंगे उसकी रूपरेखा आपको बताते हैं। अभी आप सुनेंगे फिल्म म्यूजिक, 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, और 7:10 पर कार्यक्रम होगा सुर्खियों में। उसके बाद 7:25 पर कार्यक्रम रहेगा सांझ ढले, और 8:10 पर समय रहेगा कार्यक्रम मधुरिमा का। इसके अलावा आज शाम FM गोल्ड पर आप सुनेंगे कार्यक्रम 10:30 पर हर सिंगार, और 11:40 पर समय रहेगा गीत मेरे मनमीत का।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
4: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
3: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
4: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म 3 देवियां से।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म म्यूजिक, अब सबक है कार्यक्रम एम्प्लॉयमेंट न्यूज का।
1: वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज, योर अल्टीमेट गेटवे टू करियर सक्सेस। आई एम लूसी गैब्रियल एंड आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू द लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट अपडेट टू हेल्प यू नेविगेट द कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। We begin with
2: the Indian Coast Guard has invited applications for filling up various civilian posts on deputation, including short-term contract basis, for an initial period of 2 years. The vacancies include civilian staff officer, civilian staff officer logistics, section officer, chief draftsman, personal assistant and assistant. The posts are classified under General Central Service Group A and Group B categories, with pay levels ranging from level 6 to level 11. Vacancies are available at locations including Gopalpur, Kochi, Srivijayapuram, Porbandar, Tuticorin, Mumbai, Chennai, Vishakhapatnam and other Coast Guard stations. Eligible officers should submit applications in the prescribed format along with complete ACRs and APA dossiers of the last 5 years and educational qualifications through proper channel within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For detailed notification and application format, kindly visit the official website at www.indiancoastguard.gov.in. The Income Tax Appellate Tribunal, ITAT, Ministry of Law and Justice, Government of India, has invited online applications from Indian citizens for filling up vacancies for Senior Private Secretary and Private Secretary, Group B, gazetted in various ITAT benches across India. The vacancies include 22 posts of Senior Private Secretary and 20 posts of Private Secretary. The posts carry pay level 8 for Senior Private Secretary and pay level 7 for Private Secretary. Candidates must possess a degree from a recognized university, speed of 120 words per minute in English shorthand and working knowledge of computers including MS Office, Excel and related software. The maximum age limit is 35 years with relaxations as per government rules. Selection will be through written examination, skill test and personnel interview. For details, kindly look up the website at www.itat.gov.in. I repeat, it is www.itat.gov.in. The Office of the Development Commissioner of Handlooms, Ministry of Textiles, Government of India has invited applications from eligible officials for filling up various general central service posts on deputation basis. The vacancies include 3 posts of assistant, 3 posts of stenographer grade 1 and 2 of upper division clerk. The posts carry pay scales as per the 7 CPC pay matrix, with assistant and stenographer grade 1 posts in level 6. The upper division clerk post in level 4. Eligible candidates should submit their applications through proper channel in the prescribed format within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For detailed eligibility criteria and application format, kindly visit the official website, that is at www.handlooms.nic.in. The Department of Science and Technology, DST, Ministry of Science and Technology, Government of India, has invited applications for 2 temporary posts of Scientific Attaché Group A, gazetted on deputation, including short-term contract basis, 1 each at the Indian missions in Tokyo, Japan and Berlin, Germany. The posts carry pay level 13A for a period of 3 years. Eligible applicants include scientists, technologists from central or state governments, universities, recognized research institutions, autonomous bodies and similar organizations. Candidates should possess a doctorate degree in natural or agricultural sciences or master's degree in engineering, technology or medicine, along with 12 years experience in research and development, science and technology activities, including 6 years in managerial roles. The maximum age limit is 56 years. Interested candidates must apply online within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly do refer to the website at www.recruitment.dst.gov.in, or you could also go on to www.dst.gov.in. And now we have the Employment News in Hindi.
3: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। IREL इंडिया लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उपप्रबंधक तकनीकी औद्योगिक सुरक्षा, सहायक प्रबंधक तकनीकी औद्योगिक सुरक्षा, सहायक प्रबंधक तकनीकी इंस्ट्रूमेंटेशन, उप महाप्रबंधक तकनीकी आईटी, प्रबंधक तकनीकी आईटी, उप प्रबंधक तकनीकी आईटी तथा उप प्रबंधक तकनीकी जियोलॉजी। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए नियम, शर्तें, वेतनमान, आरक्षण और तैनाती के स्थान की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं विभाग की वेबसाइट www.irel.co.in। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में लेखाधिकारी और सहायक रजिस्ट्रार के पदों को भरा जाना है। शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता, स्कोर कार्ड, चयन प्रक्रिया आदि का विवरण और ऑनलाइन आवेदन भरने का लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.svpuat.edu.in। विश्वविद्यालय का भर्ती पोर्टल www.recruitmentsvpuat.in को यदि आप देखेंगे तो उस पर भी ये तमाम जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आप सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9429426467। अंतिम तिथि है आवेदन की 3 अगस्त 2026। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, एसोसिएट प्रोफेसर खेल चिकित्सा, असिस्टेंट प्रोफेसर कोचिंग एथलेटिक्स। गैर शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं परीक्षा उपनियंत्रक, सहायक लाइब्रेरियन, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक अनुभाग अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी सहायक और नर्सिंग अटेंडेंट। आवेदन फॉर्म, शुल्क, योग्यता के नियम, आवेदन कैसे करें आदि जैसी जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट nsu.ac.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 60 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 24 पद अनारक्षित हैं, 9 पद अनुसूचित जाति के लिए, 5 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 16, EWS वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध URL लिंक पर आप जा सकते हैं। ये लिंक है fr.iitism.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 सितंबर 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
4: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

दोस्ती जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता जिसे हम खुद चुनते हैं। याद है स्कूल के वो दिन जब अगस्त शुरू होते ही फ्रेंडशिप बैंड खरीदने की होड़ लग जाती थी और सबसे बड़ा सवाल होता था, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? अगर किसी और को पहले बैंड बांध दिया तो बस आधे दिन की नाराजगी तय, लेकिन अगले ही पल सब फिर पहले जैसा।

0: तारीख चाहे 30 जुलाई हो या अगस्त का पहला रविवार, दोस्ती का मतलब हमेशा एक ही रहता है, वो शख्स जो आपकी सबसे अजीब हरकतों पर सबसे ज्यादा हंसता है, आपकी हर कमजोरी को जानता है, फिर भी हर मुश्किल में सबसे पहले कहता है चल मैं हूं ना। इसलिए आज किसी पुराने दोस्त को एक छोटा सा संदेश जरूर भेजिएगा। श्रोताओं, आप सभी को अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे अपने कार्यक्रम परिक्रमा का, क्योंकि हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और आपका पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का भी समय हो गया है। तो श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक खबर की सुर्खियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना।
1: Hi Jaya, and yes, a very happy Friendships Day to each and every listener of ours. You're tuned to Parikrama on Akashwani Gold at 100.1 MHz. Let's begin this program with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat.
0: नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए।
1: Heavy rains continue to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps.
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार।
1: In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open.
0: और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर।
1: And now let's take you to our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are going to talk about World Anglo-Indian Day and also Nasha Mukt Bharat Abhiyan.
0: भारत वह देश है जहां हर भाषा एक कहानी है, हर संस्कृति एक पहचान और हर समुदाय इस देश की खूबसूरत तस्वीर का एक अनोखा रंग भरता है।
1: And I believe the real beauty of India lies in the countless communities that over generations had woven their unique stories into the fabric of this nation.
0: आज वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे पर हम एक ऐसे ही खास समुदाय का जश्न मना रहे हैं, एक ऐसा समुदाय जो भले ही संख्या में छोटा हो लेकिन भारत में उसका योगदान हम में से कई लोगों की सोच से कहीं ज्यादा है।
1: Absolutely, but what exactly is World Anglo-Indian Day? It is observed every year on 2nd of August, which is today, marking the birth anniversary of Frank Anthony, born in 1908, the towering leader of the Anglo-Indian community in independent India.
0: यानी कि एक वकील, शिक्षाविद, सांसद और भारत की संविधान सभा के सदस्य के तौर पर फ्रैंक एंथनी ने अपना जीवन इस बात को सुनिश्चित करने में लगा दिया कि आधुनिक भारत के इतिहास में एंग्लो इंडियन समुदाय को उसका उचित स्थान मिले।
1: Absolutely, but who are the Anglo-Indians? The answer lies not today, but in history. The Anglo-Indian community traces its roots to the families of mixed Indian and European ancestry, particularly during the British period in India.
0: समय के साथ उन्होंने एक अनोखी पहचान बनाई, दिल से भारतीय लेकिन यूरोप से प्रभावित परंपराओं को अपनाने वाले। दशकों तक एंग्लो इंडियन समुदाय ने भारत के रेलवे, डाक सेवा, कस्टम, रक्षा संस्थानों और शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई।
1: Indeed, places like Kolkata, Chennai, Bengaluru, Lucknow, Secunderabad and also the unique Anglo-Indian settlement in Mekkulsiganj, McCluskeyganj is the present-day Jharkhand that became distinctive. And speaking of the same, did you know it was established in the 1930s as homeland for the Anglo-Indian community? Nicknamed the Mini London of India, it became a place where Indian landscapes met European architecture and where generations grew up celebrating both Indian and also Western traditions with equal joy.
0: बिल्कुल तन्वी, और जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान बनाने वालों ने एंग्लो इंडियन समुदाय की खास परिस्थितियों को समझा। कई सालों तक भारत के राष्ट्रपति सदन में एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते थे। हालांकि 2020 में 104वें संविधान संशोधन के साथ नॉमिनेशन का यह प्रावधान खत्म हो गया, फिर भी यह भारत के संवैधानिक इतिहास का एक अहम हिस्सा बना हुआ है।
1: You know what's wonderful about communities like the Anglo-Indians? They remind us that identity doesn't have to fit into neat little boxes. You can love roast dinners and even biryani, Christmas carols and Bollywood songs all together, English literature and Indian festivals. And that's, to be honest, real beauty of our beloved India. And as the Nobel laureate Rabindranath Tagore beautifully said, the highest education is that which does not merely give us information, but makes our life in harmony with all its existence.
0: बिल्कुल। तो आज वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे पर आइए सिर्फ एक समुदाय से कहीं ज्यादा का जश्न मनाएं, आइए खुद भारतीयता के विचार का जश्न मनाएं। वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे की शुभकामनाएं। और अब हम बात करते हैं अपने डेटलाइन 2 यानी कि नशा मुक्त भारत अभियान पर। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलत फैसला चुपचाप किसी के सपने कैसे छीन सकता है? किसी होनहार छात्र या अच्छे खिलाड़ी के बारे में सोचिए जिसका भविष्य अचानक बदल जाता है। कभी कभी यह सब उत्सुकता के एक पल या किसी बुरी संगत से शुरू होता है।
1: Absolutely. That's why today's message matters to every Indian family. As India moves towards the dream of a Viksit Bharat, Prime Minister Narendra Modi has urged the nation's youth to stay physically fit, mentally strong, and also away from addiction.
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए हर रविवार को जागरूकता गतिविधियों के साथ 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान की घोषणा की।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप।
1: The Prime Minister also appealed to the families not to stay silent out of fear or social stigma, but to seek timely help and encourage open conversations.
0: और प्रधानमंत्री ने अचानक अलग थलग पड़ जाने, अजीब व्यवहार या फिर बार बार पैसे मांगने जैसे चेतावनी वाले संकेतों पर भी जोर दिया है और माता पिता से कहा कि वे इन्हें जल्दी पहचाने।
1: मिस्टर मोदी फर्दर कॉल्ड अपॉन टीचर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, सेइंग दैट क्लासरूम्स आर वेयर नॉट ओनली नॉलेज इज बट ऑल्सो वैल्यूज आर नर्चर्ड।
0: बिल्कुल, और इस अभियान को पहले ही बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें देश भर की 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवा शामिल हुए हैं। यह इस बात की एक जबरदस्त याद दिलाता है कि विकसित भारत का निर्माण सिर्फ टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, बल्कि स्वस्थ सोच, आत्मविश्वास से भरे युवाओं और जिम्मेदार नागरिकों से होता है।
1: After all, every young life saved from addiction is another step towards a stronger, brighter and Viksit Bharat.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि आज उनके पास क्या कुछ खास है।
1: So let's begin with Puducherry. The three-day Manifest International Dance Film Festival concludes today, leaving Puducherry immersed in the rhythm, movement and visual poetry of dance on screen. South Asia's only annual International Dance Film Festival offered audiences a rare opportunity to experience some of the finest short dance films from around the world. More on this from our correspondent.
3: The concluding day of the festival began with a creative moment for children workshop conducted by Mumbai-based dancer and educator Melita D'Souza. Through improvisation, games and collaborative exercises, the workshop encouraged the young participants to explore movement, teamwork and creative expression. Later, Odissi dancer, teacher and researcher Rekha Tandon led a workshop titled Dancers Yoga. The workshop introduced participants to movement as part to awareness inspired by Indian classical dance, yoga and contemplative philosophy. The evening program features youth, a curated package of international short dance films from Finland and China. The films explore imagination, identity, youth, cultural inheritance, self-discovery and contemporary interpretations of traditional rituals through movement and visual storytelling. The festival also presents a 57-minute showcase of Asian dance films from India, Hong Kong and the United States. The selection brings together stories of tradition, memory, emotion and environmental awareness. The festival will conclude with the performance transition followed by a closing gathering of filmmakers, dancers, workshop facilitators and delegates. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashvani News, Puducherry.
0: और अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। सबका साथ सबका विकास, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा प्राथमिकता देते हैं। छत्रपति संभाजीनगर जिले के एक किसान लक्ष्मण अहेर ने अपनी खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़कर स्वयं का विकास तो किया ही, साथ ही अपने आसपास के सभी किसानों को भी आधुनिक खेती का मार्ग दिखाकर विकास के मार्ग पर आने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रधानमंत्री के इस मंत्र को भी यथार्थ किया है। तो सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
4: किसी ज्ञान को केवल अपने तक सीमित रखने के बजाय उसका प्रसार करने से अपने साथ साथ दूसरों का भी विकास होता है। छत्रपति संभाजीनगर जिले के किसान लक्ष्मण आहिर ने इसी बात को अपनी जीवन में उतारा और सफलता प्राप्त की। अपने इसी अनुभव को लक्ष्मण आहिर ने आकाशवाणी के साथ साझा किया।
5: खेती की शुरुआत मेरे लिए आसान नहीं थी। कम उत्पादन, बढ़ती लागत, जल संकट और मौसम की अनिश्चितता जैसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। हमने अपने ही गांव में 10 एकड़ जमीन 10 वर्ष की अनुबंध भर ली। इससे कुल 3 हेक्टेयर अनार, 1 एकड़ मौसमी, पपीता, खरबूज जैसी फसल खेती की संपूर्ण क्षेत्र में 3 खेत तालाब बनाकर खेती में ड्रिप सिंचाई, प्राकृतिक मल्चिंग, सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग, केचुआ खाद तथा एकीकृत कीट प्रबंध अपनाकर भरपूर उत्पादन प्राप्त किया। नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना के अंतर्गत संरक्षित खेती घटक के माध्यम से हमने 2 एकड़ क्षेत्र में शेडनेट हाउस सफलतापूर्वक स्थापित किया। कोरोना के नियम का पालन करते हुए कृषि विभाग की सहायता से किसान से उपभोक्ता प्रत्यक्ष बिक्री का कौशल प्राप्त कर फार्मर टू कस्टमर बिक्री से अच्छा मुनाफा प्राप्त कर लिया। खेती में अपनाई गई तकनीकों को अन्य किसानों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आसपास के किसानों को अपनी खेती में बुलाकर विभिन्न प्रयोग दिखाए और उन्हें आधुनिक तरीकों से खेती करने के लिए प्रेरित किया। इन सभी कार्यों को देखते हुए महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग ने वर्ष 2020 में युवा किसान पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।
4: लक्ष्मण आहिर की तरह हर एक सफल किसान ने अपनी सफलता की कुंजी दूसरों के साथ साझा करने की आवश्यकता है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
1: And from Maharashtra, let's move towards Goa. The Directorate of Skill Development and Entrepreneurship has launched a new initiative to promote self-employment among young people in Goa. Under the Mukhyamantri Swayam Rozgar Yojana, business training has been introduced in skill development programs across all 10 government industrial training institutes, or we say ITIs, in the state. A report.
6: As part of the program, 48 ITI instructors completed a 6-day faculty mentorship development program. They have been trained to guide students who want to start their own businesses. More than 1,600 ITI trainees also took part in entrepreneurship awareness programs. They learned about the business planning, innovation, startup opportunities, financial assistance, and self-employment schemes. The initiative aims to increase skilled youth to become job creators instead of only job seekers. It also reflects the government's commitment to promoting self-employment and supporting Goa's economic growth. Today, government ITIs are going beyond traditional vocational training. Along with technical skills, trainees are also learning digital skills, business management, and how to build successful careers through employment or self-employment. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
0: तो पहले हम पुदुचेरी में थे, फिर महाराष्ट्र गए, गोवा गए और अब चलेंगे छत्तीसगढ़, और इसलिए तो हमारे इस कार्यक्रम का नाम परिक्रमा है। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की, जो अपने घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के जंगलों में अनेक तरह के वन्य जीव भी निवास करते हैं और इन वन्य जीवों की सुरक्षा और जंगलों की अवैध कटाई पर रोक लगाने के लिए अब आधुनिक तकनीक की सहायता ली जा रही है। सुनिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
7: बस्तर वन मंडल में जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन से हाईटेक निगरानी शुरू की गई है। इस तकनीक के चलते रात के अंधेरे में भी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस ड्रोन घने अंधकार में भी बॉडी हीट के आधार पर जानवरों या संदिग्ध लोगों को आसानी से खोज लेते हैं। इससे भालू, तेंदुआ, हाथी सहित अन्य वन्य जीवों की गतिविधियों की सटीक जानकारी मिल रही है। वन विभाग इस तकनीक का उपयोग मानव और वन्य जीवों के बीच होने वाले संघर्ष को कम करने के लिए भी कर रहा है। जब भी कभी जंगल से लगे गांवों के पास हाथियों या अन्य जंगली जानवरों की मौजूदगी की सूचना मिलती है तो थर्मल ड्रोन से उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाया जाता है। इसके आधार पर ग्रामीणों को सतर्क कर दिया जाता है, जिससे जन धन की हानि की आशंका कम हो जाती है। इसके अलावा जंगलों में अवैध कटाई और लकड़ी की तस्करी पर भी थर्मल ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है, जिससे इस पर प्रभावी नियंत्रण पाने में मदद मिली है। संदिग्ध गतिविधियों का पता चलते ही वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। इस तरह से आधुनिक तकनीक छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में बहुत मददगार साबित हो रही है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से विकल्प शुक्ला।
1: And from Raipur, let's move towards Cuttack. In a major boost to rural digital connectivity in Odisha, more than 50,000 villages of the state are expected to have high-speed internet connectivity over the next 3 years. The initiative aims to strengthen rural digital infrastructure and improve access to online public services. More on this from our correspondent.
8: To accelerate digital transformation in rural areas, the Electronics and Information Technology Department of Odisha Government has signed an agreement with the Digital Bharat Nidhi, Department of Telecommunications, Government of India and Bharat Sanchar Nigam Limited for the implementation of the BharatNet Phase 3 program. Under the amended BharatNet program, the center will invest more than 3,384 crore to upgrade 6,799 gram panchayats with the IPMPLS, a high-performance networking technology and a ring topology network. The project also aims to expand fiber-to-the-home connectivity to rural households, enabling high-speed internet access in over 50,000 villages across Odisha in the next 3 years. Optical fiber connectivity hubs at the block and gram panchayat levels will be established under the project, with each block and panchayat functioning as a data exchange center. From the panchayat's fiber connection will be extended to individual households. This initiative will accelerate digital inclusion, improve access to e-governance, education, healthcare, and create new opportunities for every village in Odisha. For Parikrama with Nirmalya Behera, this is Smriti Rekha Tarnia for Akashvani Cuttack.
0: अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की हलचल। तो बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है और यह तन्वी का पहला PWF वर्ल्ड टूर खिताब है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताई जू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। अब हम याद करेंगे

0: रसा में। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जया और तन्वी को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्तों का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले ना छुपाएं। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना आवश्यक है। पंजाब की 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा ना करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकालने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.censet.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित जनगणना कर्मी 17 अगस्त से 15 सितंबर तक गृह सूचीकरण अभियान और आवास जनगणना का संचालन करेंगे। इस दौरान पोर्टल पर भी दी गई जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान देश से 100 से अधिक जीआई पंजीकृत हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादकों का प्रदर्शन किया जाएगा। देश के कोयला उत्पादन में जुलाई 2025 के मुकाबले जुलाई 2026 में 7.51% की बढ़ोतरी हुई है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जुलाई में देश में कुल कोयला उत्पादन 69.75 मिलियन टन रहा। जुलाई 2026 में कोयले की आपूर्ति जुलाई 2025 के मुकाबले 17.34% अधिक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने बताया कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कांगो गणराज्य में इबोला का प्रकोप खतरनाक रूप से बढ़ रहा है और ये देश के इतिहास में सबसे बड़ा इबोला प्रकोप बन गया है। संगठन के अनुसार 30 जुलाई तक इबोला के 3,605 पुष्ट मामले और 1,587 मौतें दर्ज की गई हैं। केरलम में मूसलाधार वर्षा से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं की 77 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले में पहुंच गए हैं। साइकिलिंग में रोनाल्डो सिंह पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल के फाइनल में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
3: Mr. Modi added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams.
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
3: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event. The participants include governors of states, chief ministers of states, My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. President Draupadi Murmu flagged off a Run PBG soldierthon at a ceremony held at the forecourt of Rashtrapati Bhavan this morning. Governor of Mizoram, General V.K. Singh, who is the patron of the initiative, was also present on the occasion. In a social media post, the president said that the soldierthon serves as a unique platform to strengthen the bond between civilians and the armed forces, guided by the vision of Run for Soldiers, Run with Soldiers. India's coal production has witnessed a growth of 7.51% in July 2026 compared to the same period last year. The Ministry of Coal informed that the overall coal production in the country during July this year has reached 69.75 million tons as per provisional data. It added that the coal dispatch during the last month showed a growth of 17.34% year on year in

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारी स्टूडियो की जो घड़ी है वक्त बता रही है 5:11। आपके साथ हूं मैं ज्योति भारती, लेकर आ गई हूं कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। और पहला गीत फिल्म आप तो ऐसे ना थे से मोहम्मद रफी की आवाज 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए डब्ल्यू

0: www.ifrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

दोस्तों, कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में अभी ये गीत सुना आपने, लता मंगेशकर की बहुत ही खूबसूरत आवाज में फिल्म एक दूजे के लिए। एक और गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म सनम बेवफा से।

0: दोस्तों, कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में इतना ही। अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अब वक्त है पूर्वोत्तर डायरी का।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
1: पूर्वोत्तर डायरी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको लिए चलते हैं नागालैंड। नागालैंड का जियोलॉजिकल पार्क 2008 में स्थापित हुआ था और आज ये राज्य का एक सबसे बड़ा जियोलॉजिकल पार्क है और इस पार्क की पर्यावरण संरक्षण के मामले में बहुत बड़ी भूमिका है। साथ ही इको टूरिज्म के लिहाज से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके साथ ही पर्यावरण से जुड़ी हुई शिक्षा के मामले में भी ये एक अहम केंद्र है। पूर्वोत्तर भारत के जो अभयारण्य हैं, जियोलॉजिकल पार्क्स हैं, वो यहाँ की जैव विविधता को कायम रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभा रहे हैं। इसी मामले में नागालैंड का भी ये पार्क बहुत महत्वपूर्ण है और देश दुनिया से पर्यटक और प्रकृति प्रेमी इस पार्क में विभिन्न जीव जंतुओं को देखने के लिए आते हैं। तो आइए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट इस विषय पर सुनते हैं।
3: चुमके दिमा जिले के रंगा पहाड़ में स्थित नागालैंड जूलॉजिकल पार्क राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। वर्ष 2008 में अपनी स्थापना के बाद से ये पार्क वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा और इको टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। ये वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ नागालैंड की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के लिए समर्पित है। 176 हेक्टेयर में फैला नागालैंड जूलॉजिकल पार्क स्तनधारी पशुओं, पक्षियों और सरीसृपों की 47 प्रजातियों के लगभग 400 जीवों का घर है। सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा मीडियम जू के रूप में मान्यता प्राप्त ये पार्क नागालैंड और पूर्वोत्तर के घायल, अनाथ और बेघर हुए वन्य जीवों के लिए एक रेस्क्यू और पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक संकट ग्रस्त एशियाई विशालकाय कछुए का सफल प्रजनन है। इस प्रजाति की भारत में सबसे बड़ी संख्या इसी चिड़ियाघर में है। नागालैंड जूलॉजिकल पार्क के डायरेक्टर एनी वेखा विजा ने बताया कि चिड़ियाघर राज्य के स्थानीय वन्य जीवों की रक्षा में प्रमुख भूमिका निभाता है।
4: Our Nagaland Zoological Park serves as a safe haven specifically to protect and conserve wildlife species that are native and endemic to our state, Nagaland. Our zoo also rehabilitates species that are facing population decline, providing them with a secure environment for recovery. Our zoo also functions as a dedicated exit to conservation center, focusing on the preservation of fauna of our state and as a whole of Northeast India region. Our zoo initiates and manages captive breeding programs for endangered species to help boost their populations and prevent extinction. Apart from the point mentioned, our zoo focuses to educate the public through conservation awareness and education programs, helping to enhance the people of Nagaland understanding of wildlife protection. As per the latest inventory, that is March 2026. The Nagaland Zoological Park houses over a total population of 400 numbers of fauna with 47 different species of mammals, birds and reptiles. This represents significant growth from its initial collection of just 64 animals and 10 species when it opened in 2008.
3: पार्क ने पर्यावरण की सुरक्षा और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए कई हरित पहल भी शुरू की हैं, जिसके तहत पूरे चिड़ियाघर को पॉलीथीन फ्री जोन घोषित किया गया है।
4: To promote environmental sustainability and make Nagaland Zoological Park more eco-friendly, several green initiatives have been implemented. A complete ban on single-use plastics have been enforced within the zoo premises, and visitors are required to deposit disposable plastic items, including food packages, at the entrance gate before entering the park. The zoo has also been declared a polluting-free zone to encourage responsible waste management and reduce plastic pollution. To support the use of renewable energy, solar power street lights have been installed at strategic locations throughout the zoo. For convenient and environment-friendly transportation, battery-operated e-rickshaws are provided for visitors, reducing the need for conventional fuel-powered vehicles within the premises. Our zoo also regularly organizes plantation and cleanliness drives involving students, teachers, volunteers, and local communities. These initiatives include tree plantation and cleanliness drive aimed at promoting environmental awareness and fostering a sense of responsibility towards nature conservation among participants.
3: मंगलवार से रविवार तक खुलने वाले इस चिड़ियाघर में आने वाले पर्यटकों के लिए इस विशाल परिसर का भ्रमण करने के लिए ई रिक्शा और साइकिल की सुविधा उपलब्ध है। अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां आने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जब सुहावने मौसम के कारण पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। नागालैंड जूलॉजिकल पार्क केवल एक पर्यटक स्थल न होकर संरक्षण, अनुसंधान और पर्यावरण शिक्षा का ऐसा केंद्र है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य के अनूठे वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर कार्यरत है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से असुनो की रिपोर्ट के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: तो अब हमारा सफर चल पड़ा है नागालैंड से त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा इन दिनों निवेश के मामले में एक उभरता हुआ राज्य बन रहा है और बीते दिनों 2 दिवसीय डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव की सफल समाप्ति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस कॉन्क्लेव में उद्योगपति, नीति निर्माता और विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से त्रिपुरा निवेश को आकर्षित कर रहा है और उद्योगों को आकर्षित करके राज्य में न सिर्फ रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित कर रहा है बल्कि इससे वहां के उद्यमियों और युवाओं के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। तो आइए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
1: त्रिपुरा ने भारत के उभरते निवेश गंतव्यों में से एक बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा अगरतला में आयोजित 2 दिवसीय डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 देश भर के निवेशकों, उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं की व्यापक भागीदारी के साथ सम्पन्न हो गया। इस सम्मेलन में 1000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया और पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, AI, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, रबड़, बांस, अगरवुड, कृषि तथा कई अन्य उभरते क्षेत्रों में संभावनाओं की तलाश की। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने किया। उन्होंने पारदर्शी शासन, नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया।
2: Now the time is ripe for private investment to take benefit of robust infrastructure and natural resources. That is why we have organized this investment summit on a large scale with the participation by more than 45 departments and organization of the state and central governments. I am thankful to the donor minister, Sri Sindhya ji, for gracing this business conclave. The business conclave has brought together about 1200 business leaders, promoters, industrialists and entrepreneurs to build Ek Tripura, Shrestha Tripura.
1: सम्मेलन में क्षेत्र विशिष्ट चर्चाएं, उद्योगपतियों और सरकार

0: सरकार के बीच बैठकें तथा निवेशकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष बातचीत आयोजित की गई। इन सत्रों में त्रिपुरा के निवेश अनुकूल नीतियों, सरलीकृत व्यापार प्रक्रियाओं और एक पारदर्शी एवं कुशल व्यवसायिक वातावरण बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया गया। इस सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण नियमों के सरलीकरण और अनुपालन बोझ को कम करने पर जोर देना रहा। भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने रेखांकित किया कि आसान प्रक्रियाओं, डिजिटल शासन और त्वरित स्वीकृतियों से अधिक निजी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान लगभग 300 सहमति पत्रों और निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए या उन्हें प्रस्तुत किया गया, जिनका अनुमानित मूल्य 90,000 करोड़ रुपए से अधिक है। देश विदेश के कई प्रमुख कंपनियों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में त्रिपुरा में निवेश करने में रुचि व्यक्त की है। व्यापारिक सुधारों को लागू करने और व्यापार सुगमता में सुधार के लिए राज्य की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए त्रिपुरा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संताना चकमा ने कहा कि आयोजन साझेदारी के माध्यम से एक उज्जवल भविष्य के निर्माण और विश्वास का प्रतीक है।
1: Our government has made doing business easier through the Swagat Single Window System, faster approvals, business-friendly policies and transparent governance. We are creating a strong and investor-friendly environment. Tripura is blessed with rich natural resources such as rubber, bamboo, tree, agar, natural gas and our famous queen pineapple. We also offer excellent opportunities in tourism, healthcare, IT, logistics, manufacturing, renewable energy and food processing. With a strong government support, attractive incentives and a strategic location, Tripura is ready to establish itself as the इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन गेटवे इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया।
0: सम्मेलन में बुनियादी ढांचे, कुशल जनशक्ति और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ त्रिपुरा के रणनीतिक कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बढ़ती क्षमताओं को भी प्रदर्शित किया गया। निवेशकों ने औद्योगिक विकास, नवाचार और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में राज्य सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना की। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए भारत सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुभकामनाएं दी और इस सम्मेलन के परिणामों के प्रति आशा व्यक्त की।
2: But I bring with me the emotions and the voice of our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It's a privilege today to partner Tripura in this remarkable growth journey that Tripura has embarked upon over the last decade. It's a transformational process in which Tripura has today become a strategic pillar for not only the Northeast, but a strategic pillar in India's journey towards Viksit Bharat.
0: निवेशकों और उद्योगपतियों की यह उत्साही भागीदारी त्रिपुरा की आर्थिक क्षमताओं और पूर्वोत्तर में एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में इसके उभरने के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। निवेशकों की मजबूत भागीदारी, बड़े निवेश प्रस्तावों और राज्य के व्यवसायिक वातावरण में बढ़े विश्वास के साथ डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 ने औद्योगिक विकास और आर्थिक बदलाव की एक मजबूत नींव रखी है। त्रिपुरा सरकार ने सतत विकास, नवाचार और निवेश आधारित प्रगति के माध्यम से उन्नत त्रिपुरा के संकल्प को साकार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए अगरतला से सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ मैं करिश्मा राय।
3: श्रोताओं, बीते दिनों एक खास पहल की शुरुआत की गई। ये पहल है मिशन गोल्डन स्पाइस। आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि ये मसालों से जुड़ी हुई कोई योजना है। निश्चित तौर पर मेघालय में ये लाकाडोम हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण योजना है और दिल्ली में ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से मिशन गोल्डन स्पाइस की शुरुआत की और इसमें लाकाडोम हल्दी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की इस पहल में एक विशेष योजना है। और इस योजना का मकसद ये भी है कि मेघालय के किसानों और विशेष रूप से महिला किसानों को प्रोत्साहन मिले, उनकी आय बढ़े, उनके लिए आजीविका के अवसर पैदा हों, साथ ही मेघालय में प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो और वहां पर खेती के दायरे को भी बढ़ाया जा सके। तो ये मिशन गोल्डन स्पाइस क्या है और किस तरह से मेघालय में ये खेती को प्रोत्साहन देगा और कैसे मेघालय की लाकाडोम हल्दी को एक विशेष पहचान दिलाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है, आइए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट सुनते हैं।
4: मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। इस पहल को परिवर्तनकारी बताते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ये मिशन मेघालय को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त प्रीमियम लाकाडोंग हल्दी के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना का उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना, खेती का विस्तार करना और राज्य के इस प्रमुख उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इससे लाभान्वित होने वाले लगभग 17,500 किसानों में से करीब 99% महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि ये मिशन केवल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक पूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला बनाने की सरकार की नीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये पहल प्रौद्योगिकी, वित्त और बाजारों तक पहुंच को मजबूत करेगी, साथ ही राज्य के भीतर अधिक मूल्य संवर्धन का निर्माण करेगी और हजारों किसान परिवारों की आजीविका में सुधार लाएगी। मिशन लाकाडोंग के परियोजना अधिकारी डिमांडसन लिंगदोह ने बताया कि मिशन के लिए जमीनी स्तर पर कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। केंद्रीय कृत जैविक प्रसंस्करण इकाई के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, जबकि खेती के क्षेत्र विस्तार के लिए किसानों का पंजीकरण और किसान उत्पादक संगठनों की पहचान का काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक लाकाडोंग हल्दी की खेती को 2,500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7,000 हेक्टेयर किया जाएगा। इसके तहत किसानों को रोपण सामग्री, जैविक खाद और कीटनाशक, जैविक प्रमाणीकरण में सहायता तथा उन्नत खेती के तरीकों का प्रशिक्षण निशुल्क प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रसंस्करण सुविधाओं, करक्यूमिन निष्कर्षण और मजबूत निर्यात संपर्कों से मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे ताजा लाकाडोंग हल्दी के लिए 80 रुपए प्रति किलोग्राम का लक्ष्य मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और लाकाडोंग हल्दी की अगुआ ट्रिनिटी साइयो ने इस मिशन का स्वागत करते हुए कहा कि निशुल्क रोपण सामग्री, आधुनिक मशीनरी और उन्नत प्रसंस्करण सुविधाएं मिलने से अधिक किसान खेती के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रसंस्करण और करक्यूमिन निष्कर्षण इकाइयां बेहतर बाजार अवसर पैदा करेंगी, हाथ से पैदा किए जाने वाले प्रसंस्करण पर निर्भरता कम होगी और उद्यमियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए मेघालय का अपना लाकाडोंग हल्दी ब्रांड विकसित करने में सक्षम बनाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मिशन उन महिला किसानों को और अधिक सशक्त बनाएगा जो लंबे समय से लाकाडोंग हल्दी की खेती में सबसे आगे रही हैं। खेती, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात में निवेश के साथ मिशन गोल्डन स्पाइस से प्रीमियम लाकाडोंग हल्दी के केंद्र के रूप में मेघालय की स्थिति और मजबूत होने की संभावना है। इसके साथ ही ये पहल राज्य भर के हजारों किसानों के लिए टिकाऊ आजीविका का निर्माण करेगी और उनके अवसरों का विस्तार करेगी। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।
3: श्रोताओं, अब हम रुख करते हैं सिक्किम का। आप सभी जानते हैं कि कला प्रतिभा प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है, लेकिन कला से किसी के अंदर आत्मविश्वास को भी जगाया जा सकता है। इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है सिक्किम के पाक्योंग जिला प्रशासन ने। दरअसल पाक्योंग जिला प्रशासन ने वहां के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स यानी पुनर्वास केंद्रों में रह रहे लोगों के लिए एक विशेष पहल की है, जिससे उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके और साथ ही साथ उनकी मानसिक मजबूती भी सुनिश्चित की जा सके। इस पहल के तहत ऐसे लोगों को मंगा आर्ट से जोड़ा जा रहा है और इस कला से जुड़ने के बाद वहां रह रहे लोगों के बीच नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है। तो आइए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट सुनते हैं।
5: पाक्योंग जिला प्रशासन ने एशियन एनिमे एंड मंगा अकादमी के सहयोग से यह कार्यशाला शुरू की है। इसका पहला चरण भास्मे के जीवन मार्ग सोसाइटी और चालाम थांग के समैरिटन काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में चल रहा है। इसमें 36 प्रतिभागी मंगा आर्ट सीख रहे हैं, साथ ही उन्हें रचनात्मक क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं से भी परिचित कराया जा रहा है।
6: आई थिंक वन ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट वी आर वेरी क्लियर इज in terms of how we can also value add the society. And we believe that there are a lot of talented artists who are there in

0: rehabilitation centers, and many of them would want art as a therapy as well as a vocation. So there are two things that we're looking at it. Number one is we are looking at art as a therapy, where people who are there in rehabilitation centers beyond our training also would like to look at this as a gateway for their own peace and happiness. And the other is, if we see talented people who are there in rehabilitation centers post their recovery, we would invite them to be a part of Studio AMA, either through projects or through full time. So this is our small way of contributing towards the betterment of the society also.
1: यह कार्यशाला 22 जुलाई से शुरू होकर 4 अगस्त तक चलेगी। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कार्यक्रम लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने, नई कला सिखाने और आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ाने का प्रयास है। मैं नाग चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं अनिकेत, आकाशवाणी समाचार।
2: अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने ये रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
3: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, परिवारों, स्वास्थ्य कर्मियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा नागरिक समाज ने नशा मुक्त युवा के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि नशे के विरुद्ध लड़ाई की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति से होनी चाहिए और इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। इस सम्मेलन में सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल एवं युवा मामले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा जनजातीय मामलों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा रेड क्रॉस के स्वयंसेवक शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा है कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा, उत्पादकता, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र विकास के लिए भी गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा है कि नशा मुक्त भारत का अर्थ केवल नशीले पदार्थों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली, जागरूक निर्णय, सहयोगी परिवारों और सशक्त समुदायों को बढ़ावा देना भी है। राज्यपाल ने नशे की समस्या से निपटने के लिए व्यापक रणनीति अपनाने पर बल दिया, जिसमें रोकथाम एवं जन जागरूकता, प्रभावी निगरानी और जनसंपर्क के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा नशा मुक्त हो चुके लोगों के लिए कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक पुनर्स्थापित करने पर विशेष जोर दिया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
2: श्रोताओं, अब हम वापस आपको त्रिपुरा लिए चल रहे हैं। त्रिपुरा में एक और विशेष पहल की आज हम बात करने जा रहे हैं। वहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और इस आजीविका मिशन पहल से ग्रामीण महिलाओं और विशेष तौर पर स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। और ऐसे में एक विशेष पहल है जिसमें महिलाओं को जूट शिल्प के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उनके लिए आजीविका के अवसर खोले जा रहे हैं। तो विस्तार से हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में सुनते हैं।
4: सिपाही जला जिले के चरीलाम की कई महिलाओं के लिए अब घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने सपनों को पूरा करना भी संभव हो रहा है। सपा दत्ता भौमिक और स्वयं सहायता समूह की अन्य महिलाएं TRLM की ओर से आयोजित जूट शिल्प प्रशिक्षण में हिस्सा ले रही हैं। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में जूट से बने पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। महिलाओं का कहना है कि यह प्रशिक्षण उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा और भविष्य में रोजगार के नए अवसर भी देगा।
5: सबसे ज्यादा हम लोगों को ऐसा लग रहा है जो ये जो जूट बैग का काम है, अगर हम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बहुत सारा होगा। और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हर कोई महिला अपने आप स्वनिर्भर हो, तो अगर हर कोई ऐसे जूट बैग बनाए और जो डोरमेट है वो बनाए तो उन लोगों का भी बहुत प्रॉफिट होगा।
4: मास्टर ट्रेनर अनामिका विश्वास के मार्गदर्शन में महिलाओं जूट से बैग, पाउच, फूलदान, सजावटी सामान और घर की सजावट की कई वस्तुएं बनाना सीख रही हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को बाजार की जरूरत के अनुसार तैयार करना है। योजना है कि इन उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री की जाए और चरीलाम में एक उत्पादन केंद्र भी स्थापित किया जाए। यह जानकारी TRLM के समन्वयक पिंटू भौमिक ने दी।
6: जूट के जो तैयार होता है, जो विभिन्न अलग अलग प्रोडक्ट, उसका ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट था, तो उसके हिसाब से हम लोग एक ट्रेनिंग कंडक्ट किया है यहाँ पर। और इसमें 30 SHG मेंबर है, इसके अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, इसके जूट बैग,

0: अलकबार, पापोश, ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो इसका करने का मकसद है कि एक्चुअली जो दीदी लोग इसके अंदर आकर वो लोग आत्मनिर्भर बने, स्वनिर्भर बने। और हमारा जो ETLM की तरफ से एक जो प्लानिंग है, जो हमने आगे बढ़कर ट्रेनिंग के बाद हम लोग एक यूनिट बनाएंगे, यूनिट के अंदर हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार करेंगे, जो प्रोडक्ट हम बाहर सेल करेंगे और दीदी लोगों का स्वावलंबन बनाएंगे।
1: जूट का हर धागा यहाँ सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की कहानी भी बुन रहा है। सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू, आकाशवाणी समाचार।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए।

0: अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में। अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले न छिपाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। इस सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मूज जल डमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है।

0: हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केरल में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राज्य भर में कल से अब तक वर्षा संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई है। 5,700 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई हैं। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह उबर ना पाने के कारण श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking at the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: He added that the launch marks the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams.
2: Nasha केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event. The participants included My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity, and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee MPC report released yesterday, the growth estimate marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainties. The report attributed the improved outlook to a broad-based pickup in high-frequency indicators during the April-June quarter. SBI Research also noted that the global environment remains uncertain amid the West Asia crisis, but India's domestic economy has shown resilience. India's coal production has witnessed a growth of 7.51% in July 2026 compared to the same period last year. Overall coal production in the country during July this year has reached 69.75 million tons as per provisional data. Coal dispatch during the last month showed a growth of 17.34% year on year in July. In the United States, Washington Governor Bob Ferguson has declared a statewide emergency, imposed a burn ban as fast-spreading wildfires driven by strong winds scorched nearly 3,000 acres and forced thousands of people to

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह। श्रोताओं, करीब 6 दशक तक देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौती रहे वामपंथ उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। आज देश का कोई भी जिला वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले की श्रेणी में नहीं है। देश में नक्सलवाद का प्रभाव लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लेकिन नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई, ये देश के कई हिस्सों तक कैसे फैला और फिर ऐसा क्या बदला कि भारत इस चुनौती से बाहर निकलने में सफल हुआ, साथ ही नक्सल मुक्त भारत की इस उपलब्धि के बाद आगे की राह और सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, आज के विश्लेषण में हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नक्सलवाद का नाम सुनते ही हमारे मन में हिंसा, सुरक्षा बलों पर हमले और दूर दराज के जंगलों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन संसद में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा पक्ष सामने रखा जो इस पूरी चुनौती की मानवीय कीमत को समझाता है। उन्होंने एक ऐसी आदिवासी बेटी का उल्लेख किया जो हिंसा और भय के माहौल के कारण 32 वर्ष की उम्र तक अपने हाथों में मेहंदी तक नहीं लगा सकी। उसने पहली बार मेहंदी आत्मसमर्पण करने के बाद पुनर्वास केंद्र में देखा और ये सिर्फ इकलौती घटना नहीं है। नक्सली हिंसा ने करीब 15,000 बच्चों का जीवन प्रभावित किया और हजारों परिवारों ने दशकों तक नक्सलवाद का दंश झेला। श्रोताओं, इस चुनौती की शुरुआत कैसे हुई और ये इतने बड़े क्षेत्र तक कैसे पहुंची, साथ ही भारत ने इस स्थिति को बदलने के लिए क्या रणनीति अपनाई, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
2: भारत में नक्सलवाद की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई। यहीं से शुरू हुए एक हिंसक आंदोलन ने धीरे धीरे देश के कई राज्यों में अपनी जड़ें जमा ली। समय के साथ ये केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया। माओवादी विचारधारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के बजाय हिंसा और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सत्ता परिवर्तन में विश्वास रखती है। इस विचारधारा में बंदूक के दम पर व्यवस्था बदलने की बात कही जाती है। इनका अध्याय वाक्य था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इसी सोच के साथ अलग अलग माओवादी संगठनों ने कई इलाकों में अपनी गतिविधियां बढ़ाई। वर्ष 2004 में दो बड़े संगठनों के विलय के बाद कई राज्यों में नक्सली गतिविधियों में तेजी देखी गई। कई दूर दराज और वन क्षेत्रों में लंबे समय तक सड़क, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी रही। इन इलाकों में शासन की पहुंच सीमित थी। माओवादियों ने इसी स्थिति का फायदा उठाया और कई क्षेत्रों में उन्होंने सड़कों, स्कूलों और दूर संचार जैसी सुविधाओं को भी निशाना बनाया ताकि ये इलाके मुख्य धारा से कटे रहें। वर्ष 2010 के आसपास नक्सली हिंसा अपने चरम पर थी। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने इस चुनौती से निपटने के लिए समन्वित रणनीति पर काम शुरू किया। वर्ष 2015 में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना लागू की गई। इस रणनीति में केवल सुरक्षा अभियानों पर ही नहीं बल्कि विकास कार्यों, स्थानीय समुदाय के अधिकारों, बेहतर प्रशासन और लोगों का विश्वास जीतने पर भी समान रूप से जोर दिया गया। इस समन्वित प्रयास का असर धीरे धीरे जमीन पर दिखाई देने लगा। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, विकास कार्यों में तेजी आई और शासन की पहुंच उन क्षेत्रों तक बढ़ी जहां पहले ये बहुत सीमित थी। परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 में जहां 126 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, वहीं ये संख्या घटते घटते मार्च अप्रैल 2026 में शून्य हो गई।
1: श्रोताओं, इस बदलाव के पीछे स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति, केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय और जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस विषय पर आकाशवाणी रायपुर के संवाददाता विकल्प शुक्ला ने एंटी नक्सल ऑपरेशन के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र कुमार विज से विशेष बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
3: सबसे महत्वपूर्ण जो कारण लगता है मुझे वो है पॉलिटिकल विल। देखिए, कमिटमेंट के साथ एक स्टेट

0: जारी हुई गृह मंत्री की ओर से, और उसको पूरा करने के लिए जो स्टेप्स लेने थे वो लिए गए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले 2 साल के अंदर करीब 100 से ज्यादा सिक्योरिटी कैंप्स स्थापित होना। देखिए, सिक्योरिटी कैंप्स पहले भी थे, बस्तर बहुत बड़ा इलाका है, तो वो जो सिक्योरिटी कैंप्स उन इलाकों में स्थापित हुए जहां सिक्योरिटी वैक्यूम था, वो अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके थे, साउथ और वेस्ट बस्तर के अंदरूनी इलाके थे, नीचे के इलाके थे। वहां पर जब तैनाती हुई तो माओवादी की बटालियन या बड़े फॉर्मेशन, उनके शेल्टर के स्थान, उनकी तकनीकी इकाइयां जो थी हथियार बनाने वाली, उनके काम जब डिस्टर्ब हुए, शेल्टर उनके जब डिस्टर्ब हुए, उनको मूव आउट करना पड़ा, तो ये दौर था जिसका ज्यादा असर पड़ा। तो पॉलिटिकल विल और उसके साथ सप्लीमेंट हुए रिसोर्सेज जो लगने थे, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक ही पेज पर थे, दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था और आगे बढ़ने में कोई देर नहीं लगी।
1: जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में पुलिस बलों की क्षमता बढ़ाने की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस बारे में भी राजेंद्र कुमार विज ने अपने अनुभव साझा किए, आइए सुनते हैं।
0: मुझे याद है जब छत्तीसगढ़ बना था तब छत्तीसगढ़ का पुलिस बल 22-23 हजार था मात्र। आज अगर आप देखेंगे तो वो बढ़कर 80 हजार हो गया है। जो हमारी बटालियंस थी वो 7 थी, बढ़कर 22 हो गई हैं। थाने थे, कई गुना बढ़ गए हैं। तो ये जो पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है इसमें काफी समय लगता है। इवन जब मैं वहां पर आईजी पुलिस था बस्तर में, तब वहां इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करता था। ये 2006-7-8 की बात, उस समय चरम सीमा पर था माओवाद की जो हिंसात्मक कार्रवाइयां थी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ने में अलग अलग स्कीम्स केंद्र सरकार लाई, कुछ राज्य सरकार लाई, पुलिस स्टेशन का फोर्टिफिकेशन हुआ, उनकी पेरीमीटर सिक्योरिटी बढ़ी, टावर्स लगे, इंटेलिजेंस के लिए अलग एजेंसी बनाई गई, स्पेशल टास्क फोर्स बनाए गए। वो समय था बीच में डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का गठन हुआ 2015 में। उसके अलावा जो बस्तर फाइटर बल है वो 3000 करीब स्वीकृत हुआ, जिसमें सिपाही, हवलदार, थानेदार तक 2000 का पद जो है वो नए भर्ती हुए। तो लोकल लोगों के भर्ती होने से क्या होता है कि वो एरिया को जानते हैं, वो भाषा को जानते हैं, वो संस्कृति को जानते हैं, उनके कुछ रिश्तेदार नक्सली हैं और कुछ इस तरफ हैं। तो वो जो एडवांटेज पुलिस को मिला लोकल लोगों को भर्ती करने का, वो अभी पिछले सालों में कुछ मिला है।
1: श्रोताओं, किसी भी बड़ी चुनौती पर मिली सफलता को बनाए रखना उसे हासिल करने जितना महत्वपूर्ण होता है। आज जब देश का कोई भी जिला वामपंथ उग्रवाद प्रभावित नहीं माना जाता, तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे की राह क्या होगी। जिन क्षेत्रों ने वर्षों तक हिंसा का दौर देखा, वहां अब शांति और विकास को कैसे मजबूत किया जा सकता है, आइए जानते हैं इस अगली रिपोर्ट में।
2: आज देश का कोई भी जिला अब वामपंथी उग्रवाद प्रभावित नहीं माना जाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार का काम पूरा हो गया है। अब चुनौती इस उपलब्धि को लंबे समय तक बनाए रखने की है, ताकि नक्सलवाद दोबारा सिर न उठा सके। इसी सोच के साथ सरकार ने 37 जिलों को लेगेसी एंड थ्रस्ट जिलों की श्रेणी में रखा है। ये जिले अब नक्सल प्रभावित नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ समय तक सुरक्षा और विकास से जुड़े प्रयास जारी रखे जाएंगे। इसके अलावा एक जिले को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है, जहाँ नक्सली हिंसा और उनका संगठन पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लेकिन स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अब ध्यान केवल सुरक्षा अभियानों पर नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने पर है कि विकास का लाभ हर गांव और हर परिवार तक पहुंचे। सड़क, दूरसंचार, शिक्षा, कौशल विकास, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं की पहुंच लगातार बढ़ाई जा रही है। साथ ही स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मजबूत करने, पंचायतों की भूमिका बढ़ाने और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर उन सुरक्षा शिविरों में दिखाई देती है, जिन्हें कभी नक्सली हिंसा से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। अब ऐसे एक तिहाई सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्रों में बदला जा रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों को आजीविका, कौशल विकास, सरकारी योजनाओं की जानकारी, डिजिटल सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों जैसी कई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ के नेतानार में पहला जन सुविधा केंद्र शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही जनजातीय युवाओं को देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने के लिए ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: श्रोताओं, कभी नक्सलवाद की चुनौती को देश के एक बड़े भूभाग तक फैले तथाकथित रेड कॉरिडोर के रूप में देखा जाता था। एक समय तिरुपति से पशुपति तक इसके प्रभाव की चर्चा होती थी, लेकिन आज भारत का कोई भी जिला वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले की श्रेणी में नहीं आता है। जिन क्षेत्रों ने दशकों तक हिंसा का दौर देखा, वहाँ अब शांति के साथ शिक्षा, रोजगार और बेहतर जीवन के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, और यही नक्सल मुक्त भारत की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी सफलता भी है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक ललित।
3: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशस्य यूनः शारीरिकरूपेण स्वस्थाः, मानसिकरूपेण च सुदृढाः भवन्त्विति प्रार्थयत्। विकसित भारतस्य लक्ष्यं साधयितुं विकसित भारत संकल्पाभियानाय नशा मुक्ति युवा इति कार्यक्रममपि उद्घाटितवान्। केरल राज्ये प्रचंड वृष्टिः निरन्तरं विनाशं जनयति, अष्टजनाः मृताः इत्युच्यते, सहस्रशः जनाः साहाय्य शिबिरान् प्रति स्थानान्तरिताश्च। असम राज्ये 27,000+ जनगणनार्थं स्वगणना समारब्धा। गृहसूचीकरण प्रक्रियायाः प्राक् अगस्त मासस्य 16 दिनांक पर्यन्तं अन्तर्जाल सुविधा उद्घाटितास्ति। इंडोनेशिया देशे मदुरा द्वीपे नौकायानस्य अग्निप्रकोपात् 5 जनाः मृताः, 141 जनाश्च लुप्ताः सन्ति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां तन्वी शर्मा इत्येषा ताइपे ओपन इति क्रीडायां प्रथमवारं BWF वर्ल्ड टूर इति उपाधिं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् भारतं यावत् विकसित भारतं भवितुं प्रावर्तते तदा राष्ट्रस्य युवकाः शारीरिकरूपेण स्वस्थाः, मानसिकरूपेण सुदृढाः, आत्मविश्वासयुक्ताश्च भवेयुः। अद्य नवदिल्ल्यां आभासीय माध्यमेन नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्पाभियानस्य उद्घाटने भाषणं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् युवजनाः सर्वदा मादक द्रव्येभ्यः दूरीभूय स्वस्थ जीवनशैलीं स्वीकर्तुं शक्नुवन्त्विति।
4: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है, और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
3: श्री मोदी इत्ययम् अवदत् यत् अयम् उपक्रमः मादक द्रव्याणां दुरुपयोगं विरुध्य शतसप्ताहस्य राष्ट्रव्यापी जनसहभाग अभियानस्य आरम्भं करिष्यति इति। श्री मोदी अवदत् यत् मादक द्रव्याणां व्यसनं जनान् स्वलक्ष्यात् विचलितं करोति, स्वप्नाः साधयितुं च दूरं करोति। सः अवदत् यत् व्यसनं न केवलं परिवारान् विनाशयति, अपि तु राष्ट्रस्य शक्तिम् अपि दुर्बलं करोति। प्रधानमन्त्रिणा कुटुम्बेभ्यः सामाजिक कलंकभूतानां मादक द्रव्याणां दुरुपयोगस्य प्रकरणानि न निगूढयन्त्विति आग्रहः कृतः। सः अवदत् यत् ते समयोचितं साहाय्यं याचन्तु, मुक्तरूपेण संवादं कुर्वन्तु, विशेषज्ञैः सह परामर्शं स्वीकुर्वन्तु, अथ प्रभावित परिवारस्य सदस्यानां स्वस्थतायै चिकित्सा साहाय्यम् उपयुञ्जन्तु। पंजाब राज्ये राज्यस्य 7 शैक्षणिक संस्थानां सहस्रशः छात्राः अद्य विकसित भारत संकल्प अभियानाय नशा मुक्त युवा इत्यस्मिन् भागम् अगृह्णन्। यस्याभासीय शुभारम्भः प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना अभिसम्बोधयता कृता। पंजाब आधारित विश्वविद्यालयानां अधिकांशाः छात्राः, येषु बहवः NSS स्वयंसेवकाः अपि आसन्। तेषां मतम् आसीत् यत् मादकद्रव्यमुक्तस्य देशस्य कृते एतादृशानाम् अभियानानां प्रोत्साहनं समाजस्य सामूहिकं दायित्वम् अस्ति इति। अद्य प्रातः राष्ट्रपति भवनस्य अग्रभागे आयोजिते समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू इत्येषा पीबीजी सोल्जरेथान इति स्पर्धायाः ध्वज

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today being Sunday, we'll also be taking calls on your mutual fund related queries, but do remember that we do not address fund specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331 4444, 2331 0481, and 2371 7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में देंगे, कोशिश करेंगे कि दे पाएं। सवाल पूछने के लिए आप श्रोताओं हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331 4444, 2331 0481 और 2371 7106। इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: जी धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ निशित कुमार।
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स आफ्टर 4 मंथ्स, इन्फ्यूज मोर देन 20,000 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज इन जुलाई। In bullion market, gold and silver declined last week, and domestic investors to focus on RBI monetary policy decision, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक 4 महीने बाद कुल खरीदार बनकर उभरे। जुलाई में भारतीय इक्विटी बाजार में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। सराफा बाजार में पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई और भारतीय निवेशक अगले सप्ताह आरबीआई की मौद्रिक नीति के फैसले, कॉरपोरेट कमाई के नतीजे और भू राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब रुक करते हैं आज कार्यक्रम में लिए गए पहले खबर के लिए। लगातार 4 महीनों की बिकवाली के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अब भारतीय इक्विटी में कुल खरीदार बनकर उभरे हैं। डिपोजिटरी के ताजा आंकड़ों के अनुसार एफपीआईज ने जुलाई में घरेलू शेयर बाजार में 20,200 करोड़ रुपए का निवेश किया। कुल निवेश में से 6,732 करोड़ रुपए शेयर्स एक्सचेंजों पर खरीदारी के जरिए आए, जबकि 13,468 करोड़ रुपए का निवेश प्राइमरी मार्केट के जरिए किया गया। वैश्विक सेमीकंडक्टर व्यापार में गिरावट के कारण एफपीआईज ने अपने निवेश का कुछ हिस्सा उभरते बाजारों की ओर लगाया। इस खरीदारी में घरेलू मैक्रो इकोनॉमिक सूचकांकों में सुधार और मजबूत तिमाही के नतीजों का भी योगदान रहा है। जुलाई में आए इस बदलाव के बावजूद एफपीआईज ने इस कैलेंडर वर्ष में अब तक भारतीय इक्विटी से 2,54,072 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस बीच सरकार की कर नीति में बदलाव के बाद भारत के ऋण बाजार में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बरकरार है। जुलाई माह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने फुल्ली एक्सेसिबल रूट के जरिए ऋण प्रतिभूति बाजार में 3,033 करोड़ रुपए और जनरल रूट के जरिए 29,212 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से

0: दिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान सहित 7 ओपेक प्लस सदस्यों ने बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य तेल बाजार की स्थिरता को बनाए रखना और भागीदार देशों को पिछले अतिरिक्त उत्पादन की भरपाई में तेजी लाने की अनुमति देना है। ओपेक प्लस सदस्यों ने सहयोग घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की, जिसके अनुपालन की निगरानी संयुक्त मंत्री स्तरीय निगरानी समिति द्वारा की जाएगी। और श्रोताओं, दिल्ली से हमारे साथ इस बीच यशपाल जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: गुड इवनिंग मार्केट मंत्री टीम एंड गुड इवनिंग नेहा जी आल्सो। माय क्वेश्चन इज दैट आई वांट टू इन्वेस्ट सम लंप सम मनी फॉर अराउंड 2 इयर्स। ऑलरेडी आई एम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी थ्रू SIP एंड लंप सम। माय पोर्टफोलियो इज वेल डाइवर्सिफाइड। The options with me are Bank FD, Arbitrage Fund, Liquid Fund and Corporate Bonds. So please advise which one to select, considering the stability means almost fixed return and also good from the tax point of view. Thank you so much.
2: Right. So, Yashpalji, the most important point in your question was from the tax point of view. And the options that you listed, arbitrage funds, liquid funds and bank FD, those are now at par when it comes to the tax efficiency. What actually provides you tax efficiency as well as stability, given the 2-year horizon you mentioned, are actually arbitrage funds, which gets treatment of equity funds. So, 12.5 if you are investing beyond 1 year, the long-term capital gain. So I would say if you are looking for an investment horizon of 2 years, arbitrage funds are a good bet. Just make sure to stay invested. These can be volatile in a 3-month kind of a scenario, but for a 2-year stretch, this should suffice.
3: Sneha, if you look at the markets this week, after almost 4 consecutive months of selling, the FPIs have returned, and that was awaited for quite some time now. So what are the factors you factor in when we look at the FPIs returning to Indian equity markets?
2: Right. So from a retail investor standpoint, I'll start with that, since our audience is just that.
0: Bilkul.
2: The idea is when scenarios in the macro environment changes, for instance, let's say the war that had been happening, the oil impact that had been happening, everything collates into something that creates some kind of sentiments. And FIIs, being a very large group in the economy, when they sell, the market mood sort of changes, our portfolio changes, it turns into red. And that is what we have been seeing. Having said that, domestic institutional investors have by far, you know, sort of not run away. They have been standing tall. The exchange data also, we keep on discussing, says that DIIs have continued investing. However, when FIIs flee, the market mood changes, but your portfolio shouldn't change. Since this is a very short-term kind of a reaction, your portfolios are built to deal with the long-term reaction. We've always seen that how equity as an asset class, you stick to your SIPs, you continue your investments, they provide you with returns. Even intermittent falls sort of get smoothened out when your time horizon exceeds. So, I would say FIIs are investing in India. India is definitely a market that one should look at. Even when FIIs were stepping out, the liquidity that DIIs were able to maintain is commendable. And that is what makes our market investment worthy. So while FIIs are coming back, for sure, it's a good green kind of market mood out there. Hope so the market also evolves that way, our portfolios turn green. Until that sort of keeps on, the ups and downs keeps on happening, just stay intact, let your SIPs run. Actually, I would say, let's say if you've this June, July month, eventually we always have our increments during this time. We should actually look out for this time to increase our SIPs also, if the salary has, it helps you do that. So that your, the market mood will keep on changing, but your SIPs should stick to it beyond the market movement and you should continue your investment.
0: बिल्कुल, और बातें करेंगे आपसे स्नेहा, मगर उससे पहले आइए दिल्ली से अपने दूसरे कॉलर को जोड़े इस प्रोग्राम में। राजेश इनका नाम है। राजेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: थैंक यू मैडम। मैडम मैं क्वेश्चन ये था भी, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये विदेशी म्यूचुअल फंड में जिसकी इक्विटी हो वो कौन से उसमें वो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्या?
2: तो राजेश जी, जो आपका सवाल है कि क्या ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो विदेश में आपकी पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे फंड्स एग्जिस्ट करते थे, है क्या कि वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट आरबीआई की लिमिटेशन की वजह से ये फंड्स अभी इन न्यू इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी ने अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स भी पॉज कर दी हैं। एक दो फंड्स होंगे जो आजकल में ओपन हो रहे होंगे, उनका आपको एक बार वेबसाइट पे जाकर देखना पड़ेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अभी ले रहा है कौन सा नहीं ले रहा है। बट आप एक सुझाव मैं आपको ये दूंगी कि काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं जिनमें, जैसे एक कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, एक कैटेगरी है इनोवेशन कैटेगरी, काफ़ी सारे फंड्स हैं इनमें जो वैसे आपको डोमेस्टिक एक्सपोजर ही देते हैं, मतलब हमारे इंडियन मार्केट्स का ही एक्सपोजर देते हैं, बट एक स्लाइस ऑफ अब्रॉड आपको दे देते हैं कुछ 10-15% बाहर की सिक्योरिटीज में लगा के, तो आपके पोर्टफोलियो के लिए शुरुआत के लिए वो 10-15% भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे फंड्स को आप देख सकते हैं जो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड कर सकते हैं।
3: स्नेहा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मार्केट्स एंड ऑल्सो इफ वी कैन सी इफ रादर वी आर सीइंग दैट द एफपीआईज हैव रिटर्न्ड एंड ऑल्सो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ऑल्सो सेइंग दैट देयर इज पीस व्हिच इज कमिंग इन द कमिंग डेज ऑल्दो it remains to be seen whether it comes at all.
2: Absolutely.
3: So now, with the current market situation, do you feel that this trend is only going to go up and probably not go that negative as it has been going over the past 5-6 months now?
2: I would actually like to disappoint everybody listening here, because it is not in, you know, our control or even in anyone's control to sort of promise something that we cannot really promise. Of course, markets will go up or down is basically a hindsight call, and even though, you know, more popular let's say Warren Buffett kind of investors wouldn't say that. Coming back to the point that you just raised, Mr. Trump having said that peace might just return, and the idea is that his statements have for long been kind of, you know, stirring the market, which actually sort of shows the fact that we cannot depend on the short term aspects that market continues to offer us. Mm. Also, we cannot really control what happens in the market. Mm. So the uncertainty bit is slightly out of the way for even a retail investor as well as for experts, like I said. What remains in your control are the factors pertaining to your portfolio, like I was saying, you know, your asset allocation. Make sure to have some kind of debt allocation in your portfolio, because when the markets turn red, your anxiety increases. If you have, let's say, 20% of debt in your portfolio, that will help provide some kind of cushion to your equity and maybe just help you psychologically navigate through those ups and downs. So, yeah, asset allocation, rebalancing periodically, continuing with your SIPs, not stopping your SIPs, that becomes your, you know, go-to goal amid all of these chaos.
0: जी बिल्कुल श्रेया, स्नेहा, इसी बीच विनोद जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से. विनोद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
5: हेलो
0: जी,
5: मैं पूरी मार्केट मदर टीम को नमस्कार.
0: नमस्कार.
5: मैं 2017 से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट, बट मैंने सुना ना रिबैलेंसिंग करना चाहिए, ये सब एक्सपर्ट बोलते हैं, बट मुझे आता नहीं है रिबैलेंसिंग कैसे करते हैं, और अगर इसको ना करें तो लॉन्ग टर्म में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्लीज ये बताएं. थैंक यू.
2: बिल्कुल विनोद जी, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है. रीबैलेंसिंग जो सब बोलते रहते हैं कि करना ज़रूरी होता है, उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से होता है कि साइकोलॉजिकली ये कैसे होता है कि जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स से आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स या फिर आप ऑल इक्विटी फंड्स लेते हैं.
0: स्नेहा, हम क्यों ना यहां से शुरू करें कि रीबैलेंसिंग करना होता क्या है.
2: बिल्कुल, ये एक्चुअली यही मैं शुरुआत करी थी. रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि अपने पोर्टफोलियो पे एक नज़र डालना.
0: हाँ.
2: और अगर वो नजर डाल के आपको डर लग रहा है,
0: हाँ,
2: इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है. आपको अपना एक जो एंजाइटी लेवल्स है उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है. वहां पे एक चीज काम आती है जिसे हम, जैसे मैं अभी बता रही थी, एसेट एलोकेशन. कुछ डेट और कुछ इक्विटी सोच के आपने इन्वेस्ट करा होता है, बट मार्केट के उतार चढ़ाव कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो जो एक एलोकेशन होती है जो आपने अपनी सूझबूझ से करी थी वो बढ़ जाती है. तो मान लीजिए आपने ये सोचा था कि इक्विटी आप 70 रखेंगे, आप डेट 30 रखेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा डर जाते हैं जब मार्केट का उतार चढ़ाव एकदम वायलेंट हो जाता है. तो ऐसे टाइम में अब मान लीजिए मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आपने 70 इक्विटी सोचा था, आपका इक्विटी 80 हो गया है और डेट कम हो गया है, तो मार्केट जब वो जूम कर रही है आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया है, बट एक डर बीच में रहता है कि अब यहां से गिर गई तो आपके पास तो उतना डेट है ही नहीं जो आपको एक तरीके का कुशन प्रोवाइड कर पाए. तो जब मार्केट अगर ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो 100% गिर रहा है, वो डेट की वजह से आप 100 ना गिर के 80% गिरेंगे, तो एक मन में बैलेंस मेंटेन हो जाता है, इसे ही हम रीबैलेंसिंग कहते हैं. अब होता क्या है कि अगर आप नजर नहीं डालेंगे पोर्टफोलियो पे तो आपको पता नहीं चलेगा, एकदम से मार्केट गिर जाएगी, आप सोचेंगे मेरा इतना ज्यादा कैसे गिर गया,
0: नुकसान कैसे हो गया,
2: नुकसान कैसे हो गया. तो उस सब उन सब थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए रीबैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट होता है. अगर मान लीजिए कोई वैसे ही इस तरीके से किया जाता है कि फिर आपने जितना सोचा है कि इक्विटी होना चाहिए आप उतना बेचकर आप उसको कम कर दीजिए और उसको डेट में मूव कर दीजिए, काफी लोगों के लिए करना मुश्किल हो जाता है. तो मान लेते हैं आप अपने माइंड में एक नंबर सोच लेते हैं कि 10% से जब ऊपर नीचे होगा आप तभी ये एक्शन लेंगे. तो ये एक्शन मेरे हिसाब से, जैसे विनोद जी पूछ रहे थे, इसका लॉन्ग टर्म में फायदा नुकसान क्या होता है, तो ये बेसिकली अपना एक इंटरनल साइकोलॉजिकल बिहेवियर मैनेज करने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक रहती है. जैसे SIP भी इसीलिए ही हम कहते हैं करने के लिए कि मार्केट के उतार चढ़ाव से आपका एवरेज आउट हो जाता है जो एक प्राइस होता है और उसका जो मूवमेंट होता है. तो अगर विनोद जी आप ये खरीद बेच में नहीं कर पाते हैं, एक साल में भी आपसे ये नहीं हो पाता है, तो मान लीजिए आपका 10% का आपने नंबर सोचा है कि 10% से इक्विटी बढ़ेगा या कम होगा तभी आप एक्शन लेंगे, तो वो एक्शन आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप अपनी बेचने के बजाय आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर रहे थे उनको अगर आप पॉज कर देते हैं. सब फंड्स को नहीं कर सकते, जो फंड आपके लिए नुकसानदायक रह रहा है इस पूरे टाइम में उसके लिए आप पॉज कर सकते हैं. तो आप क्या कर रहे होंगे कि आप अपने बुरे फंड को फीड करना बंद कर देंगे और फिर लंबे समय में ऑटोमेटिकली जो एलोकेशन होगी वो रीबैलेंस हो जाएगी. तो विनोद जी मेरी समझ में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि रीबैलेंसिंग एक साल में एक बार कर लेना चाहिए. इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि क्या हमें ये करने की जरूरत है या नहीं. अगर आपकी जो एसेट एलोकेशन रहती है वो आपको बिल्कुल सही लग रही है, आपको लगता है आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए, उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं.
3: यू आर ट्यून इन टू मार्केट मंत्रा ऑन आकाशवाणी. यू कैन कॉल अस ऑन आवर टेलीफोन नंबर्स 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And in some other stories, the National Stock Exchange, NSE, is set to introduce a new method for closing price discovery through the closing auction session, CAS, from tomorrow. The new system will change the way closing prices are determined for eligible futures and options, F&O stocks, in the cash market, with the aim of improving price discovery and aligning Indian markets with the global practices. Under the new framework, non-F&O stocks will continue regular trading until 3:30 p.m. with no change in their trading schedule. Stocks included in the F&O segment will see continuous trading until 3:15 p.m. followed by the closing auction sessions from 3:15 p.m. to 3:35 p.m. Stocks and index F&O trading will continue until 3:40 p.m. This move will extend equity derivatives trading by 10 minutes, resulting in different closing times across market segments. The extension of F&O trading hours is aimed at creating a smoother link between the cash and derivatives markets while enhancing efficiency and improving the accuracy of the closing price determination. Previously, closing prices were calculated using the volume weighted average price, VWAP, of trades executed during the final 30 minutes of the trading session. Sneha, with the staggered timings of the cash and the derivative markets, how do you see this impacting the markets overall?
2: Right. So the biggest impact actually, like you mentioned, is in the price discovery, and that lies in the derivative segment, where this closing auction session actually matters the most, in ways it really doesn't matter for mutual fund investors. However, I would like to actually tune on the other side, because a retail investor would be worried with the news that we just mentioned as to what the impact really is for them. So what happens is, like, every day when the stock market closes at 3:30, every stock gets one closing price, or let's say the average of everything that has happened, which is, like you mentioned, is based on the volume weighted average price. So what this means is, when SEBI says that it has changed, it has

0: under management, because that is what helps a mid-cap mutual fund manager get hands on mid-cap. Because if it has become too big, then it becomes tough for it to, let's say, invest in more mid-caps, and it eventually starts investing some bit in large caps, which can actually dilute the mid-cap exposure.
1: जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं. जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: हाँ हाँ हाँ, थैंक यू. अब मैडम, अगर जैसे हमको इंडेक्स फंड चूज करना पड़े एकदम फ्रेश एकदम, मतलब तो निफ्टी 50 ठीक रहेगा अभी या निफ्टी नेक्स्ट 50 ठीक रहेगा, क्योंकि मार्केट डाउन हुआ, करेक्शन ड्यूरेशन काफी हुआ है लंबे समय के लिए, दोनों में कौन सा चूज करना चाहिए?
0: जी जितेंद्र जी, निफ्टी 50 के जो फंड्स हो जाते हैं वो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया की, तो वो लार्ज कैप एक तरीके से लार्ज कैप एलोकेशन ही आपको देते हैं. अब निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आपको लार्ज कैप एलोकेशन ही देते हैं, बट जो 100 बड़ी कंपनी है उनमें जो नीचे वाले 50 होते हैं उनका, तो उनमें जो एक लिक्विडिटी का एस्पेक्ट रहता है वो निफ्टी 50 से थोड़ा सा कम रहता है, ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं रहता है. तो दोनों का ही एक्सपोजर आप रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसे चुनाव करने वाली बात नहीं है. वो आप इस बेसिस पे कर सकते हैं, आप टॉप 50 का एक्सपोजर चाहते हैं कि आप बॉटम 50 का चाहते हैं. बॉटम 50 में आप ऐसा देख सकते हैं कि वो आपको, मतलब जो सेकेंड हाफ होता है वो शायद से आपको एक कुछ टाइम में बेटर रिटर्न पोटेंशियल दे सकते हैं, क्योंकि टॉप 50 ऑलरेडी काफी बढ़ चुके हैं. बट अगर आप प्लेन वेनिला इंडेक्स फंड देखना चाह रहे हैं तो आपको निफ्टी 50 से वो काम आसानी से हो जाएगा, बस जो ज्यादा खर्चा कम लेता हो और बहुत ही अच्छे तरीके से बेंचमार्क को ट्रैक करता हो.
1: सराफा बाजार में पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रहा. यूएस ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी, डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व के सख्त रुख के कारण बाजार में सुस्ती आई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना फ्यूचर्स कारोबार में सप्ताह के दौरान 1% से अधिक लुढ़क कर 141,511 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी फ्यूचर्स कारोबार में 2% से अधिक की गिरावट के साथ 217,198 रुपए प्रति किलोग्राम पर समाप्त हुई. कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना फ्यूचर्स कारोबार में सप्ताह के दौरान 0.5% गिरकर $4,000 से अधिक प्रति ट्राय आउंस पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी फ्यूचर्स कारोबार में सप्ताह के दौरान लगभग 2% गिरकर $58 प्रति ट्राय आउंस पर बंद हुई. भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है. ये वृद्धि पहले के अनुमानों से अधिक है. कल जारी एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अनुमानों से बेहतर है.
3: एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर सेट टू नेविगेट अ वीक packed with key market triggers, including the Reserve Bank of India's monetary policy decision and a fresh round of quarterly earnings reports. Market sentiment will also be driven by geopolitical developments, crude oil prices, foreign institutional investors' FII flows, commodity prices and currency movements. Market participants will closely monitor the key economic indicators, including purchasing managers' index PMI readings, foreign exchange reserve figures and monthly automobile sales data. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week. Three main board IPOs are scheduled to make their stock market debut, while one new main board issue will open for subscription. Globally, investors should closely monitor geopolitical developments surrounding the West Asian conflict, along with the US employment data and a fresh batch of corporate earnings. Inflation data from South Korea will also remain on the radar. Quick comment on that, Sneha. How do you see the markets playing out next week?
0: I always believe that the market outlook is should always remain sort of cautiously positive, since I am a very optimistic person, and I would like investors to also believe in that.
1: स्नेहा कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और निशित के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
3: थैंक यू स्नेहा. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, foreign portfolio investors turn net buyers after 4 months, infuse more than 20,000 crore rupees into Indian equities in July. In the bullion market, gold and silver prices declined last week, and domestic investors to focus on RBI monetary policy decision, corporate earnings results and geopolitical developments for Q's next week.

0: That's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
2: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, छात्र मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन समझौतों में से एक के अंतर्गत चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रौद्योगिकी आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और ऑस्ट्रेलिया के रीबाउंड संस्था के सहयोग से लागू की जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर में प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। केरल में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूब नारंग महिलाओं की 78 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking at the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
3: Aaj hum sabhi जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
4: He added that the launch marks the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance use. Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams.
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
4: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event. The participants included Nai Bharat and National Service Scheme volunteers as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity, and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee report released yesterday, the growth estimate marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainty. The report attributed the improved outlook to a broad-based pickup in high-frequency indicators during the April-June quarter. SBI Research also noted that the global environment remains uncertain amid the West Asia crisis, but India's domestic economy has shown resilience. India's coal production has witnessed a growth of 7.51% in July 2026 compared to the same period last year. Overall, coal production in the country during July this year has reached 69.75 million tons as per provisional data. Coal dispatch during the last month showed a growth of 17.34% year-on-year in July. The Delhi government has notified a scheme to provide compensation to the next of kin or legal heirs of prisoners who die an unnatural death while in custody within the prisons of the National Capital Region. Under this scheme, compensation of up to 7.5 lakh rupees will be awarded depending on the specific circumstances. Delhi Chief Minister Rekha Gupta stated the notified in accordance with the guidelines of the National Human Rights Commission. action will not only provide timely relief to the affected families under specified circumstances, but also further strengthen administrative accountability. In Keralam, the intensity of rainfall has decreased, bringing relief to people a day after heavy rain lashed several districts. The India Meteorological Department

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जन भागीदारी से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB में उप महानिदेशक आनंद प्रकाश तिवारी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशीत कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद प्रकाश तिवारी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। तिवारी सर, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: जैसा कि हमने सुना प्रधानमंत्री जी को, आज की एक नशा मुक्त अभियान उन्होंने शुरू किया है और ये एक बहुत बड़ा संदेश आज के युवाओं को, खास करके जेन जी को उन्होंने दिया है। कैसे देखते हैं इसे आप?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नशा मुक्त भारत का संकल्प लगातार दिया जाता रहा है, आज भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है और हम सभी लोग इस लक्ष्य के लिए समर्पित हैं। वस्तुतः भारत के लिए सबसे बड़ा कार्य और कार्यक्रम यदि हम कहें तो नशा मुक्त भारत बनाने के संकल्प को सजोना, जीना और पूरा करना है। वजह यह है कि अगर हमारा भारत नशा मुक्त नहीं होगा तो स्वस्थ नहीं होगा, और अगर स्वस्थ नहीं होगा तो ऐसे विकसित भारत को भी लेकर हम सभी भारतवासी क्या करेंगे। तो पूरे भारतवासी इस संकल्प को जिए और हम लोग चूंकि सरकार के कार्य को कर रहे हैं तो हम सभी लोग इसे पूरी तन्मयता से जन भागीदारी के साथ लगातार करें। मेरा तो यही विचार है और मेरा यही विश्वास है और हम लोग इसी के लिए कार्य भी कर रहे हैं।
1: जी तिवारी जी, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है और प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं के बारे में बताया है, खास करके अलग अलग हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी एक है कि 100 हफ्ते तक हर रविवार को सुबह में एक शॉर्ट टर्म अवेयरनेस ड्राइव जो पहले चलता था उससे हटकर ये एक हर हफ्ते एक सतत रूप से एक अभियान चलाया गया है, जहां पर कि युवाओं का आह्वान किया गया है कि वो कुछ न कुछ एक्टिविटी ऐसी करें जिससे कि उनका जो नशा के प्रति अगर किसी भी प्रकार का अगर उनका झुकाव हो रहा है तो उससे वो हट सकें। इससे पहले कि आप बताएं इसके बारे में, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
1: तिवारी जी, कैसे देखते हैं इसे आप?
2: ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया एक बड़ा आह्वान है और मुझे लगता है कि जो हमारी रचना धर्मिता है, जो हमारी सृजनशीलता है, जो हमारी कलात्मक प्रतिभाएं हैं, वह एक सकारात्मकता समाज को, मन को, व्यक्ति को, सबको जो है प्रदान करती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने व्यक्ति की सकारात्मक प्रतिभा को बाहर ला करके और एक सकारात्मक विचार और सकारात्मक समाज बनाने के लिए आह्वान किया है। जो भी शिक्षण संस्थान है, जो हमारे युवक हैं, हम सभी लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, हम सभी लोग जरूर इस आह्वान को जीवंत करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम इस अभियान को ज्यादा बड़ा बना सकें, इसे जीवंत कर सकें, इसे इसके वास्तविक मूर्त रूप तक ले जा सकें, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा है।
1: जी तिवारी जी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम इस आह्वान में देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने एक मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन की बात की है जो कि इस अभियान को और भी ज्यादा बल और गति देगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सिविल सोसाइटी है, इंडस्ट्री बॉडीज हैं और 125 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, वो साथ में आएंगे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे देखते हैं इसे?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अलोंग विद कंप्लीट सोसाइटी का सपना सामने रखा है और अभी नशा मुक्त भारत के लिए आपने देखा होगा कि 26 जून को माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट भी जो है रिलीज किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो लक्ष्य और उद्देश्य है नशा मुक्त भारत, उसे प्राप्त करने के लिए जितने भी संबंधित विभाग हैं,

0: हमारा समाज, शिक्षण संस्थान, युवा, अलग अलग मंत्रालय और स्वयंसेवी संस्थाएं, साथ में जो सांस्कृतिक सामाजिक संगठन हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ऐसे सभी लोग जिनका समाज में किसी न किसी रूप में, क्षेत्र में, किसी कार्य में प्रभाव है, उन सभी को जोड़ करके एक सामूहिक भागीदारी के साथ हम लोगों ने एक संकल्प पत्र, एक रोड मैप स्पष्ट लक्ष्यों के साथ जारी किया, जिसमें बड़े स्पष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको लेकर के, सबको जोड़ करके चलने के लिए आह्वान किया, और अगर हम देखें तो लगातार पिछले कुछ समय में तमाम ऐसी आवश्यकताएं सामने दृष्टिगोचर हुई हैं, जिसको दृष्टिगत करते हुए समाज में हमारा यह संकल्प और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम सभी लोगों के लिए एक उद्देश्य बड़ा समीचीन है, और इसे न केवल हम स्वस्थ युवा के रूप में देखें, स्वस्थ भारत के रूप में देखें, इसके बड़े दीर्घकालिक जो है आयाम है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी है, सांस्कृतिक रूप से राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, इसमें सभी लोगों को जोड़कर सामूहिक भागीदारी का भी भाव है, और इसमें एक संकल्पित सक्षम और स्वस्थ युवा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य निहित है। तो मुझे लगता है कि ये सभी लोग मिलकर करेंगे, और ऑलरेडी अगर हम देखें तो हम लोगों ने इस पर कार्य प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप प्रारंभ भी किया है, और आगे हम इसे और उनके सपनों और उनके लक्ष्यों तक प्राप्त करने और पहुंचने का प्रयास करेंगे।
1: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इस मौके पर क्या कहा।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे, और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: तिवारी जी, हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने युवाओं का बड़ा आह्वान किया है कि कैसे ड्रग्स से, नशीले पदार्थों से अलग रहना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस दिशा में क्या काम कर रहा है?
0: हम लोग राष्ट्र में सभी को जोड़ करके नशा मुक्त भारत को बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, और अभी जैसा कि हमने आपको बोला कि नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 अभी हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से उसका विमोचन देखा है, और उसमें जो लक्ष्य है, सभी लोगों को जोड़ना है, सभी राज्यों को जोड़ना है, समाज के हर अंग को जोड़ना है, हम सभी विद्यालय को लेकर, सभी समूहों को लेकर, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, शिक्षा मंत्रालय के साथ, अगर आप देखेंगे तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड अन्य सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के एक नोडल एजेंसी के रूप में राज्यों के साथ हम सहभागिता और उनके द्वारा एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ हम लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। एनसीबी एक नोडल के रूप में काम कर रही है, और एनसीबी के लक्ष्य स्पष्ट हैं कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करना है, और हम गृह मंत्रालय की एजेंसी के रूप में राज्यों से कोऑर्डिनेट करते हुए, सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए हम लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमने 3 वर्ष में एक स्पष्ट योजना और रूपरेखा सामने रखी है, और इस योजना को प्राप्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संदेश है उसके साथ हमारा जो काम करने का प्रयास है उसमें और गति आएगी।
1: जी तिवारी जी, प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, कल्चरल आर्ट्स, स्ट्रीट प्ले जिसे नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं, ये सारी चीजों को उन्होंने समावेशित किया अपने भाषण में, ताकि युवाओं को नशे से अलग रखा जा सके। हम यहाँ ये समझना चाहेंगे तिवारी जी कि जो युवा इस नशे के लत में पड़ चुके हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए और इसके अलावा क्या किया जा सकता है, और आपकी एजेंसी क्या कर रही है इस दिशा में?
0: सरकार ने एक नए दृष्टिकोण से कार्य किया है, और विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच आप इसे कह सकते हैं, कानून में बदलाव पर भी कार्य किया जा रहा है, साथ में पूरे भारत में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना अगर देखेंगे तो उसका जो स्टैंडर्ड है उसको बेहतर से बेहतर बनाना, जो लोग नशे के आदि हो चुके हैं वो जाएं, इसके लिए एक सशक्त अभियान को आगे बढ़ाना, राज्यों की और केंद्र की सामूहिक भागीदारी से इसे पूरा करना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस दोनों इस पर कार्य कर रहे हैं। हम यह भी तय कर रहे हैं कि वहां पर जो लोग जाएं उनका सुधार हो और हमारा कानून का ढांचा कुछ इस प्रकार का बने जिससे कि उस सुधार को गति दी जा सके। तो न केवल आधारभूत संरचना में बदलाव बल्कि उसके नियामक प्रक्रियाओं में बदलाव, समाज की धारणा में बदलाव और शिक्षण संस्था और सभी जगहों पर मांग में कमी के लिए लगातार प्रचार प्रसार अभियान के द्वारा आमूल चूल परिवर्तन के लिए सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और इस दिशा में नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट के चारों जो स्तंभ हैं, इन चारों स्तंभों में सभी चीजों को संपूर्ण रूप से परिभाषित किया गया है और इस पर हम स्पष्ट लक्ष्य के साथ एक सुस्पष्ट समय सीमा के साथ कार्य कर रहे हैं जिससे यह एक निश्चित समय सीमा में हम लक्ष्यों को प्राप्त कर पूरा कर सकें।
1: तिवारी जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर का अगर कोई बच्चा नशे का शिकार बन गया है तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में उसके घर वाले इस चीज को छुपाते हैं और ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार वाले या उसके आसपास के जो लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो आगे बढ़कर इस चीज के लिए नहीं आते हैं। तो इसका प्रचार प्रसार, रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करें या और भी कुछ ऐसे जो कार्यक्रम जो चला रही है सरकार, इसके बारे में प्रचार प्रसार के लिए और हम क्या कर सकते हैं?
0: इसके प्रचार प्रसार के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि लगातार हमारे प्रचार प्रसार के माध्यमों में इस विषय की चर्चा करना और इस विषय से संबंधित विज्ञापन जारी करवाया जाना, दूसरा शैक्षणिक संस्थाओं में इस पर लगातार चर्चा किया जाना, तीसरा गांव पंचायत के स्तर पर और नगर पंचायत के स्तर पर भी जो हमारी संस्थाएं हैं उनको जोड़ना, पुरस्कार नीति को भी सामने ले आना, जैसे शिक्षा मित्र और जैसे इस प्रकार के तमाम जो है स्वास्थ्य मित्र हैं, इसी तरह से जो हमारे आशा कर्मी हैं और जो हमारे ग्राम पंचायत के स्तर पर हमारे कर्मी हैं उनको जोड़ना इस अभियान से। इसके अलावा परिवारों को जोड़ना, एक आंदोलन के रूप में NSS, NCC, आशा कर्मी और इस प्रकार के सभी लोगों को जोड़ते हुए एक सुस्पष्ट योजना के तहत इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी के मन में कोई विभ्रम की स्थिति ना रहे और लोग आए। नशा मुक्ति मित्र, हमारे माई भारत स्वयं सेवक, आशा कर्मी, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यानी कि पूरी तरह से ग्रास रूट लेवल तक जा करके लोगों को सजग करना, परिवारों को उसके लिए तैयार करना और मन के दुर्भाव को हटा करके हम उन्हें अपने स्वास्थ्य केंद्रों तक ले आए यह सुनिश्चित करना, यह हमने लक्ष्यों में रखा है। लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हम अपने जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसके आधारभूत संरचना में उन्नयन का भी कार्य किया गया है और वो निरंतर जारी है जिससे वहां पर उनको उचित और उन्नत सुविधा और चिकित्सा दी जा सके। तो यह एक पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें न केवल सुधार है बल्कि सुधार के बाद मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, परिवर्तन, खेल और एक पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ डिजाइन किया हुआ एक ऐसा हमारा इकोसिस्टम है जिसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति, बच्चा, युवा जो अगर नशे का शिकार होता है तो वह 1930 पर कॉल करे, हमारे जो सामाजिक न्याय मंत्रालय की साइट है उस पर अप्रोच करे, NCB की मानस हेल्पलाइन पर अप्रोच करे और वहां से वह तुरंत सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है।
1: जी जी, तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे जन भागीदारी से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB में उप महानिदेशक आनंद प्रकाश तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशीत कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNHD@gmail.com।
4: सुर्खियों में

नमस्कार। शाम का ना अपना ही एक अलग रंग होता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद ये कुछ पल ठहरने, मुस्कुराने और खुद से मिलने का समय होता है। कोई घर लौटते हुए रास्ते में है, कोई चाय या कॉफी की चुस्कियों के साथ बालकनी में बैठा है, तो कोई परिवार के साथ रात के खाने की तैयारी में व्यस्त है। आज के दौर में ना शाम की खूबसूरत तस्वीरें और छोटी छोटी वीडियो सोशल मीडिया की रील्स का हिस्सा बन जाती हैं। ढलता सूरज, जगमगाती सड़कें, हाथ में एक कप गर्मा गर्म चाय या फिर कॉफी का प्याला, खिड़की के बाहर बारिश या शहर की रोशनियां, और इन सब के साथ अक्सर ना कोई पुराना फिल्मी गीत सुनाई देता है इन रील्स में। बदलते समय के साथ माध्यम भले ही बदल गए हों, लेकिन इन गीतों का जादू आज भी वैसा ही है। और यही वजह है कि 60 और 70 के दशक के अनेक गीत आज भी इस नई जनरेशन की प्लेलिस्ट, रील्स और यादगार पलों का हिस्सा बने हुए हैं। तो बस ऐसी ही कुछ मजेदार धुनें और उनसे जुड़ी दिलचस्प बातों के साथ आज का प्रोग्राम है सांझ ढले, जिसे लिए आपके साथ हूं मैं नूपुर, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं थिरकने पर मजबूर कर देने वाले इस गीत से। फिल्म यादों की बारा से गीत है आशा ताई और किशोरदा की मधुर आवाजों में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर टी बर्मन।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, प्रोग्राम सांझ चले साथ में नूपुर। आजकल ना दोस्तों हम प्लेलिस्ट बनाते हैं, अपने मूड के हिसाब से उसमें गाने चुन चुन कर लगाते हैं। लेकिन जनाब एक जमाना था जब गाने सुनते ही मूड बन जाया करता था। एक टाइम था जब लास्ट सीन नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी ना इंतजार होता था घंटों दिनों गाना सुनने का रेडियो पर। आजकल हम बड़ी आसानी से स्वाइप करते हैं, लेकिन उस वक्त लोग एक नजर में पूरी कहानी पढ़ लिया करते थे। तो आज की शाम का अपडेट ये है कि दिल थोड़ा धीमा चल रहा है, धड़कने लेकिन तेज हैं, यादें और भी तेज हैं। और शाम का अगर ना कोई डांस मोड होता तो शायद 70s का यही गाना होता जो अभी आप तक पहुंच रहा है। धीरे धीरे इसका म्यूजिक आप सुन रहे हैं, इसमें एनर्जी भी है, रोमांस भी है और 70s वाली वो एक फ्रीडम भी है। राहुल देव बर्मन जी ने इसे ऐसे कंपोज किया जैसे म्यूजिक नहीं कोई मूवमेंट बना दिया हो। आज इसे सुने तो लगता है ना लाइफ में थोड़ी स्पीड और ऐड कर दी जाए। फिल्म

टूटा कहीं का, आवाजें वही किशोरदा और आशा ताई की, और लिरिसिस्ट गुलशन पावरा, म्यूजिक डायरेक्टर तो बता ही दिया है आरटी बर्मन। क्या कह रहे हैं, जीवन के हर मोड़ पर कौन मिल जाए, कोई तो मिल जाए ना, मिल जाए वो हम सफर।

0: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
1: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
0: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
1: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: कभी कभी ना ऐसा होता है कि किसी गाने की स्टार्टिंग ट्यून जो होती है ना, यानी प्रिल्यूड, बता देती है कि अब अगले 3-4 मिनट मुस्कुराहट हमारे चेहरे से जाएगी नहीं। माना जाता है कि पंचम दा को कैची ओपनिंग बनाने में महारत हासिल थी। अगला जो सॉन्ग आप तक पहुंचने वाला है ना, वो बिल्कुल इसका एकदम फिट एग्जाम्पल है। मोहम्मद रफी साहब की मखमली आवाज और हल्की फुल्की बीट्स म्यूजिक की, इन दोनों ने मिलकर इस गीत को ना एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग बना दिया है। तो आइए शाम को थोड़ा और रंगीन बनाते हैं, सुनते हैं द ट्रेन फिल्म से ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी और म्यूजिक डायरेक्टर RD बर्मन। और गीत के बाद ठीक 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। सुनते रहिए FM गोल्ड।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की। दिल्ली पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल ने नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को झंडी दिखाकर रवाना किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन और वैधानिक उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार 5 लाख रुपए से 7,50,000 रुपए तक की मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित यह योजना पीड़ित परिवारों को निर्धारित परिस्थितियों में समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के साथ प्रशासनिक उत्तरदायित्व को और अधिक मजबूत करेगी। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना दिल्ली जेलों में कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा भुगतान योजना 2025 के नाम से लागू होंगी। योजना केवल उन मामलों पर लागू होंगी जिनमें इस योजना की अधिसूचना की तिथि और उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। अधिसूचना के अनुसार कैदियों के बीच आपसी झगड़े अथवा जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना या मारपीट के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 7,50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, चिकित्सा और पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में 5 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक मृत्यु अथवा बीमारी से हुई मृत्यु के मामले में मुआवजा देय नहीं होगा। इसके अलावा जेल से फरार होने अथवा वैध अभिरक्षा से भागने के दौरान हुई मृत्यु और आपदा या विपदा के कारण हुई मृत्यु भी इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगी। योजना के तहत संबंधित जेल अधिकारी को प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के अंतिम कारण, कैदी के चिकित्सा इतिहास तथा मृत्यु से पूर्व उपलब्ध कराए गए उपचार का विवरण महानिदेशक दिल्ली को भेजना

0: होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार कानून के शासन, मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मयूर विहार फेज टू में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल की साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सा सेवाओं का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की तथा उनके अनुभव, सुझाव और अपेक्षाएं सुनी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर मरीज का विश्वास सर्वोपरि है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान की असल पहचान केवल उसकी रैंकिंग या अच्छी आधारभूत संरचना से नहीं, बल्कि उन जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों से होती है जिन्हें वो पीढ़ी दर पीढ़ी तैयार करता है। उपराज्यपाल ने यह बात दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित किरोड़ी मल कॉलेज के ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उपराज्यपाल ने कहा कि किरोड़ी मल कॉलेज 7 दशकों से अधिक समय से दिल्ली विश्वविद्यालय के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी 6 विदेशी नागरिक अपनी यात्रा के दौरान तय 15 दिन की समय सीमा से ज्यादा समय तक राजधानी के होटल में रुके पाए गए। पुलिस ने कहा कि विदेशी नागरिक के पास से पासपोर्ट, वीजा और यात्रा से जुड़े दस्तावेजों की जांच की मांग की गई, साथ ही विदेशी पंजीकरण कार्यालय के जरिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा विदेशी पंजीकरण कार्यालय ने उनके आने जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं और देश से वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी 6 लोगों को हिरासत केंद्र में भेज दिया गया है। उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल ने रेलगाड़ियों में बिना टिकट की यात्रा की समस्या को रोकने के लिए नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यात्री वैध टिकट के साथ यात्रा करे और रेलगाड़ियों में अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके। इन अभियानों के परिणाम स्वरूप कई लोगों को पकड़ा गया और जुर्माना भी वसूला गया। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि जांच के दौरान बिना टिकट और अनियमित टिकट वाले कुल 101 यात्रियों का पता चला और 92,000 रूपए से अधिक का रेलवे राजस्व वसूला गया। दिल्ली सरकार ने राजधानी की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक सक्षम, आधुनिक और पेशेवर बनाने की दिशा में दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DSDMA के अंतर्गत कार्यरत स्टाफ के मानदेय में 100% तक की वृद्धि करने की घोषणा की है।
2: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय उन कर्मियों को न्याय दिलाने की दिशा में उठाया गया है जिन्होंने वर्ष 2009 से लगातार दिल्ली की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की रीढ़ बनकर कार्य किया, लेकिन पिछले 16 वर्षों में उनके मानदेय में एक बार भी संशोधन नहीं हुआ। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये संशोधन किसी प्रकार की अनुग्रह राशि नहीं बल्कि जिम्मेदारियों, अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप एक न्याय संगत तथा प्रतिस्पर्धी वेतन संरचना सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य में इस संवर्ग को और अधिक मजबूत तथा पेशेवर बनाने के उद्देश्य से प्रदर्शन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि करने पर विचार करेगी। साथ ही कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुरक्षा तथा प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और क्षमता निर्माण जैसे कल्याणकारी उपायों पर भी योजना लाएगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी सेक्टर 15 के श्री अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी में एरोबिन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि एरोबिन की सहायता से एक बार में एक बिन में 10 किलो गीले कूड़े को बायोकल्चर की सहायता से 40 दिनों के अंदर कंपोस्ट खाद में बदला जा सकेगा।
3: महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण और निस्तारण करने में सहायता मिलेगी। श्री वाही ने कहा कि इस प्रकार की छोटी छोटी पहलों को अपनाकर हम कूड़े को लैंडफिल साइट पर जाने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान

0: दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता बेड़े में अनेक आधुनिक मशीनों को भी शामिल किया गया है, जिससे पूरे शहर में स्वच्छता के स्तर को और बेहतर बनाने में मदद मिल सके। महापौर ने दिल्ली वासियों से भी अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने में दिल्ली नगर निगम का सहयोग करें तथा राजधानी को स्वच्छ और हरित बनाने के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। महापौर ने स्वास्थ्य जाँच शिविर का भी शुभारम्भ किया। आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज रोहिणी सेक्टर 10 के जेएमडी टेंट में लक्ष्मी तरु फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रक्त की एक एक बूंद किसी के जीवन में नई उम्मीद बनकर पहुंचती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। भारत की स्वतंत्रता के 79 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी साइक्लोथॉन एक्सपीडिशन 2026 का भव्य फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मुक्केबाज तथा ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम विशेष रूप से मौजूद रहीं। साइक्लोथॉन को झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत की आजादी के 79 साल पूरे होने के जश्न के तहत इस साइक्लोथॉन में 79 एनसीसी कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। एनसीसी फिटनेस अनुशासन और समाज सेवा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ भी करवा रहे हैं।
2: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: श्री मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग केवल फिटनेस नहीं है बल्कि प्रदूषण का सॉल्यूशन भी है। इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नेवर गिव अप की बात ध्यान में रखनी चाहिए।
3: मुझे बहुत अच्छा लगा आज मौके में मुझे भी बुलाया गया है और ये साइक्लोथॉन 2026 दिल्ली में हुआ है, युवाओं लोग के लिए बहुत बहुत जरूरी है और मैं आ रही हूँ कि उन लोग सपोर्ट करने के लिए।
1: राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के प्रतीक तिरंगे के अभिकल्पक यानी डिजाइनर और महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी की जयंती पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी श्री वेंकैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज निर्माता पिंगली वेंकैया ने भारत की विविधता को एक राष्ट्र भाव में बांधा। राजधानी दिल्ली में आज दिन भर मौसम सामान्य रहा, हालांकि राजधानी के कई क्षेत्रों में दोपहर में वर्षा हुई। आज का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि दिल्ली में कल हल्की बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन को मुआवजा देने की अधिसूचित की। उत्तरी रेलवे ने दिल्ली मंडल ने नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का अनूठा मंच है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कम्प्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां भविष्य को आकार देंगी, इसलिए शिक्षण संस्थानों के लिए अपने शिक्षण विधियों का आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। UKPNP के अध्यक्ष सरदार शौकत अली कश्मीरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कई बैठकें की। प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान से अपने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का पालन करने और नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग बंद करने का आह्वान किया। प्रतिनिधिमंडल ने गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई, अधिकृत क्षेत्र में इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं की बहाली, कर्फ्यू हटाने और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तथा मानवाधिकार संगठनों को स्थिति का आकलन करने के लिए निर्बाध पहुंच की भी मांग की है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए डाले गए वोटों की गणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद सुबह 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। ये सम्मेलन हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगा। इंडोनेशिया में मदरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों का तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी।

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुरों से सजी इस सुरीली महफिल मधुरिमा में आपका स्वागत है। मैं हूं नूपुर। कहते हैं संगीत वो भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की नहीं संवेदना की जरूरत होती है, और जब इस संगीत को रागों का आधार मिल जाए तो हर स्वर एक नई अनुभूति बन जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग केवल स्वरों का संयोजन नहीं है, वो तो प्रकृति के रंग हैं, ऋतुओं की खुशबू हैं, समय की धड़कन है और मन के भावों का सबसे सुंदर प्रतिबिंब है। कोई राग प्रभात की ताजगी लेकर आता है तो कोई शाम की शांति, कोई मन में विरह जगाता है तो कोई आनंद और उत्सव का रंग भरने चला आता है। तो आइए आज मधुरिमा में हम सुरों की इसी अद्भुत दुनिया के द्वार खोलें और जानें किसी एक राग की रोचक कहानी, उसके भाव, उसका समय, उसकी विशेषताएं, और फिर हाँ कुछ ऐसे गीत भी सुनेंगे जो इसी राग को आधार मानकर जिनके संगीत की रचना की गई। तो अपने मन की वीणा के तारों को सुरों से जोड़ लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में संगीत जो है वो केवल आपके कानों तक नहीं बल्कि आपके दिलों तक पहुंचने वाला है। फिल्म अभिनेत्री लता जी की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा एक गीत आप तक पहुंच रहा है। इस गीत का संगीत बना राग कलावती को आधार मानकर, बहुत ही प्यारा से गीत है, सुनिए इसे।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: राग कलावती हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बेहद मधुर और लोकप्रिय राग है, जिसकी प्रकृति शांत, कोमल और श्रृंगार प्रधान मानी जाती है। इसे अमूमन रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया बजाया जाता है, यानी लगभग शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच। खमाज थाट का ये राग है। जाति औडव औडव यानी आरोह और अवरोह दोनों में 5-5 स्वर लगते हैं। वादी स्वर प, संवादी सा। इस राग में रे और म का प्रयोग नहीं होता। राग कलावती में शांति, माधुर्य, अनुराग और सौम्य श्रृंगार का सुंदर समन्वय मिलता है। इसकी सरल स्वर संरचना इसे श्रोताओं के लिए तुरंत आकर्षक बना देती है। इसमें मध्यम और ऋषभ के अभाव से ना एक विशिष्ट रंग उत्पन्न होता है, और इसकी ये जो पहचान है ना, वो है पंचम पर विशेष ठहराव। तानों और आलाप में धैवत और निषाद का सुंदर प्रयोग इस राग को निखारता है। और इस राग पर आधारित अगर हम किसी गीत की बात करें तो उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण, सबसे सुंदर उदाहरण माना जाता है चित्रलेखा फिल्म का ये गीत, जो अभी आप तक पहुंचने वाला है, काहे तरसाए जियरा। आवाजें आशा भोसले और उषा भोसले की, और साहिल उद्यानवी ने लिखा इस गीत को, संगीत रचना की रोशन जी ने।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: तो आपने सुनी ये धुन 60 के दशक की, तब इस्तेमाल किया जाता था राग कलावती, और कई आधुनिक संगीतकारों ने भी इस राग की स्वर संरचना का उपयोग किया है भावपूर्ण धुनों के निर्माण के लिए। हालांकि फिल्मी गीतों में अक्सर अन्य रागों का मिश्रण भी होता है। तो ये जो राग है राग कलावती, अपनी सहजता और मधुरता के कारण शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों को प्रारंभिक चरण में सिखाया जाता है, और साथ ही साथ ये मंच पर प्रस्तुति करने के लिए भी समान रूप से लोकप्रिय है। ख्याल गायन में विशेष रूप से मध्य और द्रुत लय की बंदिशों के लिए इस राग का प्रयोग किया जाता है। ठुमरी और भजन में इसके मधुर स्वभाव के कारण इसका प्रयोग किया जाता है, और वाद्य संगीत में ये अत्यंत लोकप्रिय है। सुगम संगीत और फिल्म संगीत में प्रेम विरह आत्मीयता और शांत भाव व्यक्त करने के लिए गजल और लाइट म्यूजिक की अगर बात हो ना, तो उनकी कुछ रचनाओं में भी इस राग की छाया देखने को मिलती है। पहुंच रहा है आप तक लता मंगेशकर जी की आवाज में फिल्म खिलौना से गीत, और गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत को जब आप सुनेंगे तो इसके संगीत में भी आपको राग कलावती की छाया नजर आएगी। तो राग कलावती अपनी मधुर और सहज स्वर संरचना के कारण सुगम संगीत में बहुत विशेष रूप से इस्तेमाल किया गया। प्रेम शांति और आत्मीयता के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए ये राग अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। सुनते हैं ये रचना और इस प्रोग्राम की आज की आखिरी प्रस्तुति, और इसके बाद आगे आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन समाचार संध्या। तो सुनते रहिए FM गोल्ड। नूपुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों में कल हुई स्वर्ण पदकों की बारिश पे और साथ साथ नजर होगी आज होने वाले शानदार भव्य क्लोजिंग सेरेमनी पर भी बात की जाएगी। आज कार्यक्रम में तन्वी शर्मा के उस इतिहास की जो उन्होंने ताइपाई ओपन के बैडमिंटन कोर्ट पर रचा है,

0: और संडे है तो बिल्कुल दी जाएगी फिटनेस की थोड़ी सी डोज। लेकिन सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों ने कल शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण समेत 10 पदक जीते। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपना अभियान 7 पदकों के साथ संपन्न किया। 3 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य पदक शामिल। तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीता और एनसीसी साइक्लोथॉन एक्सपीडिशन और फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 84वां संस्करण नई दिल्ली सहित पूरे देश में आयोजित किया गया। तो सबसे पहले आज कार्यक्रम शुरू होगा ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की हलचल के साथ, जो अब अपने समापन के निकट पहुंच चुका है। और अब से कुछ घंटों बाद इस खेल का भव्य समापन समारोह ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। और राष्ट्रमंडल खेलों पे हमारे साथ अधिक जानकारी लेकर के जुड़े रहेंगे हमारे सहयोगी विशेष। लेकिन पहले बात की जाए शनिवार के दिन की, यानी कल के दिन की, जहां भारतीय मुक्केबाजों की धमक से गुंजायमान होता नजर आया पूरा का पूरा ग्लासगो। और पदक तालिका में 11वें स्थान से शुरू हुआ दिन समाप्त होते होते भारत को 4थे स्थान पर लेकर आ गया। और इस कहानी का एकमात्र किरदार थे भारतीय मुक्केबाज, जो जब रिंग में उतरे तो स्वर्ण पदक की बारिश होती नजर आई। अपने फाइनल मुकाबले खेलने उतरे 10 भारतीय मुक्केबाजों में से 7 ने जीत दर्ज करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते, जबकि 3 मुक्केबाजों ने रजत पदक भारत की झोली में डाले। आइए सुनते हैं भारतीय मुक्केबाजों के प्रदर्शन पर यह खास रिपोर्ट।
1: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल भारतीय मुक्केबाजों की ताकत के आगे दुनिया भर के दिग्गज बेअसर नजर आए, जहां रिंग में उतरते भारतीय मुक्केबाजों ने एक के बाद एक स्वर्ण पदकों की झड़ी लगा दी। प्रीति पवार ने मुक्केबाजी में भारत के लिए खाता खोला, जिन्होंने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा के स्कारलेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलो कैटेगरी में नॉर्दर्न आयरलैंड की माइकेला वॉल्स को 5-0 से शिकस्त कर खिताब अपने नाम किया। साक्षी ने 51 किलोग्राम वर्ग के खिताबी मैच में इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को 5-0 से हराकर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके अगले ही मुकाबले में प्रिया घणघस ने कनाडा की मैरी बथुल अल अहमदीह को 4-1 से मात देकर पदक तालिका में भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक अंकित कर दिया। मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों में सचिन सिवाच ने इंग्लैंड के मुक्केबाज के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज करते हुए गोल्ड अपने नाम किया। अस्सी किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। चैंपियन इन द रेड कॉर्नर फॉर इंडिया। अंकुश ने इंग्लैंड के डिमेजी शिट्टू को 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। भारत के लिए पदकों का सिलसिला सिर्फ यही नहीं थमा। नरेंद्र ने पुरुष के 90 किलो से अधिक वर्ग में रजत पदक जीता। जादूमणि सिंह को भी ऑस्ट्रेलिया के जाई डिक्सन के खिलाफ 5-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। जबकि महिलाओं में लवलीना बोरगोहेन को 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक प्राप्त हुआ। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: तो विशेष, क्या कहा जाए कि शनिवार का दिन भारत के लिए बॉक्सर्स डे शामिल हुआ।
2: ये शक्ति, मैं कहना चाहूंगा कि ये भारत के लिए बॉक्सर्स डे नहीं, गोल्डन डे साबित हुआ है। भारत ने 7 गोल्ड मेडल भारतीय मुक्केबाजों ने जीते और 3 जो है सिल्वर मेडल उनकी झोली में डाले।
0: जी बिल्कुल, और एक गोल्ड मेडल और भी आया इसके इतर। लेकिन क्या कहा जा सकता है इन मुक्केबाजों के प्रदर्शन पे। हमने रिपोर्ट में सुना 10 खिलाड़ी थे, उन पे कितनी चर्चा हो पाएगी वो तो संभव नहीं है, लेकिन क्या सबसे खास आउटपुट रहे इन 10 खिलाड़ियों के, क्या कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं भारत की इस मेडल टैली में।
2: शक्ति, सेमीफाइनल से पहले सब जगह खबर चल रही थी कि 10 खिलाड़ी 10 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित कर लिए हैं इसमें। लेकिन खास बात यह रही कि 10 के 10 ने फाइनल में जगह बनाई, जिसमें से 7 गोल्ड और 3 सिल्वर हमें प्राप्त हुए। साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, प्रिया घांगस, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल जैसे खिलाड़ियों ने अलग अलग वेट कैटेगरीज में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं सिल्वर मेडल की अगर बात करें तो लवलीना बोरगोहेन और जादूमणि सिंह, नरेंद्र, इन तीनों ने भारत को सिल्वर मेडल जिताया। तो जो एक बात होती है सेमीफाइनल से पहले कि ब्रॉन्ज तो पक्का ही हो गया, ऐसा ना करते हुए भारतीय मुक्केबाजों ने भारत को गोल्ड और सिल्वर जो है उनकी झोली में डाला।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि स्वर्ण पदक पे

0: लगाया और हर मुक्का जो है भारत के लिए एक बेहतर पदक और एक बेहतर उम्मीद लेकर के आया। और अब बात की जाए भारतीय पैरा खिलाड़ियों की, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भारत का पैरा इवेंट्स में अभियान 7 पदक के साथ संपन्न हुआ। इनमें 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रस्तुत है भारतीय पैरा टीम के प्रदर्शन पर ये रिपोर्ट।
1: पैरा इवेंट्स में भारत के लिए पदकों की शुरुआत झंडू कुमार ने कांस्य पदक के साथ की। भारोत्तोलक झंडू कुमार ने 130.9 के बेस्ट रिजल्ट के भारत के लिए ग्लासगो में पहला पदक जीता। रजत पदक के लिए हुए कड़े मुकाबले में वो सिर्फ 0.1 से पीछे रहे। एथलेटिक्स में महिलाओं की शॉर्ट पुट F57 स्पर्धा में शर्मिला धनखड़ ने 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए स्वर्ण पदक, और शिल्पा कंचुगर को पालू शायला ने 7.26 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। पुरुषों के 100 मीटर T47 दौड़ में दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। पुरुषों के शॉर्ट पुट F57 में भी भारत ने डबल पोडियम फिनिश करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीते। सोमन राणा ने 13.40 मीटर के विनिंग थ्रो के साथ पहला स्थान और शुभम जुयाल ने 13.28 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: सिर्फ खिलाड़ियों ने पदक ही नहीं जीते, जब हम डबल पोडियम की बात करते हैं तो बताता है कि आपके उस इवेंट में किस प्रकार का दबदबा है, जब शीर्ष 3 में से 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी आपके देश के होते हैं और बहुत गौरवमय उपस्थिति होती है। भारत ने इस बार 2 से 3 कैटेगरी में ऐसे डबल पोडियम फिनिश किए, और खासकर वो 100 मीटर की दौड़ जिसमें भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों अपनी झोली में डाला। और अब एथलेटिक्स की बात कर ही ली है तो बात की जाए इस पूरे खेल आयोजन में सबसे अधिक सुर्खियां बटोरने वाले भारत के लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुरवीर सिंह की, जिन्होंने कल एक और पदक भारत के खाते में जोड़ा। गुरवीर ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतते हुए इतिहास रचा। उन्होंने 13:24.95 सेकंड का समय लेते हुए ये दौड़ पूरी की। गुरवीर राष्ट्रमंडल खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं।
2: But the man who steps up to the podium right now is a history maker. He did so in the 10,000 meters and he's done so in the 5,000 meters as well. The first ever medalist from India in this discipline, Gulbir Singh.
0: पहले 10,000 मीटर और फिर 5,000 मीटर विशेष, कितना ये खास खिलाड़ी है भारत के लिए?
3: ये गुलवीर जो है भारत के लिए बहुत ही खास खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत को पदक दिलाया है जो कि परंपरागत तौर पर भारतीय खिलाड़ियों के लिए सही नहीं माना जाता है, या उसके लिए उनकी जो बॉडी है वो ठीक नहीं मानी जाती। ये उनको ये पदक भारत के लिए बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने एक ही कॉमनवेल्थ इवेंट में जो है दो मेडल जीते हैं, और ये डबल पोडियम फिनिश करने वाले भी पहले भारतीय बने हैं। गुलवीर ने ट्रेडिशनल लॉन्ग डिस्टेंस जो सुपर पावर्स कहे जाते हैं, कीनिया और युगांडा, उनके खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए ये मेडल अपने नाम किए हैं।
0: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि इसके पहले जब उन्होंने 10,000 मीटर में रजत पदक जीता था तो भी काफ़ी चर्चाएं उनकी हुई थी। एक ऐसा इवेंट है जहां पे आप 24 से 25 चक्कर लगाते हैं उस 400 मीटर के ट्रैक के, जो आपके स्टैमिना के साथ, आपके पेशेंस के साथ, आपके मनोवैज्ञानिक ध्यान की भी बहुत ज़्यादा परीक्षा लेता है। आपको लगातार चक्कर लगाने हैं, आखिरी समय तक अपनी स्पीड को बचा के रखना है, और फिर आखिरी के 100, 150, 200 मीटर में, जो कल भी देखने को मिला और 10,000 मीटर की दौड़ में भी था, एक शानदार स्प्रिंट आती और भारत को पोडियम तक लेकर के जाती है। और भारत की अगर पदक तालिका की बात की जाए तो 39 पदक हो चुके हैं, चौथे स्थान पर भारत है, 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक। चेरी ऑन द केक भारत के लिए इस आयोजन में रहा है जूडो, जिससे 2 स्वर्ण आए, 1 रजत आया, 1 कांस्य पदक आया। महत्वाकांक्षा शायद नहीं थी, लेकिन भारतीय जूडो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कैसे देखा जा सकता है विशेष?
3: देखिए, जूडो की बात करें शक्ति, तो यह जो इवेंट रहा है इसमें भारत को पहला गोल्ड हासिल हुआ है। 1990 में यह कॉमनवेल्थ गेम में इंट्रोड्यूस किया गया था जूडो को, और उसके बाद से भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है वो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हमें देखने को मिला है। अस्मिता डे जो है वो पहली खिलाड़ी बनी जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता, वहीं हर्ष सिंह 60 किलोग्राम में पहले ऐसे पुरुष बने जिन्होंने मतलब भारत के लिए गोल्ड जीता। यामिनी मौर्या और उन्नति शर्मा ने भी सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतकर भारत के मान को बढ़ाया है।
0: जी बिल्कुल, और मान को बढ़ाया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इन तमाम पदक विजेताओं को बधाई और

0: शुभकामनाएं दी हैं। और अब राष्ट्रमंडल खेलों के बाद बात की जाए बैडमिंटन कोर्ट की, जहां एक इतिहास आज रचा है। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा ने, जिन्होंने ताइपे ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीता, 17 वर्षीय तन्वी ने इस खिताब को जीतने वाली किसी भी कैटेगरी की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनने का इतिहास रचा है। ये उनका पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल है।
1: तन्वी शर्मा ने आज महिला सिंगल्स फाइनल में वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त गुएन थुई लिन को 21-16, 21-16 से हराकर ताइपे ओपन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। वह साइना नेहवाल के बाद ताइपे ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला सिंगल्स खिलाड़ी हैं। साइना ने 2008 में यह खिताब जीता था। इस जीत के साथ ही तन्वी ने इस टूर्नामेंट में भारत का 17 साल का खिताबी सूखा भी समाप्त किया। 2009 में टूर्नामेंट के ग्रांड प्री गोल्ड दौर में ज्वाला गुट्टा और वी दीजू की मिक्स डबल जोड़ी की जीत के बाद यह देश की तीसरी जीत है। तन्वी ने पूरे फाइनल में दबदबा बनाए रखा और बेहद संतुलित खेल दिखाते हुए सिर्फ 36 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ वह सुपर 300 या उससे ऊंचे स्तर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला सिंगल शटलर बन गई हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात की जाए संडे ऑन साइकिल की, संडे के फिटनेस डोज की। भारत की स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एनसीसी साइक्लोथॉन एक्सपीडिशन 2026 का भव्य फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और दिग्गज भारतीय मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम विशेष रूप से उपस्थित थी। साइक्लोथॉन को झंडी दिखाते हुए खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत की आजादी की 79 वर्ष के जश्न के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 79 एनसीसी कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं। और एनसीसी, उन्होंने कहा कि फिटनेस अनुशासन और समाज में सेवा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ भी करवा रहे हैं।
2: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं
0: जी। और इस मौके पर ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नेवर गिव अप की बात का ध्यान रखना चाहिए।
3: मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मौके में मुझे भी बुलाया गया है और ये साइक्लोथॉन 2026 दिल्ली में हुआ है, युवाओं लोग के लिए बहुत बहुत जरूरी है और मैं आ रही हूँ कि उन लोग सपोर्ट करने के लिए।
0: संडे ऑन साइकिल का भी 84वां संस्करण आज ही शुरू किया गया, नशा मुक्ति की थीम पर विशेष। क्या संदेश है साइकिल ऑन संडे?
4: शक्ति, अगर बात करें संडे ऑन साइकिल के संदेशों की, तो सबसे पहले स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर, उसके बाद प्रदूषण से मुक्ति और ईंधन की बचत के साथ साथ सामाजिक जागरूकता फैलाने का काम संडे ऑन साइकिल के इस इनिशिएटिव द्वारा किया जाता है, जहां हर वर्ग के लोग हिस्सा लेते हैं इस प्रतियोगिता।
0: जी बिल्कुल, हर वर्ग के लोग आते हैं, क्या युवा क्या बुजुर्ग, और जो जोश देखने को मिलता है सुबह सुबह शहरों की सड़कों पे, लोग आते हैं, साइकिल चलाते हैं, फिटनेस का संदेश देते हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा कि सिर्फ फिटनेस नहीं, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन भी है ये साइकिल। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय इस कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI

0: रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: आवाम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
0: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जनभागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
0: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और

0: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
2: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
0: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और

0: ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरल में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो एरिना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi River recedes.

साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भारत अब भी गुलाम था, लेकिन अपने वतन से हजारों मील दूर जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अटलांटिक होटल में इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद भारत के ख्वाब को पहली बार एक धुन मिली।

0: 11 सितंबर 1942 पहली बार जनगण मन के बुलंद स्वर यूरोप के ब्रास बैंड और स्ट्रिंग्स के साथ गूंजे। ये सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, ये उस मुल्क की आवाज थी जिसका जन्म अभी होना बाकी था। जलावतन भारतीयों के बीच यूरोप की धरती पर आजादी पहली बार सुरों में ढल रही थी। ये निर्वासन में जन्मी आजादी की एक ऐसी सिंफनी थी जिसने आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और तेज कर दी।
1: There was an orchestration done of the tune of Jana Gana Mana by the Hamburg Radio Orchestra.
0: Dr. Sugato Bose, Adhyaksh, Netaji Research Bureau.
1: It was played as India's national anthem for the first time at the inauguration of the Deutsche Indische Gesellschaft, which is the German Indian Society, on the 11th of September 1942. And it was a beautiful orchestration. It was beautifully played. And Netaji himself clearly interacted with the musicians and the conductor. We have a beautiful photograph in the Netaji Museum at Netaji Bhavan in Kolkata, which shows Netaji addressing the gathering in Hamburg, and behind him, we see the orchestra and the musicians with their musical instruments.
0: इसके कुछ ही महीनों बाद इतिहास ने एक और असाधारण अध्याय लिखा। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया तक करीब 90 दिनों की एक बेहद खुफिया और जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा और फिर 1943 की शुरुआत में नेताजी का सिंगापुर पहुंचना। यहीं उन्होंने राज बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली।

0: उस समय सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर।
1: 3 जुलाई 1943 को जब नेताजी सिंगापुर पधारे, उस समय पूर्वी एशिया में इतनी खुशी हुई कि तमाम पूर्वी एशिया के रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों ने और आजाद हिंद फौज के जवान और सरानों ने गीत गा के उनका स्वागत किया। वो गीत क्या था

0: इस गीत को मुमताज हुसैन साहब ने लिखा और इसका स्वर मैंने दिया।
1: नेताजी जानते थे जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती, वो लोगों के दिलों और जहन में भी लड़ी जाती है, और वहां तक पहुंचने का सबसे असरदार रास्ता था संगीत। वो हौसला था और संघर्ष का एक सशक्त हथियार भी। 21 अक्टूबर 1943 आजाद हिंद की आरजी हुकूमत के ऐलान से ठीक पहले नेताजी ने आबिद हसन से कहा कि जनगण मन का एक हिंदुस्तानी रूप तैयार किया जाए। वो अपने सैनिकों से हिंदुस्तानी में बात करते थे, साथ ही तमिल में उसका समानांतर अनुवाद भी सुनाया जाता था। आबिद हसन ने मुमताज हुसैन से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन के 5 में से 3 पदों का हिंदुस्तानी रूप लिखवाया और कैप्टन राम सिंह ने उसकी धुन को सवारा, और इस तरह जन्म हुआ आरजी हुकूमत आजाद हिंद के कौमी तराने का।

0: प्रख्यात कवि और प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बताते हैं कि ये गीत किस तरह विविधता में एकता के उस भाव को स्वर देता है जिसकी बुनियाद पर नेताजी अपना भारत गढ़ना चाहते थे।
1: जो एक एकता की भावना है, आपसी मेलजोल है, वो बहुत मूल्यवान है। और हम देखते हैं ना, आजाद हिंद फौज के जो तीन नायकों पर जो मुकदमा चला, तो उसमें एक कर्नल सहगल, एक कर्नल ढिल्लन और एक जनरल शाहनवाज, तो एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, तो ये भी एक अनूठी चीज है। तो उसमें जो एक पंक्तियां आती हैं, वो भी मैं सुनाना चाहूंगा कि सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, और हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला।
0: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इतिहासकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुगतो बोस।
2: नेताजी जब आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने बताया कि जो सब प्रोफेशनल सोल्जर थे आजाद हिंद फौज के, वो ज्यादा आए थे पंजाब से, लेकिन बहुत सिविलियन रिक्रूट आए थे तमिलनाडु से। सबको तो एक करके आजादी का जंग लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो आईएनए ऑर्केस्ट्रा था, वहाँ बहुत अच्छा एक लिरिसिस्ट था मुमताज हुसैन, और कैप्टन राम सिंह आईएनए ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बना। वो एक साथ बहुत गाने बनाया। सबसे जो इंस्पायरिंग गीत था वो है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, वो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तो एक साथ सब ये गाते गाते वो इंडो बर्मा फ्रंटियर पार होके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, इम्फाल और कोहिमा में आजादी का जंग लड़ा।
0: सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार या प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर आजाद हिंद फौज का मार्चिंग गीत बना कदम कदम बढ़ाए जा।

0: आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों के बलिदान का ये संगीतमय स्मारक ब्रिटिश शासन द्वारा राजद्रोही घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लगभग 8 दशकों के बाद आज भी इसकी लोकप्रियता का रहस्य क्या है?
1: Simple lyrics tapping into core emotions of courage, unity and collective identity and foot tapping beats.
0: गौरा धवन लाल देश के वरिष्ठ कमेंटेटरों में से हैं।
1: मुझे मिलिट्री सेरेमनीज और सेलिब्रेशंस की लाइव कमेंट्री करते हुए 4 दशक से अधिक हो गए हैं, पर आज भी कमेंट्री के समय जब ये गाने प्ले होती हैं, ये धुनें प्ले होती हैं, तो उनके बजते हुए कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं होता। बस मुख बंद होते हैं, अपने हाथ और पांव उसी बीट के साथ टैप करते हैं और हम उनको एंजॉय करते हैं। जो सेंटिमेंट्स ये धुनें और गाने कन्वे करते हैं, शब्द उनके सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं।
0: आज कदम कदम बढ़ाए जा भारतीय सेना का रेजिमेंटल मार्चिंग सॉन्ग है।
2: 1996 में जनरल शंकर राय चौधरी ने इस बात को उठाया। ये सुभाष चंद्र बोस के जमाने में हुआ था, 1942 में। क्यों ना हम अभी इस वक्त इंडियन आर्मी के लिए इसको शुरू करें।
0: मेजर नजीर हुसैन, भारतीय सैन्य संगीत की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम।
2: उस वक्त जब 1942 के अंदर ये बनाया गया था, ये सिंपल एंड कॉमन म्यूजिक के हिसाब से बनाया गया। इसको शंकर राय चौधरी ने ही जब सवाल उठाया 1996 में जब हुआ, तो इसको अरेंजमेंट जो एक्चुअल अरेंजमेंट है मिलिट्री म्यूजिक का, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन कंपोजर हो, इसको 3 टुकड़ों में बनाया जाता है। एक तो इंट्रोडक्शन, देन मेलोडी, देन ब्रास टूटी, दैट वाज द फोर्स जवान के कर्मों के लिए फोर्स लाना, फिर अगेन मेलोडी, देन ट्रियो। तो इसको मिलिट्री बैंड के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक कैप्टन HB बराल, हिम भारत बराल को दिया गया और उसने इसको मिलिट्री बैंड के लिए अरेंजमेंट किया। मिलिट्री बैंड अरेंजमेंट, नॉट कंपोज।
0: सेना मुख्यालय में सैन्य संगीत सलाहकार रह चुके विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर नजीर हुसैन।
2: दिस इज फर्स्ट इज अ इंट्रोडक्शन। कदम कदम बढ़ाए, दिस इज मेलोडी, पहले जो था इंट्रोडक्शन था, नो मेलोडी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, दिस इज मेलोडी। नाउ इज अ ब्रास बीट, ला ला ला ला ला ला ला, पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम। दिस इज द ब्रास टूटी, दिस एक्चुअल, दिस इज द जोश, दिस इज द जोश जवान के हृदय में लाने के लिए, दिमाग में लाने के। देन अगेन इज अ मेलोडी, दिस इज ऑल्सो मेलोडी। नाउ इज ट्रियो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा।
0: अब इस गीत के शब्दों और उसकी भावना पर रोशनी डाल रहे हैं कवि और वरिष्ठ प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी।
3: ये गीत लिखा कैप्टन राम सिंह जी ने और धुन भी उन्होंने ही बनाई है। हालांकि इसी मुखड़े का एक गीत बंशीधर शुक्ल जी का भी है। बंशीधर शुक्ल जी का जो गीत है उसके अंतरे बिल्कुल अलग हैं, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है, क्राफ्ट के हिसाब से, शिल्प के हिसाब से वो बेहतर गीत है। लेकिन ये जो कदम कदम बढ़ाए जा कैप्टन राम सिंह जी ने जो लिखा है, जहां तक एक मार्चिंग सॉन्ग की जो जरूरत होती है, जो जोश जो जज्बा चाहिए, वो उसमें आपको मिलेगा। पहली ही पंक्ति में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, अब जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, बीहड़ जंगलों से, और तमाम सारी मुसीबतें हैं, उलझने हैं, और जा कहां रहे हैं, जंग करने के लिए मारे भी जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं, लेकिन खुशी से जाना है और एक जज्बे के साथ जाना है, साहस के साथ जाना है, और दुश्मन को जो है किसी तरह उसको खत्म करना है। फिर एक जज्बा है कि दिल्ली जाएंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, गुलामी को हटा देंगे, मिटा देंगे। तो एक एक पंक्ति में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो जोश है, वो बिल्कुल अलग तरह का है, और जो एक मार्चिंग सॉन्ग के लिए जरूरी है वो सब कुछ इस गीत में है।

0: मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे, मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे।
1: जितने भी ये गीत हैं शिल्प के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से, बेशक उनमें कच्चापन है लेकिन जज्बात का सच्चापन है। बहुत जोश भरते हैं ये कविताएं, देश प्रेम से ओतप्रोत है एक एक पंक्ति है, और बहुत मूल्यवान है उन फौजियों के लिए जो लड़ रहे थे एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, कम साधनों के साथ। जैसे एक गीत में आता है कि हम गोली खाकर झूमेंगे। अब ये गोली वही है जो जान ले सकती है, लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं गोली खाकर झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर चूमेंगे। अब ये जो जज्बा है ये एक फौजी में और जो जन करने जा रहा है, वो इस तरह की पंक्तियां आती हैं जो जोश भरती हैं, किसी में भी जोश भरती हैं।
2: युद्ध समाप्त हुआ लेकिन आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे शुरू हुए तो उसके गीतों पर भी पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर सुगतो बोस।
3: द ट्रायल बिगन ऑन द 5th ऑफ नवंबर एंड एंडेड ऑन द 31st ऑफ दिसंबर ऑफ 1945. And there was a huge popular upsurge across the whole country in support of Netaji's soldiers. And even if the British tried to, you know, ban INA songs, that was not very effective because in the public gatherings that were held, INA songs began to be performed. And then once Claude Auchinleck was forced to release the three INA officers, there was a slogan in those days, Lal Kile Se Aaye Awaaz, Saigal Dhilan Shanawaz. At that stage, you know, everywhere as part of the celebrations, and for example, on Netaji's birthday, on the 23rd of January of 1946, these INA songs were being performed everywhere.
2: कैप्टन राम सिंह की कंडक्टिंग बेटॉन ने हजारों दिलों की धड़कनों को एक ही लय में बांध दिया था। हिमाचल प्रदेश में जन्मे इस गोरखा सैनिक ने अपनी संगीत प्रतिभा से आजाद हिंद फौज के सांगीतिक संसार में नई जान फूंक दी।
4: ये वायलिन मुझको नेताजी ने अपने करकमलों से मुझे भेंट की, और भेंट करते समय कहा था कि राम सिंह ये वायलिन भारतवर्ष में भी बजेगा।

0: हंसते हंसते जीना हो नेताजी।
1: मुमताज हुसैन के अलावा आजाद हिंद फौज के गीतों में कई ऐसे गीतकारों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें सूबेदार बलदेव सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट मुश्ताक और यहाँ तक कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी शामिल थे। आइए कैप्टन राम सिंह की जुबानी सुनते हैं उनके कुछ साथियों और उनके गीतों के बारे में।
2: ये गीत सेकंड लेफ्टिनेंट कल्याणचंद हसर जी का लिखा हुआ है, इसकी धुन मैंने बनाई थी।
3: वो दिल ही नहीं जिसमें न हो चाह वतन की, वो दिल ही नहीं जिसमें न हो चाह वतन।

हमारे आजाद हिंद फौज के जवान जब दिन भर बहुत परिश्रम करते थे, शाम को जब भोजन करने अपने मेस में जाते थे तो खाना उना खाने के बाद फिर सारी कंपनियां इकट्ठे होकर कहते थे चलो भाई जरा मनोरंजन हो जाए, तो वो कहते थे कवाली गाया जाए।

0: नाम लिया। जय हिंद भाइयों, कहो जय हिंद।
1: नेहरू ब्रिगेड के कमांडर कर्नल ढिल्लन साहब ने नेताजी का फरमान कहकर एक गीत लिखा है, वो है नेताजी का फरमान, उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो।

रानी झांसी रेजिमेंट के लिए भी एक विशेष गीत तैयार किया गया था। ये रेजिमेंट नेताजी के बेहद निकट थी, क्योंकि नेताजी के लिए रानी झांसी रेजिमेंट सिर्फ महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी, वो उनके उस भारत का ख्वाब थी जहां औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़े, जहां इज्जत, बराबरी और जिम्मेदारी तीनों में कोई फर्क न हो। और इसी सोच को इस गीत ने आवाज दी।

0: इन गीतों का संग्रह आज भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो में सुरक्षित है और netaji.org पर निशुल्क उपलब्ध है। जनगण मन की धुन के संगीतकार को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। प्रोफेसर सुगतो बोस हमें 1918 में दिनेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा तैयार की गई संगीत रचना की याद दिलाते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि शुभ सुख चैन और जनगण मन की धुनों में कहां बारीक अंतर है।
1: The tune of शुभ सुख चैन की is slightly different. There are nuances which are different from the tune of Dinendranath Tagore's Janagana Mana. There are more komal notes that have been added. The second verse of the Janagana Mana song is very beautiful. It's not part of our national anthem, only the first verse is. But the second verse says, Aharah tab avhan pracharit shuni tab udar bani Hindu Bodh Shikh Jaina Parashik Musalman Krishtani Purab Pashchim Ashe Tab Shingashan Pashe Prem Har Hai Gatha. And Mumtaz Hussain, with the support of Netaji and Abid Hassan, rendered it in these words. Sabke

0: Jaya Jaya Jaya Jaya Ho. You see, the Jaya He becomes Jaya Ho. That's the nuance, that's the slight variation that was made in the Azad Hind score of the Hindustani version of our national anthem.
1: आकाशवाणी आर्काइव्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग में प्रस्तुत जनगण मन का वाद्य रूप पहली बार दुनिया के सामने आजाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में पेश किया गया। इसकी प्रस्तुति रेडियो हैम्बर्ग चेंबर ऑर्केस्ट्रा ने की थी और उसके बैंड लीडर थे एगिल क्रुटके। हैम्बर्ग स्टेट आर्काइव्स में इस प्रस्तुति का उल्लेख कुछ इस तरह मिलता है। जन गण मन, टेक्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर, कोडिफिकेशन ऑफ म्यूजिक अंबिक मजुमदार। लेकिन अंबिक मजुमदार कौन थे? इस सवाल का जवाब हमें जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन के एक महत्वपूर्ण सदस्य बीएल मुखर्जी की इस दुर्लभ आर्काइवल रिकॉर्डिंग में मिलता है।
2: एक शाम नेताजी ने हम सबको अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मुझसे गाने का आग्रह किया क्योंकि मैं बर्लिन रेडियो पर नियमित रूप से गाया करता था। हमारे कार्यक्रम का नाम था नमस्ते हिंद। हमारे साथ एक और सज्जन थे, हालांकि वो पूरी तरह हमारे संगठन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वे पूर्वी प्रशिया के

0: पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से संगीत के विद्वान थे। उनका नाम था अंबिक मजूमदार। वास्तव में जनगण मन की वर्तमान संगीत लिपि तैयार करने का कार्य उन्होंने ही किया था। मेरे गायन और अंबिक मजूमदार के पियानो वादन को सुनने के बाद नेताजी ने निर्णय लिया कि यही हमारी राष्ट्रीय धुन होगी।
1: बर्मा के घने जंगलों में इतिहास न केवल कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो गुनगुना भी रहा था उन सैनिकों के कंठों में जिन्होंने अपनी युवावस्था एक स्वप्न के लिए समर्पित कर दी। इम्फाल की मिट्टी और सिंगापुर की तपती धरती पर जन्मी वो धुनें आज भी इतिहास की सांसों में जीवित हैं।

0: साम्राज्य की तोपें अब कब की खामोश हो चुकी हैं। कूच करते कदमों की आहटें इतिहास में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ बचा है, कारावास और निर्वासन, मुकदमों और यातनाओं, विस्मृति और विघटन के पार, वो है एक प्लेलिस्ट, प्रतिरोध का साउंडट्रैक। जब आज तिरंगा हवा में लहराए तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको मातृभूमि के नाम खून से लिखे हुए उस पुराने चिरंतन वचन की गूंज सुनाई दे।
1: फ्रेंड्स, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ अस हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कमिंग बैटल विल सर्वाइव टू सी इंडिया फ्री, बट वेदर वी सर्वाइव और नॉट, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, आजाद हिंद और समर के स्वर। शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आनंद श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह और प्रांजल, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। इस कार्यक्रम में जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रस्तुत जन गण मन के वाद्य संस्करण को छोड़कर आजाद हिंद फौज INA के सभी गीत नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुए। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्तों का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया।

0: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसमें बताया गया कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी भी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्षों से केवल 7.4% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस योजना के अंतर्गत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टर या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामले में 5 लाख रुपये तक का मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके जरूरी रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो में प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों के समापन कार्यक्रम के दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स प्रमुख प्रस्तुति देंगे। वहीं BEMZ, कैमी बंस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of the nation. The Prime Minister also urged families not to hide cases of substance abuse due to social stigma.
2: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event, including My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than early expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee MPC report released yesterday, the growth estimate marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainties. The report attributed the improved outlook to a broad-based pickup in high-frequency indicators during the April-June quarter. SBI Research also noted that the global environment remains uncertain amid the West Asia crisis, but India's domestic economy has shown resilience. The Delhi government has notified a scheme to provide compensation to the next of kin or legal heirs of prisoners who die an unnatural death while in custody within the prisons of the National Capital Region. Delhi government's Home Department issued a notification in this regard today. In Odisha, the flood situation is improving as Mahanadi River recedes. However, the situation remains challenging in the worst affected districts. Shortages of drinking water, extensive crop damage and destruction of houses have added to the hardships of flood-affected families. In Keralam, the intensity of rainfall has decreased, bringing relief to people a day after heavy rain lashed several districts. The India Meteorological Department has issued an orange alert for 12 districts and a yellow alert for 2 districts today. The state government said no major untoward incidents were reported today. However, 8 people have lost their lives in rain-related incidents since yesterday, while over 5,700 people have been shifted to relief camps. People living in hilly and riverside areas have been advised to remain vigilant. Fishermen have also been advised not to venture into the sea along the Keralam, Karnataka and Lakshadweep coast till tomorrow. In Indonesia, 5 persons lost their lives and 41 are still missing after a ferry carrying 271 passengers and crew caught fire while at sea off Madura Island today. The 2026 Commonwealth Games will come to a close with a spectacular closing ceremony at the iconic Hydro Arena. In Glasgow tonight, the ceremony will begin at 1:30 a.m. Indian Standard Time. We'll celebrate 11 days of sporting excellence, friendship and cultural diversity. And that's the end of this news bulletin.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष। मुख्य समाचार। अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि यदि पाकिस्तान को द्विपक्षीय मुद्दों पर सहयोग चाहिए तो पहले आतंकी ढांचे को नष्ट करना होगा। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत, 41 लापता। ईरान ने सैन्य हमले रोकने के अनुरोध के अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज किया। ओपेक प्लस देशों ने सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। तार से अमरीका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तानी द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने

0: स्थिति पर तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: यूके पीएनपी के अध्यक्ष सरदार शौकत अली कश्मीरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कई बैठकें की। प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान से अपने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का पालन करने और नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग बंद करने का आह्वान किया। प्रतिनिधिमंडल ने गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई, अधिकृत क्षेत्र में इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं की बहाली, कर्फ्यू हटाने और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तथा मानवाधिकार संगठनों को स्थिति का आकलन करने के लिए निर्बाध पहुंच की भी मांग की। ये बयान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति के बीच आया है, जहां पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना ने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर क्रूर कार्रवाई की, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पाक ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन अपहरण के बाद लापता होने को लेकर चिंता व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि आतंकवाद रोधी विभाग CTD, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और सेना ने कई बलूच नागरिकों को हिरासत में लिया है। पाक ने पाकिस्तानी गायब लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें कानूनी सलाह और उनके परिवारों से मिलने की सुविधा देने की मांग की है। संगठन ने जिम्मेदारी तय करने के लिए तुरंत निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की भी मांग की है। अपनी हालिया रिपोर्ट में बलूचिस्तान की मानवाधिकार परिषद ने जून 2026 में 77 हत्याओं और जबरन गायब किए जाने के 63 मामलों का ब्यौरा दिया है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा इबोला प्रकोप बन गया है। 30 जुलाई तक इबोला के 3,605 पुष्ट मामले और 1,587 मौतें दर्ज की गई हैं तथा मृत्यु दर 44% हो गई है। महामारी विज्ञान के 30वें सप्ताह में 567 नए मामले हुए हैं और 296 मौतें हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा साप्ताहिक आंकड़ा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षा क्षमताओं और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी यह टिप्पणी अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। श्री ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन उसने बातचीत को और समय देने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी मीडिया ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि ईरान ने सैन्य कार्रवाई रोकने का कोई अनुरोध नहीं किया था और उसके बयान को झूठा बताया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी थी और चेतावनी दी थी कि अमरीकी हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक ईरान जहाजों पर हमले बंद नहीं कर देता और वार्ता के लिए तैयार नहीं होता। अमरीका ने पश्चिम एशिया में अपने नागरिकों से सतर्क रहने और तनाव बढ़ने पर देश छोड़ने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। इस बीच ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमला होता है तो वे पश्चिम एशिया में स्थित प्रमुख इसराइली बुनियादी ढांचे और अमरीकी ऊर्जा केंद्रों पर हमला करने के लिए तैयार है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान सहित 7 ओपेक प्लस सदस्यों ने बैठक के बाद जारी बयान में कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य तेल बाजार की स्थिरता को बनाए रखना और भागीदार देशों को पिछले अतिरिक्त उत्पादन की भरपाई में तेजी लाने की अनुमति देना है। अमेरिका के वाशिंगटन में भीषण जंगल की आग, लगातार सूखे और तेज हवाओं के कारण गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने राज्यव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी है और आग जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

0: तेज हवाओं के कारण फैल रही जंगल की आग ने लगभग 3000 एकड़ जमीन को जला दिया है और हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि दमकल कर्मी राज्यभर में 2,00,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली 10 बड़ी जंगल की आग पर काबू पाने में जुटे हैं। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह में वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरई स्वामी ने चीन की राजधानी बीजिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और काउंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की योजना है। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी सूचनाओं के प्रचार पर श्री दुरई स्वामी ने कहा कि चीन सरकार भी इस बारे में चिंतित है और आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दूतावास गलत सूचनाओं से निपटने के लिए तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
1: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि यदि पाकिस्तान को द्विपक्षीय मुद्दों पर सहयोग चाहिए तो पहले आतंकी ढांचे को नष्ट करना होगा। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत, 41 लापता। ईरान ने सैन्य हमले रोकने के अनुरोध के अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज किया। ओपेक प्लस देशों ने सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Reshma Tiwari with the World News. The headlines. Indian Ambassador to US Vinay Mohan Quatra says Pakistan must first dismantle terror infrastructure if it seeks India's cooperation on bilateral issues. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Iran rejects US President Donald Trump's claim of requesting pause in military strikes. OPEC plus countries agree to increase oil production by 188,000 barrels per day from next month. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. And they're about to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the Centenary 2030 edition. Indian Ambassador to the US, Vinay Mohan Quatra, has stressed that Pakistan must first dismantle the terror infrastructure that it has built if it wants India's cooperation on bilateral issues. Pakistan had recently convened a conference in Islamabad to protest India's decision to hold the Indus Waters Treaty in abeyance. In an article published in a news magazine, Mr. Quatra criticized a former foreign minister of Pakistan for threatening war against India if Islamabad's demands on the Indus River system are not met. Ambassador Quatra stated that threatening war against India to distract from its internal problems has become a standard policy option for Islamabad. Mr. Quatra said Pakistan should fix its dismal water productivity rather than staging conferences.

10:31 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप और गीतों की खुशबूदार महफिल हर सिंगार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ विकास।

0: कहते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में कई रंगों को जीता है और रिश्तों को जीता है। उन्हीं में से एक रिश्ता जो होता है वो दोस्ती का होता है। इसे जिंदगी का सातवां रंग कह सकते हैं, जो हमारे दुख सुख में हमारा साथ देता है।
1: मैंने

दोस्तों, देखा जाए तो हिंदी सिनेमा में इस दोस्ती के रिश्ते को कई दफा समझा और वक्त वक्त पर इस रिश्ते के जो मीठापन है, इस रिश्ते की मिठास है, उस मिठास के इर्द गिर्द कई कहानियों को और कई पात्रों को जन्म दिया। और अगर हम मिसाल के तौर पर कहें तो शुरुआती दौर की वो फिल्म अगर आपको याद हो जिसमें दोस्ती की एक मिसाल पैदा करती है वो कहानी, और इस फिल्म का ही नाम दोस्ती रहा। आगे चलें तो आनंद एक फिल्म मेरे जहन में आती है जहां पर बेहद प्यारे से रिश्ते को पनपते और उस रिश्ते में मिठास और गुस्से को दिखाया कि कैसे शुरुआत

जो दोस्ती है वो पनपती कैसे है, और आनंद अपने बाबू मोशाय को किस हद तक चाहने लगता है। देखा जाए तो ये दोस्ती का रिश्ता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हाथी मेरे साथी अगर आपको नाम याद हो और इस कहानी को अगर आप अपने जहन में एक सेकंड के लिए दोबारा से वापस लाने की कोशिश करें तो देखेंगे कि इस कहानी में भी आपको एक दोस्ती नजर आती है, और वो दोस्ती शायद इंसानी दोस्ती से काफी ऊपर हमें और आपको नजर आती है। जी, ये दोस्ती होती है जानवरों से, हाथी से।

देखा जाए तो नए जमाने के साथ हमें और आपको कई मौकों पर तालमेल बिठाने की जरूरत होती है, ताकि रिश्तों का ये जो विश्वास है उसके अंकुर कभी न सूखें। इसी के चलते अब माता पिता भी अपने बच्चों के साथ इस दोस्ती के संबंध को बनाने और उसे प्रगाढ़ करने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि वक्त की एक तरह से जरूरत कही जा सकती है, ताकि कम्युनिकेशन यानी बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, बातचीत का वो बांध है, हमेशा बचा रहे। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप, और प्रोग्राम चल रहा है हर श्रृंगार। आपके साथ मैं विकास।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 7.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप, और थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और इसी सफर के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति

0: समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं बीएमजेड, कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event, including My Bharat and National Service Schemes volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity and a recovery in exports. According to an SBI Research pre-monetary Policy Committee report released yesterday, the growth estimate marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projection.

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today being Sunday, we'll also be taking calls on your mutual fund related queries, but do remember that we do not address fund specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331 4444 2331 0481 and 2371 7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में देंगे. कोशिश करेंगे कि दे पाएं. सवाल पूछने के लिए आप श्रोताओं हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331 4444, 2331 0481 और 2371 7106. इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: जी, धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ निशित कुमार.
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स आफ्टर 4 मंथ्स. इन्फ्यूज मोर देन 20

0: सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई और भारतीय निवेशक अगले सप्ताह आरबीआई की मौद्रिक नीति के फैसले, कॉरपोरेट कमाई के नतीजे और भू राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: और अब रुक करते हैं आज कार्यक्रम में लिए गए पहले खबर के लिए। लगातार चार महीनों की बिकवाली के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अब भारतीय इक्विटी में कुल खरीदार बनकर उभरे हैं। डिपॉजिटरी के ताजा आंकड़ों के अनुसार एफपीआईज ने जुलाई में घरेलू शेयर बाजार में 20,200 करोड़ रुपए का निवेश किया। कुल निवेश में से 6,732 करोड़ रुपए शेयर्स एक्सचेंजों पर खरीदारी के जरिए आए, जबकि 13,468 करोड़ रुपए का निवेश प्राइमरी मार्केट के जरिए किया गया। वैश्विक सेमीकंडक्टर व्यापार में गिरावट के कारण एफपीआईज ने अपने निवेश का कुछ हिस्सा उभरते बाजारों की ओर लगाया। इस खरीदारी में घरेलू मैक्रो इकोनॉमिक सूचकांकों में सुधार और मजबूत तिमाही के नतीजों का भी योगदान रहा है। जुलाई में आए इस बदलाव के बावजूद एफपीआईज ने इस कैलेंडर वर्ष में अब तक भारतीय इक्विटी से 2,54,072 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस बीच सरकार की कर नीति में बदलाव के बाद भारत के ऋण बाजार में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बरकरार है। जुलाई माह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने फुल्ली एक्सेसिबल रूट के जरिए ऋण प्रतिभूति बाजार में 3,033 करोड़ रुपए और जनरल रूट के जरिए 29,212 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान सहित 7 ओपेक प्लस सदस्यों ने बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य तेल बाजार की स्थिरता को बनाए रखना और भागीदार देशों को पिछले अतिरिक्त उत्पादन की भरपाई में तेजी लाने की अनुमति देना है। ओपेक प्लस सदस्यों ने सहयोग घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की, जिसके अनुपालन की निगरानी संयुक्त मंत्री स्तरीय निगरानी समिति द्वारा की जाएगी। और श्रोताओं, दिल्ली से हमारे साथ इस बीच यशपाल जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: गुड इवनिंग मार्केट मंथल टीम एंड गुड इवनिंग नेहा जी आल्सो। माय क्वेश्चन इज दैट आई वांट टू इन्वेस्ट सम लंप सम मनी फॉर अराउंड 2 इयर्स। ऑलरेडी आई एम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी थ्रू एसआईपी एंड लंप सम। माय पोर्टफोलियो इज वेल डाइवर्सिफाइड। The options with me are bank FD, arbitrage fund, liquid fund and corporate bonds. So please advise which one to select, considering the stability means almost fixed return and also good from the tax point of view. Thank you so much.
3: Right. So, Yashpal ji, the most important point in your question was from the tax point of view. And the options that you listed, arbitrage funds, liquid funds and bank FD, those are now at par when it comes to the tax efficiency. What actually provides you tax efficiency as well as stability, given the 2-year horizon you mentioned, are actually arbitrage funds, which gets treatment of equity funds. So, 12.5 if you are investing beyond 1 year, the long-term capital gain. So I would say if you are looking for an investment horizon of 2 years, arbitrage funds are a good bet. Just make sure to stay invested. These can be volatile in a 3-month kind of a scenario, but for a 2-year stretch, this should suffice.
1: Sneha, if you look at the markets this week, after almost 4 consecutive months of selling, the FPIs have returned, and that was awaited for quite some time now. So what are the factors you factor in when we look at the FPIs returning to the Indian equity markets?
3: Right. So from a retail investor standpoint, I'll start with that, since our audience is just that. The idea is when scenarios in the macro environment changes, for instance, let's say the war that had been happening, the oil impact that had been happening, everything collates into something that creates

0: portfolio, like I was saying, you know, your asset allocation, make sure to have some kind of debt allocation in your portfolio, because when the markets turn red, your anxiety increases. If you have, let's say, 20% of debt in your portfolio, that will help provide some kind of cushion to your equity and maybe just help you psychologically navigate through those ups and downs. So yeah, asset allocation, rebalancing periodically, continuing with your SIPs, not stopping your SIPs, that becomes your, you know, go-to goal amid all of these chaos.
1: जी बिल्कुल श्रेया, स्नेहा, इसी बीच विनोद जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से. विनोद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: हेलो
1: जी,
2: मैं पूरी मार्केट मदर टीम को नमस्कार.
1: नमस्कार.
2: मैं 2017 से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट, बट मैंने सुना ना रिबैलेंसिंग करना चाहिए, यह सब एक्सपर्ट बोलते हैं, बट मुझे आता नहीं है रिबैलेंसिंग कैसे करते हैं, और अगर इसको ना करें तो लॉन्ग टर्म में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्लीज ये बताएं. थैंक यू.
0: बिल्कुल विनोद जी, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है. रीबैलेंसिंग जो सब बोलते रहते हैं कि करना ज़रूरी होता है, उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से होता है कि साइकोलॉजिकली ये कैसे होता है कि जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स से आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स या फिर आप ऑल इक्विटी फंड्स लेते हैं.
1: स्नेहा, हम क्यों ना यहाँ से शुरू करें कि रीबैलेंसिंग करना होता क्या है.
0: बिल्कुल, ये एक्चुअली यही मैं शुरुआत करी थी. रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि अपने पोर्टफोलियो पे एक नज़र डालना.
1: हाँ.
0: और अगर वो नजर डाल के आपको डर लग रहा है,
1: हाँ,
0: इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है. आपको अपना एक जो एंजाइटी लेवल्स है उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है. वहां पे एक चीज काम आती है जिसे हम, जैसे मैं अभी बता रही थी, एसेट एलोकेशन. कुछ डेट और कुछ इक्विटी सोच के आपने इन्वेस्ट करा होता है, बट मार्केट के उतार चढ़ाव कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो जो एक एलोकेशन होती है जो आपने अपनी सूझबूझ से करी थी वो बढ़ जाती है. तो मान लीजिए आपने सोचा था कि इक्विटी आप 70 रखेंगे, आप डेट 30 रखेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा डर जाते हैं जब मार्केट का उतार चढ़ाव एकदम वायलेंट हो जाता है. तो ऐसे टाइम में अब मान लीजिए मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आपने 70 इक्विटी सोचा था, आपका इक्विटी 80 हो गया है और डेट कम हो गया है, तो मार्केट जब वो जूम कर रही है, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया है, बट एक डर बीच में रहता है कि अब यहां से गिर गई तो आपके पास तो उतना डेट है ही नहीं जो आपको एक तरीके का कुशन प्रोवाइड कर पाए. तो जब मार्केट, अगर ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो 100% गिर रहा है, वो डेट की वजह से आप 100 ना गिर के 80% गिरेंगे, तो एक मन में बैलेंस मेंटेन हो जाता है. इसे ही हम रीबैलेंसिंग कहते हैं. अब होता क्या है कि अगर आप नजर नहीं डालेंगे पोर्टफोलियो पे तो आपको पता नहीं चलेगा, एकदम से मार्केट गिर जाएगी, आप सोचेंगे मेरा इतना ज्यादा कैसे गिर गया,
1: नुकसान कैसे हो गया,
0: नुकसान कैसे हो गया. तो उन सब थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए रीबैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट होता है. अगर मान लीजिए कोई वैसे ही इस तरीके से किया जाता है कि फिर आपने जितना सोचा है कि इक्विटी होना चाहिए, आप उतना बेचकर आप उसको कम कर दीजिए और उसको डेट में मूव कर दीजिए, काफी लोगों के लिए करना मुश्किल हो जाता है. तो मान लेते हैं आप अपने माइंड में एक नंबर सोच लेते हैं कि 10% से जब ऊपर नीचे होगा आप तभी ये एक्शन लेंगे. तो ये एक्शन मेरे हिसाब से, जैसे विनोद जी पूछ रहे थे, इसका लॉन्ग टर्म में फायदा नुकसान क्या होता है, तो ये बेसिकली अपना एक इंटरनल साइकोलॉजिकल बिहेवियर मैनेज करने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक रहती है. जैसे SIP भी इसीलिए ही हम कहते हैं करने के लिए कि मार्केट के उतार चढ़ाव से आपका एवरेज आउट हो जाता है जो एक प्राइस होता है और उसका जो मूवमेंट होता है. तो अगर विनोद जी आप ये खरीद बेच में नहीं कर पाते हैं, एक साल में भी आपसे ये नहीं हो पाता है, तो मान लीजिए आपका 10% का आपने नंबर सोचा है कि 10% से इक्विटी बढ़ेगा या कम होगा तभी आप एक्शन लेंगे, तो वो एक्शन आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप अपनी बेचने के बजाय आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर रहे थे उनको अगर आप पॉज कर देते हैं, सब फंड्स को नहीं कर सकते, जो फंड आपके लिए नुकसानदायक रह रहा है इस पूरे टाइम में उसके लिए आप पॉज कर सकते हैं, तो आप क्या कर रहे होंगे कि आप अपने बुरे फंड को फीड करना बंद कर देंगे और फिर लंबे समय में ऑटोमेटिकली जो एलोकेशन होगी वो रीबैलेंस हो जाएगी. तो विनोद जी, मेरी समझ में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि रीबैलेंसिंग एक साल में एक बार कर लेना चाहिए. इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या हमें ये करने की जरूरत है या नहीं. अगर आपकी जो एसेट एलोकेशन रहती है वो आपको बिल्कुल सही लग रही है, आपको लगता है आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए, उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं.
3: यू आर ट्यून इन टू मार्केट मंत्रा ऑन आकाशवाणी. यू कैन कॉल अस ऑन आवर टेलीफोन नंबर्स 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And in some other stories, the National Stock Exchange, NSE, is set to introduce

0: वृद्धि पहले के अनुमानों से अधिक है। कल जारी एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अनुमानों से बेहतर है।
1: And domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including the Reserve Bank of India's monetary policy decision and a fresh round of quarterly earnings reports. Market sentiment will also be driven by geopolitical developments, crude oil prices, foreign institutional investors, FII flows, commodity prices and currency movements. Market participants will closely monitor the key economic indicators, including purchasing managers' index PMI readings, foreign exchange reserve figures and monthly automobile sales data. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week. Three main board IPOs are scheduled to make their stock market debut, while one new main board issue will open for subscription. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the West Asian conflict, along with the US employment data and a fresh batch of corporate earnings. Inflation data from South Korea will also remain on the radar. Quick comment on that, Sneha. How do you see the markets playing out next week?
2: I always believe that the market outlook is should always remain sort of cautiously positive, since I am a very optimistic person, and I would like investors to also believe in that.
0: Sneha, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और निशित के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
1: Thank you, Sneha. And before we close the headlines once again. Foreign portfolio investors turn net buyers after 4 months, infuse more than 20,000 crore rupees into Indian equities in July. In the bullion market, gold and silver prices declined last week, and domestic investors to focus on RBI monetary policy decision, corporate earnings, results and geopolitical developments for Qs next week. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
7: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

प्रोग्राम का ये आखिरी गीत है और विकास अब आपसे चाहता है इजाजत इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा संकल्प विकसित भारत अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई

0: अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष में केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 14 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन की तुलना बांग्लादेश में 2024 के उस आंदोलन से की जिसने शेख हसीना की आवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्होंने कहा कि ढाका में हुए छात्र आंदोलन ने हमें धोखा दिया। कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में प्रख्यात लेखिका ने कहा कि जंतर मंतर की घटनाओं पर उन्होंने नजर नहीं रखी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के एक छोटे से वीडियो क्लिप ने उन्हें बांग्लादेश में जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन की याद दिला दी। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event, including My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. The Delhi government has notified a scheme to provide compensation to the next of kin or legal heirs of prisoners who die an unnatural death while in custody within the prisons of the National Capital Region. Under this scheme, compensation of up to 7.5 lakh rupees will be awarded depending on specific circumstances. Compensation of 5 lakh rupees has been fixed for cases involving negligence in the discharge of duties by prison officials or staff, negligence by medical or paramedical personnel, and cases of prisoner suicide. All arrangements are in place for the counting of votes for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh today. Polling for the Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh were held on the

0: 30th of last month. Counting of votes will begin at 8 a.m. Over 88,06,000 enumeration forms across the national capital have been digitized till yesterday. According to the Office of Chief Electoral Officer of Delhi, about 1,45,00,000 forms have been distributed as part of special intensive revision of electoral rolls in Delhi. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms is currently underway in Delhi. Electors can fill the enumeration form online at www.voters.eci.gov.in. In Madhya Pradesh, the first Shravan procession of Lord Mahakaleshwar will be taken out in Ujjain today, marking the first Monday of the holy Shravan month. Lord Mahakal in the Chandramouleshwar form will be taken out in a traditional palanquin procession, offering devotees an opportunity for darshan. A special puja will be performed at the Mahakaleshwar temple before the procession begins at 4 p.m. The closing ceremony of the 22nd Commonwealth Table Tennis Championships 2026 was held in New Delhi yesterday. Delhi Chief Minister Rekha Gupta honoured the winning players with medals and accolades and commended their outstanding performance. Speaking on the occasion, the Chief Minister stated that it is a matter of pride for the Delhi government that the national capital has successfully hosted this prestigious international sporting event featuring participation from 25 Commonwealth nations. In Indonesia, 5 persons lost their lives and 41 are still missing after a ferry carrying 271 passengers and crew caught fire while at sea off Madura Island yesterday. Country's search and rescue agency said of those on board, 225 have been rescued so far. A search and rescue operation is underway as teams worked to locate the missing passengers. The 2026 Commonwealth Games will come to a close with a spectacular closing ceremony at the iconic Hydro Arena in Glasgow tonight. The ceremony will begin at 1:30 a.m. Indian Standard Time and will celebrate 11 days of sporting excellence, friendship and cultural diversity. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है और इस बार प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। हम सभी के प्रिय, हम सभी के आदरणीय और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये प्रेरणा दी कि हम अब्दुल कलाम जी के व्यक्तित्व को, उनके दर्शन को और देश के प्रति उनके योगदान को जाने, समझे और उसके महत्व को भी पहचाने और साथ ही ये भी जाने कि किसी एक साधारण से परिवार में जन्मे किसी बच्चे की यात्रा रामेश्वरम से जब राष्ट्रपति भवन तक होती है तो बीच के क्या पड़ाव होते हैं और जीवन किस तरह से उनके सामने धीरे धीरे खुलता है। तो आइए सबसे पहले मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय आपसे करवाती हूँ। आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्री अनुज सिन्हा जी को। आप साइंस कम्युनिकेटर हैं और पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के। आप एडवाइजर भी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
3: नमस्कार, थैंक यू।
2: हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नकुल पराशर। अप्लाइड फिजिक्स में आपने PhD की है, आप ऑथर भी हैं, विज्ञान आधारित कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हेड रहे हैं आप और साथ ही विज्ञान प्रसार के निदेशक भी रहे हैं। नकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
4: धन्यवाद, नमस्कार।
2: डॉक्टर रश्मि हमारे साथ हैं, आप एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, प्रेरक वक्ता भी हैं। कलाम साहब की आत्मकथा आपने लिखी है, कलाम तुम लौट आओ पुस्तक आपने लिखी है, कलाम इंस्पायर्स आपकी रचना है और एक बेहद खास बात ये है कि डॉक्टर रश्मि ने जब कलाम साहब की आत्मकथा लिखी तब उनका ही मार्गदर्शन रश्मि जी को प्राप्त हुआ। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो साथियों, इससे पहले कि मैं अपने सवालों की बौछार अपने विशेषज्ञों पर करूं और अपने विशेषज्ञों के माध्यम से हम कलाम साहब को और जाने, आइए मैं आपको सुनवाती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का वो उद्गार, मन की बात का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उल्लेख किया है।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे,
3: लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब

0: करते हैं। अनुज सिन्हा जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि हम जब एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम लेते हैं तो बहुत सम्मान मन में आता है। हम उन्हें अपने पूर्व राष्ट्रपति जी के रूप में याद रखें, हम उन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में याद रखें, हम उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद रखें, या उनके व्यक्तित्व के ऐसे भी और कई पहलू हैं जो हम सबको जानने चाहिए।
1: बहुत सही बात है। डॉक्टर कलाम जो है वो हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं
0: जी।
1: उनकी शुरुआती जो लाइफ थी बड़ी कठिन थी
0: जी,
1: और उसके बावजूद उनके पास जो वैल्यू सिस्टम्स आए उनके फैमिली के रिलेशन की वजह से, वो ऐसे थे कि आज भी मेरा ख्याल है उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। और वो जो वैल्यू सिस्टम्स हैं उसकी वजह से वो पहले स्पेस प्रोग्राम में उन्होंने अपना सिक्का जमाया
0: जी,
1: उसके बाद डिफेंस प्रोग्राम में अपना हुनर दिखाया, और उसके बाद वो और कई चीजों में रहे, परंतु लार्जली जो उनका राष्ट्रपति पद पे जो रहे 5 वर्ष उसमें जो उन्होंने कंट्रीब्यूट करा, उसके बाद भी वो विद्यार्थियों के साथ टीचर्स के साथ जुड़े रहे। और उनका कहना था कि मैं इन बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूँ
0: जी।
1: उनको एक मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा लगता था जब वो बच्चों से बात करते थे, और ये सब मिला जुला के जो उनकी पर्सनैलिटी थी वो एक मेरे ख्याल है बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी। उनमें हल्का सा भी अहंकार नहीं था। वो चाहे राष्ट्रपति रहे हों या जब वो चीफ रहे हों, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहे हों या डिफेंस के साइंटिस्ट रहे, डायरेक्टर जनरल, वो उनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। जब बात करते थे वो समझने की कोशिश करते थे हम लोग क्या बोल रहे हैं या कोई और क्या बोल रहा है, और समझने की कोशिश करते थे, सीखते थे और उससे फिर आगे बढ़ते थे
0: जी।
1: तो ये एक उनकी बहुत अच्छी मेरे ख्याल है क्वालिटी थी
0: जी।
2: जी
0: तो ये हमें याद रखनी चाहिए जी। डॉक्टर नकुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर कलाम का मानना था कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि समाज तक पहुंचना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
2: नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि जैसा भी सिन्हा साहब ने कहा कि कलाम साहब एक पीपल्स प्रेसिडेंट थे, लोगों से जुड़े हुए थे, और शुरुआती की दौर से अपने जीवन की शुरुआत से उन्होंने विज्ञान पढ़ा, विज्ञान के प्रति उनकी लालसा रही, और खासकर विज्ञान को आम जनमानस तक पहुंचाने की उन्होंने बहुत चेष्टा करी
0: जी।
2: और इसीलिए वो हर तरह से, ताकि विज्ञान ऐसा ना लगे कि वो लैब में कुछ अजीब सा कुछ चल रहा है जो लोगों तक ना पहुंच पाए, तो इसलिए उसको सबसे पहले उन्होंने उस बात को समझा, उस बात को खुद आत्मसात किया था, बचपन में देखा कि किस तरह से विज्ञान जो है बहुत जरूरी है हम सबके लिए, तो बच्चों के बीच में गए, बच्चों से मिलना शुरू किया। मुझे अच्छे से याद है कि 14 मई 2003 में जब वो राष्ट्रपति थे तो उनके पास स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचर्स आए, तो उन्होंने उनके साथ बैठ के अपने वो सारे अनुभव साझा किए। तो आप जब आर्काइव्स में उनके देखते हैं तो ऐसे तमाम आपको उदाहरण मिलते हैं जहां वो विज्ञान को आम आदमी तक, आम आदमी के समझने लायक बनाने की पूरी उन्होंने पुरजोर कोशिश की और पुरजोर उसकी वकालत करी, और वो वकालत उन्होंने अपने जितने भी एक्शंस थे उनके जरिए लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करी। तो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने बताया 14 मई 2003 का उनका ये जो स्पीच आर्काइव्स में मिलता है उसमें उन्होंने कैसे बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो कैसे लोगों ने उनको प्रभावित किया और कैसे जीवन में उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो कुरीतियां हैं, जो चीजें हैं उनके समझ में लगती थी, उनको उन्होंने विज्ञान के जरिए उसको दूर भगाने की चेष्टा करी, लोगों के अंदर उसका प्रसार किया। तो उनका ये शुरू से खुद ये रहा कि पहले खुद करके देखूं और उसको अनुभव करूं और तब लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये काम जो विज्ञान संचारक या प्रचारक होता है उसका ये एक बहुत बड़ा गुण है और इसको उन्होंने बखूबी करके दिखाया
0: जी। यहाँ मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना जानना
2: चाहूंगा। बिल्कुल, जरूर जरूर। और चूंकि कलाम साहब शुरू से हमारे डिफेंस में, हमारे जितने फौजों के लिए काम करते थे, तो मुझे हमेशा से उनका ये जज्बा बहुत अच्छा लगता था। और लक्ष्य फिल्म का एक गाना है, कंधों से मिलते हैं कंधे, मेरे ख्याल से बहुत सामयिक रहेगा, बहुत प्रासंगिक रहेगा
0: जी। बिल्कुल, हम यही गाना अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं सभी के प्रिय और सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। आप सर्वोच्च संवैधानिक पद पर तो आसीन रहे ही, भारत के आप राष्ट्रपति रहे, लेकिन साथ ही आप छोटे छोटे विद्यार्थियों के दिलों में भी बसे रहे, और यही सबसे बड़ी खास बात है जो उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट बनाती है। आज हम कलाम साहब के बारे में बात कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ हैं अनुज सिन्हा जी, आप साइंस कम्युनिकेटर हैं और साथ ही आप पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के। हमारे साथ डॉक्टर नकुल पराशर हैं, आप भी पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के और साथ ही आप ऑथर भी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रश्मि हैं, आपने कलाम साहब की आत्मकथा लिखी है और भी अपनी रचनाएं आपने कलाम साहब को समर्पित की हैं, लेखिका हैं आप। तो रश्मि जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि पुस्तकें तो कलाम साहब पर बहुत लोगों ने लिखी हैं और गर्व भी महसूस करते हैं वो कि उनकी जो एक रचना है वो कलाम साहब के नाम हुई, उनकी लेखनी ने ये सौभाग्य पाया। लेकिन आपके साथ खासियत ये है कि जब आपने अपनी पुस्तक लिखी तो स्वयं कलाम साहब का मार्गदर्शन आपको मिला। मैं चाहूंगी कि आप अपना ये अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें। कैसा लगा आपको जब पहली बार आप उनके पास गईं, उनसे मिली, और क्या फिर प्रक्रिया रही आगे बातचीत की?
1: मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं डॉक्टर कलाम साहब से, मैं दरअसल से तीन बार मिली
0: जी,
1: तो जब मैंने ये विचार किया कि मैं इन पर पुस्तक लिखूं, तो मैं डॉक्टर कलाम साहब से मिली और मैंने उनसे कहा कि सर मैं आप पर एक पुस्तक लिखना चाहती हूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ऊपर तो बहुत किताबें हैं, बहुतों ने लिखा है, अब आप क्या लिखेंगी? तो मैंने कहा कि मैं आप पर उपन्यास लिखना चाहती हूँ, एक जीवनी परक उपन्यास। तो हंसते हुए बोले कि अब तो मुझे हीरो बनाओगी। तो मैंने कहा सर आप हीरो हैं, मैं आपको हीरो क्या बनाऊंगी, मैं तो बल्कि जब अपने युवाओं से, बच्चों से बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि बेटा तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, और जब वो मुझे किसी हॉलीवुड के स्टार का या हॉलीवुड के

0: आर का नाम लेते हैं तो मेरे मन में बड़ी इच्छा होती है कि वो ये क्यों नहीं कहते कि डॉक्टर कलाम मेरे हीरो हैं, विवेकानंद मेरे हीरो हैं, भगत सिंह मेरे हीरो हैं। तो सर वो हंसने लगे, बिल्कुल बच्चों की तरह खिलखिला के हंसे। और आप यकीन मानिए, मैं सोच के गई थी कि मैं देश के इतने बड़े भूतपूर्व राष्ट्रपति से मिल रही हूँ, भारत रत्न से मिल रही हूँ, मैं इतने बड़े प्रौद्योगिकी के और अपने वैज्ञानिक से मिल रही हूँ जिन्होंने देश को मिसाइल शक्ति दिया। लेकिन जब मैं उनके सामने बैठी थी तो मैं अपने घर के किसी बुजुर्ग के सामने बैठी थी, ऐसा लग रहा था। इतने विनम्र, हंसता हुआ चेहरा। आज जब मैं डॉक्टर कलाम को याद करती हूँ तो मैं उन्हें किसी पद से याद नहीं कर पाती। कभी मेरे सामने उनका वो चेहरा नहीं आता, ना राष्ट्रपति वाला, ना बस एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक सौम्य सादगी से भरा चेहरा। एक ऐसे व्यक्ति जो कभी भी आपसे मुलाकात में अपनी उपलब्धियां नहीं बताएंगे, कभी भी अपने बारे में नहीं बताएंगे, वो हमेशा ये पूछेंगे कि देश में क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा, युवाओं में कैसे देश के प्रति संस्कार पैदा होंगे। उनका 2020 विजन इसी को समर्पित था, जिन्होंने अंतिम सांस तक जिस पर उन्होंने काम किया। तो मैं डॉक्टर कलाम को इस तरह से देखती हूँ। यहीं से बस इतनी प्रेरणा गहरी होती चली गई कि अब मुझे एक ऐसा उपन्यास देना है ताकि ये हमारी युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाए, हमारे बच्चों को एक सपना दिखाए, और यहीं से यात्रा शुरू हो गई।
1: जी, तो जब आपकी पुस्तक लिखी जा चुकी थी उसके बाद का क्या अनुभव था, ये कलाम साहब के हाथों में पहुंची?
0: हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जब ये पुस्तक शुरू की थी तो कलाम साहब के आशीर्वाद से शुरू की थी।
1: जी,
0: उन्होंने मुझे कुछ चीजें भी सुझाई थी, वो सब मैंने डाली, यहाँ तक कि उनके हाथों में लॉन्च भी करवाना चाहती थी। लेकिन जब किताब का अंतिम रूप आया तब वो दुनिया से दैहिक रूप से जा चुके थे। ये मेरे लिए बहुत दुख का समय था। तो अगर आप इस उपन्यास को उठाएंगे तो उसकी जो पहली पांडुलिपि थी उसमें प्रारंभ और अंत थोड़ा अलग था, बाद में मुझे उसका अंत अलग करना पड़ा क्योंकि तब वो जा चुके थे। जब मैं ये पुस्तक पूरी कर रही थी तो मैं पूरी प्रेरणा से पूरी कर रही थी, लेकिन जब डॉक्टर कलाम दैहिक रूप से चले गए तो मैं बहुत उदास थी, निराश थी। लेकिन मेरे मित्रों ने, मेरे परिवार ने, मेरे प्रकाशक ने, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि नई रश्मि इस पुस्तक को पूरा करेंगे, ये उनकी श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति आपकी। तो ये पुस्तक पूरी हुई, फिर डॉक्टर एसएम खान साहब ने इसको लॉन्च किया और इस तरह से ये फिर पुस्तक आई।
1: तो अपनी पसंद का कौन सा गाना इस समय कलाम साहब को याद करते हुए आप हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगी?
0: मैं सुनाना चाहूंगी आशाएं आशाएं, कुछ करने की हो आस आस, क्योंकि ये डॉक्टर कलाम के तो पूरा जीवन इसी में ही है।
1: जी, तो बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना है, हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही की।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज का हमारा ये कार्यक्रम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, हमारे ऐसे भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऐसे भारत रत्न जो हर दिल में बसते हैं, और उनके जीवन से जुड़े ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, जब जब हम उनके बारे में जानते हैं एक नई प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में, अनुज सिन्हा जी हैं, डॉक्टर नकुल पराशर हैं, डॉक्टर रश्मि हैं। मैं अनुज जी अब आपसे जानना चाहूंगी, हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं, ऐसे में हम उस समय की भी जरूर बात करें जब उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया था। आप उस दौर को कैसे याद करते हैं, क्या उस तरह चुनौतियां रही थी उस समय उनके सामने?
1: डॉक्टर कलाम का बचपन जो है वो बहुत कठिन था
0: जी,
1: लेकिन उनके जो विचार थे और जो उनके साथ जो लोग मिले जिन्होंने उनको एक तरह से सपोर्ट दिया, एक रोल मॉडल बन पाए
0: जी,
1: वो अधिकतर मतलब कहूँगा पेरेंट्स खुद ही मानते हैं बात को, कुछ टीचर्स जिनके नाम वो लिखते हैं बताते भी हैं
0: जी,
1: ये दोनों ने मिलकर उनको मतलब इस प्रकार से प्रेरित किया कि वो बीएससी करे, उसके बाद इंजीनियरिंग करे, और उनको मौका मिल गया कि वो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स में जुड़ गए, और वहाँ पर उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो सब जगह लिखा ही हुआ है
0: जी।
1: उनका जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ जो जुड़ाव था उसमें उनको फेलियर्स भी मिले एंड सक्सेस भी मिले। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है जो कि रश्मि जी की पुस्तक में भी आ रहा है
0: जी,
1: कि फेलियर्स को किस तरह से सामना करना और उससे डिफीट नहीं होना है ना, उसको आगे बढ़ाना है। तो उससे फिर वो जब डिफेंस में आ गए तो कुछ उनके मन में आ रहा था कि मैं तो स्पेस में इतना अच्छा काम कर रहा हूँ क्यों मुझे भेजा जा रहा है वहां पर। लेकिन जो उनको जब चुनौती बताई गई कि क्या है, और वो चाहते थे कि मिसाइल्स बनाई जाएं, और उनका जो एक्सपीरियंस है स्पेस रिसर्च में उससे मिसाइल्स को भी फायदा बेनिफिट होगा
0: जी,
1: तो फिर वो यहाँ आ गए। और उन्होंने सबसे पहले मैं कहूँगा वो काम करा जो पुराने जो वहाँ पे वैज्ञानिक लोग थे नहीं कर पा रहे थे, वो था नवाचार। उन्होंने इनोवेशन को बहुत सपोर्ट दिया
0: जी,
1: और उस प्रकार से उन्होंने फिर जो अग्नि, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी जो मिसाइल्स बनाई एक के बाद एक, उन्होंने उनकी टीमों ने
0: जी,
1: वो तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि इन्होंने उसमें इनोवेशन लाया। और एक उदाहरण है अगर आप सुनना चाहें तो
0: जी,
1: समस्या थी जिसमें वो जुड़ रहे थे, फंसे हुए थे, तो उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से और ढेरों मतलब इंस्टीट्यूशन से वहाँ के लोगों को बुलाया, उनके सामने प्रॉब्लम पेश करी गई, उनको 7 दिन का समय दिया गया, और जो उन्होंने उसमें सोल्यूशन निकाले उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करा गया, और फिर उसके साथ मिलकर उन्होंने अपना जब लॉन्च करे सैटेलाइट तो सक्सेसफुल हुए
0: जी।
1: इसी प्रकार से उनके मतलब जो होता था कि जो सरकारी तरीके से अगर करते तो शायद उनको लग जाते उसमें महीनों लग जाते, यहाँ उन्होंने हफ्तों में वो करके दिखा दिया
0: जी।
1: फिर वो आगे एटॉमिक एनर्जी में उनको लाया गया, उस समय पोखरण की तैयारियां हो रही थी और उनके नेतृत्व में पोखरण 2 बनाया गया, और जिसकी वजह से फिर 1998 के बाद से हम लोग टेक्नोलॉजी डे भी सेलिब्रेट करते हैं
0: जी।
1: वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया, और उसके लिए वो अपनी तरह से पूरे क्लियर थे कि देश को पावरफुल होना चाहिए, और वो अगर पावरफुल है तो ही मतलब आगे बात बढ़ेगी, पीस रहेगा, और अगर पावरफुल नहीं है तो पीस रहना मुश्किल है
0: जी।
1: तो शांति के लिए उन्होंने मतलब ये करा था, और उसके बाद फिर वो समय देके मतलब वो चाहते थे स्पिरिचुअलिटी
0: जी,
1: और बहुत समय उन्होंने खर्च करा अपना 1997 के बाद से, कई गुरुओं से मिले, ब्रह्म कुमारी के वहां पे जाके समय बिताए
0: जी,
1: और भी कुछ करा। उनको लगता था कि मतलब हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ हम लोगों को यहाँ पर हम लोग आए हैं तो कुछ हमने करना चाहिए
0: जी।
1: वो समय उनके मेरे ख्याल 3-4 साल जो है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, फिर वो राष्ट्रपति बन गए, और वो तो माननीय हम लोग के वो पीपल्स प्रेसिडेंट रहे
0: जी।
1: क्या क्या नहीं करके दिखाया उन्होंने, जो उनका जुड़ाव रहा बच्चों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, वो देख के हम लोग को हमेशा ही मेरे ख्याल सीखना चाहिए कि किस प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए इंस्पिरेशन बनते थे, उनको लगता था कि यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है जो कि बुजुर्ग लोगों के साथ बात करके शायद नहीं मिलती
0: जी।
1: तो जैसे हम लोग एक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस करते थे हर वर्ष, वो उसमें जुड़ते थे आके, और उनके पास अगर मतलब समय नहीं हुआ दूसरी बात है, लेकिन अदरवाइज उन्होंने मेरा ख्याल है कि 6-7 बार आए हैं वो, और उन्होंने मतलब बच्चों से बात करी है और प्रश्न पूछते थे
0: जी,
1: प्रश्न का जवाब देते थे, जो बच्चे प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देते थे। मेरा ख्याल है उनकी जो ये क्वालिटीज हैं ये फ्यूचर के लिए बहुत मुश्किल होगा किसी और में ढूंढे मिले।
0: तो आपने तो देखा है बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों का उत्साह उस समय कैसा होता था, किस तरह की प्रतिक्रिया बच्चे देते थे?
1: बच्चे जैसे बिल्कुल मगमुग्ध हो जाते थे।
0: जी,
1: मेरे बगल में इधर एक लड़की बैठी हुई थी, पसीना टपक रहा है उसके, हम लोग मैसूर में थे और कलाम साहब जो है उसको बात पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक दिस विल हैपन, ये वो इतना मतलब सिर हिला के उसके लिए मतलब उस पूरे हॉल में सिर्फ दो लोग थे, वो और डॉक्टर कलाम
0: जी,
1: बाकी 600-800 लोग और हैं, वो उनके लिए मतलब नहीं था क्योंकि इनसे बात करी थी उन्होंने, लड़की से बात कर पूछा था कुछ
0: जी।
1: तो इतना मुझे अच्छा लगा कि देखो ये कैसा कम्युनिकेशन है बिटवीन सीनियर साइंटिस्ट एंड यंग गर्ल 12 इयर्स 13 इयर्स
0: जी,
1: लेकिन कंप्लीट कम्युनिकेशन है, वो लड़की समझ रही है क्या बोला जा रहा है, वो समझ रहे हैं कि लड़की क्या जवाब दे रही है
0: जी।
1: और उसको मतलब बहुत एनकरेज करा और बैठा दिया। आई वुड लाइक टू नो कि वो लड़की कहाँ है, मोस्ट प्रोबेबली वो कहीं जरूर साइंटिस्ट ही होगी
0: जी।
1: तो ये इस प्रकार का उनका जो पकड़ था वो इम्पॉसिबल टू रिट्रेस। एक और बताऊंगा मैं कि दिसंबर 2004 में वो सुनामी आ गई थी, बहुत लोग डिस्टर्ब थे, उनका समय था हम लोग के साथ 26 तारीख का, वो 26 तारीख को ये सुनामी आ गई थी तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि 29 को आ जाएंगे, 29 को आ गए डिस्पाइट द फैक्ट कि वो राष्ट्रपति हैं, उनके सामने बहुत सी चिंताएं हैं
0: जी।
1: बहुत से लोगों में यहाँ भी मतलब कोस्टल एरिया पे बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, वो भी परेशान थे, लेकिन उनका आगे हम बच्चों से बात करेंगे
0: जी।
1: तो बहुत अच्छा लगता है इनके बारे में सोच के जान के
0: जी। तो बच्चों को वो प्राथमिकता देते थे, उनके विचारों को सुनते थे और फिर समाधान भी करते थे, और इसीलिए शायद बच्चे जो हैं वो भी जो कलाम साहब ने उन्हें सपने देखने सिखाए थे उन पर वो आगे बढ़े हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो श्रेय देते हैं कलाम साहब को ही कि आज उन्हीं की वजह से हम ऊंचाइयां छू पाए जीवन में
2: जी।
0: तो कलाम साहब ने अपने जीवन से हमें ये प्रेरणा दी, उन्होंने नवाचार को प्राथमिकता दी और उन्होंने नए मस्तिष्क जो बच्चे थे उनके अंदर ऊर्जा भरी। यहाँ मैं डॉक्टर नकुल आपसे जानना चाहूंगी, कलाम साहब जब भी बच्चों से मिलते थे तो ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बड़े सपने देखो, ये हमेशा कहते थे, आपको क्या लगता है इस एक पंक्ति का क्या जादू रहा होगा?
2: पंक्ति का ये जादू रहा कि उन्होंने खुद इसको, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले किसी चीज को कहने से पहले वो खुद आत्मसात करते थे और फिर चाहते थे कि वो अपने अनुभव के आधार पर लोगों में उस बात को पहुंचा पाए
0: जी।
2: और उनका हमेशा ये रहा कि सपने आपके अंदर बड़े होने चाहिए कि आपको आपकी नींद गायब हो जानी चाहिए और जब तक आप वो सपना हकीकत में ना हासिल कर लें तब तक आप उस पे काम करते रहें
0: जी।
2: ये एक तो उनका ड्रीम का रहा, दूसरा बहुत ऐसे कई अनुभव रहे। व्यक्तिगत तौर पे मुझे एक लाभ मिला, मेरे दिवंगत ससुर साहब के साथ उन्होंने काम किया डीआरडीओ में, वो भी साइंटिस्ट थे, वो भी एडवाइजर थे
0: जी।
2: तो कई बार उनसे पता चलता था कि देर रात तक काम करना और सुबह जल्दी उठना उनका नियम था, ये कई सालों से ये नियम था। और ये नियम जब उनसे पूछा गया तो कहाँ से मिला, तो वो एक ऐसे परिवार में थे जिसमें 4 भाई बहन थे वो, और उनकी सबसे बड़ी बहन ने उनको सहयोग करके उनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट कराई थी
0: जी।
2: तो उसके अंदर उनको ये एहसास था कि कैसे अगर किसी चीज को प्राप्त करना है, वो कहते हैं ना कि नो पेन्स एंड नो गेन्स, उसका वो सार्थक उदाहरण थे और वो करके दिखाया उन्होंने
0: जी।
2: और रही बात उनके बच्चों के साथ और सबके साथ, उनका ये मानना था, जैसे अभी हमने कहा कि वो पीपल्स प्रेसिडेंट थे, अभी सिन्हा साहब ने बताया कि उन्होंने मिसाइल पे काम किया
0: जी।
2: तो वो मिसाइल मैन हुए और ऐसे न जाने कितने एडजेक्टिव्स उनके साथ जुड़ते चले गए, उनका स्वभाव, उनका काम, वो एक आदर्श स्थापित करते चले गए। जैसे डॉक्टर अश्विनी ने बहुत अच्छा कहा अभी कि वो कोई भी चीज, कोई भी काम करने से पहले जो भी कुछ सोचते थे उसको पहले उसको प्रैक्टिकली कर, और साइंटिस्ट का एक मेरे ख्याल से गुण है कि वो कोई भी चीज अगर प्रपोज करता है, हाइपोथेसिस कुछ भी करता है, तो उससे पहले वो सोच के रखता है कि उसको प्रैक्टिकल कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये सारी तमाम चीजें अगर आप देखें, और साथ में उनकी जो एक और किताब है विंग्स ऑफ फायर, उसके अंदर बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर ये आपको पढ़ने को मिलता है।

0: मैं तो ये
1: जी
0: कहूंगा कि डॉक्टर रश्मि का उपन्यास और वो विंग्स ऑफ फायर हर एक बच्चे को और हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जिसमें ये लालसा है, जिसमें वो समझता है कि चाहे वो वैज्ञानिक वो बैकग्राउंड से हो
1: जी
0: या ना हो, पर एक आम आदमी के अंदर एक आगे बढ़ने की ललक है, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जिसे
1: जी
0: कहते हैं किसी भी चीज के लिए एक ट्रबल शूटिंग मैकेनिज्म या बुक होती है, उसी तरह से वो ये दो किताबें मेरे ख्याल से सबके लिए उतने अच्छे तरीके से डॉक्टर रश्मि का उपन्यास सहजता से लिखा गया है, मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा वो रहेगा। इस पे अगर हम डॉक्टर रश्मि से भी और चर्चा करें तो बहुत अच्छा रहेगा
1: जी बिल्कुल। मैं रश्मि जी अब आपसे जानना चाहूंगी
2: जी,
1: अगर हम सामाजिक पक्ष की बात करें डॉक्टर कलाम के, तो जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से वो आते थे, जिस तरह की कठिनाइयां उन्होंने झेली हैं और उसके बाद जो उपलब्धियां उनकी रही हैं, मैं चाहूंगी कि आप इनके बारे में भी जरूर हमसे चर्चा करें और हमें ये बताएं कि आम तौर पर उस तरह की कठिनाइयों में बच्चे कैसा महसूस करते हैं और कैसे कलाम साहब एक उदाहरण बने सबके सामने।
2: जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगी कि आजकल जब बच्चे सुविधाओं की बात करते हैं
1: जी,
2: तब हमें डॉक्टर कलाम बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण की तरह सामने आते हैं। डॉक्टर कलाम के अगर बचपन को देखें आप, तो धनुषकोटी के, रामेश्वरम के धनुषकोटी के एक छोटी सी जगह से निकले वे बालक थे जो कि सपने देखते थे। छोटा सा उनका घर जहां वो रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने माताजी पिताजी, उनके पिताजी मस्जिद के मेन, और उस परिवार से वो निकल कर आ रहे हैं। और हम जैसा कहते हैं कि उन्होंने बचपन में अखबार भी बांटे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उनके जो कजन थे एजेंसी चलाते थे। डॉक्टर कलाम साहब ने उस बचपन में, जब आज हमारे बच्चे सुविधाएं मांगते हैं, उन्हें एसी रूम चाहिए, पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं चाहिए, तब डॉक्टर कलाम सुबह 4 बजे उठ करके ट्यूशन पढ़ने जाते थे, लौटते वक्त अखबार घरों घरों में डालते थे, इसके बाद आकर फिर अपने स्कूल पढ़ने जाते थे। तो इस तरह का उनका जीवन था। तो अगर आप कोई बड़ा सपना देख रहे हैं, आप बड़े बनना चाहते हैं, तो आप उस बड़े व्यक्ति को ये ना देखें कि वो बड़ा बन गया, ये देखें वो बड़ा किस किस तरह से बना
1: जी,
2: किन किन जर्नियों से गुजरा, क्या क्या संघर्ष थे उसके जीवन में, तब वो बड़ा बना। तो डॉक्टर कलाम हमें यही बता रहे हैं, वो इतने बड़े पदों पर रहे, राष्ट्रपति के पद पर रहे वो सब, लेकिन उन्होंने कभी, मैं उनको देखकर ये नहीं कहती कि वो लोगों को प्रभावित करते हैं या उन्होंने मुझे प्रभावित किया, नहीं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया
1: जी।
2: बहुत फर्क है इन दोनों शब्दों में कि आप प्रेरित हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए इतना बड़ा वैज्ञानिक, आप ये सोचिए कि वो अपने शांति के क्षणों में वीणा बजाता था
1: जी,
2: जिन्होंने देश को मिसाइल शक्ति दी, वो कर्नाटक संगीत सुना करते थे
1: जी।
2: तो ये उनके जीवन के वो पक्ष हैं जो और हमें उनके लिए एकदम प्रेम से आदर से भर देते हैं
1: जी। बिल्कुल, और इनमें विरोधाभास भी नजर आता है, लेकिन एक इस तरह का विरोधाभास जैसा कि आपने कहा कि वो हमें प्रेरित करता है। मिसाइल मैन के हाथों में जब हम वीणा देखेंगे तो कैसी अद्भुत छवि वो लगेगी
2: जी, क्योंकि मिसाइलें जो है वो मनुष्य को पूरा मनुष्य नहीं बना रही हैं। जब उसके अंदर संवेदनाएं हैं, जब वो संगीत से जुड़ा है, कला से जुड़ा है, तब उनके अंदर संवेदनाएं जागती हैं। क्योंकि डॉक्टर कलाम का जो कार्य था ना, अगर आप ध्यान से देखें तो वो अध्यात्म के स्तर पर था, उनके लिए वो भक्ति थी, देश प्रेम उनकी प्रगाढ़ भक्ति थी। तो हम ऐसे उन्हें समझते हैं आज
1: जी, और इसीलिए हम चाहते हैं कि बार बार हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी कलाम साहब को पढ़ें, उनके बारे में जानें, क्योंकि जो सपने उन विद्यार्थियों के मन में हैं, उसकी राह इस जीवनी से हमें मिल सकती है, कलाम साहब को जानने से मिल सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, हम जब विकसित भारत की बात करते हैं और हम अभी कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत हमें बनाना है, ये लक्ष्य हमारे सामने है, ऐसे में एक लक्ष्य उन्होंने रखा था इंडिया 2020, हम इस बारे में जानना चाहेंगे।
3: डॉक्टर कलाम के बहुत से कंट्रीब्यूशंस हैं
1: जी,
3: और जिनको सबको लिस्ट भी नहीं करा जा सकता।
1: अपना
3: समय दिए और एक कमेटी में वो चेयरमैन थे, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल में, और उसमें उन्होंने 5 एरियाज जोड़े थे जिस पर उन्होंने कहा था कि देश को काम करना चाहिए, जो आप कह रही हैं कि आगे कैसे बढ़े, विजन 2020 क्या होना चाहिए। एक उन्होंने कहा था कि कृषि और फूड प्रोसेसिंग इसमें जोड़ना चाहिए
1: जी,
3: और उसके उन्होंने मतलब कई सजेशन दिए थे उनकी कमेटी ने। दूसरा पावर जनरेशन, हम लोगों को जितनी हम लोगों को जरूरत है उतने उसे उतनी होनी चाहिए, इस समय कम है। फिर उन्होंने एजुकेशन पर बहुत जोर दिया था
1: जी,
3: किस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए हेल्थ केयर के साथ जोड़ के, और उस पर भी उनका अपना जो बड़ा तजुर्बा था हैदराबाद में और उससे पहले भी हेल्थ के साथ में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा उनका। फिर उस समय जो आ रहा था ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
1: जी,
3: ये पिछले 20 वर्षों में हमने देखा ही है पूरा देश किस तरह से बदल गया। और फिर उन्होंने कहा था स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं डिफेंस के और स्पेस के, इसमें हमें आगे बढ़ के आना चाहिए। तो विजन

0: 2020 जो है उसमें इन सब चीजों को जोड़कर उन्होंने बनाया था। साथ में ये मतलब एक उनकी जो की बैकग्राउंड उस तरह का रह चुका है, उन्होंने कहा कि प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज
1: जी,
0: इसका बनता है पूरा PUR। वो कहते थे कि इस पे काम करो, तो उन्होंने IIT चेन्नई को, IIT दिल्ली को और कई संस्थाओं को जोड़ा था कि कैसे नहीं हम लोग कर सकते हैं कि लोग गांव में रहें और गांव में ही कंट्रीब्यूट करें रादर देन कि सबके सब माइग्रेट करके शहरों में आए
1: जी।
0: तो रूरल एरियाज में उनका कहना था कि अर्बन फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो उसमें कई उन्होंने मतलब अपना समय लगाया, जो आपकी जगह बतानी थी कि रात रात भर वो सोचते थे, समझते थे
1: जी,
0: बातचीत करते थे और उससे उभर के निकल के आता था कोई अगर रिजल्ट। ये जो विजन 2020 है, मेरा ख्याल है कि अभी भी इसमें अगर देखा जाए तो जरूर बहुत से अच्छे एक्सपर्ट्स ने कंट्रीब्यूशन किया है और उस पे डॉक्टर कलाम का छाप है, उस पे उनके हर एक सेंटेंस पे उनकी
1: छाप है जी। डॉक्टर नकुल, आपसे जानना चाहूंगी, जब कलाम साहब ने वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया था और आज जब हम कहते हैं कि हम रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं और अधिक से अधिक क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे तुलना करेंगे दोनों समय की, आज हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड कैसा है?
2: देखिए, जैसे सिन्हा साहब ने अभी बहुत कुछ बताया कि उनका विजन 2020 का जो डॉक्यूमेंट था वो अपने आप में एक मानक था, एक स्टैंडर्ड था, जिससे बहुत कुछ और बहुत जो उसके बाद का जो भी समय रहा उसमें जितने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े जितने भी मंत्रालय, करीब 9-10 ऐसे मंत्रालय जो डायरेक्ट और अनडायरेक्ट तरीके से काम करते हैं, उन सब ने उसको समझने की कोशिश करी, उसको लेके आगे चलने की कोशिश करी, वहां से बहुत कुछ लिया और उसको डेवलप किया
1: जी।
2: मेरा ये कहना है कि वैश्विक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और खासकर अब तो हम देखते हैं कि हर छोटी सी चीज के लिए भी हम AI का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीजों के बीच में भारत ने बहुत तेजी से पिछले 10-12 सालों के अंदर बहुत तेजी से काम किया है और एक दौर रहा जहां हमने देखा कि इन सब चीजों के लिए, रिसर्च के लिए खासकर, जैसे कि कलाम साहब का खुद का कहना था, इसके लिए एक तवज्जो, एक इम्पोर्टेंस, एक इम्पीटस मिलना चाहिए और इसके लिए जो रिसर्च के फंड्स हैं उनका उसमें इन्हेंसमेंट होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष देश का एक RDI जो 1,00,000 करोड़ का जो रिसर्च का जो फंड है वो जो भारत सरकार ने लाए हैं वो बहुत बड़ी चीज है। फिर रिसर्च के अंदर उनका ये बहुत आवश्यक था कि जितने भी हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जो एक मानक होते हैं कि आप क्या रिसर्च करते हैं, तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बेचारे इतने महंगे रिसर्च से वंचित रह जाते थे। तो सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया
1: जी।
2: इस तरह से आप देखिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे क्वांटम मिशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक मिशन है जो सुचारू रूप से उस पर काम कर रहा है और देश के जितने भी बड़े बड़े थिंक टैंक और बड़े बड़े लोग हैं सब उसमें जुड़े हुए हैं और तेजी से उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि देश का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, देश में जितने भी ये डेवलपमेंट है वो वैश्विक स्तर पे जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ एक पेस बना के चल रहा है। और कुछ स्तर पे तो मैं भी ये कहूंगा कि चूंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा समय रहा, तो मेरा ये मानना है कि जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर है खासकर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और इसका एक जीता जागता उदाहरण है अभी जो हमने लॉन्च किया, जो प्राइवेट सेक्टर से जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च हुआ, तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे हम सबको समझ में आ रहा है, विशेषकर डिफेंस के अंदर जो प्राइवेट प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है और मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो सब काबिले तारीफ और इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमने समय के साथ अपने आप को उसके साथ जोड़ के रखा और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि कलाम साहब का वो सपना हम सब और खासकर विज्ञान का सपना हम पूरा कर पाएंगे। बस एक बात कहने में जरूर करना चाहूंगा कि इसके साथ विज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाने का जो प्रयास है उसको और तवज्जो देने की जरूरत है
1: जी। उसमें हम और बहुत कुछ
2: कर सकते हैं
1: जी। PPP मॉड्यूल जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साइंस फील्ड में, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है
2: जी।
1: यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, जैसा कि अभी डॉक्टर नकुल ने कहा कि हम जो साइंस है उसे आम लोगों तक पहुंचाएं, तो आपके विचार में क्या किया जा सकता है?
0: जो डॉक्टर कलाम ने जो हम लोगों को राह दिखाई है
1: जी,
0: उसमें ही बहुत गुण हैं आगे बढ़ने के, क्योंकि पूरा जो उनका प्रोग्राम था
1: जी,
0: और जो उसमें कई वैज्ञानिक जुड़े साथ में, तो उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दी कृषि, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, किसान के पास सही इनपुट्स मिलते हैं, उसको सही टाइम पे मिलते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ सकता है और अपने फिर परिवार का भी ध्यान रख सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हर हर स्टेप पे हम लोग को डॉक्टर कलाम के जो आइडियाज थे और जो जो लिख के रखे हैं और सजेस्ट किए हैं उसमें हम लोग को ढूंढना चाहिए, कई सोल्यूशन मिल जाएंगे हम लोगों को।
2: जी बिल्कुल।
1: तो कलाम साहब ने जब विभिन्न पद संभाले, जिम्मेदारियां संभाली, तब भी हमारा नेतृत्व किया, बहुत योगदान दिया उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, और आज अगर हम उनका लिखा हुआ पढ़ेंगे तब भी हमें समाधान मिलेंगे। रश्मि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक इस तरह का प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि अगर आप छोटी बच्ची होती और आज आप कलाम साहब से मिलती तो आप उनसे क्या सवाल करती, अगर आपको मौका मिलता तो?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं सच में अपने अंदर एक छोटी बच्ची महसूस कर रही हूँ। आज डॉक्टर कलाम मेरे सामने होते और मैं उनके सामने ये पूछती कि सर, ये दुनिया जो आज इतना दौड़ रही है, भाग रही है, विनाश की तरफ जा रही है, इसे हम कैसे रोकें? और सच मानिए, डॉक्टर कलाम का यही सपना था कि इस धरती को रहने योग्य बनाना है। वो इतने बड़े बड़े पदों में पहुंचे लेकिन अंततः अपने आप को एक शिक्षक मानते रहे
1: जी।
3: कि मैं एक शिक्षक हूँ। और ये असीम कृपा है उनकी ईश्वर पर कि जब वो दुनिया से दैहिक रूप से गए तो एक शिक्षक के रूप में ही गए। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी उनमें कभी विलासिता नहीं थी, बस एक शिक्षक का गुण था।
2: बिल्कुल।
3: अपने सामने बैठे लोगों को इतना ध्यान से समझाते थे, इतने प्यार से बताते थे, जैसा सर ने बताया कि वही इनका जो गुण है वो हम आज याद करते हैं, क्योंकि उनकी विनम्रता, उनका मिसाइल मैन होना वो बहुत बड़ी देश की उपलब्धि है, लेकिन करोड़ों आंखों में जो सपने देकर गए वो विरासत है हमारे लिए, जो हमेशा हमारे पास रहेगी। तो मैं उनसे यही प्रश्न करती कि अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इस दुनिया को रहने लायक अपनी तरफ से एक योगदान दे सकूँ।
1: जी, बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया इसका, और शायद ये हम सबके मन में सवाल होना चाहिए कि हम अपनी ओर से क्या योगदान कर सकते हैं अपने देश को बेहतर बनाने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, अगर हमारे युवा साथी जो इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो वैज्ञानिक बनने का सपना देखते हैं, तो उनके सामने कौन से दरवाजे अभी खुले हैं, उन्हें किस तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहिए?
0: जो वैज्ञानिक है या कोई भी स्पेशलाइजेशन में
1: जी,
0: आजकल बड़ा नैरो एरिया हो गया है हर एक वैज्ञानिक के लिए, हर एक स्पेशलिस्ट के लिए
1: जी।
0: और ये नकल भी मान जाएंगे, हम लोग जो है वो ओपन माइंडेड इतने नहीं हो पाते हैं कि काम कर सकें, या जो युवा पीढ़ी है उनको गाइड कर सकें। हम लोग चाहते हैं वो भी उसी नैरो एरिया में ही स्पेशलाइज करें, तो ये एक चिंता की बात है, परंतु इट इज लार्जर क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर कलाम के अगर उससे हम लोग चले तो इन्होंने जैसे अपना फर्स्ट स्टेज कहते हैं वो था हमारा जब हम इसरो के साथ थे, हमने जो है जब सैटेलाइट लॉन्च के लिए काम किया। सेकंड स्टेज जैसे रॉकेट का होता है, सेकंड स्टेज में मैं जो था डीआरडीओ के साथ था और उसमें जो मैंने कंट्रीब्यूट करा मिसाइल मैन के लिए बन गए। थर्ड स्टेज जो था वो जब राष्ट्रपति थे, और फोर्थ स्टेज कहते हैं कि जब राष्ट्रपति की गद्दी छोड़ दी उन्होंने, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट करा टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्होंने मतलब अपनी जिंदगी कहाँ शुरू करी थी, एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर, एज ए एरोस्पेस इंजीनियर, और किस तरह से वो अपने को भी उभारते रहे और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो ये एक अगर सोच और विचार के साथ आदमी आगे बढ़े तो मेरा ख्याल है कि जो भी उससे सामने समस्या आएगी उसका वो सही हल भी निकाल लेगा और कंट्रीब्यूट भी कर सकेगा
1: जी।
0: तो बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है वो नैरो स्पेशलाइजेशन ना रखें अपने को, परंतु जो फ्यूचर की जनरेशन आ रही है उनको इस तरह से गाइड करें कि वो जो है असली में कंट्रीब्यूट कर सके। डॉक्टर कलाम का बहुत से छोटे छोटे वो भी थे, राइटिंग में जो लिखते थे, एक तरह से फेल का क्या मीनिंग होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग
1: जी,
0: दैट वाज हाउ ही वुड पुट इट। कहते फेल नहीं हुए तुम, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। और कहते थे कि हमारा कैरियर देखो, इसरो में भी वो SLV-3 इन्होंने जब लॉन्च करवाया फेल हो गई, भी बड़े दुखी हुए, सतीश धवन ने इनको एनकरेज करा, नेक्स्ट टाइम सक्सीड कर गए। कहते हैं जब तक सीख करेंगे नहीं तब तक सीखें कैसे। दूसरा उन्होंने कहा था जैसे कि जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, या ये है कि साइकिल आपको चला रही है, तो एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट देखने का
1: जी।
0: और ऐसी बहुत सी उनके जो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं, कुछ तो मेरा ख्याल रश्मि जी की किताब में लिखे हैं
1: जी,
0: वो बड़े अच्छे हैं। और उनसे हम लोग जब बात करते हैं विद्यार्थियों से, तो हम लोग उन्हीं के ये इस तरह के जो आइडियाज हैं उनको यूज भी करते हैं और लोगों से तालियां पिटवाते हैं
1: जी। जी, यानी वो कलाम साहब के दिए हुए हैं लेकिन हम आज तक उसका फायदा उठाते हैं। जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर नकुल, जैसे हम बार बार ये जान रहे हैं कि कलाम साहब बच्चों से सीधा संवाद करते थे और बच्चे बहुत पसंद करते थे इस बात को और प्रेरित होते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं। जब इस तरह के हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व, इस तरह की शख्सियत जो होती हैं, बच्चों से जब सीधे बात करती हैं, आपको क्या लगता है कि उनके मानस पटल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा? भले ही वो वैज्ञानिक ना बनना चाहे, भले ही उन्होंने अभी अपने जीवन के लिए कोई ऐसा लक्ष्य नहीं चुना है, बच्चों ने बस पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके मन पर प्रभाव पड़ता है इन बातों का?
2: देखिए, देश काल परिस्थिति कुछ भी रही हो, कभी भी रही हो, कोई भी क्षेत्र में कोई भी बड़ा व्यक्ति जब अपने स्तर से उतर के बच्चों से बात करता है तो उसका प्रयास होता है कि बच्चों के अंदर एक तरह की, जैसे उन्होंने कहा, प्रेरणा नहीं प्रेरित कर सके उसको, तो प्रेरित करने का जो प्रयास होता है वो बहुत अपने आप में अनूठा प्रयास है। और जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, जैसे कलाम साहब ने किया, और ऐसे तमाम बहुत सारे विजनरी लीडर्स रहे हैं जो उतर के इस लेवल पे करते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से मैं सेंट्रल एशिया और अर्स्टवाइल रशिया में काफी मैंने काम किया, तो मैंने वहां देखा कि जितने भी बड़े वहां के लीडर्स हैं उनका ये प्रयास रहता है कि स्कूलों में जाएं, बच्चों से मिलें, बच्चों के अंदर वहां पे शुरू करें, क्योंकि जो भी कुछ है वो घर से ही शुरू होता है। और अगर आप उनको कैच देम यंग का जो उनका फॉर्मूला है, अगर आप वो करेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का और कलाम साहब का जो अपने आप में एक अनूठा वो उदाहरण रहे, उनका ये हमेशा से प्रयास रहा है। और मेरे ख्याल से स्कूलों के अंदर भी जब हम देखते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति उसके अंदर आता है, तो जैसे मैंने आपसे अभी शुक्र में जिक्र किया था कि एक कलाम साहब का एक एनेक्डोट है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जब वो वहाँ ट्रिची में पढ़ रहे थे तो उनको उनके कॉलेज में उनके एक टीचर थे जिनका नाम था कैलकुलस सोलोमन, तो वो कहते थे कि उनके एक टीचर थे तोतादरी आयंगर, तो जब वो आएंगे तो तुम देखोगे। तो उनके बारे में उन्होंने जिस तरह से लिखा है, कुछ लाइनें जो उनकी शुरू की हैं वो अपने आप में इस बात का बखान करती हैं, पूरा चित्रण करती हैं कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, क्या आता है। तो बच्चे बहुत एक सरल हृदय होते हैं और उनके मन पे वो आप उसको जैसा चाहें वैसा मोल्ड करते हैं, अगर शुरू में उनको अच्छा मोल्ड करते तो अच्छा बन जाते हैं। तो वही उनका प्रयास है, उनका व्यक्तित्व जब आके स्टेज पे उन्होंने हमसे बात करी, उसका प्रभाव मेरे जीवन में आज तक है। तो ऐसे ही न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं हम सबके जीवन में रहे होंगे, जब हम अपने शुरुआत में जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता तुम क्या बनना चाहोगे, तो बच्चा छूटते बोलता मैं टीचर बनना चाहूंगा, क्योंकि टीचर उस वक्त एक रोल मॉडल होता है, समय के साथ वो रोल मॉडल बदलते रहते हैं। बहरहाल जैसे रश्मि जी ने कहा कि आज अगर बच्चों के अंदर रोल मॉडल के लिए अगर हम कलाम साहब के बारे में ज्यादा लोगों को बताएं, और ये आपका कार्यक्रम अगर इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो सुन रहे हैं उनमें भी अगर अति भर भी अगर ये एक बात हम पहुंचा पाए तो बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। मेरे ख्याल से ये आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में यही प्रयास हमारा कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचे, और साथ ही मन की बात में प्रधानमंत्री जी जिन घटनाओं का उल्लेख करते हैं या विशेष तिथि अगर कभी बताते हैं उसके पीछे एक पूरा संदर्भ होता है, और हमारा प्रयास यही रहता है कि उसके बारे में हमारे श्रोता अधिक जाने, और खासकर हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं वो जाने भी, क्योंकि उनके सामने की तो ये घटनाएं नहीं है, लेकिन साथ ही वो प्रेरित भी होते रहें और समसामयिक चुनौतियां जो आज उनके सामने हैं, जिसे हम ग्लोबल इश्यूज कहते हैं, वो उनका समाधान हमारे इन प्राचीन घटनाओं से, इन शख्सियत से, इन व्यक्तित्व से, इन संदर्भों से लेते रहें। मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर कह रही हूँ, आप तीनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, और आपके बहाने हमने पीपल्स प्रेसिडेंट को, हमने अपने प्रिय कलाम साहब को और मिसाइल मैन को, देश के लिए इतना बड़ा योगदान करने वाली एक महान शख्सियत को और जाना, उनके बारे में कुछ अनछुए पहलू हमें पता चले। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे अनुज सिन्हा जी। आप साइंस कम्युनिकेटर हैं, पूर्व निदेशक हैं, आप विज्ञान प्रसार के साथ ही आप एडवाइजर भी रहे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में थे डॉक्टर नकुल पराशर। आप अप्लाइड फिजिक्स में आपने पीएचडी की, आप ऑथर हैं, विज्ञान आधारित कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, साथ ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हेड आप रहे, और आप भी विज्ञान प्रसार के निदेशक रहे हैं। डॉक्टर नकुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए।

0: और हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि, आप एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, प्रेरक वक्ता भी हैं। कलाम साहब की आत्मकथा आपने लिखी, साथ ही कलाम तुम लौट आओ, कलाम इंस्पायर्स, ये पुस्तकें आपकी हैं और आप कलाम साहब के मार्गदर्शन से ही अपनी पुस्तक आपने पूरी की है। तो डॉक्टर रश्मि, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने समय दिया, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मेरे अपने आदर्श डॉक्टर कलाम साहब पर बोलने का मौका दिया। आपके श्रोताओं को भी धन्यवाद
0: जी। तो आज के कार्यक्रम से हमने यही सीखा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना केवल वैज्ञानिक भारत का नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का था जहाँ हर बच्चा जिज्ञासु हो, हर युवा नवाचारी हो और हर नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। कलाम साहब जो कहते थे और जो हम सोशल मीडिया पर बार बार पढ़ते हैं और जिसे हम अपने इंस्पायरिंग लाइंस बनाकर अपने घर की दीवारों पर चिपकाते हैं ताकि सुबह आंख खुलते ही हम इसे देखें और मोटिवेटेड हो, ये पंक्तियां हमें दी कलाम साहब ने। तो उन्हें आदर भाव से याद करते हुए मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से अनुमति लूंगी। इस कार्यक्रम के संयोजक रहे दिलीप झा और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान और प्रमोद कुमार वत्स के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतदान आज सवेरे 8 बजे शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित

करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 14 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन की तुलना बांग्लादेश में 2024 के उस आंदोलन से की, जिसने शेख हसीना की आवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्होंने कहा कि ढाका में हुए छात्र आंदोलन ने हमें धोखा दिया। कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में प्रख्यात लेखिका ने कहा कि जंतर मंतर की घटनाओं पर उन्होंने नजर नहीं रखी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के एक छोटे से वीडियो क्लिप ने उन्हें बांग्लादेश में जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन की याद दिला दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

101 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 10 सेकेंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैलेंडर में फ्रेंडशिप डे भले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपकी और मेरी मुलाकात तो अब हुई है, तो फिर फ्रेंडशिप डे विश करना तो बनता है। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ, यानी रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ।

खैर मुझे तो आवाज़ देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं आवाज़ नहीं दूंगी तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे कैसे। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे रफ़ी साहब की आवाज़ में ये सदाबहार गीत फिल्म दोस्ती से। ये फिल्म आई थी 1964 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सत्येन बोस ने और प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने। ये फिल्म दो लड़कों की दोस्ती पर आधारित थी, सुधीर कुमार सावंत और सुशील कुमार सोमैया पर। ये फिल्म 1964 में आई थी और 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट घोषित किया गया था और 1977 में इस फिल्म को मलयालम और तेलुगु में स्नेहम नाम से दोबारा बनाया गया था और इस फिल्म ने 6 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे। अगला गीत आप तक हेमंत कुमार की आवाज़ में।

फिल्म का नाम 16 साल और आवाज थी हेमंत कुमार की। ये फिल्म आई थी 1958 में और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था चंद्रकांत सी देसाई ने और डायरेक्ट किया था राज खोसला साहब ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद और वहीदा रहमान ने। फिल्म का म्यूजिक दिया था एसडी बर्मन ने और गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। इस फिल्म में देवानंद और वहीदा रहमान पर ट्रेन में फिल्माया गया गाना जो अभी मैंने आपको सुनवाया है, अपना दिल तो आवारा। इस गाने को जो ये जो गाना था इसमें जो आर डी बर्मन साहब हैं उन्होंने इस गाने में माउथ ऑर्गन बजाया था। और अब हम बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ और अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म हावड़ा ब्रिज से गीता दत्त की आवाज़ में।

हावड़ा ब्रिज फिल्म से सुन रहे थे आप ये गीत। आवाज थी गीता दत्त की, संगीत था ओपी नैयर साहब का और गीतकार थे कमर जलालाबादी। ये फिल्म आई थी 1958 में और ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था शक्ति सामंत ने और संगीत ओपी नैयर साहब का था। इस फिल्म की कहानी रंगून के एक बिजनेसमैन प्रेम कुमार पर आधारित थी जो अपने भाई के कातिलों को पकड़ने के लिए एक दूसरे शहर में जाता है। और ये फिल्म अपनी रिलीज के बाद से क्रिटिक्स और कमर्शियली बहुत सफल फिल्मों में से एक रही थी। अगला गीत लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज़ में, फिल्म अंदाज से। अभी के लिए

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:40 और 27 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

देख को कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देख को कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हम

ढूंढ चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ ढूंढ चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

फिल्म का नाम था तुमसा नहीं देखा और आवाजें थी रफी साहब और आशा जी की। ये फिल्म आई थी 1957 में और ये एक लव स्टोरी थी। इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था नासिर हुसैन साहब ने और बतौर निर्देशक के रूप में हुसैन साहब की ये शुरुआत थी और उन्होंने मुनीम जी और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्में लिखी थी। ये जो फिल्म थी ये अमिता को नायिका, इस फिल्म की जो नायिका थी अमिता को ध्यान में रखकर बनाई गई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफ, ये फिल्म काफ़ी हिट रही थी और इस फिल्म ने संघर्षरत शम्मी कपूर को रातों रात फेमस बना दिया था। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था ओपी नैयर साहब ने और गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और अगला गीत अब तक पहुंचेगा लता जी की आवाज में। फिल्म वो कौन थी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं की ओर संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग में तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई

सच कहूँ तो इतना सफर करते हुए बहुत थकने के बाद यदि फिर भी अंत में मुझे कहीं पहुंचना है तो वो केवल तुम हो।

101 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:11 और 50 सेकंड। रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है, कोई इस समय ऑफिस की नाइट शिफ्ट में बिजी है, कोई पढ़ाई के लिए पन्ने पलट रहा है, तो कोई किसी के ख्यालों में बिजी है। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी में जो सबसे अच्छी चीज है वो है ये सदाबहार गीत। अगला गीत फिर से लता जी की आवाज में।

0: कभी कभी।
1: बस इतनी सी बात समझने में हमें जमाने लग जाते हैं कि जिंदगी में खास चीजें बार बार नहीं दोहराई जाती। आजकल हम सभी बहुत जल्दी में रहते हैं, हर रिश्ते को लेकर, इंसान को लेकर, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जो इंसान हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, हम उसकी वैल्यू करते ही नहीं हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जो इंसान हमें मिला है, हमें उसकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान फिर हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करता है, आपकी बातों को सुनता है, तो यकीन मानिए आप बहुत खुशनसीब हैं। रिश्तों में ईगो और शिकायतों को बिल्कुल जगह नहीं मिलनी चाहिए। अगला गीत आप ही के लिए।

मुझे लगता है आपको अपनी सारी वादे याद आ गई होंगी। मैं उन वादों की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें आपने ये कहा था कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, वो बड़े बड़े वादों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उन छोटे छोटे वादों की जिसमें आपने किसी से कहा था कि आज शाम को हम चाय साथ पियेंगे, तुम मुझे मेरी पसंदीदा गजल सुनाओगी और मैं तुम ये रंग की साड़ी पहन के आओगी। मैं उस तरह के छोटे छोटे वादों की बात कर रही हूँ। आपको पता है ज़िंदगी में हम एक ऐसे, हमारी ज़िंदगी इतनी स्पीड में चलती है, हम इतनी रफ्तार में होते हैं कि हम बड़े बड़े सपने पूरे करने के चक्कर में जो छोटे छोटे हमारे सपने होते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिश्तों में मिठास आती है, हम उन सपनों को पूरा करना भूल जाते हैं। बड़े बड़े सपने पूरे करने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि दिन में एक छोटा वादा जो आपने किसी से किया है उसे ज़रूर पूरा कीजिए। तो खंगालिए अपने दिमाग को और उन वादों को लिख डालिए जो आप आज तक अधूरे हैं। अगला गीत आप ही के लिए।

कुछ रिश्ते गुजरते समय के साथ बेहतर नहीं होते, कुछ रिश्ते गुजरते समय के साथ बेहतर नहीं होते, चाहे उन पे कितना ही प्रेम वारा हो, चाहे कितना ही उनको संभाला हो, तो ये उम्मीद झूठी है कि समय के साथ सब कुछ बेहतर हो जाता है। कुछ चीजों का सही समय बस वर्तमान है, भविष्य नहीं। मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:37 और 17 सेकंड, और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत रफी साहब की आवाज में आप ही के लिए।

आपको पता है, वैसे बेईमान मौसम की सबसे बड़ी और खास बात ये होती है कि आपके दिल और दिमाग में जो पुराने लोग होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। उनकी यादें, उनकी तस्वीरें, उनकी कही बातें, उनके चेहरे, सब कुछ आपके सामने आने लगते हैं। और कई बार पुराने लोगों का हमारी ज़िंदगी में वापस आना अच्छा लगता है, सुकून देता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमेशा पुराने लोग अपने साथ अपने पुराने जख्म भी लेकर आते हैं। तो हर पुराना इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस उस जगह को पा सके ऐसा ज़रूरी नहीं होता। और कई बार मैं तो हमेशा ये मानना है मेरा कि जो इंसान आपको तकलीफ़ दे, आपको दुख दे, ऐसे इंसान को दोबारा कभी मौका नहीं मिलना चाहिए। अगला गीत आप ही के लिए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 2:51 और 8 सेकंड और आप सुन रहे हैं रात सुरमई।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी नीता अग्रवाल। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश के धार जिले का रूपखेड़ा गांव बागवानी विभाग के सहयोग और किसानों की मेहनत से आधुनिक कृषि का एक नया मॉडल बन गया है। फूलों की खेती के कारण यह गांव अब मध्य प्रदेश के मिनी हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। पहले यहां के किसान गेहूं, चना, मक्का और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसल पर निर्भर थे, पर अब संरक्षित कृषि से पॉली हाउसेज और शेड नेट हाउस में गुलाब, जरबेरा, लिली और अन्य फूलों के साथ ही उत्तम किस्मों की सब्जियां उगाते हैं। 11 दिनों की कड़ी खेल प्रतिस्पर्धा के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आज ग्लासगो में एक भव्य समारोह में समापन हो गया। समारोह में शताब्दी संस्करण की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। स्कॉटलैंड के अधिकारियों ने राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज और कमान भारतीय प्रतिनिधियों, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संगठन के अध्यक्ष पीटी ऊषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को सौंपी। कार्यक्रम में भारत स्कॉटिश संस्कृतियों की जुगलबंदी भी देखने को मिली, जिसमें संगीतकारों और नर्तकों ने अपने कौशल का मनमोहक प्रदर्शन किया। भारत 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा और संतुष्ट प्रदर्शन के साथ ग्लासगो से विदा होगा। इसके साथ ही यह समाचार।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi yesterday, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो मन से स्वस्थ हो आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो यही इस अभियान का उद्देश्य है
2: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event, including My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia, said the dream of a drug-free India can be realized only through active public participation and the leadership of the youth. He was addressing a program at Amrita Hospital in Faridabad after the national launch of the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. Dr. Mandavia described the 100-week campaign as a nationwide people's movement aimed at mobilizing the youth for nation building. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity, and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee report released on Saturday, the growth estimate marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainties. All arrangements are in place for the counting of votes for the by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh today. Polling for the Bankipur constituency in Bihar, Manjulpur in Gujarat and Datya in Madhya Pradesh were held on 30th of last month. Counting of votes will begin at 8 a.m. In Madhya Pradesh, the first Shravan procession of Lord Mahakaleshwar will be taken out in Ujjain today, marking the first Monday of the holy Shravan month. Lord Mahakal in the Chandramouleshwar form will be taken out in a traditional palanquin procession, offering devotees an opportunity for darshan. A special puja will be performed at the Mahakaleshwar temple before the procession begins at 4 p.m. In Pakistan, at least 14 people, including 5 security men, were killed and over a dozen injured in a suicide attack on a police station during a peace rally in Khyber Pakhtunkhwa province yesterday. The explosion occurred when the SWAT peace rally was in progress right across the police station in Kabul town in SWAT district. No group or individual has claimed immediately responsibility for the attack. After 11 days of intense competition, Glasgow Commonwealth Games concluded with the flag baton handed over to India, hosts of the centenary edition in a glittering ceremony at Glasgow today. The 2030 Games will be held in Ahmedabad and the Scotland officials handed over the CWG flag and baton to Indian representatives, Olympic gold medalist Neeraj Chopra, Indian Olympic Association President P.T. Usha and Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi. India will depart from the Glasgow as a satisfied bunch after 39 medals at the 2026 Games, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze, to end in fourth position on the standings. The country will become only the second nation after Australia to host the Commonwealth Games on multiple occasions, having previously organised the 2010 edition in New Delhi. The closing ceremony, the 22nd Commonwealth Table Tennis Championships 2026, was held in New Delhi yesterday. Delhi Chief Minister Rekha Gupta honoured the winning players with medals and accolades and commended their outstanding performance. Speaking on the occasion, the Chief Minister stated that it is a matter of pride for the Delhi government that the national capital has successfully hosted this prestigious event. And that is the end of this news bulletin.

रात्रि के 3:11 और 35 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मित्रों, रात के इस सुंदर सफर में आसमान में चमकता चांद, इसकी रोशनी और खूबसूरती यकीनन हम सभी का मन मोहती है। और इन दिनों के सुहाते मिश्रित मौसम में चांद को निहारना यकीनन उस मौसम को और भी ताजगी प्रदान करता है। चांद को देखना और भी सुकूनदायक, और इसकी रोशनी और ठंडक एहसास करना भी सुखद। यही तो है चांद की खासियत।

मोहम्मद रफी आशा भोसले के स्वरों से सजाया ये गीत आप सुन रहे हैं जाली नोट फिल्म से। 1960 रिलीज ये फिल्म ओपी नैयर का संगीत राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। साथियों इस रात का सफर रोज होता है लेकिन हर रात फिर भी रोज अलग अलग रूपों में हमें नजर आती है। कभी आसमान में चांद पूरा, कभी आधा, कभी चांद है ही नहीं, कभी घटता या बढ़ता चांद। न सिर्फ इतना बल्कि हमारे ख्यालों और एहसासों की दृष्टि से भी हर रात अलहदा होती है।

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज वसी सजाज ही गीत एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से अभी आपने सुना। 1967 रिलीज ये फिल्म शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। साथियों रात का समय कई बार नींद ना आने का समय भी बन जाता है। अब नींद ना आने के कारण तो भाई कई हो सकते हैं, उन्हीं में से एक कारण शायद ये भी हो जाता है हमारे साथ कभी कभी।

शमशाद बेगम किशोर कुमार की आवाजों से सजी ये रचना ओपी नैयर का संगीत था। जानिसार अख्तर की लिखी रचना 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम नया अंदाज। और अब नीली नीली आंखों के दिल पर तिल चल गए। जी हाँ, तीर चल गए। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, सुनते हैं इस युगल नगमे में।

शंकर जय किशन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना साथियों। हसरत जयपुरी ने ये गीत लिखा था। आवाजों का सुंदर समन्वय था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का। फिल्म का नाम जाने अनजाने, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1971 में।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 7.1 मेगाहर्ट्ज़ से इस समय श्रोता साथी सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। रात्रि के 3:33 और 51 सेकंड हो चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

सुलक्षणा पंडित और मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत आखिन देखी इस फिल्म से अभी आपने सुना। 1978 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। जी कौशिक का संगीत था, पद्मा सचदेव ने ये गीत लिखा। और अब ये गीत साथियों, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सफर में एक दूसरे के हमराही बनते हैं। इस सुरीले सफर के हमराही हैं हम सब। और जब हमराही अच्छे हो तो सफर जीवन का हो या कुछ घंटे मिनट या लम्हों का, कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता।

विजयन मुखर्जी और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना माया फिल्म से। 1961 रिलीज ये फिल्म थी साथियों। सलील चौधरी का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना। साथियों अब एक खूबसूरत अदा लिए ये गीत जिसमें एक मीठी प्यार भरी शिकायत का खूबसूरत अंदाज शुमार है।

मोहम्मद रफी और उषा मंगेशकर के स्वरों से सजाई गीत अभी आपने सुना। बप्पी लहरी का संगीत था, रमेश पंत की लिखी रचना। 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों, जिसका नाम वारदात। साथियों, जीवन में कोई भी रिश्ता हो, वादे कस्में उस रिश्ते का अहम हिस्सा होते हैं और उनमें अक्सर वादों को लेकर ये बात भी कही जाती है। क्या बात, सुनते हैं इस नगमे में।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत जलते बदन फिल्म से लिया था। 1973 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, माया गोविंद की लिखी रचना। आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है ये नगमा।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे? नहीं,

वक्त फिल्म की ये रचना अभी आपने सुनी महेंद्र कपूर आशा भोसले के स्वरों में। इसी गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूझलाधार वर्षा की संभावना है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा प्रांत में कल एक शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर हुए आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। स्वात जिले के काबुल कस्बे में पुलिस थाने के ठीक सामने हुई रैली के दौरान यह विस्फोट हुआ। फिलहाल हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह या व्यक्ति ने नहीं ली है। 11 दिनों की कड़ी खेल प्रतिस्पर्धा के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आज ग्लासगो में एक भव्य समारोह के साथ समापन हो गया। समारोह में शताब्दी संस्करण की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। स्कॉटलैंड के अधिकारियों ने राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज और कमान भारतीय प्रतिनिधियों, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संगठन के अध्यक्ष पीटी ऊषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को सौंपी। समापन समारोह की शुरुआत स्कॉटलैंड की सांस्कृतिक झलकियों से हुई, पर जल्दी ही यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और प्राचीन परंपरा के जीवंत प्रदर्शन में बदल गया। कार्यक्रम में भारत स्कॉटिश संस्कृतियों की जुगलबंदी भी देखने को मिली, जिसमें संगीतकारों और नर्तकों ने अपने कौशल का मनमोहक प्रदर्शन किया। भारत 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है प्रातः के 4:11 और 8 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। अरुणिमा काल सूर्य की किरणों की सुंदर लालिमा सजाता ये समय, पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जहां खामोशी है, कुछ उनिंदापन है और सपनों को साकार करने का, आज के कार्यों को पूरा करने का हौसला है।

0: चलो।
1: मुकेश की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना। नौशाद का संगीत था शकील बदायूं की लिखी रचना। 1948 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम अनोखी अदा। चांद सितारों का समा यानी रात का समा।

0: लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना जुगनू फिल्म से 1973 रिलीज ये फिल्म। सचिन देव बर्मन का संगीत था, आनंद बख्शी की लिखी रचना।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सुलोचना कदम और सतीश बत्रा के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना ढोलक फिल्म से। 1951 रिलीज ये फिल्म, श्याम सुंदर का संगीत, अजीज कश्मीरी की लिखी रचना। मित्रों, सादगी हर किसी को भाती है, भले ही सादगी बिना चेहरे या व्यक्तित्व के हम मुरीद भी हो जाएं किसी के, लेकिन वो अस्थाई भाव होते हैं। सादगी एक सर्वोत्तम गहना है, चाहे चेहरे की सादगी हो या व्यक्तित्व की। जीवन भर के लिए सादगी ही उपयुक्त गहना है।

मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना शबनम फिल्म से 1964 रिलीज फिल्म। उषा खन्ना का संगीत था, जावेद अनवर की लिखी रचना। और अब मंजिल की धुन में मस्ती में जा रही जी कौन सुनिए इस गीत में।

डॉक्टर विद्या। इस फिल्म से अभी आपने ये नगमा सुना। 1962 रिलीज फिल्म। मुकेश की आवाज का जादू था, सचिन देव बर्मन का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं। इस समय प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। प्रातः के 4:33 हो गए हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब नैनों से दिल तक उतरता छम छम प्यार का सागर।

0: एसएन त्रिपाठी की संगीत रचना अभी आपने सुनी। अंजुम जयपुरी ने ये रचना लिखी थी। गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों का सुंदर समन्वय था इस गीत रचना में। फिल्म का नाम नवदुर्गा था जो रिलीज हुई थी वर्ष 1953 में। मित्रों, अरुणिमा काल में सूर्य की लालिमा उसकी आभा विद्यमान है और हरी घास पर कुछ है जो चमक रहा। क्या है वो, किसका है?
1: किसी का।

आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों से सजा ये गीत अभी आपने सुना गुमराह फिल्म से। 1963 रिलीज फिल्म। रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना। साथियों, प्रकृति की सुंदरता के बीच जब हम पहुंचते हैं तो दृश्य नजारों के साथ साथ हमारा मन भी प्रफुल्लित हो उठता है।

भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाजों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम एक बार फिर, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1980 में। रघुनाथ सेठ का संगीत था और विनोद पांडे की लिखी रचना थी। और अब दिल में सजी आस का एक रूप ये भी।

सुबीर सेन की आवाज से सजा ये गीत आज का पंछी फिल्म से अभी आपने सुना। 1961 रिलीज ये फिल्म शंकर जयकिशन का संगीत था और हसरत जयपुरी की रचना थी। मित्रों, ये जीवन के रास्ते सीधे साफ सपाट तो कदापि नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी जीवन को हंसते मुस्कुराते ही जिया जाए तो स्वयं अपना भी भला और हमारे आस पास का माहौल भी सही बना रह सकता है। आज की अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

किशोर कुमार की आवाज से सजा ये गीत जमीर फिल्म से आप सुन रहे हैं। 1975 रिलीज ये फिल्म सपन चक्रवर्ती का संगीत साहिल लुधियानवी की लिखी रचना। ये थी साथियों आज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य।

0: है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे करने नहीं देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना आज सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15% और औद्योगिक ऋण में 19% की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 7% से अधिक दर्ज हुआ। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल एक शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर हुए आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के ठीक सामने हुई रैली के दौरान यह विस्फोट हुआ। फिलहाल हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह या व्यक्ति ने नहीं ली है। 11 दिनों की कड़ी खेल प्रतिस्पर्धा के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का ग्लासगो में एक भव्य समारोह के साथ समापन हो गया। समारोह में शताब्दी संस्करण की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। स्कॉटलैंड के अधिकारियों ने राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज और कमान भारतीय प्रतिनिधियों, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संगठन के अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को सौंपी। समापन समारोह की शुरुआत स्कॉटलैंड की सांस्कृतिक झलकियों से हुई और जल्द ही ये भारत की सांस्कृतिक विविधता और प्राचीन परंपरा के जीवंत प्रदर्शन में बदल गया। कार्यक्रम में भारत स्कॉटिश संस्कृतियों की जुगलबंदी भी देखने को मिली। भारत 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत राष्ट्रमंडल खेलों की 1 से अधिक बार मेजबानी करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है प्रातः के 5:11 और 19 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, महात्मा गांधी जी का कथन है, केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कें तो उसकी कुछ बूंदें अवश्य ही आप पर भी पड़ती हैं। मित्रों, इस कथन को यदि हम अपने जीवन में ढाल लें तो हमें तो खुशी मिलेगी ही, खुशी को बांटे हुए लम्हे दूसरों के जीवन को भी महकाएंगे, जिनसे प्रेम और प्रसन्नता दोनों में बढ़ोतरी होगी।

0: हेमंत कुमार की आवाज़ से सजा ये गीत आबे हयात फिल्म से अभी आपने सुना। 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सरदार मलिक का संगीत था, हजरत जयपुरी की लिखी रचना। और अब पिया गए विदेश, अपने पिया को याद कर रही ये इस सुंदर अरुणिमा में। शायद भोर होते होते पिया आ ही जाए, वादा जो किया था पिया ने कि भोर सुहानी होने से पहले आ जाऊंगा घर।
1: हेलो हिंदुस्तान।

चितलकर रामचंद्र के संगीत से सजा ये गीत अभी आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना थी, फिल्म का नाम पतंगा, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1949 में। चितलकर रामचंद्र और शमशाद बेगम की आवाजों का सुंदर समन्वय था इस गीत रचना में। साथियों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति जीवन में आता है, चला भी जाता है, लेकिन अपने होने का एहसास जीवन भर के लिए दे जाता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी बातें याद बन बार बार उभरती हैं और हमारे मन मस्तिष्क में बिल्कुल साथ रहती हैं।

लता मंगेशकर की आवाज़ से सजा ये गीत अभी आपने सुना सलिल चौधरी का, संगीत था योगेश की लिखी रचना। 1976 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम छोटी सी बात। और अब जिस बात की आशा थी, इंतजार था, वो पल आ गया है।

लता मंगेशकर की आवाज़ से सजा ये गीत आवारा फिल्म से साथियों अभी आपने सुना। 1951 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। साथियों, गीत संगीत की तासीर ही कुछ ऐसी होती है कि जब हम इनका श्रवण करते हैं तो इनकी तासीर में खो से जाते हैं। हम सफर में हो या घर पर या कहीं भी, इन गीत संगीत की आवाजों का जादू एक सुंदर अनुभूति देता है।

मोहम्मद रफी आशा भोसले के स्वरों से सजाई गीत गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म से अभी आपने सुना। 1957 रिलीज ये फिल्म। मदन मोहन का संगीत, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना।